नमस्कार, सुप्रभात। मीडियम वेव 326.79 मीटर यानी 918 किलोहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। श्रोताओं, आज रविवार है। शक संवत 1948 के श्रावण मास की चौथी तिथि, तदनुसार आज दिनांक 26 जुलाई सन 2026 ईस्वी, समय प्रातः के 5:55 और 40 सेकंड हुए हैं। अब हमारी आज की प्रातःकालीन सभा का आरंभ करते हैं इस मंगल ध्वनि के साथ।

ये आकाशवाणी का कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। समय सुबह के 6 बजे हैं। लीजिए सुनिए हमारे दिल्ली केंद्र से पहले हिंदी में और उसके बाद अंग्रेजी में समाचार। समाचारों की कृपया प्रतीक्षा करें।

0: सरकार के साथ सहमति बनने के बाद कॉकरोच जनता पार्टी सीजीपी ने अपना आंदोलन वापस ले लिया है। नई दिल्ली में कल केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने सीजीपी प्रतिनिधि मंडल के साथ तीसरे दौर की वार्ता की। बैठक में परीक्षा व्यवस्था में सुधार और पेपर लीक रोकने के उपायों पर विस्तार से चर्चा हुई। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि प्रदर्शनकारियों के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। यदि किसी प्रदर्शनकारी के विरुद्ध पहले से पुलिस रिपोर्ट दर्ज है तो उसे वापस लिया जाएगा। नीट यूजी पेपर लीक के बाद आत्महत्या करने वाले अभ्यर्थियों के परिवारों को मुआवजा के मुद्दे पर श्री नड्डा ने कहा कि सरकार की पूरी संवेदना उनके साथ है।
1: कंपनसेशन के बारे में सरकार ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा है, जान किसी बच्चे की जाए और उसके प्रति हम भी सहानुभूति रखते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी अत्यंत सहानुभूति के साथ कहा है कि ऑनरेबल कंपनसेशन अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड रेगुलेशंस व्हाटएवर मैक्सिमम विल बी पॉसिबल दैट विल बी गिवन टू देम।
0: वहीं सीजीपी के मुख्य प्रवक्ता सौरभ दास ने कहा कि सहमति बने शर्तों को तय सीमा में लागू किए जाने की उम्मीद के साथ आंदोलन वापस लिया जा रहा है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी को नया शिक्षा मंत्री बनाया गया है। उन्हें उनके मौजूदा विभागों के साथ साथ शिक्षा मंत्रालय की अतिरिक्त जिम्मेदारी सौंपी गई है। प्रहलाद जोशी फिलहाल उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण तथा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय का कार्यभार संभाल रहे हैं। इस बीच राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का केंद्रीय मंत्री परिषद से इस्तीफा तत्काल प्रभाव से स्वीकार कर लिया है। सरकार कल लोकसभा में लोक परीक्षा संशोधन विधेयक पेश करेगी। केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह इस विधेयक को सदन में प्रस्तुत करेंगे। इसका उद्देश्य लोक परीक्षा अधिनियम 2024 में संशोधन करना है। शुक्रवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रश्न पत्र लीक और परीक्षा में अनियमितताओं के मामलों में त्वरित सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक अदालतों की स्थापना तथा दोषियों के लिए और कड़े दंड का प्रावधान करने संबंधी मसौदा विधेयक को मंजूरी दी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर प्रसारित होने वाले मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 136वीं कड़ी होगी। इस कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क, AIR न्यूज वेबसाइट तथा न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी किया जाएगा। इसके साथ ही AIR न्यूज, DD न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी इसका सीधा प्रसारण होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम 4:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के प्रतिभागियों से संवाद करेंगे। इसमें 400 से अधिक युवा प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम का आयोजन पिछले महीने 4 से 30 जून तक दो चरणों में किया गया। इसके अंतर्गत लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के 74 वाइब्रेंट गांवों को शामिल किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मोल्दोवा, उत्तर मैसेडोनिया और रोमानिया की राजकीय यात्रा संपन्न कर आज सुबह नई दिल्ली लौट आई हैं। यात्रा के दौरान राष्ट्रपति ने तीन देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की और द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत बनाने के साथ साथ व्यापार, शिक्षा, डिजिटल प्रौद्योगिकी, नवाचार और नवीकरणीय ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। मोल्दोवा और उत्तर मैसेडोनिया की किसी भारतीय राष्ट्रपति की ये पहली राजकीय यात्रा थी, जबकि रोमानिया की 3 दशक से अधिक समय बाद किसी भारतीय राष्ट्रपति की ये पहली राजकीय यात्रा रही। सिक्किम में नाथुला मार्ग से कैलाश मानसरोवर यात्रा पूरी कर पांचवा जत्था सकुशल गंगटोक लौट आया है। यात्रा के सफल समापन पर सिक्किम पर्यटन विकास निगम ने कल गंगटोक में एक सम्मान समारोह आयोजित किया। इस दौरान यात्रियों ने अपने आध्यात्मिक अनुभव साझा किए और पवित्र कैलाश पर्वत तथा मानसरोवर झील की यात्रा सफलतापूर्वक पूरी होने पर प्रसन्नता व्यक्त की।

भारतीय सब जूनियर पुरुष हॉकी टीम ने FIH यूथ हॉकी 5 एशियन चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है। फाइनल मुकाबले में भारत ने पाकिस्तान को 3-1 से हराया। भारत की ओर से रोमित पाल, कप्तान केतन कुशवाहा और शाहरुख अली ने गोल किए। फाइनल में पहुंचने के साथ ही भारत और पाकिस्तान ने FIH यूथ हॉकी 5 वर्ल्ड कप के लिए भी क्वालिफाई कर लिया है। महिला वर्ग में भारतीय सब जूनियर टीम ने चीन के खिलाफ कड़े मुकाबले में रजत पदक जीता। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

श्रोताओं, भक्ति संगीत का दैनिक कार्यक्रम वंदना आप आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से सुन रहे हैं।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कविता पौडवाल और साथियों के स्वर में माता रानी की ये भेंट। कार्यक्रम के आखिर में सुनिए अनूप जलोटा और साथियों को।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का दैनिक कार्यक्रम वंदना। आकाशवाणी का यह कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। सुबह के 6:45 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम चिंतन। आज का चिंतन है जीवन में सरलता। वाचक स्वर हैं स्वामी अशोक भारती के।

श्रोतों लीजिए अब सुनिए हमारे केंद्र से आज दिन भर में प्रसारित किए जाने वाले मुख्य मुख्य कार्यक्रमों का विवरण और उनका प्रसारण समय। अब से कुछ ही देर बाद यानी 7:10 पर किसान भाई सुनेंगे अपना दैनिक कार्यक्रम खेती हर वास्ते। जानकारी का विषय होगा संतुलित खाद उर्वरकों का प्रयोग। इसके अलावा आप सुन पाएंगे लोक वचन। प्रातः 7:20 पर कार्यक्रम मानस गान में आप सुन पाएंगे भाग संख्या 316। प्रातः 7:30 पर कार्यक्रम सुप्रभात में आज जानकारी के विषय होंगे विनम्रता, अहिंसा परमो धर्म और सेवा भाव। सुगम संगीत आप सुन पाएंगे हमारे केंद्र से प्रातः 8:45 पर। 9:10 पर आप सुन पाएंगे कार्यक्रम मरुमंगल। आज कलाकार होंगे शंकर दमामी। फिल्म संगीत आप सुन पाएंगे हमारे केंद्र से प्रातः 9:30 पर, दोपहर 2:30 पर और संध्या 7:45 पर। फरमाइशी फिल्मी गीतों का प्रोग्राम सदाबहार नगमे आप सुन पाएंगे हमारे केंद्र से प्रातः 10:00।

सुबह 10:55 पर आप सुन पाएंगे कार्यक्रम मन की बात। 12:05 पर कार्यक्रम होगा कुछ बातें कुछ गीत। 12:30 पर आप सुन पाएंगे हमारे दिल्ली केंद्र से पर्सन बिहाइंड द स्टोरी प्रोग्राम। दिन में 1:05 पर महिलाएं सुनेंगे अपना कार्यक्रम महिला जगत। आज जानकारी के विषय होंगे आत्मविश्वास कैसे बनाएं, कारगिल विजय दिवस, मोल भाव की आदत किस हद तक और विभिन्न सब्जियों का परिरक्षण। दोपहर 3 बजे आप सुन पाएंगे हमारे दिल्ली केंद्र से कार्यक्रम उर्दू सर्विस। संध्या 5 बजे युवा साथी सुनेंगे अपना दैनिक कार्यक्रम युववाणी। जानकारी के विषय होंगे मानसिक स्वास्थ्य के प्रति सामाजिक जागरूकता, नशा मुक्त समाज का निर्माण, सपनों से सफलता तक का सफर, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं, जीवन में सकारात्मकता, सोच का महत्व और आज का इतिहास। संध्या 6:05 पर आप सुन पाएंगे सराइकी। संध्या 7 बजे ग्रामीण परिवार सुनेंगे अपना दैनिक कार्यक्रम चौपाल। रात्रि 8 बजे आप सुन पाएंगे कार्यक्रम एक ही फिल्म से। रात्रि 9:15 पर आप सुन पाएंगे हमारे दिल्ली केंद्र से कार्यक्रम द आकाशवाणी पॉडकास्ट। रात्रि 10 बजे आप सुन पाएंगे हमारे दिल्ली केंद्र से अखिल भारतीय रविवासरीय संगीत सभा। आकाशवाणी का यह कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विवरण। प्रातः के 6:55 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए हमारे दिल्ली केंद्र से संस्कृत में समाचार।

0: वार्ताः। केन्द्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधानः स्वपदात् त्यागपत्रं दत्त्वा तत् प्रधानमन्त्रिणे नरेन्द्र मोदिने समर्पितवान्। सामाजिक संचार पटले प्रकाशिते एकस्मिन् संदेशे श्री प्रधानः अवदत् यत् गत दश दिनेषु छात्राणां विरोध प्रदर्शनानन्तरं उत्पन्नया परिस्थित्या सः अत्यन्तं व्यथितः अभवत्। एतद् स्वस्य प्रतिष्ठायाः विषयः नास्तीति इत्यपि तेन उक्तम्। असौ नवदिल्ल्यां जन्तरमन्तरस्थले विद्यमानां स्थितिं समग्रदेशस्य परिस्थितिं चावलोक्य निर्णयम् अकरोत्। श्रीप्रधानः प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्रमोदिनः मार्गदर्शनाय, विश्वासाय, निरन्तरसहयोगाय च कृतज्ञतामपि प्रकटितवान्। असौ एतदपि उक्तवान् यत् राष्ट्रसेवा तस्य जीवनस्य सर्वोच्च प्राथमिकता अस्ति, सहैव जीवनपर्यन्तं तस्यै समर्पितः भविष्यतीति। राष्ट्रपतिपदासीना द्रौपदी मुर्मुः केन्द्रीयमन्त्रिपरिषदः धर्मेन्द्रप्रधानस्य त्यागपत्रं तत्क्षणप्रभावेण स्वीकृतवती। धर्मेन्द्रप्रधानस्य त्यागपत्रानन्तरं केन्द्रीयमन्त्री प्रह्लाद जोशी नूतनशिक्षामन्त्री भविष्यति। वर्तमानदायित्वेन सह शिक्षामन्त्रालयस्य दायित्वमपि तस्मै समर्पितम्।
1: प्रधानमंत्री जी ने विश्वास रख के इतना बड़ा जिम्मेदारी मेरे ऊपर दिया है, उसको मैं पूरा विनम्रता के साथ और पूरा जिम्मेदारी के साथ मैं निभाऊंगा। प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद अर्पित करता हूं एंड आई विल ट्राई टू कम टू हिज एक्सपेक्टेशन इन दिस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट एंड आई विल विद फुल स्ट्रेंथ आई विल ट्राई टू वर्क विद ऑल ह्यूमिलिटी एंड ऑनेस्ट।
0: राष्ट्रपति पदासीना द्रौपदी मुर्मुः मोल्दोवा, उत्तर मैसेडोनिया, रोमानिया देशानाम् आधिकारिक यात्रां सम्पन्नं कृत्वा अद्य प्रातः नवदिल्लीं प्रत्यागतवती। अस्यां यात्रायाम् अनेकानि ऐतिहासिक सोपानानि स्थापितानि। तेषु कस्यापि भारतीय राष्ट्रपतेः मोल्दोवा उत्तर मैसेडोनिया देशयोः प्रथमा आधिकारिकयात्रा, सहैव त्रिदशकानन्तरं रोमानिया देशस्य प्रथमा आधिकारिकयात्रा सम्मिलिता अस्ति। समग्रयात्रावधौ राष्ट्रपतिपदासीना मुर्मुः विभिन्नदेशानां राष्ट्राध्यक्षैः सह प्रतिनिधिमण्डलस्तरीयवार्ताः अकरोत्। व्यापारमञ्चान् सम्बोधितवती तथा भारतीयप्रवासीसमुदायस्य सदस्यैः सह संवादमपि अकरोत्। प्रशासनं श्वः लोकसभायां सार्वजनिकपरीक्षा अनुचितसाधननिवारणसंशोधनविधेयकं 20-26 इति प्रस्तुतं करिष्यति। एतद् विधेयकं सोमवासरस्य लोकसभाकार्यसूचौ समाविष्टम्। एतेन सार्वजनिकपरीक्षा अनुचितसाधननिवारण अधिनियमः 20-24 इत्येतस्मिन् संशोधनं भविष्यति। केन्द्रीयमन्त्री डॉ. जितेन्द्रसिंहः एतद् विधेयकं लोकसभायां प्रस्तोष्यति। उल्लेखनीयमस्ति यत् गतशुक्रवासरे केन्द्रीयमन्त्रिमण्डलेन प्रश्नपत्रस्य गोप्यताभङ्गे, परीक्षासु च अनुचितसाधनप्रयोगप्रकरणेषु द्रुतन्यायालयानां स्थापनाय, दोषिषु च कठोरतरदण्डविधानं सुनिश्चेतुं प्रारूपविधेयकम् अनुमोदितम्। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य पूर्वाह्ने 11 स्वीय मन की बात इत्येतस्मिन् कार्यक्रमे देशवासिभिः साकं विचार विनिमयं करिष्यति। मन की बात इति मासिक कार्यक्रमस्य इदं 37-100 संस्करणं भविता। अस्य कार्यक्रमस्य प्रसारणम् आकाशवाण्याः, दूरदर्शनस्य च सर्वाभिः वाहिनीभिः प्रसारयिष्यते। अयं कार्यक्रमः आकाशवाणी, दूरदर्शनं, प्रधानमन्त्रिकार्यालयः, सूचनाप्रसारणमन्त्रालयः इत्येतेषां यूट्यूब् वाहिनीष्वपि द्रष्टुं शक्यते इति। प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी अद्य सायं 4:30 दृश्यश्रव्यपरान्तर्जालीयमाध्यमेन 26-2000 विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रमस्य सहभागिभिः सह संवादं साधयिष्यति। 20-20 पुरुष क्रिकेट स्पर्धायां भारतेन 30-स्पर्धात्मक श्रृंखलायाः द्वितीय क्रीडायां जिम्बाब्वे दलं 90 धावनांकैः पराजितम् इति वार्ताः।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। सरकार के साथ सहमति बनने के बाद कॉकरोच जनता पार्टी सीजेपी ने अपना आंदोलन वापस ले लिया है। नई दिल्ली में कल केंद्रीय मंत्री

0: जेपी नड्डा और डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने सीजेपी प्रतिनिधिमंडल के साथ तीसरे दौर की वार्ता की। बैठक में परीक्षा व्यवस्था में सुधार और पेपर लीक रोकने के उपायों पर विस्तार से चर्चा हुई। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि प्रदर्शनकारियों के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी।
1: सबसे पहली बात तो ये है कि कोई भी एक्शन FIR न हो और अगर है तो वो विड्रॉ हो और उसको विड्रॉ करने की बात कोई भी एक्शन नहीं होगा, इस बात को सरकार ने स्वीकारा है जो प्रोटेस्टर्स के साथ प्रोटेस्ट के दौरान हुआ है। उसी तरीके से फ्यूचर में भी जो ऑर्गेनाइजर्स हैं और प्रोटेस्टर्स हैं उनका इस एक्टिविटी के लिए कोई भी उन पर आगे केस नहीं होगा, इस बात को हम लोगों ने माना है।
0: नीट UG पेपर लीक के बाद आत्महत्या करने वाले अभ्यर्थियों के परिवारों को मुआवजे के मुद्दे पर श्री नड्डा ने कहा कि सरकार की पूरी संवेदना उनके साथ है। वहीं CJP के मुख्य प्रवक्ता सौरभ दास ने कहा कि सहमति बनी शर्तों को तय समय सीमा में लागू किए जाने की उम्मीद के साथ आंदोलन वापस लिया जा रहा है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी को नया शिक्षा मंत्री बनाया गया है। उन्हें उनके मौजूदा विभागों के साथ साथ शिक्षा मंत्रालय की अतिरिक्त जिम्मेदारी सौंपी गई है। प्रहलाद जोशी फिलहाल उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण तथा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय का कार्यभार संभाल रहे हैं। इस बीच राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का केंद्रीय मंत्रिपरिषद से इस्तीफा तत्काल प्रभाव से स्वीकार कर लिया है। सरकार कल लोकसभा में लोक परीक्षा संशोधन विधेयक पेश करेगी। केंद्रीय मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह इस विधेयक को सदन में प्रस्तुत करेंगे। इसका उद्देश्य लोक परीक्षा अधिनियम 2024 में संशोधन करना है। शुक्रवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रश्न पत्र लीक और परीक्षा में अनियमितताओं के मामलों में त्वरित सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक अदालतों की स्थापना तथा दोषियों के लिए और कड़े दंड का प्रावधान करने संबंधी मसौदा विधेयक को मंजूरी दी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर प्रसारित होने वाले मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 136वीं कड़ी होगी। इस कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क, AIR न्यूज वेबसाइट तथा न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। प्रधानमंत्री आज शाम 4:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के प्रतिभागियों से संवाद करेंगे। इसमें 400 से अधिक युवा प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम का आयोजन पिछले महीने 4 से 30 जून तक दो चरणों में किया गया। इसके अंतर्गत लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के 74 वाइब्रेंट गांवों को शामिल किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मोल्दोवा, उत्तर मैसिडोनिया और रोमानिया की राजकीय यात्रा पर संपन्न कर आज सुबह नई दिल्ली लौट आई हैं। यात्रा के दौरान राष्ट्रपति ने तीनों देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ प्रतिनिधि मंडल स्तर की वार्ता की और द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत बनाने के साथ साथ व्यापार, शिक्षा, डिजिटल प्रौद्योगिकी, नवाचार और नवीकरणीय ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। सिक्किम में नाथुला मार्ग से कैलाश मानसरोवर यात्रा पूरी कर पांचवां जत्था सकुशल गंगटोक लौट आया है। यात्रा के सफल समापन पर सिक्किम पर्यटन विकास निगम ने कल गंगटोक में एक सम्मान समारोह आयोजित किया। इस दौरान यात्रियों ने अपने आध्यात्मिक अनुभव साझा किए और पवित्र कैलाश पर्वत तथा मानसरोवर झील की यात्रा सफलतापूर्वक पूरी होने पर प्रसन्नता व्यक्त की। इस वर्ष नाथुला मार्ग से कैलाश मानसरोवर यात्रा के कुल 10 जत्थे भेजे जाने हैं। भारतीय सब जूनियर पुरुष हॉकी टीम ने FIH यूथ हॉकी 5 एशियन चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है। फाइनल मुकाबलों में भारत ने पाकिस्तान को 3-1 से हराया। भारत की ओर से रोमित पाल, कप्तान केतन कुशवाहा और शाहरुख अली ने गोल किए। फाइनल में पहुंचने के साथ ही भारत और पाकिस्तान ने FIH यूथ हॉकी 5 वर्ल्ड कप के लिए भी क्वालिफाई कर लिया है। महिला वर्ग में भारतीय सब जूनियर टीम ने चीन के खिलाफ कड़े मुकाबले में रजत पदक जीता। भारत की युवा स्क्वैश खिलाड़ी अनाहत सिंह ने इतिहास रचते हुए विश्व स्क्वैश जूनियर चैंपियनशिप जीती है। फाइनल में अनाहत ने मिस्र की रुकैया सलीम को हराया। इस जीत के साथ अनाहत जूनियर विश्व प्रतियोगिता जीतने वाली पहली भारतीय स्क्वैश खिलाड़ी बन गई हैं। उन्होंने मिस्र के खिलाड़ियों के 16 साल के वर्चस्व को भी समाप्त कर दिया। अब उनकी नजर लॉस एंजलिस 2028 ओलंपिक पर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashwani, the news read by Sunil Verma. The CJP has withdrawn its agitation after the government agreed to its demands. Union ministers J.P.

0: भोजन की आवश्यकता पड़े भी आई पौधा ने भी विकास करने वास्ते खुराक की आवश्यकता पड़े। आप बात करा फसलों ने संतुलित भोजन किया उपलब्ध कराव। किसान भाइयों, बुंटो हवा पानी और धूप छू भी आपको की भोजन तैयार कर लेवे, परंतु पौधों स्वस्थ और ज़्यादा पैदावार देवे इन वास्ते आपने भी अलग छूमी के भोजन के और पोषक तत्वों की व्यवस्था करनी चाहिए। अब बात करा बा सारे पोषक तत्वों की जिका एक पौधे के जीवन चक्र ने पूरा करें। जीवन चक्र पूरा करने वास्ते कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, पोटाश, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, लोहा, जस्ता, मैग्नीज, बोरोन, तांबा, कोबाल्ट, क्लोरीन, सोडियम, सिलिकॉन कई पोषक तत्वों की जरूरत होवे। मुख्य पोषक तत्वों की बात करें तो बिंगमा नाइट्रोजन। अब नाइट्रोजन पौधे ने किया पोषित करे बी वास्ते बतावा भी पौधा में जिको हरो रंग आवे वो नाइट्रोजन हुआ है और पौधों तेजी हूँ बढ़वार करे इनमें भी नाइट्रोजन को संयोग हुए। बुंटे में प्रोटीन, विटामिन और कोशिका में रस बनाने वास्ते भी मदद करे। अब आपा किसान भाइयों नाइट्रोजन की कमी है इंगो पतो किया कर सका तो बी वास्ते आप देखांगा कि पौधा को जिको पत्तियाँ हैं बांगो रंग पीलो पड़ जाए, पत्तियाँ छोटी रह जावे, पौधा में बढ़वार को नहीं करे। नाइट्रोजन की कमी दूर करने वास्ते यूरिया बिजाई के समय देनी होवे, बिंगे बाद पौधे की बढ़वार वास्ते एक दो बार और छिड़काव होवे। दूसरे पोषक तत्व की बात करां जिको जरूरी है बी वास्ते फास्फोरस। जी हाँ, फास्फोरस जड़ा ने मजबूत बनावे, तने ने मजबूत बनावे, फूल जल्दी निकाले, फसल ने जल्दी पकावे। बुंटे के माँ प्रोटीन और वसा बनावे। कमी को पतो किया चाले जियाँ फसल है बिंगी पत्तियाँ जी की है वह छोटी रह जाएगी और पत्तियाँ के आसे पासे बैंगनी लाल रंगा धब्बा बन जावे भी आपने ठा पड़ जाएगो भी फास्फोरस की कमी है। कमी दूर करन वास्ते आपने फास्फोरस युक्त खाद जियाँ DAP सिंगल सुपर फास्फेट को प्रयोग मिट्टी की जाँच करा के करांगा। फसल बढ़वार के समय फास्फोरस काम को नहीं देवे इन वास्ते जिके समय अपा फसल की बिजाई करा भी समय फास्फोरस को उपयोग कर सका। अब बात करा अपा पोटाश की। पोटाश जी की है बा पत्तियां गे माँ जी को भोजन बने बिना पौधे के हर अंग तई जिया जड़ में तने में लिजाण वास्ते सहायक हुए। फसलों में रोग ना लगे जिया पालो सूखो खराब ना करे बीहू भी आ रक्षा करे। तने ने मजबूत बनाने के सागे ही जिकी फसल है बिंगी गुणवत्ता ने कायम रखे है। पोटैश की कमी को पतो आपने चाले पौधों कमजोर हो सी क्योंकि बिंगे माँ पानी की मात्रा कम हो है, तनों कमजोर हो जाए और जिये ही तेज हवा चाले तो पौधों नीचे भी गिर जाए। पोटैश की कमी से फसल की गुणवत्ता को नहीं रवे। पोटाश की कमी पूर्ति करने वास्ते आपने पोटाश युक्त खाद जिया म्यूरेटो पोटाश को प्रयोग मिट्टी जांच के बाद आवश्यकता अनुसार करना चाहिए। इनके अलावा भी छोटा छोटा कई पोषक तत्व है जका ने आपा फसल में देने की आवश्यकता हो। बिंगमा जिया जस्तो है, जिंक सल्फेट, लो है, फेरस सल्फेट, मैग्नीज है वहाँ मैग्नीज सल्फेट, बोरोन वास्ते बोरेक्स, तांबे वास्ते कॉपर सल्फेट। किसान भाइयों ध्यान में रखने की बात आ है कि जड़ों को विकास अधिक फुटाव वास्ते फास्फोरस और पोटाश बुआई के टाइम पर ही देना आपा और नाइट्रोजन को की भाग बुआई के समय और बिंगे बाद जरूरत के हिसाब में 2 या 3 बार आपने छिड़काव करना हो सी। किसान भाइयों आपा पोषक तत्वों की बात करी तो आ पोषक तत्वों का उपयोग आपा सर्वप्रथम मिट्टी जांच करवा के ही करांगा भी हूँ आपा ने ठा पड़ जी सी भाई किसे पोषक तत्व की इनमें कमी है। तो अब मैं चलू राम राम सा।
1: अभी किसान भाई सुन रहे थे अपना दैनिक कार्यक्रम खेती है नमस्ते। जानकारी का विषय था संतुलित खाद उर्वरकों का प्रयोग। ये आकाशवाणी का कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। लीजिए सुनिए लोक वचन।

श्रोताओं अभी आप सुन रहे थे लोक भजन। ये आकाशवाणी का कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। सुबह के 7:20 हुए हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम मानस गान में भाग संख्या 316 है।

राज्यसभा में रावण अंगद के पराक्रम का आभास पा चुका था, फिर भी मंदोदरी की समझावन का उस पर कोई असर नहीं हुआ। वह कहती रही, जिन्होंने विराध, खरदूषण और कबंध को अपनी लीला से मार डाला, जिसके एक ही वाण से बाली का वध हो गया, हे स्वामी, आप उनकी महिमा को समझने की चेष्टा कीजिए। उन्होंने आपकी भलाई के लिए ही अपना दूत भेजा था। उसने आकर आपकी सभा में आपके सभी योद्धाओं की वीरता को इस प्रकार छिन्न भिन्न कर दिया जैसे एक सिंह हाथियों के झुंड को तितर बितर कर देता है। आप ऐसे शक्तिमान को मनुष्य समझने की भूल कर रहे हैं।

चेष्टा कीजिए। उन्होंने आपकी भलाई के लिए ही अपना दूत भेजा था। उसने आकर आपकी सभा में आपके सभी योद्धाओं की वीरता को इस प्रकार छिन्न भिन्न कर दिया जैसे एक सिंह हाथियों के झुंड को तितर बितर कर देता है। आप ऐसे शक्तिमान को मनुष्य समझने की भूल कर रहे हैं। आपका मान और मद सब व्यर्थ है। आप काल के वश में हो गए हैं, इसी कारण आपको वास्तविकता का ज्ञान नहीं हो रहा है। मंदोदरी के अनुनय को अनसुना कर रावण सवेरा होते ही अभिमान पूर्वक सिंहासन पर जा बैठा और एक बार फिर वही हठधर्मिता। इधर सुबेल पर्वत पर अंगद श्रीराम के सम्मुख उपस्थित होते हैं, जो रावण राक्षस कुल का शिरोमणि है और जिसके बल से सारा जगत परिचित है। उसके चार चार मुकुट अंगद ने किस प्रकार यहां तक फेंके? श्रीराम की इस जिज्ञासा के उत्तर में अंगद का निवेदन है, हे सर्वज्ञ, वे चार मुकुट राजा के चार गुणों साम दान दंड और भेद के प्रतीक हैं, जिनका राजा के हृदय में निवास होता है। किंतु रावण राजा के धर्म से विचलित हो गया है, अतः वह उसे छोड़ आपकी शरण आ गए।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम मानस कान में भाग संख्या 316 है। मीडियम वेव 326.79 मीटर यानी 918 किलोहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। इस वक्त हमारे स्टूडियो घड़ी में सुबह के 7:30:20 हुए हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम सुप्रभात। कार्यक्रम सुप्रभात सुनने वाले सभी श्रोताओं को आज अपने रेडियो दोस्त मनोज खत्री का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, आज के इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे विनम्रता, अहिंसा, परमो धर्म और सेवा भाव विषय पर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं विनम्रता पर। श्रोताओं, विनम्रता मनुष्य का सबसे श्रेष्ठ गुण है। यह व्यक्ति के अच्छे संस्कार, सभ्यता और महान व्यक्तित्व का परिचय देती है। विनम्र व्यक्ति अपने व्यवहार से सबका सम्मान करता है और दूसरों के प्रति प्रेम, दया तथा सहानुभूति का भाव रखता है। इसलिए कहा गया है कि विनम्रता महानता की पहचान है।

विनम्रता से व्यक्ति के संबंध मधुर बनते हैं। यह अहंकार को दूर करती है और सहयोग तथा सद्भाव की भावना को बढ़ाती है। विनम्र व्यक्ति समाज में सम्मान प्राप्त करता है और कठिन परिस्थितियों में भी धैर्य एवं संयम बनाए रखता है। जीवन के हर क्षेत्र, परिवार, विद्यालय, कार्यस्थल और समाज में सफलता के लिए विनम्रता आवश्यक है। श्रोताओं, विनम्र व्यक्ति दूसरों की बात ध्यान से सुनता है, अपनी गलतियों को स्वीकार करता है और सभी के साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार करता है। वह कभी भी अपने ज्ञान, धन या पद का घमंड नहीं करता। उसकी मधुर वाणी और सरल स्वभाव लोगों का मन जीत लेते हैं। विद्यार्थियों के लिए विनम्रता एक महत्वपूर्ण गुण है। विनम्र विद्यार्थी अपने गुरुजनों का सम्मान करते हैं, अनुशासन का पालन करते हैं और निरंतर सीखने का प्रयास करते हैं। यही गुण उन्हें भविष्य में सफल और आदर्श नागरिक बनाते हैं। श्रोताओं, विनम्रता मानव जीवन का अमूल्य आभूषण है। यह व्यक्ति को महान बनाती है और समाज में सम्मान दिलाती है। हमें अपने जीवन में सदैव विनम्रता, मधुर व्यवहार और दूसरों के प्रति सम्मान की भावना अपनानी चाहिए। वास्तव में विनम्रता ही सच्चे चरित्र और महान व्यक्तित्व की पहचान है। श्रोताओं, लीजिए अब सुनिए फिल्म लॉफर का ये गीत मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। गीत को लिखा है आनंद बख्शी ने और सुरों में ढाला है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

श्रोताओं, कार्यक्रम में बात करते हैं अहिंसा परमो धर्म पर। अहिंसा परमो धर्म का अर्थ है अहिंसा सबसे बड़ा धर्म है। अहिंसा केवल किसी को शारीरिक कष्ट न पहुंचाने का नाम नहीं है, बल्कि मन, वचन और कर्म से किसी भी जीव को दुख न देना ही सच्ची अहिंसा है। यह मानवता, प्रेम, दया और करुणा का संदेश देती है। श्रोतों, अहिंसा मनुष्य को सहनशील, उदार और शांतिप्रिय बनाती है। इससे समाज में प्रेम, भाईचारा और सद्भाव बना रहता है। महात्मा गांधी जी ने अहिंसा को अपने सबसे बड़ा हथियार बनाया और इसी के बल पर भारत को स्वतंत्रता दिलाने के आंदोलन का नेतृत्व भी किया था। आज भी अहिंसा को विश्व शांति का सबसे प्रभावी मार्ग माना जाता है। श्रोतों, इस विषय पर हम आपसे और भी बात करेंगे, लेकिन पहले आपको सुनवाते हैं किशोर कुमार की आवाज़ में फिल्म हम सब उस्ताद हैं का ये गीत।

श्रोताओं, हम बात कर रहे हैं अहिंसा परमो धर्म पर। आज के समय में हिंसा, आतंकवाद, झगड़े और वैमनस्य बढ़ रहे हैं। ऐसे वातावरण में अहिंसा का महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है। यदि लोग एक दूसरे के प्रति प्रेम, दया और सम्मान का व्यवहार करें तो समाज में शांति और सुख समृद्धि स्थापित हो सकती है। विद्यार्थियों को अपने जीवन में अहिंसा का पालन करना चाहिए। उन्हें क्रोध, ईर्ष्या और द्वेष से दूर रहकर सभी के साथ प्रेम और सहयोग का व्यवहार करना चाहिए। यही अच्छे चरित्र और सफल जीवन की पहचान है। श्रोतों, अहिंसा मानव जीवन का सर्वोच्च आदर्श है। यह केवल एक सिद्धांत नहीं बल्कि जीवन जीने की श्रेष्ठ कला है। यदि प्रत्येक व्यक्ति अहिंसा के मार्ग पर चले तो संसार में शांति, प्रेम और भाईचारे का वातावरण स्थापित हो सकता है। इसलिए हमें सदैव अहिंसा परमो धर्म के सिद्धांत का पालन करना चाहिए। श्रोतों, लीजिए सुनिए मोहम्मद रफी को। फिल्म का नाम है धूल का फूल, गीत साहिर का है और संगीत एनपी दत्ता का।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: श्रोतों, कार्यक्रम के आखिर में बात करते हैं सेवा भाव पर। श्रोतों, सेवा भाव मनुष्य का एक महान गुण है। इसका अर्थ है बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की सहायता करना। सेवा करने से न केवल जरूरतमंद व्यक्ति को लाभ मिलता है, बल्कि सेवा करने वाले के मन को भी संतोष और आनंद प्राप्त होता है। इसलिए कहा गया है कि मानव सेवा ही माधव सेवा है। सेवा भाव समाज में प्रेम, भाईचारे और सहयोग की भावना को बढ़ाता है। जब लोग एक दूसरे की सहायता करते हैं तो समाज अधिक मजबूत और सुखी बनता है। बीमारों की सेवा, गरीबों की सहायता, बुजुर्गों का सम्मान, पर्यावरण की रक्षा तथा जरूरतमंदों को भोजन और शिक्षा उपलब्ध कराना सेवा भाव के श्रेष्ठ उदाहरण है। श्रोतों, सेवा भाव मानव जीवन का सबसे बड़ा धर्म है। हमें बिना किसी भेदभाव और स्वार्थ के दूसरों की सहायता करनी चाहिए। यदि प्रत्येक व्यक्ति सेवा भाव को अपनाए तो हमारा समाज अधिक सुखी, समृद्ध और आदर्श बन सकता है। कार्यक्रम के आखिर में सुनवाते हैं आपको लता मंगेशकर और महेंद्र कपूर की आवाज़ में फिल्म गीत का ये गीत।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुप्रभात। आज जानकारी के विषय थे विनम्रता, अहिंसा, परमो धर्म और सेवाभाव। इसी के साथ कार्यक्रम संपन्न करने की अपने रेडियो दोस्त मनोज खत्री को दे इजाज़त, नमस्कार। ये आकाशवाणी का कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। प्रातः के 8 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हमारे दिल्ली केंद्र से समाचार। समाचारों की कृपया प्रतीक्षा करें।

0: दिनों से जिस
1: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
2: और लाइट बिल के
1: अब 0 रुपए कैसे दूं?
2: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
1: पक्का।
3: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
4: हर घर सूर्य घर।
5: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहां आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
6: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। सरकार के साथ सहमति के बाद कॉकरोच जनता पार्टी ने अपना आंदोलन वापस लिया। धर्मेंद्र प्रधान के

0: इस्तीफे के बाद केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी नए शिक्षा मंत्री नियुक्त। सरकार का लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन विधेयक पेश करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 11 बजे मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। 1999 के करगिल युद्ध के योद्धाओं के सम्मान में आज करगिल विजय दिवस मनाया जा रहा है। अनाहत सिंह ने विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप में महिला सिंगल्स का खिताब जीतकर इतिहास रचा। प्रतियोगिता जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बनी। और भारतीय सब जूनियर पुरुष टीम ने FIH यूथ हॉकी 5 एशियाई चैंपियनशिप में पाकिस्तान को हराकर स्वर्ण पदक जीता। वहीं महिला टीम ने रजत पदक हासिल किया। और अब समाचार विस्तार से। सरकार के साथ सहमति बनने के बाद कॉकरोच जनता पार्टी CJP ने अपना आंदोलन वापस ले लिया है। नई दिल्ली में कल केंद्रीय मंत्री JP नड्डा और डॉ जितेंद्र सिंह ने CJP प्रतिनिधि मंडल के साथ तीसरे दौर की वार्ता की। बैठक में परीक्षा व्यवस्था में सुधार और पेपर लीक रोकने के उपायों पर विस्तार से चर्चा हुई। केंद्रीय मंत्री JP नड्डा ने कहा कि प्रदर्शनकारियों के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी।
1: सबसे पहली बात तो ये है कि कोई भी एक्शन FIR न हो, और अगर है तो वो विड्रॉ हो, और उसको विड्रॉ करने की बात कोई भी एक्शन नहीं होगा। इस बात को सरकार ने स्वीकारा है जो प्रोटेस्टर्स के साथ प्रोटेस्ट के दौरान हुआ है। उसी तरीके से फ्यूचर में भी जो ऑर्गेनाइजर्स हैं और प्रोटेस्टर्स हैं उनका इस एक्टिविटी के लिए कोई भी उन पर आगे केस नहीं होगा, इस बात को हम लोगों ने माना है।
0: नीट UG पेपर लीक के बाद आत्महत्या करने वाले अभ्यर्थियों के परिवारों को मुआवजे के मुद्दे पर श्री नड्डा ने कहा कि सरकार की पूरी संवेदना उनके साथ है।
1: कंपनसेशन के बारे में सरकार ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा है, जान किसी बच्चे की जाए और उसके प्रति हम भी सहानुभूति रखते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी अत्यंत सहानुभूति के साथ कहा है कि ऑनरेबल कंपनसेशन अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड रेगुलेशंस व्हाटएवर मैक्सिमम विल बी पॉसिबल दैट विल बी गिवन टू देम।
0: वहीं CJP के मुख्य प्रवक्ता सौरभ दास ने कहा कि सहमति बनी शर्तों को तय समय सीमा में लागू किए जाने की उम्मीद के साथ आंदोलन वापस लिया जा रहा है। पार्टी प्रवक्ता आशुतोष रांका ने आंदोलनकारियों से शांतिपूर्वक घर लौटने की अपील की।
2: तमाम मांगे जो हमारी थी वो मान ली गई है, तो हम इमीडिएट इफेक्ट से प्रोटेस्टर्स से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप विड्रॉ करें, पीसफुली अपने घर वापस जाएं, और आगे की जो भी हमारी रणनीति होगी या बातचीत होगी उससे हम आपको अवगत कराएंगे।
0: दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने बताया है कि सभी स्टेशन यात्रियों के लिए खुले हैं। दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में बताया कि उसके नेटवर्क के सभी स्टेशनों पर प्रवेश और निकास द्वार खुले हुए हैं। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी को नया शिक्षा मंत्री बनाया गया है। उन्हें उनके मौजूदा विभागों के साथ साथ शिक्षा मंत्रालय की अतिरिक्त जिम्मेदारी सौंपी गई है। प्रहलाद जोशी फिलहाल उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण तथा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय का कार्यभार संभाल रहे हैं। श्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि वो नई जिम्मेदारी को पूरी निष्ठा के साथ निभाएंगे।
3: प्रधानमंत्री जी ने विश्वास रख के इतना बड़ा जिम्मेदारी मेरे ऊपर दिया है, उसको मैं पूरा विनम्रता के साथ और पूरा जिम्मेदारी के साथ मैं निभाऊंगा। प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद अर्पित करता हूं एंड आई विल ट्राई टू कम टू हिज एक्सपेक्टेशन इन दिस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट।
0: इस बीच राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का केंद्रीय मंत्री परिषद से इस्तीफा तत्काल प्रभाव से स्वीकार कर लिया है। श्री प्रधान ने कहा कि पिछले 10 दिनों से छात्रों के विरोध प्रदर्शन के बाद उत्पन्न स्थिति में वो व्यथित थे। उन्होंने कहा कि ये उनके लिए व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का विषय नहीं है। श्री प्रधान ने कहा कि जंतर मंतर और पूरे देश में वर्तमान स्थिति का राष्ट्र विरोधी ताकतें लाभ न उठा सके, इसीलिए उन्होंने प्रधानमंत्री को इस्तीफा सौंपने का निर्णय लिया है। सरकार कल लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पेश करेगी। ये विधेयक सोमवार के लिए लोकसभा की कार्यसूची में शामिल है। केंद्रीय मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह इस विधेयक को सदन में प्रस्तुत करेंगे। इसका उद्देश्य लोक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 में संशोधन करना है। शुक्रवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रश्न पत्र लीक और परीक्षा में अनियमितताओं के मामलों में त्वरित सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक अदालतों की स्थापना तथा दोषियों के लिए और कड़े दंड का प्रावधान करने संबंधी मसौदा विधेयक को मंजूरी दी थी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे मोबाइल ऐप News on AIR और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
4: भारतीय वायु सेना में अग्निवीर वायु और एयरमैन मेडिकल असिस्टेंट बनने के लिए जल्दी रजिस्टर करें। रजिस्ट्रेशन 26 जुलाई 2026 को बंद हो जाएंगे। अधिक

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर प्रसारित होने वाले मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 136वीं कड़ी होगी। इस कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क, AIR न्यूज वेबसाइट तथा न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। इसके साथ ही AIR न्यूज, DD न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी इसका सीधा प्रसारण होगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी इस कार्यक्रम का प्रसारण विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम 4:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के प्रतिभागियों से संवाद करेंगे। इसमें 400 से अधिक युवा प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। एक रिपोर्ट।
2: विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम 2026 का आयोजन पिछले महीने 4 से 30 जून तक 2 चरणों में किया गया। इसके तहत लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के 74 वाइब्रेंट गांवों को शामिल किया गया। कार्यक्रम के लिए प्रतिभागियों का चयन देशव्यापी ऑनलाइन क्विज के माध्यम से किया गया, जिसमें 3 लाख से अधिक युवाओं ने भाग लिया। कार्यक्रम के दौरान प्रतिभागियों ने स्थानीय समुदायों के साथ रहकर स्वच्छता अभियान, सरकारी योजनाओं के प्रति जागरूकता अभियान, युवा सम्मेलन, सांस्कृतिक आदान प्रदान, वृक्षारोपण, मिनी मॉडल पंचायत जैसी गतिविधियों में भाग लिया। उन्होंने स्थानीय कारीगरों से संवाद किया और सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण संस्थानों का भी दौरा किया। इस पहल के माध्यम से युवाओं को सीमावर्ती क्षेत्रों की सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों, सांस्कृतिक विरासत और विकास की संभावनाओं को निकट से जानने का अवसर मिला। नितिका के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: आज करगिल विजय दिवस मनाया जा रहा है। इस अवसर पर 1999 के करगिल युद्ध में देश की रक्षा करते हुए सर्वोच्च बलिदान देने वाले भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मुख्य कार्यक्रम लद्दाख के द्रास स्थित करगिल युद्ध स्मारक में आयोजित किया जा रहा है।
3: द्रास में आज 27वें कारगिल विजय दिवस के मौके पर मुख्य समारोह कारगिल वॉर मेमोरियल में आयोजित किया जा रहा है। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मुख्य अतिथि के रूप में समारोह में शामिल होंगे और केनोपात पर पुष्प चक्र अर्पित कर कारगिल युद्ध के अमर शहीदों को श्रद्धांजलि देंगे। समारोह के दौरान रक्षा मंत्री वर्चुअल वॉक थ्रू पोर्टल का उद्घाटन करेंगे, वीर भूमि और हार्ट ऑफ रिमेम्बरेंस का दौरा करेंगे और शौर्य विजय यात्रा मोटरसाइकिल रैली को हरी झंडी दिखाएंगे। कारगिल विजय दिवस का ये मौका भारत के बहादुर फौजी जवानों के हौसले, कुर्बानी और मुल्क की हिफाजत के लिए उनकी अटल वफादारी को याद करने का एक गौरवमय और जज्बाती मौका है। आकाशवाणी समाचार के लिए द्रास से मैं इनायत अली।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देश की रक्षा में सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। श्री सिंह ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा कि 1999 में करगिल की दुर्गम चोटियों पर असाधारण साहस का प्रदर्शन करने वाले वीर सैनिकों के प्रति राष्ट्र सदा कृतज्ञ रहेगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने भी राष्ट्र की एकता और अखंडता की रक्षा के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले सभी वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि दी है। केंद्रीय सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉ एल मुरुगन ने भी करगिल युद्ध में बलिदान देने वाले वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। इस अवसर पर आकाशवाणी कार्यक्रम पर्सन बिहाइंड द स्टोरी में करगिल युद्ध के वीर योद्धा और भारत के पहले ब्लेड रनर मेजर डीपी सिंह के साथ विशेष वार्ता प्रसारित की जाएगी। ये कार्यक्रम आज दोपहर 12:30 बजे आकाशवाणी गोल्ड चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मोल्दोवा, उत्तर मैसेडोनिया और रोमानिया की राजकीय यात्रा संपन्न कर आज सुबह नई दिल्ली लौट आई हैं। यात्रा के दौरान राष्ट्रपति ने तीनों देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की और द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत बनाने के साथ साथ

0: व्यापार, शिक्षा, डिजिटल प्रौद्योगिकी, नवाचार और नवीकरणीय ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। मौसम विभाग ने आज मध्य महाराष्ट्र और उड़ीसा में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। छत्तीसगढ़, गुजरात, कोंकण और गोवा में कल तक भारी बारिश हो सकती है। वहीं तटीय आंध्र प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, गंगा के मैदानी पश्चिम बंगाल और हिमाचल प्रदेश में भी आज तेज बारिश की संभावना है। और अब बात खेलों की करते हैं। भारत की युवा स्क्वैश खिलाड़ी अनाहत सिंह ने इतिहास रचते हुए विश्व स्क्वैश जूनियर चैंपियनशिप जीत ली है। फाइनल में अनाहत ने मिस्र की रुकैया सलीम को हराया। इस जीत के साथ अनाहत जूनियर विश्व प्रतियोगिता जीतने वाली पहली भारतीय स्क्वैश खिलाड़ी बन गई हैं। उन्होंने मिस्र के खिलाड़ियों के 16 साल के वर्चस्व को भी समाप्त कर दिया। वहीं भारतीय सब जूनियर पुरुष हॉकी टीम ने FIH यूथ हॉकी 5 एशियन चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है। फाइनल मुकाबले में भारत ने पाकिस्तान को 3-1 से हराया। भारत की ओर से रोमित पाल, कप्तान केतन कुशवाहा और शाहरुख अली ने गोल किए। फाइनल में पहुंचने के साथ ही भारत और पाकिस्तान ने FIH यूथ हॉकी 5 वर्ल्ड कप के लिए भी क्वालिफाई कर लिया है। महिला वर्ग में भारतीय सब जूनियर टीम ने चीन के खिलाफ कड़े मुकाबले में रजत पदक जीता। ये समाचार हमारी न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
1: धन्यवाद फरहत। जंतर मंतर पर करीब एक महीने से चल रहे प्रदर्शन के बीच केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की खबर कई अखबारों में है। हिंदुस्तान लिखता है, प्रधान का इस्तीफा, प्रदर्शन खत्म, सरकार ने CJP के सभी 3 मांगे मानी। दैनिक जागरण लिखता है, आंदोलन खत्म करने के ऐलान के बाद CJP ने प्रदर्शनकारियों से घर लौटने की अपील की। पत्र ने एक विशेष आलेख प्रकाशित किया है, परीक्षा सुधार पर भी CJP ने सरकार को सौंपा चार्टर। पेपर लीक मामलों की जाँच 2 महीने में होगी पूरी। वहीं नव भारत टाइम्स लिखता है, बंद मेट्रो स्टेशनों के दरवाजे खुले, इंटरनेट सर्विस भी शुरू। सारनाथ को विश्व धरोहर का दर्जा, उत्तर प्रदेश को मिला 4th स्थान, प्रधानमंत्री मोदी ने बताया गौरव का दिन, कई अखबारों की सुर्खी है। 4th साल टैक्स भरने में कंपनियों से आगे आम करदाता, डायरेक्ट टैक्स का बदलता ट्रेंड, कंपनियों को मिलता है 28%, आम करदाताओं को 6% तक रिफंड, दैनिक भास्कर में है। वही हिंदुस्तान ने आज अपने संपादकीय पन्ने पर करगिल विजय दिवस को याद किया है, शीर्षक दिया है, ऑपरेशन विजय के सबक हमारे बहुत काम आए। पत्र लिखता है, करगिल युद्ध 12,000 से 18,000 फुट ऊंची बर्फीली पहाड़ियों पर लड़ा गया था। उस युद्ध में हमने अपने कई जाबाजों को खोया था। ऑपरेशन सिंदूर का विश्लेषण करने के बाद एक बात साफ हो जाती है, अगर करगिल युद्ध के समय हमारे पास आज जैसे उन्नत हथियार होते तो हमें सैनिकों और साजो सामान का नुकसान कम होता।
0: धन्यवाद वैष्णवी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार के साथ सहमति के बाद कांग्रेस जनता पार्टी ने अपना आंदोलन वापस लिया। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी नए शिक्षा मंत्री नियुक्त। सरकार कल लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन विधेयक पेश करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे मन की बात करेंगे। 1999 के करगिल युद्ध के योद्धाओं के सम्मान में आज करगिल विजय दिवस मनाया जा रहा है। अनाहत सिंह ने विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप में महिला सिंगल्स का खिताब जीतकर इतिहास रचा और भारतीय सब जूनियर पुरुष टीम ने FIH यूथ हॉकी 5 एशियाई चैंपियनशिप में पाकिस्तान को हराकर स्वर्ण पदक हासिल किया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I'm Sunil Verma. The headlines. CJP withdraws agitation after government accepts its demands. Union Minister Prahlad Joshi appointed as Education Minister following resignation of Dharmendra Pradhan. Government to introduce public examinations, prevention of unfair means amendment bill 2026 in Lok Sabha tomorrow. Prime Minister Narendra Modi to share his thoughts in Mann Ki Baat program at 11 this morning. Kargil Vijay Diwas being observed today to honour bravery of Indian soldiers who sacrificed their lives during 1999 Kargil War. Anahat Singh creates history by becoming first Indian to win girls singles final of World Junior Squash Championships. An Indian sub-junior men's team beat Pakistan 3-1 to clinch gold.

0: over Madhya Maharashtra and Odisha today. And now for a look at today's newspapers, it's over to Sara Mujtaba.
1: Thank you, Sunil. The resignation of Dharmendra Pradhan is the top news in most dailies. Pradhan steps down, Gen Z steps up, headlines Hindustan Times. With the withdrawal of the protest by CJP, all 18 Delhi metro stations in Delhi, which had remained shut due to security reasons, have reopened, reports the Asian Age. To curb unfair practices in examinations, the centre is tabling its amended bill in the Lok Sabha tomorrow, which proposes a two-month deadline for a probe, writes the Tribune. A day after the US announced permanent tariffs on imports from 60 trading partners, the centre said that about 45% of India's exports to US remain outside the purview of the new 10% tariff, reports The Hindu. A US federal appeals court has rejected President Trump's bid to revive the H-1B visa fee of $100,000 for highly skilled foreign workers, reports Hindustan Times. Flood situation in Assam remained grim, even as water level has started receding, reports The Pioneer. India's ancient Buddhist site of Sarnath has been inscribed on the UNESCO World Heritage List after a 28-year wait, reports The Statesman. The Times of India has quoted an international study that reveals that over half of world's migratory bird species are on a decline. And finally, in a significant technological step forward for the tea plantation sector, and in a first, a tea company in Munnar is using drone-based transport to move freshly harvested green leaves to weighing centres and processing factories in Kerala, writes The Hindu. And with that, it's back to you, Sunil.
0: Thank you, Saira. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. CJP withdraws agitation after government accepts its demands. Union Minister Prahlad Joshi appointed as Education Minister following resignation of Dharmendra Pradhan. Government to introduce Public Examinations Prevention of Unfair Means Amendment Bill 2026 in Lok Sabha tomorrow. Prime Minister Narendra Modi to share his thoughts in Mann Ki Baat program at 11 this morning. Kargil Vijay Diwas being observed today to honour bravery of Indian soldiers who sacrificed their lives during 1999 Kargil War. Anahat Singh creates history by becoming first Indian to win girls singles final of World Junior Squash Championships. And Indian sub-junior men's team beat Pakistan 3-1 to clinch gold at FIH Youth Hockey 5S Asian Championships. Women's team bags silver medal. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
2: Akashwani se pesh hai khabarnama. Aadab. खबरनामे के साथ मैं असदुल्ला, पहले इस वक्त की खास खास खबरें। हुकूमत की जानिब से मुतालबात तस्लीम किए जाने के बाद सीजेपी ने अपना एहतजाज वापस ले लिया है। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद मरकजी वजीर प्रहलाद जोशी को नया वजीर तालीम मुकर्रर किया गया है। हुकूमत कल लोकसभा में सरकारी इम्तहानात गैर मुनसिफाना तौर तरीकों की रोकथाम तरमीमी बिल 2026 पेश करेगी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज दिन में 11 बजे मन की बात प्रोग्राम में अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। 1999 की करगिल जंग में अपनी जानों का नजराना पेश करने वाले भारतीय फौजियों की बहादुरी को खराज अकीदत पेश करने के लिए आज करगिल विजय दिवस मनाया जा रहा है। अनाहत सिंह ने आलमी जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप के लड़कियों के सिंगल्स का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बनकर तारीख रकम की है। और FIH यूथ हॉकी एशियाई चैंपियनशिप में भारत के जूनियर मर्दों की टीम ने पाकिस्तान को 1-3 गोल से शिकस्त देकर सोने का तमगा जीता, जबकि ख्वातीन की टीम ने चांदी का तमगा हासिल किया। अब खबरें तफसील से। हुकूमत की जानिब से मुतालबात तस्लीम किए जाने के बाद कॉकरोच जनता पार्टी CJP ने अपना एहतजाज वापस ले लिया है। मरकजी वजरा JP नड्डा और डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कल CJP के वफद के साथ तीसरे दौर की बातचीत की, जिसमें इम्तिहान के निज़ाम में इस्लाहात और पेपर लीक की रोकथाम के इकदामात पर तवज्जो मरकूज की गई। नई दिल्ली में CJP के वफद के साथ एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए जनाब JP नड्डा ने कहा कि हुकूमत ने CJP के इस मुतालबे को तस्लीम कर लिया है कि मुजाहिरीन के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी और उनके खिलाफ कोई FIR दर्ज नहीं की जाएगी।
3: सबसे पहली बात तो ये है कि कोई भी एक्शन FIR न हो, और अगर है तो वो विड्रॉ हो, और उसको विड्रॉ करने की बात कोई भी एक्शन नहीं हो।

0: इस बात को सरकार ने स्वीकारा है जो प्रोटेस्टर्स के साथ प्रोटेस्ट के दौरान हुआ है। उसी तरीके से फ्यूचर में भी जो ऑर्गेनाइजर्स है और प्रोटेस्टर्स है उनका इस एक्टिविटी के लिए कोई भी उन पर आगे केस नहीं होगा, इस बात को हम लोगों ने माना है।
1: इम्तिहान के निज़ाम में इस्लाहात के लिए CJP की जानिब से पेश किए गए 5 निकाती चार्टर के बारे में जनाब नड्डा ने कहा कि हुकूमत इन तजावीज़ पर संजीदगी से गौर करेगी और CJP के साथ मुशावरत के बाद जो कुछ मुमकिन हो सकेगा वो किया जाएगा। CJP के आला तर्जुमान सौरभ दास ने नेक नीयती के इजहार के तौर पर एहतजाज वापस लेने का ऐलान किया और उम्मीद जाहिर की कि तयशुदा शराइत पर मुकर्रर मुद्दत के अंदर अमल दरामद किया जाएगा।
2: The Kokrul Janata Party declares that we withdraw the agitation in good faith and understanding that the agreed upon terms will be executed within the agreed upon timelines.
3: तो हम immediate effect से protesters से request करते हैं कि आप withdraw करें, peacefully अपने घर वापस जाएं।
1: इस दौरान CJP के कौमी तर्जुमान आशुतोष रानका ने तमाम मुजाहिरीन से अपील की कि वो फौरी तौर पर अपना एहतजाज ख़त्म कर दें और पुरअमन तरीके से अपने घरों को वापस लौट जाएं। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद मरकजी वजीर प्रहलाद जोशी नए वजीर तालीम होंगे। जनाब जोशी को उनके मौजूदा कलमदान के अलावा वजारत तालीम का भी चार्ज दिया गया है। जनाब जोशी फिलहाल गजा सारिफिन के उमूर और अवामी निज़ाम तकसीम और नई और काबिल तजदीद तवानाई जैसी वजारतों के भी वजीर हैं। ऐलान के बाद मीडिया से बात करते हुए जनाब जोशी ने कहा कि वो वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क़्यादत और रहनुमाई के तहत महकमे में उम्मीदों को पूरा करने के लिए भरपूर कोशिश करेंगे।
4: प्रधानमंत्री जी ने विश्वास रख के इतना बड़ा जिम्मेदारी मेरे ऊपर दिया है, उसको मैं पूरा विनम्रता के साथ और पूरा जिम्मेदारी के साथ मैं निभाऊंगा। प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद अर्पित करता हूं एंड आई विल ट्राई टू कम टू हिज एक्सपेक्टेशन इन दिस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट।
1: इस दौरान सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने फौरी तौर से मरकजी वजारती कौंसिल से धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मंजूर कर लिया है। हुकूमत कल लोकसभा में सरकारी इम्तिहानात गैर मुनसिफाना तौर तरीकों की रोकथाम तरमीमी बिल 2026 पेश करेगी। ये बिल ऐवान की कल की कार्रवाई के एजेंडे में शामिल है। इस बिल का मकसद सरकारी इम्तिहानात गैर मुनसिफाना तौर तरीकों की रोकथाम एक्ट 2024 में तरमीम करना है। ये बिल मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह पेश करेंगे। मरकजी काबीना ने जुमे को तेजी से काम करने वाली अदालतें कायम करने और पेपर लीक से निमटने और इम्तिहानात में गलत तौर तरीके अपनाने पर सख्त सजा को यकीनी बनाने से मुतालिक बिल के एक मुसव्वदे को मंजूरी दी थी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज दिन में 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात प्रोग्राम में मुल्क और बैरून मुल्क लोगों से अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। ये महाना रेडियो प्रोग्राम का 136वां नशरिया होगा। ये प्रोग्राम आकाशवाणी और दूरदर्शन के तमाम नेटवर्क AIR न्यूज की वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी नशर किया जाएगा। इसे AIR न्यूज, DD न्यूज, वजीर आजम के दफ्तर और इत्तिलात नशरियात की वजारत के YouTube चैनलों पर भी बराह रास्त सुना जा सकेगा। हिंदी नशरिए के फौरन बाद आकाशवाणी से इस प्रोग्राम को इलाकाई जुबानों में नशर किया जाएगा। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज शाम 4:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विकसित वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम 2026 के शुरका से बातचीत करेंगे। हमारे नामानिगार ने खबर दी है कि मुल्क की तमाम रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों की नुमाइंदगी करने वाले 400 से ज्यादा नौजवान शुरका वजीर आजम से बराह रास्त बातचीत करेंगे। पेश है एक रिपोर्ट।
5: विकसित वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम 2026 पिछले महीने 4 से 30 तारीख तक 2 मरहलों में मुनक़िद किया गया, जिसके तहत लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के 74 दरख्शां गांवों का अहाता किया गया। इस प्रोग्राम के शुरका का इंतखाब मुल्कगीर ऑनलाइन क्विज मुकाबले के जरिए किया गया, जिसमें 3 लाख से ज्यादा नौजवानों ने हिस्सा लिया। इस प्रोग्राम के दौरान शुरका ने मकामी बिरादरियों के साथ रहकर मुख्तलिफ सरगर्मियों में हिस्सा लिया, जिनमें सफाई मुहिम, सरकारी स्कीमों से मुतालिक आगाही मुहिम, युवा सम्मेलन, सकाफती तबादले के प्रोग्राम, शजरकारी मुहिम, मिनी मॉडल पंचायत, मकामी दस्तकारों से बातचीत और स्ट्रेटेजिक अहमियत के हामिल इदारों के दौरे शामिल थे। इस प्रोग्राम ने शुरका को सरहदी इलाकों के समाजी इकतसादी हालात, सकाफती विरसे और तरक्याती उमंगों का बराह रास्त मुशाहदा करने का मौका फराहम किया। विकसित वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, जिसे माई भारत के जरिए नाफिज किया जा रहा है, वजीर आजम के इस नज़रिए को हकीकत बनाने के लिए तैयार किया गया है कि भारत के सरहदी गांव को

0: मुल्क के पहले गांव के तौर पर देखा जाए और उन्हें विकसित भारत की जानिब सफर में सरगर्म शराकतदार बनाया जाए। नई दिल्ली से सकलैन अख्तर की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं मोहम्मद अम्मार।
1: सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू मोल्दोवा, शुमाली मकदूनिया और रोमानिया का अपना सरकारी दौरा मुकम्मल करने के बाद आज सुबह नई दिल्ली पहुंच गई हैं। अपने दौरे में सदर जमहूरिया ने तीनों यूरोपीय मुल्कों के साथ भारत की स्ट्रेटेजिक साझेदारी को मुस्तहकम करने और बाहमी मफादात के शोबों में इश्तराक को वसअत देने के मकसद से आला सतही मसरूफियात का इनेकाद किया। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
2: सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू के दौरे के दौरान कई तारीखी हुसूलियाबियाँ हुईं, जिनमें किसी भारतीय सदर जमहूरिया के मोल्दोवा और शुमाली मकदूनिया के पहले सरकारी दौरे और तीन दहाई बाद भारतीय सदर का रोमानिया का पहला सरकारी दौरा शामिल हैं। अपने पूरे सरकारी दौरे के दौरान सदर जमहूरिया मुर्मू ने सरबराहान मुमलकत के साथ वफ्द की सतह की बातचीत की, कारोबारी फोरम से खिताब किया और भारतीय बिरादरी से मुलाकात की। सदर जमहूरिया को रोमानिया में बुखारेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ इकोनॉमिक स्टडीज़ की जानिब से एजाजी डिग्री भी दी गई, जो कि भारत और रोमानिया के दरमियान बढ़ते तालीमी और अवाम से अवाम राबतों की अक्कासी करता है। अपने दौरे में सदर जमहूरिया ने भारत की तेज़ रफ्तार माशी तरक्की, टेक्नोलॉजी के मैदान में पेशकदमी और आलमी इश्तराक के तई अहद बस्तगी को नुमाया किया। साथ ही सदर जमहूरिया ने तिजारत, जिद्दत तराजी, तालीम, डिजिटल टेक्नोलॉजी और काबिल तजदीद तवानाई के शोबों में मजबूत तआवुन की भी हौसला अफजाई की। सदर जमहूरिया मुर्मू के दौरे ने मशरक़ी यूरोप के साथ भारत की मसरूफियात में गर्मजोशी को बढ़ाया है और मोल्दोवा, शुमाली मकदूनिया और रोमानिया के साथ दो तरफा ताल्लुकात को मजीद वसअत दी है। सुभाषरी की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए जमीर रजवी।
1: मुल्क भर में आज करगिल विजय दिवस मनाया जा रहा है। ये दिन उन भारतीय फौजियों की बहादुरी की ताजीम के तौर पर मनाया जाता है जिन्होंने साल 1999 की करगिल जंग के दौरान अपनी जानें कुर्बान कर दी थीं। ये दिन भारत की पाकिस्तान पर फतेह और ऑपरेशन विजय के कामयाब इख्तिताम की 27वीं सालगिरह के तौर पर भी मनाया जाता है। इस ऑपरेशन के दौरान भारतीय मुसल्लह अफवाज ने पाकिस्तानी फौजियों और दहशतगर्दों की जानिब से दरअंदाजी के बाद जम्मू कश्मीर के करगिल ज़िले के इलाकों को दोबारा हासिल किया था। मरकजी तकरीब लद्दाख के दराज की करगिल जंगी यादगार पर मुनक़िद हो रही है। तफसील हमारे नामनिगार से।
2: द्रास की करगिल जंगी यादगार में 27वीं करगिल विजय दिवस के मौके पर हुबुल वतनी पर मबनी तकरीबात मुनक़िद की जा रही हैं। मरकजी वजीर दिफा राजनाथ सिंह करगिल जंगी यादगार पर ऑपरेशन विजय के दौरान बहादुरी का मुजाहरा करने वाले जाबाजों की यादगारों पर गुलहाय अकीदत नजर करते हुए तकरीबात की क़्यादत कर रहे हैं। वजीर दिफा करगिल जंगी यादगार के वर्चुअल वॉक थ्रू पोर्टल का इफ्तिताह कर रहे हैं, यादगारी कुटिया और वीर भूमि का दौरा कर रहे हैं। इस दौरान वो वीर नारियों और वीर माताओं से मुलाकात कर रहे हैं और शौर्य विजय यात्रा मोटरसाइकिल रैली को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। करगिल विजय दिवस मुल्क की सालिमियत की हिफाजत के तई भारत की मुसल्ला अफवाज की शुजात, कुर्बानी और गैर मुतजलजल जज्बे की याद दिलाता है। द्रास से इनायत अली की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए जमीर रजवी।
1: करगिल विजय दिवस के मौके पर वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने मुल्क के दिफा में अपनी जानों का नजराना पेश करने वाले बहादुर फौजियों को खराज अकीदत पेश किया। सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब सिंह ने कहा कि मुल्क करगिल की नाकाबिले रसाई पहाड़ियों में साल 1999 में बेमिसाल शुजात का मुजाहरा करने वाले बहादुर फौजियों का हमेशा शुक्रगुजार रहेगा। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर POJK में बढ़ते एहतजाज के दौरान जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी JAAC ने आज से दो रोज़ा मुजाहरों का ऐलान किया है, जिनका इख्तिताम मुजफ्फराबाद की जानिब लॉन्ग मार्च से होगा। हुकूक का मुतालबा करने वाले रहनुमाओं उमर नाजिर कश्मीरी और एडवोकेट ख्वाजा मेहरान ने दादियाल में मुकम्मल बंद की अपील की है और मीरपुर डिवीजन के लोगों से तहरीक में शामिल होने की दरख्वास्त की है। कल जोहर की नमाज के बाद मुजफ्फराबाद की जानिब होने वाले लॉन्ग मार्च से पहले मीरपुर के मुजाहिरीन के काफिले रावलकोट में जारी धरने में जम हो सकते हैं। ये ताज़ा एहतजाज बढ़ती महंगाई, बिजली के बढ़ते दाम और सिविल हुकूक पर आयद पाबंदियों के मामले में बढ़ते अवामी गुस्से की अलामत हैं। इस दौरान मुंतजमीन ने पूरे एहतजाज के दौरान मुजाहिरीन से नज़्म व ज़ब्त और इत्तेहाद बरकरार रखने की अपील की है। आला दर्जा बंदी की हामिल अनाहा सिंह ने जूनियर आलमी कप का खिताब जीतकर भारत की पहली स्क्वैश खिलाड़ी बनकर तारीख रकम की है। अनाहत ने कनाडा के निगारा ऑन द लेक में जारी वर्ल्ड स्क्वैश जूनियर चैंपियनशिप 2026 में लड़कियों के सिंगल्स के फाइनल में मिस्र की रुकैया सलीम को 3-0 से हराया।

0: 18 साल भारतीय खिलाड़ी ने दूसरी दर्जाबंदी के हामिल सलीम को 11-3, 11-7 और 11-9 से शिकस्त देकर सोने का तमगा जीता। ये कामयाबी इसलिए भी बड़ी है क्योंकि मिस्र के खिलाड़ियों ने लगातार 16 साल तक ये खिताब अपने नाम किया, ताहम अनाहत ने एक भी मैच हारे बगैर इस इजारादारी को खत्म किया। FIH यूथ हॉकी 5S एशियाई चैंपियनशिप में भारत के मर्दों की सब जूनियर टीम ने रिवायती हरीफ पाकिस्तान को 3-1 से हराकर सोने का तमगा जीता। भारतीय खिलाड़ी रोमित पाल, कप्तान केतन कुशवाहा और शाहरुख अली के गोल ने भारत को एशियाई चैंपियन बनाया। इस जीत के साथ ही मर्दों की भारतीय टीम ने इलीट पूल टेबल में सबसे ऊपर जगह बना ली है। फाइनल में पहुंचने के साथ ही भारत और पाकिस्तान दोनों ने FIH यूथ हॉकी 5 आलमी कप के इफ्तिताही मैच के लिए क्वालीफाई कर लिया है। ये थी खबरें, अब अखबारात के आईने के साथ हैं मोहम्मद अम्मार।
1: शुक्रिया असदुल्ला। कौमी राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के बेशतर उर्दू अखबारों ने अलग अलग खबरों को अपनी सुर्खी बनाया है। रोजनामा, इनकलाब और प्रताप समेत आज के सभी अखबारों ने लिखा है कि विकसित रक्षा गांव प्रोग्राम 2026 के तहत वजीर आजम नरेंद्र मोदी शुरका से आज बातचीत करेंगे। ये प्रोग्राम कौमी यकजहती, तरक्की, नीज सरहदी गांव की हिकमत अमली की अहमियत की गहरी समझबूझ को फ़रोग देता है। वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान ने अपने ओहदे से दिया इस्तीफ़ा, प्रहलाद जोशी को वजारत तालीम का कलमदान सौंपा गया। जंतर मंतर पर CJP ने अपना एहतजाज वापस लिया, इस खबर को आज के सभी अखबारों ने सफ़े अव्वल पर जगह दी है। उत्तर प्रदेश का कदीम बौद्ध मजहबी मकाम सारनाथ यूनेस्को की आलमी मीरास की फेहरिस्त में शामिल, इस खबर को आज के अखबारों ने नुमाया किया है।
0: और अब आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। हुकूमत की जानिब से मुतालबा तस्लीम किए जाने के बाद CJP ने अपना एहतजाज वापस ले लिया है। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद मरकजी वजीर प्रहलाद जोशी को नया वजीर तालीम मुकर्रर किया गया है। हुकूमत की कल लोकसभा में सरकारी इम्तहानात गैर मुनसिफाना तौर तरीकों की रोकथाम तरमीमी बिल 2026 पेश करेगी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज दिन में 11 बजे मन की बात प्रोग्राम में अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। 1999 की करगिल जंग में अपनी जानों का नजराना पेश करने वाले भारतीय फौजियों की बहादुरी को खराज अकीदत पेश करने के लिए आज करगिल विजय दिवस मनाया जा रहा है। अनाहत सिंह ने आलमी जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप के लड़कियों के सिंगल्स का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बनकर तारीख रकम की है। और FIH यूथ हॉकी एशियाई चैंपियनशिप में भारत के जूनियर मर्दों की टीम ने पाकिस्तान को 1-3 से शिकस्त देकर सोने का तमगा जीता। इसी के साथ खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
2: ये आकाशवाणी का कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। मीडियम वेव 326.79 मीटर यानी 918 किलोहर्ट्ज़ पर। प्रातः के 8:45 हुए हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम सुगम संगीत। आज कलाकार हैं कुमार विशू।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुगम संगीत के अंतर्गत भजन। आज कलाकार थे कुमार विशु और साथी। आकाशवाणी का ये कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। सुबह के 9 बजे हैं। लीजिए सुनिए हमारे जयपुर अजमेर केंद्र से हिंदी में प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। कारगिल विजय दिवस पर आज देश शहीदों को नमन कर रहा है। प्रदेश में हो रहे हैं कई कार्यक्रम। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी नए शिक्षा मंत्री नियुक्त। राज्य में सहकार वन परियोजना की शुरुआत। जयपुर के जामडोली में 64 एकड़ भूमि पर होगा सहकार वन। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आकाशवाणी पर प्रसारित होने वाले मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। समाचारों के साथ मैं अब्दुल हनीफ। और अब समाचार विस्तार से। कारगिल विजय दिवस पर आज देश शहीदों को नमन कर रहा है। इस अवसर पर 1999 के कारगिल युद्ध में देश की रक्षा करते हुए सर्वोच्च बलिदान देने वाले भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। इस मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि 1999 में कारगिल की दुर्गम चोटियों पर असाधारण साहस का प्रदर्शन करने वाले वीर सैनिकों के प्रति राष्ट्र सदा कृतज्ञ रहेगा। इधर प्रदेश में भी कारगिल विजय दिवस की पूर्व संध्या पर कई संगठनों की ओर से कार्यक्रम आयोजित किए गए। जयपुर के बिड़ला सभागार में आयोजित शौर्य संध्या में मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने कहा कि हमारे वीरों ने यह सिद्ध किया कि जिस देश की सेना का मनोबल हिमालय से भी ऊंचा हो, उस देश को कोई झुका नहीं सकता। ऑपरेशन विजय केवल एक सैन्य अभियान नहीं था, वो सभी भारतीयों के स्वाभिमान की विजय थी। एक रिपोर्ट।
1: ने दुर्गम हिमालयी चोटियों से पाकिस्तानी घुसपैठियों को खदेड़कर देश की अखंडता की रक्षा

0: रक्षा की थी। इस अभियान में 527 वीर सैनिक शहीद हुए और 1300 से अधिक जवान घायल हुए। इनमें राजस्थान के स्क्वाड्रन लीडर अजय आहूजा, कैप्टन अमित भारद्वाज सहित प्रदेश के कुल 58 वीर सपूतों ने सर्वोच्च बलिदान दिया। इस मौके पर आज प्रदेश के सभी जिलों में श्रद्धांजलि सभाएं, तिरंगा यात्राएं, रक्तदान शिविर, वीरांगनाओं और पूर्व सैनिकों के सम्मान समारोह सहित कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इससे पहले कल राजधानी जयपुर में शौर्य संध्या और 78वीं सेना दिवस परेड का आयोजन किया गया। सप्तशक्ति कमान की ओर से करगिल के वीरों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। 15 से 18 हजार फीट की ऊंचाई पर करीब 85 दिनों तक लड़ी गई यह लड़ाई भारतीयों के स्वाभिमान की विजय थी। इस अवसर पर सैनिक कल्याण मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने कहा कि यह विजय केवल सैन्य सफलता नहीं है, बल्कि राष्ट्र के साहस, एकता और आत्मविश्वास की विजय का प्रतीक है। इधर लद्दाख के द्रास स्थित करगिल युद्ध स्मारक पर राष्ट्रीय समारोह आयोजित किया गया। समाचार कक्ष से मैं डॉक्टर ज्योति पारीक।
1: केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी को नया शिक्षा मंत्री बनाया गया है। उन्हें उनके मौजूदा विभागों के साथ साथ शिक्षा मंत्रालय की अतिरिक्त जिम्मेदारी सौंपी गई है। प्रहलाद जोशी फिलहाल उपभोक्ता मामलात, खाद्य और सार्वजनिक वितरण तथा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय का कार्यभार संभाल रहे हैं। श्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि वे नई जिम्मेदारियों को पूरी निष्ठा के साथ निभाएंगे।
2: प्रधानमंत्री जी ने विश्वास रख के इतना बड़ा जिम्मेदारी मेरे ऊपर दिया है, उसको मैं पूरा विनम्रता के साथ और पूरा जिम्मेदारी के साथ मैं निभाऊंगा। प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद अर्पित करता हूं एंड आई विल ट्राई टू कम टू हिज एक्सपेक्टेशन इन दिस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट।
1: गौरतलब है कि नई दिल्ली के जंतर मंतर पर चल रहे युवा प्रदर्शनकारियों के आंदोलन के बाद पूर्व शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना इस्तीफा सौंपा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम 4:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम 2026 के प्रतिभागियों से संवाद करेंगे। इस दौरान देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व कर रहे 400 से अधिक युवा प्रधानमंत्री से बातचीत करेंगे। इस कार्यक्रम का आयोजन पिछले महीने 4 से 30 जून तक 2 चरणों में किया गया। कार्यक्रम के लिए प्रतिभागियों का चयन देशव्यापी ऑनलाइन क्विज प्रतियोगिता के माध्यम से किया गया, जिसमें 3 लाख से अधिक युवाओं ने भाग लिया। केंद्र सरकार लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पेश करेगी। यह विधेयक कल के लिए लोकसभा कार्यसूची में शामिल किया गया है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह इस विधेयक को सदन में प्रस्तुत करेंगे। गौरतलब है कि 24 जुलाई को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रश्न पत्र लीक और परीक्षा में अनियमितताओं के मामले में त्वरित सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक अदालतों की स्थापना तथा दोषियों के लिए कड़े दंड का प्रावधान करने संबंधी मसौदा विधेयक को मंजूरी दी थी। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो और वीडियो देख सकते हैं। राज्य में सहकारिता के माध्यम से स्थानीय पारिस्थितिकी तंत्र को संरक्षित करने के लिए सहकार वन परियोजना की शुरुआत हुई। जयपुर के जामडोली में क्षेत्र में 64 एकड़ भूमि पर सहकार वन विकसित किया जा रहा है। केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल और प्रदेश के सहकारिता राज्य मंत्री गौतम कुमार दक ने कल अरावली की तलहटी में स्थित सुमेल गाँव में पौधारोपण कर इस परियोजना की शुरुआत की। इस अवसर पर श्री मोहोल ने बताया कि सहकार से समृद्धि कार्यक्रम के तहत सभी राज्यों में पर्यावरण संरक्षण और जैव विविधता संवर्धन के लिए सहकार वन विकसित किए जा रहे हैं। इसे स्थानीय पारिस्थितिकी तंत्र को ध्यान में रखते हुए देशी वनस्पतियों की प्रजातियों के पौधों को लगाया जा रहा है, ताकि न्यूनतम रखरखाव की आवश्यकता हो। यह पार्क बायोडायवर्सिटी और पारिवारिक मनोरंजन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। प्रदेश के युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने कहा है कि जगतपुरा स्थित शूटिंग रेंज में

0: शूटिंग एकेडमी शुरू करने की संभावनाओं की तलाश की जा रही है। श्री राठौड़ कल जगतपुरा स्थित शूटिंग रेंज में नेशनल तीरंदाजी प्रतियोगिता में बोल रहे थे। उन्होंने इस टूर्नामेंट के आयोजन के लिए शूटिंग रेंज की सराहना की है।
1: आमतौर पर साधारण भाषा में बोलते थे जिसका दिन है वो जीतेगा, लेकिन अगर चैंपियन की भाषा में बोले तो जिस दिन रिजल्ट प्रोड्यूस करना है उस दिन अपना परफॉर्मेंस हाई करना वो चैंपियन कहलाता है। देश की सबसे शानदार आर्चरी रेंज जगतपुरा की शूटिंग। राजस्थान सरकार आर्चरी फेडरेशन को पूरा मदद करने को तैयार है। ये आर्चरी की शूटिंग एकेडमी आर्चरी फेडरेशन और राजस्थान सरकार में एक एमओयू करिए और 75% खर्चा राजस्थान सरकार करेगी, आप 25% करिए ताकि आपका उसमें अधिकार रहे और आप एक शानदार शूटिंग एकेडमी यहाँ पर चलवाइए और अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी तैयार करें।
0: श्री राठौड़ ने कल प्रतियोगिता के पहले मुकाबले में विजयी रहे निशानेबाजों को पदक प्रदान किए। 29 जुलाई तक चलने वाले इस टूर्नामेंट में देश भर से खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। राजधानी जयपुर में शहर के तीन प्रमुख मार्गों पर जेडीए वेस्ट टू आर्ट थीम पर आधारित स्वागत द्वार विकसित करेगा। लगभग 5,36,00,000 रुपये की लागत वाली इस परियोजना के लिए निविदा प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। जेडीए आयुक्त सिद्धार्थ महाजन ने बताया कि इन स्वागत दारों के माध्यम से राजस्थान की समृद्ध संस्कृति, लोक परंपराओं और अतिथि सत्कार की भावना को कलात्मक रूप से प्रदर्शित किया जाएगा। परियोजना के तहत पहला स्वागत द्वार दिल्ली कुंडा मोड़ से आमेर जाने वाले मार्ग पर बनाया जाएगा, जिसकी थीम खम्मा घणी होगी। यह द्वार राजस्थान की आत्मीयता और अतिथि सत्कार की परंपरा का प्रतीक बनेगा। दूसरा स्वागत द्वार घाट की घुणी टोल प्लाजा पर तैयार होगा, जिसे पारंपरिक लहरिया डिजाइन की थीम पर विकसित किया जाएगा। और तीसरा स्वागत द्वार गंगा मार्ग पर प्रस्तावित न्यू जयपुर के सामने बनाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 बजे आज आकाशवाणी पर प्रसारित होने वाले मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 136वीं कड़ी होगी। इस कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क, एआईआर न्यूज़ वेबसाइट तथा न्यूज़ ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। इसके साथ ही एआईआर न्यूज़, डीडी न्यूज़, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी इसका सीधा प्रसारण होगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी इस कार्यक्रम का प्रसारण विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में भी करेगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। कारगिल विजय दिवस पर आज देश शहीदों को नमन कर रहा है। प्रदेश में हो रहे हैं कई कार्यक्रम। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी नए शिक्षा मंत्री नियुक्त। राज्य में सहकार वन परियोजना की शुरुआत। जयपुर के जामडोली में 64 एकड़ भूमि पर विकसित होगा सहकार वन। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आकाशवाणी पर प्रसारित होने वाले मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
2: मीडियम वेव 326.79 यानी 918 किलोहर्ट्ज़ पर, डीआरएम चैनल 909 किलोहर्ट्ज़ पर, एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर और मोबाइल ऐप न्यूज जोन एआईआर पर। यह आकाशवाणी का कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। सुबह के 9:10:30 हुए हैं। लीजिए सुनिए राजस्थानी लोक संगीत का दैनिक कार्यक्रम मरुमंगल। आज कलाकार है शंकर दमामी।

जे उत्तम से लग सोबर सजल में रहे तो पथरी तजे नग हथ भी हथी कोमड़ी नव हथों के कौन।

श्रोताओं, राजस्थानी लोक संगीत का दैनिक कार्यक्रम मरुमंगल आप आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से सुन रहे हैं। आज कलाकार हैं शंकर दमामी।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे राजस्थानी लोक संगीत का दैनिक कार्यक्रम मरुमंगल। आज कलाकार थे शंकर दमामी। मीडियम वेव पर यह आकाशवाणी का कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। सुबह के 9:30 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम फिल्म संगीत। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं फिल्म हीरो नंबर वन के इस गीत के साथ। इस गीत को आवाज़ दी है सोनू निगम ने। गीत के बोल लिखे हैं समीर ने और शुरू में ढाला है आनंद मिलिंद ने।

श्रोतों लीजिए सुनिए उदित नारायण और सुदेश भोसले को। इनके साथ है राकेश और पूनम। फिल्म का नाम है बड़े मियाँ छोटे मियाँ। गीत समीर का है और संगीत विजू शाह का।

0: ये कहानी है एक नर्स और उसकी अंतर्मन की।
1: आगे सैलरी?
2: हाँ।
1: नहीं झुमके? ना, पहले बचत।
3: पहले झुमके।
1: सुनो, हर महीने थोड़ा बचाओ और थोड़ा निवेश करो, और कुछ इमरजेंसी के लिए भी बचाओ ताकि रहो टेंशन फ्री।
3: लेकिन झुमकों का क्या?
1: जाते हो कि लगाओ इंजेक्शन।
4: आरबीआई कहता है,
0: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।
5: श्रोताओं, लीजिए सुनिए कुमार शानू और अलका याग्निक को। फिल्म का नाम है हम है राही प्यार के।

101.1 MHz पर और मोबाइल ऐप न्यूज़ जोन EIR पर। इस वक्त हमारे स्टूडियो घड़ी में सुबह के 10 बजे हैं और ये वक्त है आपके फरमाइशी गीतों के प्रोग्राम सदाबहार नगमों का। कार्यक्रम सदाबहार नगमे सुनने वाले सभी श्रोताओं को आज अपने रेडियो दोस्त मनोज खत्री का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं फिल्म सूरज के इस गीत के साथ। इस गीत को आवाज दी है मोहम्मद रफी ने। पसंद आप सबकी। रघुनाथपुरा जिला श्री गंगानगर से लालगिरी गोस्वामी, हेमलता, हीना, हर्षित और खुशी गोस्वामी। जिला अंबागढ़ चौकी छत्तीसगढ़ से रिजवान खान, आयशा, सबीहा, अनस और रेहान। गांव खोखरा वाली श्री गंगानगर से विनोद बरासा, विशाल, विकास, रोशनी और शगुन। टैगोर गार्डन नई दिल्ली से रविंद्र सिंह छाबड़ा, इंद्रजीत कौर छाबड़ा और स्वीटी छाबड़ा। इस गीत के फरमाइश करता है गांव कलाना तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ से विक्रम कड़वासरा, सचिन, सतीश, योगेश, युद्धव कड़वासरा, कुंदन जाखड़, लीलाधर स्वामी, किरसन मायल, किड़ूराम जोया और हनुमान सहरण। इनके साथ हैं सुनील पाईवाल शर्मा। दतरंगी भाटापारा छत्तीसगढ़ से हीरामणि वर्मा, पारस मणि, पुष्पेंद्र मणि और नोखेलाल वर्मा। आप सब की फरमाइश पर सुनते हैं फिल्म सूरज का ये गीत।

तुम लीजिए सुनिए मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ में फिल्म अनुराग का ये गीत पसंद आप सबकी। नाई वाला जिला हनुमानगढ़ राजस्थान से वैद मिड्ढा और अलका मिठा, सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश से यशमीत यशु, निरंजन सिंह, सोम्या सिंह और एविरल सिंह, सिद्धार्थनगर दरियापुर बाबली से गजनन येल्ले, नवदीप विश्वदीप और अशोक येल्ले, पाकुड़ा झारखंड से श्वेता भगत, किसुतासु, अर्णव आनंद, सत्यम आनंद, जिला नांदेड़ एताला महाराष्ट्र से शंकरलाल जायसवाल, गणेश लाल, शुभम प्रसाद, अर्णव जायसवाल, दुर्गेश्वरी, राखी और तृप्ति जायसवाल, हनुमानगढ़ टाउन राजस्थान से रजाक मोहम्मद खान, शमीम बेगम, इमरान खान, इरफान खान और जिशान खान। इसी गीत के फरमाइश करता है गज़ डुंडवारा से मोहम्मद कलीम अंसारी, ज़हीरा बेगम अंसारी, मोहम्मद अयान अंसारी, उस्मान अंसारी, यासीन हाशमी और शमशुल कमर राही, अलिका डब्बाली से बसंत सिंह चंद, राजकुमार, सुनीता, कुलदीप गांधी, कोटवा नारायणपुर से बाबापट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार और हैप्पी रॉय, कवाई बारा राजस्थान से सतीश श्रीवास्तव, प्रेमलता श्रीवास्तव, हिमानी, हर्षिता और अभिषेक श्रीवास्तव। इसी गीत को सुनना चाहा है वड़िंगखेड़ा पंजाब से मिंटू टॉमस, पिंकी, लवली और आरती अरोड़ा। आप सबकी फरमाइश पर सुनते हैं फिल्म अनुराग का ये गीत।

0: ये कहानी है एक फोटोग्राफर और उसके अंतर्मन की।
1: ओह लवली, वेल डन।
0: बिजनेस लोन अप्रूव्ड।
1: अब होगा बड़ा स्टूडियो, नया कैमरा, नई लाइट्स।
2: लगे हाथ नई कार भी ले लो उसी लोन से।
1: नो, लोन लिए गए काम में ही लगाओ, समय से EMI चुकाओ, क्रेडिट स्कोर बढ़ाओ और अगला लोन आसानी से पाओ।
2: कार नहीं तो मेरी फोटो तो ले लो।
1: आप कौन?
3: RBI कहता है,
0: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।
4: हमारे प्यारे प्यारे श्रोता, अपने प्यारे प्यारे फरमाइशी गीत आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से सुन रहे हैं अपने रेडियो दोस्त मनोज खत्री के साथ। अगला संदेश हम तक लिख भेजा है दुर्गा कॉलोनी हांसी से राजू मिगलानी, बबीता मिगलानी, सुभाष योगी और बब्बू और डब्बू। गांव हीरा वाली फाजिल का पंजाब से सुभाष गोदारा, बिमला गोदारा, इंदु, पार्वती, हिमांशु गोदारा, सरवण रिणवा, हंसराज भाटिया, मनीराम, रणजीत राम, किरोड़ीवाल, सुरेंद्र भादू और उनके परिवार के सदस्य हैं। गांव खारिया जिला सिरसा हरियाणा से प्रताप जिनागल, इंदिरा, मुकेश, दिनेश, अंशु और बलदेव कटारिया। गुजरात गांधीग्राम से प्रवीण सोनी, पूजा पायल और जगदीश जौहरी। आदर्श नगर मलोट पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मैंडी शर्मा, सौरव शर्मा, साइना शर्मा और निवान शर्मा। जोगीवाला श्रीगंगानगर से प्रेम सहारण, मोनिका और मनीष सहारण। बागपत उत्तर प्रदेश से इस गीत के फरमाइश करता है संजय ढींगिया, नमन ढींगिया और अपार ढींगिया। नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से PS नवानकर, निर्मला और विशाल। करनाल से ज्ञान भूषण शर्मा, सोमनाथ कालिया और इनके परिवार के सदस्य। आप सब की फरमाइश पर सुनते हैं फिल्म सावन को आने दो फिल्म का ये गीत। आवाजें हैं जसपाल सिंह और कल्याणी मित्रा की।

श्रोतों लीजिए अब सुनिए फिल्म जानी दुश्मन से ये गीत, आवाजें हैं किशोर कुमार और अनुराधा पोडवाल की। गीत के बोल लिखे हैं वर्मान मलिक ने और संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। पसंद आप सबकी। नरगोड़ा छत्तीसगढ़ से महाराष्ट्र कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मी देवी गोस्वामी, जोगेशपुरी, ट्विंकल, डिम्पल, मीनाक्षी, निशा तुलसी और दिशा गोस्वामी। महाराष्ट्र जालना से विजय पाटिल, बीड शहर महाराष्ट्र से नंद किशोर, संगीता, साक्षी, जयश्री महित्रे, अंजलि करवा, बाला साहेब करवा, रामनिवास अग्रवाल, धनंजय और पीबी कुलथे। गांधीनगर गुजरात से सुरेश राठौड़, मंजुला राठौड़, विशाल और निशा। मलवोट से कुलवंत गिल, जसवंत गिल, रमन गिल, बलजीत गिल और कनाडा से दिशा मोहल्ला जगतार जग्गा। जसपुर उत्तराखंड से रियासत हुसैन सिद्दीकी, नाजमा बेगम सिद्दीकी।

रियाज, रिफाकत, मोहम्मद रिहान, समरीन परवीन और माहिरा नूर। रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा। बड़ा बम चौक खड़वा मध्य प्रदेश से संजय, ममता और बेबी किट्टू। मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर, रत्नमाला आरती कुमारी और ओम कुमार। सादुल शहर से रामकुमार रेवाड़ और चंद्रकला रेवाड़। भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र चिंपा, कपिल चिंपा, ईशान चिंपा और उनके परिवार के सदस्य, और इनके साथ हैं पूजा परिहार। आप सब की फरमाइश पर सुनते हैं फिल्म जानी दुश्मन का ये प्यारा सा गीत।

श्रोतों लीजिए सुनिए महेंद्र कपूर की आवाज में फिल्म हमराज का ये गीत। गीत के बोल लिखे हैं साहिर ने और सुरों में ढाला है रवि ने। इस गीत की फरमाइश करता है गांव फरासी जिला हिसार से राजकुमार डूडी, प्रमोद कुमार डूडी और सौरभ डूडी। तहसील भादरा अनूप शहर से गजानन सारस्वत, ताराचंद सारस्वत, कृष्ण कुमार, सोनू, पवन कुमार, साहिल, राघव, मुरारीलाल शर्मा, मदनलाल शर्मा, फूसाराम मील और महावीर लोहरा। जिला खरगोन सनावद मध्य प्रदेश से अशोक वर्मा, अर्चना वर्मा, अनुज वर्मा, आयुषी वर्मा और रमेश चंद वर्मा। ग्राम शिरटे जिला सांगली से हनुमंत शिंदे, संगीता, ऋषिकेश और वसुंधरा। मुंगिसापुर से मोहम्मद जाकिर मंसूरी, कमरून निशा, शविस्ता मोहम्मद नसीब, पलक लुबना और यश मंसूरी। डवाली बठिंडा माफ कीजिएगा डवाली से राजेंद्र नारंग, अंजू नारंग, मोहित नारंग और तानिया नारंग। मोहल्ला हलवाईयान शेरकोट जिला बिजनौर से मोहम्मद वकार फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोजी परवीन, बिट्टू भैया, साजदा रानी और हीना कौसर। रानी बाजार बीकानेर से रानी झाब और बिट्टू झाब। जिला किशनगंज बिहार से रविंद्र मोहनदास और आशा देवी। इसके अलावा हमारे पास कुछ खत भी मिले हैं जिसे लिख भेजा है गांव दौलतपुरा श्रीगंगानगर से शोला जी बेनीवाल, शांति बेनीवाल, मंजू, मोहित, हेमंत और अंजू बेनीवाल। मक्खू फिरोजपुर से बिल्ला बजाज, हैप्पी कपूर और मुनीश बजाज। मलोट पंजाब से राजकुमार इंदौरा, बिमला इंदौरा, गैरी इंदौरा, विकास, प्रियंका, रमन, रीतु और भविष्य खन्ना। इनके साथ हैं मिशेल खन्ना, किनकुश खन्ना और बेबी दिव्यांशी इंदौरा। आप सबकी फरमाइश पर सुनते हैं फिल्म हमराज का ये गीत।

श्रोतों, अब हम आपको सुनवाते हैं फिल्म क्रोधी का ये गीत लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर की आवाज़ में। आनंद बख्शी के लिखे गीत को संगीत से संवारा है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। पसंद आप सबकी। नज़दीक बस स्टैंड बुर्ज हनुमानगढ़, फाजिलका से रमन वर्मा, अमन वर्मा, दिव्यांश वर्मा और मदनलाल वर्मा। हनुमानगढ़ टाउन से सुल्तान सिंह तरड़, कृष्ण मुकेश तरड़, रामचंद्र तरड़, कपिल देव और हिमानी जाखड़। चंडीगढ़ से सतीश अनेजा और बिमला अनेजा। गोविंदपुरा सीकर राजस्थान से दातार सिंह शेखावत, संगीता कंवर, तुषार सिंह और रिंकी शेखावत। गांव ढाणी लाल खां नोहर से जावेद खां, अरमान खां, इरफा इमरान खां, सीमा बानो, विनोद खां और उनके परिवार के सदस्य। पलारी छत्तीसगढ़ से नितेश कुमार देवागन, दुर्गा प्रसाद, पराग टेलर, पूना राम और कृष्ण देवागन। ग्राम पंचायत बठेना पाटन, जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से बलकरण वर्मा, अंजनी ज्योति वर्मा, प्रहलाद राजेंद्र वर्मा, उमेश मिथिलेश वर्मा। सूरतगढ़ वार्ड नंबर 10, मनसाराम जी, पवन कुमार, श्रवण कुमार, भगवाना राम, मुकेश, मनोज कुमार, नितेश और कृष्णा। मंडी केसरी सिंहपुर से बिल्लू सूद, सुनीता सूद, चांदनी, आशीष विश्वजीत और मोहनलाल प्रजापत। गांव अरायना से बनवारीलाल जयपाल, बिमला, सोनू, ममता, दिशा, मोक्ष, सुशांत और विक्रम। पूनम चालिया और इनके परिवार के सदस्य। आप सब की फरमाइश पर सुनते हैं फिल्म क्रोधी का ये प्यारा सा गीत।

श्रोताओं, हमारे अगले गीत के फरमाइश करता हैं रायसी नगर से सुल्तान राम मलखट, ललित सरस्वती देवी, नरेंद्र कुमार, हरबंश लाल, बनवारी लाल, गोपीराम मलखट और मीनाक्षी मलखट, श्री करणपुर से पवन कटारिया, समीर कटारिया, शालू कटारिया और उनके परिवार के सदस्य, शाहूनगर यवत माल से राहुल, सरला, विशाल, चेतन, रोशनी और बेबी प्रियांशी, गांव बनवाला हनुमंता फाजिलका पंजाब से विनोद मायल, सीमा, लक्षिता, यशिका, विद्या देवी और परिवार के सदस्य, भोपाल मध्य प्रदेश से मनीष श्रीवास्तव, लक्षिता माफ कीजिएगा हर्षिता श्रीवास्तव, राधिका और आशा श्रीवास्तव, एकता कॉलोनी रोहतक से सीताराम कागड़ा, बबीता बोट, निखिल कागड़ा, तन्वी और अंकित कागड़ा, गोविंदगढ़ माझीवाला श्रीकरणपुर से राजू टुटेजा, खुशदिल उर्मिला टुटेजा, गुड्डू जीनू मन्नू, शिव सेठी करणपुरी, स्माइल टुटेजा और पवन गुज्जर, बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवागन, कौशल्या, हेमलता, डिंपल, बाबू प्रियांशी, कुमारी भाव्या और उनके परिवार के सदस्य, बगेरा दुर्ग से संतोष नामदेव, सार्थक नामदेव, समर्थ नामदेव और शौर्य नामदेव, झज्जर हरियाणा से बिट्टू भाटिया, रीटा रजत और मयंक भाटिया, केसरी सिंहपुर से राजकुमार टटई, कमल टटई, मगनलाल सोमानी, बिंदा टेलर, मुंशीराम महिंद्रा, हीरालाल गजरा, अशोक मित्तल और ताराचंद दायमा, लक्सर हरिद्वार से ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबी राही और महराज जहां, ग्राम पीपल पिपरो लोगगढ़ सरगांव छत्तीसगढ़ से दीपेश वर्मा, पूनम वर्मा, ज्योति और शिवांश वर्मा, गांधीनगर गुजरात से जी के परमार, ज्योत्सना, हर्ष और दीपल, अलीका डव्वाली से रूप सिंह लखोत्रा, करमजीत लखोत्रा, सरबजीत और रानी सोनू रजनी, गांव घमंडिया से जगदीश ढूकिया, प्रमिला ढूकिया, ज्योति, शिवम ढूकिया, सरिता, सचिन, अमना, तमन्ना, साइना, विष्णु ढूकिया और दोहिती ईवा धारणिया। आप सब की फरमाइश पर सुनते हैं फिल्म हिमालय की गोद से ये गीत को आवाज़ दी है मुकेश ने।

0: श्रोतों, कार्यक्रम के आखिर में सुनिए फिल्म सच्चा झूठा से ये गीत पसंद आप सबकी। प्रोफेसर कॉलोनी खंडवा मध्य प्रदेश से आनंद जोशी, तनुषा ध्रुवी और फाल्गुनी जोशी। व्यास कॉलोनी बीकानेर से अशोक कुमार शाही, संतोष शाही, राजश्री और गौरव शाही। पटियाला पंजाब से सोमदत्त, कैरव, ज्योति रानी, गुरमत कौर, मनु। उत्तर प्रदेश से बीपी गौतम, सरिता गौतम, भंवर सिंह, मीणा, तन्मय मीणा, हिमरी कला, झुंझुनू से। मध्य प्रदेश से लाडला जी चौबे, लाडली जी चौबे, रिमझिम और सक्षम चौबे। झोरड़ फार्म हाउस गांव बहलोल नगर से नरेंद्र नितेंद्र झोरड़, भीमसेन झोरड़, लोकेश गौरव और पुनीता झोरड़। मेहरनगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से अभिजीत गुवाणकर, राही सरिता, प्रणीता, सिद्धांत। नेहरू चौक पैठन से सुरेश जाधव, अनीता जाधव, आरती, पूजा, प्रसाद जाधव, सोनम जाधव और बेबी सिया। उत्तम नगर दिल्ली से कमला रानी, बोधराज खोरवाल, भानु प्रकाश और गीतिका खोरवाल। आप सबकी फरमाइश पर सुनते हैं फिल्म सच्चा झूठा का ये गीत।
1: यूं ही तुम मुझसे बात

0: श्रोताओं, आइए आप सुन रहे थे आपके फरमाइशी फिल्मी गीतों का प्रोग्राम सदाबहार नगमे। इसी गीत के साथ कार्यक्रम सदाबहार नगमे संपन्न करने की अपने दोस्त मनोज खत्री को दे इजाजत। नमस्कार। आकाशवाणी का ये कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। प्रातः के 10:55 हुए हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हमारे दिल्ली केंद्र से कार्यक्रम मन की बात।
1: ये आकाशवाणी दिल्ली है। कृपया हमारे विशेष कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी है।
2: श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है, यदि व्यक्ति की बुद्धि शुद्ध हो तो अक्सर छोटे छोटे कर्मों की नैतिक योग्यता भी बड़े बड़े कर्म कर डालने में समर्थ होती है। बुद्धि तो एक तलवार के समान है। जीवन में जो कुछ भी इंसान के सामने आता है उसकी काट छांट करना ही बुद्धि का काम है। इसके विपरीत, जब बुद्धि शुद्ध ना हो तब किसी कर्म की नैतिक योग्यता का ज्ञान मनुष्य को नहीं हो सकता। इस तरह बुद्धि के अभाव में अच्छा कार्य भी बुरा बन सकता है।
3: महात्मा गांधी का कहना है,
4: मैं भगवान को मानवता की सेवा द्वारा देखने का प्रयत्न करता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ भगवान न ऊपर आकाश में है और न नीचे पाताल में, वो तो सब में है।
5: मन की शांति और शक्ति के लिए जुड़िए भक्ति से। आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मनपसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, महाकुंभ मेला हो या जगन्नाथ रथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए सूफी संगीत और शबद कीर्तन,
6: कोई बोले राम राम।
5: आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल, न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर भी उपलब्ध। आराधना चैनल।

आकाशवाणी का न्यूज ऑन एयर ऐप है। लाइव रेडियो, लेटेस्ट न्यूज हेडलाइंस, न्यूज पॉडकास्ट्स, साथ में दूरदर्शन के लाइव चैनल्स भी। द बेस्ट ऑफ एंटरटेनमेंट, इन्फॉर्मेशन, एजुकेशन अब आपके एक उंगली के इशारे पर। कहीं भी कभी भी रहें हरदम अपडेट। आज ही डाउनलोड करें आकाशवाणी का न्यूज ऑन एयर ऐप।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: पापा, कॉलेज की फीस ज्यादा है।
4: बेटा,
5: याद है

0: बोनस के कुछ पैसे हमने दूसरे खाते में रखे थे।
1: 2 साल से खाते में कोई लेन देन नहीं हुआ है, शायद इनऑपरेटिव हो गया होगा।
2: तो अब बैंक जाके या वीडियो केवाईसी से केवाईसी अपडेट कराओ, खाता होगा एक्टिव एकदम फ्री।
1: चलो
0: कहाँ?
1: एडमिशन कराने,
2: खाता हुआ एक्टिव।
3: आरबीआई कहता है
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: पर्सनल लोन ऑफर
2: फिर से ब्लॉक करता हूँ।
1: फ्री ट्रिप टू दुबई
2: ये भी ब्लॉक। कितना ब्लॉक करूं यार?
3: सिर्फ फोन पे ब्लॉक करने से स्पैम खत्म नहीं होता, हर बार नया नंबर आ जाता है।
2: तो क्या करूं?
3: कॉल उठाओ, फिर ट्राई D&D ऐप पर रिपोर्ट करो, कैटेगरी सेलेक्ट करो, बैंकिंग, ट्रैवल, इंश्योरेंस और सबमिट। बस कुछ सेकंड्स का काम।
2: मतलब सबका स्पैम कम होगा?
3: हाँ, रिपोर्ट्स मिलते ही एक्शन होता है। सिर्फ ब्लॉक नहीं, रिपोर्ट जरूर करें। ट्राई D&D ऐप, डाउनलोड नाउ फ्रॉम प्ले स्टोर और ऐप स्टोर एंड स्टार्ट रिपोर्टिंग।
4: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
5: मन की बात आकाशवाणी के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अपने मन की बात साझा करेंगे, तो आइए सुनते हैं प्रधानमंत्री जी से मन की बात।
6: मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। हमारे जीवन में कुछ तारीखें ऐसी होती हैं जिन्हें याद रखने के लिए कैलेंडर देखने की जरूरत नहीं पड़ती। आज 26 जुलाई ऐसी ही एक तारीख है। आज कारगिल विजय दिवस है। ये दिन हमें गर्व से भर देता है। ये दिन हमें अपने वीर जवानों के अद्भुत साहस की याद दिलाता है। कारगिल की ऊंची ऊंची चोटियां, कठिन मौसम, दुश्मन की चुनौती, हर परिस्थिति हमारे सैनिकों के सामने थी, लेकिन उनका हौसला हर चुनौती से बड़ा था। उन्होंने मां भारती की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व अर्पित कर दिया। आज कारगिल विजय दिवस पर मैं सभी वीर शहीदों और वीर सैनिकों को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं। साथियों, आज का भारत अपने वीरों को सिर्फ याद ही नहीं करता, बल्कि नई पीढ़ी तक उनकी गाथा भी पहुंचाता है। इसी भावना से इस वर्ष एक विशेष शौर्य विजय यात्रा निकाली गई है। 14 जुलाई को दिल्ली के नेशनल वॉर मेमोरियल से शुरू हुई यह मोटरसाइकिल यात्रा द्रास के करगिल वॉर मेमोरियल तक पहुंचेगी। इसका संदेश है वन राइड, वन नेशन, वन सैल्यूट। यह यात्रा हमें याद दिलाती है कि राष्ट्र के लिए दिया गया बलिदान कभी भुलाया नहीं जा सकता। साथियों, आज भारत अपने सैनिकों के साहस के साथ साथ अपनी तकनीकी क्षमता को भी लगातार मजबूत कर रहा है। कुछ दिन पहले भारतीय नौसेना में INS महेंद्रगिरी शामिल किया गया। यह आधुनिक जंगी जहाज भारत में ही डिजाइन किया गया है, भारत में ही बना है। इसमें 75% से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग हुआ है। यह आत्मनिर्भर भारत की बढ़ती शक्ति का प्रतीक है। इसी महीने DRDO ने पिनाका लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट का भी सफल परीक्षण किया। इस सफलता के पीछे हमारे वैज्ञानिकों और इंजीनियरों का सामूहिक परिश्रम है। 2-3 दिन पूर्व ही DRDO ने कुशा मिसाइल का भी सफल परीक्षण किया है। साथियों, आज रक्षा उत्पादन हो, रक्षा निर्यात हो या मित्र देशों के साथ राजनीतिक सहयोग, भारत लगातार नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ रहा है।

इस महीने की शुरुआत में मैं इंडोनेशिया में था, जहां ब्रह्मोस और अस्त्र मिसाइलों के लिए एक बड़ा समझौता हुआ है। दुनिया का भरोसा भारत के रक्षा उपकरणों और तकनीक पर बढ़ रहा है। आइए इस करगिल विजय दिवस पर हम अपने अमर शहीदों को नमन करें और एक सुरक्षित, सक्षम और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण का अपना संकल्प और मजबूत करें। मेरे प्यारे देशवासियों, मन की बात के पिछले एपिसोड में मैंने आपसे कैच द रेन अभियान की चर्चा की थी। मैंने आग्रह किया था कि बारिश की हर बूंद को सहजने के इस अभियान को जन आंदोलन बनाएं। कैच द रेन का संदेश बहुत सीधा है, जहां बारिश गिरे, जब बारिश गिरे, पानी को वहीं सहेजिए। इसलिए 4 जुलाई से देश भर में एक विशेष अभियान भी चलाया जा रहा है। इसके तहत बारिश के पानी के संचयन, ग्राउंड वाटर रिचार्ज, पुराने जल स्रोतों के पुनर्जीवन और वृक्षारोपण को नई गति दी जा रही है। मुझे बहुत खुशी है कि गांव हो या शहर, पंचायतें हो या सामाजिक संस्थाएं, हर जगह लोगों ने बढ़ चढ़कर भागीदारी की है। कहीं पुराने तालाबों से घाट निकाली जा रही है, कहीं कुआं और बावड़ियों को फिर से जीवन दिया जा रहा है, बंद पड़े बोरवेल अब ग्राउंड वाटर रिचार्ज का माध्यम बन रहे हैं। साथियों, मध्य प्रदेश के सीधी जिले में करीब 1500 तालाब बनाए गए हैं। नरसिंहपुर में अमृत सरोवरों को संवारा गया है। महाराष्ट्र के नासिक में बड़ी मात्रा में पानी सहेजने की क्षमता विकसित हुई है। आंध्र प्रदेश के नंदियाल में सभी ग्राम पंचायतें इस अभियान से जुड़ी हैं और पुराने तालाबों को फिर से उपयोगी बनाया गया है। हमारे शहर भी पीछे नहीं है। छत्तीसगढ़ के कोरबा, उड़ीसा के भुवनेश्वर और आंध्र प्रदेश के विजयनगरम इस अभियान के उत्साहजनक परिणाम दिखाई दे रहे हैं। आइए हम भी अपने आसपास किसी एक तालाब, कुएं या बावड़ी की जिम्मेदारी लें, पानी की हर बूंद बचाएं। आज बचाई गई हर बूंद आने वाली पीढ़ियों के भविष्य की सबसे बड़ी पूंजी है। मेरे प्यारे देशवासियों, कुछ ही दिन पहले ग्लासगो में कॉमनवेल्थ गेम्स शुरू हुए हैं। हर देशवासी भारतीय दल को निरंतर अपनी शुभकामनाएं दे रहा है। उनकी कामना है कि सभी खिलाड़ी और एथलीट बेहतरीन प्रदर्शन करें और लोगों का दिल भी जीतें। साथियों, हमारे युवाओं ने हाल के दिनों में स्पोर्ट्स में कई शानदार उपलब्धियां हासिल की हैं। पीवी सिंधु बैडमिंटन में जापान ओपन का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय बन गई हैं। उनकी इस उपलब्धि पर पूरे देश को गर्व है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने भी लंदन में लॉर्ड्स स्टेडियम में अपना पहला टेस्ट मैच जीता है। यह एक ऐतिहासिक जीत है। हमारी टीम ने 270 रनों के बड़े अंतर से यह मुकाबला जीता। लेकिन बात सिर्फ इतनी सी नहीं है। लॉर्ड्स के लंबे इतिहास में यह महिलाओं की टीम का पहला टेस्ट मैच था। 1983 में इसी मैदान पर भारत ने अपना पहला क्रिकेट विश्व कप जीता था। अब हमारी नारी शक्ति ने यहाँ देश का नाम रोशन किया है। साथियों, कुछ छोटे प्रयास ऐसे भी होते हैं जो बहुत मायने रखते हैं। मुझे केरलम में एर्नाकुलम के साउथ चित्तूर में स्पोर्ट्स के ऐसे ही एक प्रयास के बारे में पता चला है। वहाँ के एक स्कूल में संस्कृत क्लब है। यहाँ के टीचर अभिलाष जी बड़े अनूठे तरीके से संस्कृत को लोकप्रिय बना रहे हैं। इस प्रोजेक्ट को अक्षर कंदुक नाम दिया गया है। इसमें संस्कृत के अक्षरों को फुटबॉल में इस्तेमाल होने वाले शब्दों से जोड़कर आसान तरीके से समझाया जाता है। इसे सीखने में आनंद मिलता है, साथ ही खेलों से लोगों का जुड़ाव भी बढ़ता है। मेरे प्यारे देशवासियों, पिछले रविवार विक्रम 1 इसके सफल लॉन्च से हर देशवासी गौरव से भरा हुआ है। हम सभी भारतीय स्पेस सेक्टर के इस ऐतिहासिक क्षण के साक्षी बने। ये प्राइवेट सेक्टर द्वारा विकसित भारत का पहला रॉकेट है। हमारे युवा इनोवेटर्स ने वो कर दिखाया जिसकी कल्पना तक मुश्किल थी। उन्होंने गजब की

स्किल, पैशन और पेशेंस दिखाया। लंबे समय तक हमारा स्पेस सेक्टर निजी क्षेत्र के लिए बंद रहा था। इस सेक्टर में रुचि रखने वाले काफी युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर नहीं मिल पा रहा था। युवा हित को देखते हुए हमने स्पेस सेक्टर को प्राइवेट सेक्टर के लिए खोला। आज इसका परिणाम दुनिया देख रही है। साथियों, हमारे युवा साथी साइंस में भी भारत का मस्तक ऊंचा कर रहे हैं। साइंस ओलंपियड्स दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण कंपटीशन में से एक है। इनमें बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स हिस्सा लेते हैं। इस महीने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथमेटिक्स के ओलंपियाड हुए। इन कॉम्पिटिशन में भारतीय दल का प्रदर्शन शानदार रहा। फिजिक्स ओलंपियाड में हमारे सभी 5 स्टूडेंट्स ने गोल्ड मेडल जीते और भारत ने पहली रैंक हासिल की। पिछले एक दशक में हुए हर फिजिक्स ओलंपियाड में हमारे देश के स्टूडेंट्स ने गोल्ड या सिल्वर मेडल जरूर जीता है। केमिस्ट्री ओलंपियाड में भी हमारे सभी स्टूडेंट्स ने गोल्ड मेडल जीता। यह अब तक की बेस्ट परफॉर्मेंस रही है। बायोलॉजी ओलंपियाड में भी हमारे सभी स्टूडेंट्स ने मेडल जीते, इनमें एक गोल्ड मेडल भी शामिल है। वहीं मैथमेटिक्स ओलंपियाड में हमारे स्टूडेंट्स ने 2 गोल्ड और 4 सिल्वर मेडल्स अपने नाम किए। मुझे देश की युवा शक्ति पर बहुत गर्व है। यह देखकर खुशी होती है कि भारत में ओलंपियाड्स और हैकेथॉन्स का कल्चर निरंतर बढ़ रहा है। मुझे विश्वास है कि देश के अधिक से अधिक युवा ऐसे फोरम्स में अपना इंटरेस्ट दिखाएंगे और भारत का परचम भी लहराएंगे। मेरे प्यारे देशवासियों, जब हुनर भी हो और कुछ करने का जज्बा भी हो तो हर राह आसान हो जाती है। कश्मीर की पारंपरिक चटाई वगू को लेकर आज जो प्रयास हो रहे हैं उसमें इसी की झलक मिलती है। इसे सरकंडे और धान के पुआल से स्ट्रॉ से तैयार किया जाता है। इस चटाई को बनाने की परंपरा बरसों पुरानी है। इसके लिए सबसे पहले कश्मीर के दलदली इलाकों की घास और सरकंडे की कटाई की जाती है। धूप में सुखाने के बाद छटाई होती है और फिर शुरू होता है हाथों से बुनाई का काम। 2 कारीगरों को एक चटाई बनाने में करीब करीब 4 दिन लगते हैं। यह चटाई अनूठी भी है और इको फ्रेंडली भी है। एक बड़ी खासियत यह है कि आपको गर्मियों में इससे ठंडक मिलेगी और सर्दियों में गर्माहट। पहले यह कश्मीर के हर घर में दिखती थी, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में इसका उपयोग कम होने लगा था। ऐसे में श्रीनगर के गुलाम हुसैन जी और उनकी बेटी तंजिला जी ने एक संकल्प लिया। दोनों वगू क्राफ्ट की परंपरा को एक नया जीवन देने में जुट गए। गुलाम हुसैन जी बहुत ही साधारण परिवार से आते हैं। उन्होंने इस काम में कई तरह की चुनौतियां भी आई, लेकिन वगू के संरक्षण का उनका संकल्प अडिग था। देखते ही देखते उनके इस प्रयास से बहुत सारे लोग जुड़ते चले गए। गुलाम हुसैन जी ने इस कौशल को खूब बढ़ाया। अपने मिशन में उन्हें स्थानीय स्तर पर सरकारी सहयोग भी मिला। आज तेजी से लोकप्रिय हो रहा वगू देश के अन्य हिस्सों में भी पहुंच रहा है। मुझे इस प्रयास से जुड़े सभी लोगों पर बहुत गर्व है। आज हम सभी का लोकल प्रोडक्ट्स पर जोर है। हम वोकल फॉर लोकल के मंत्र को लेकर चल रहे हैं। ऐसे में कश्मीर का वगू भी आपके घर का हिस्सा बने, इस पर एक बार जरूर सोचिएगा। साथियों, हमारे देश में चाय सिर्फ एक पेय नहीं है, ये अपनापन भी है। सुबह की शुरुआत हो, दोस्तों की मुलाकात हो या परिवार के साथ कुछ पल बिताने हो, चाय हर मौके का हिस्सा बन जाती है। वैसे तो आप भी भली भांति जानते हैं मेरा चाय से रिश्ता क्या है, लेकिन आज मैं जिस चाय की चर्चा कर रहा हूं उसने सिर्फ स्वाद ही नहीं दिया बल्कि अनेक बहनों के जीवन में आत्मनिर्भरता की नई खुशबू भी घोल दी है।

उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले के लखीवाला गांव में सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी महिलाओं ने विदुर प्रेरणा स्वदेशी हर्बल टी तैयार की है। इसमें लेमन ग्रास, गिलोय, मुलेठी, तुलसी, कच्ची हल्दी, दालचीनी, इलायची और सौंफ जैसी प्राकृतिक सामग्रियां शामिल है। अपने अनोखे स्वाद और गुणों की वजह से इस चाय ने बहुत कम समय में लोगों के बीच खास पहचान बना ली। प्रयागराज के महाकुंभ और दिल्ली के इंटरनेशनल फूड फेस्टिवल में इस हर्बल चाय को खूब सराहना मिली। विदेशों से आए लोगों ने भी इसमें दिलचस्पी दिखाई। साथियों, सबसे प्रेरक बात इसकी शुरुआत है। यह पूरा प्रयास सिर्फ 1 लाख रुपए से शुरू हुआ था। आज यह ब्रांड देश के बड़े संस्थानों तक पहुंच चुका है। ये पहल हमें बताती है कि जब स्थानीय ज्ञान, प्रकृति और महिलाओं का आत्मविश्वास साथ आते हैं तो एक छोटा सा प्रयास भी बड़े बदलाव की शुरुआत बन जाता है। मेरे प्यारे देशवासियों, आज देश भर में एक पेड़ माँ के नाम अभियान के माध्यम से लोग प्रकृति के प्रति अपना दायित्व निभा रहे हैं। जब समाज इस भावना से जुड़ता है तो बहुत सुंदर और प्रेरक उदाहरण सामने आते हैं। साथियों, अहमदाबाद में जन भागीदारी की अद्भुत शक्ति दिखाई दी है। भाड़ज क्षेत्र में 1 घंटे के भीतर 3.5 लाख से अधिक पौधे रोपे गए। इसमें 25,000 से अधिक लोग जुटे। स्कूली बच्चे, एनसीसी कैडेट्स, स्वयंसेवक और आम नागरिक सभी ने इस अभियान में हिस्सा लिया। आने वाले वर्षों में यही पौधे एक घने शहरी वन का रूप लेंगे। इस प्रयास को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। साथियों, एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत यूपी में भी जन शक्ति का अद्भुत संकल्प देखने को मिला है। वहां एक ही दिन में 12 जुलाई को 35 करोड़ से अधिक पौधे लगाए गए हैं। यूपी का सांसद होने के नाते मेरे लिए ये भी विशेष गर्व की बात है। मेरे प्यारे देशवासियों, पेड़ केवल मनुष्यों के लिए नहीं होते, वे अनगिनत जीवों के घर भी होते हैं। गुजरात के गीर के जंगलों में करीब 60 वर्षों बाद इंडियन ग्रे हॉर्नबिल फिर से बसेरा बना रहा है। ये गीर में बरसों से हो रहे संरक्षण और पुनर्स्थापन के प्रयासों का परिणाम है। हॉर्नबिल को जंगलों का किसान कहा जाता है। ये फल खाते हैं और बीजों को दूर दूर तक पहुंचाते हैं। उन्हीं बीजों से जंगल में नए पेड़ उगते हैं। इस तरह एक पक्षी जंगल को फिर से हरा भरा बनाने में मदद करता है। मैं आप सभी से कहूंगा, हम सभी अपने जीवन के किसी विशेष अवसर को प्रकृति से जरूर जोड़ें, एक पेड़ माँ के नाम लगाएं। आज का लगाया एक छोटा सा पौधा आने वाली पीढ़ियों के लिए हरियाली, स्वच्छ हवा और सुंदर भविष्य की विरासत बन सकता है। मेरे प्यारे देशवासियों, हम सभी जानते हैं कि आज प्लास्टिक प्रदूषण पूरी दुनिया के पर्यावरण के लिए बड़ी चुनौती बना हुआ है। सिंगल यूज प्लास्टिक का कचरा कई वर्षों तक प्रकृति को नुकसान पहुंचाता रहता है, इसलिए प्लास्टिक का सही निस्तारण बहुत जरूरी है। साथियों, बिहार के सीतामढ़ी में वेस्ट टू वेल्थ का शानदार उदाहरण सामने आया है। यहाँ कचरे की रिसाइकलिंग कर उससे आकर्षक बेंच बनाई जा रही है। एक बेंच तैयार होने में करीब 40 किलो सिंगल यूज प्लास्टिक खप जाती है। यह मजबूत, टिकाऊ और आरामदायक होने के साथ साथ इको फ्रेंडली भी होती है। इसे सरकारी स्कूलों, पार्कों और सार्वजनिक स्थलों पर लगाया जाता है। इसके जरिए लोगों में पर्यावरण संरक्षण को लेकर जागरूकता भी बढ़ रही है। इस प्रयास में स्थानीय इकाई के साथ

साथ ही जिला प्रशासन की महत्वपूर्ण भूमिका है। इससे स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर भी पैदा हो रहे हैं। सीतामढ़ी का यह प्रयास हमें बताता है कि रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल आज केवल एक नारा नहीं बल्कि हमारे जीवन का हिस्सा बनता जा रहा है। साथियों, आपको याद होगा पिछली बार मन की बात में मैंने गणेश उत्सव की बात की थी। मैंने आग्रह किया था कि हमें अपने देश की मिट्टी से ही बने गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। जो पीओपी से बने गणेश जी होते हैं या विदेश से आई गणेश जी की प्रतिमा होती है, उसके बजाय हमें देश की मिट्टी से बने गणेश जी को घर में स्थापित करना चाहिए। इस विषय पर अनेक लोगों ने मुझे संदेश भेजा है और अपने विचार रखे हैं। लोगों ने बताया कि उन्होंने मेरे आग्रह को अपनाया है। उन्होंने स्थानीय मिट्टी से तैयार होने वाले गणेश जी को स्थापित करने का संकल्प लिया है। लोगों ने लिखा है कि मन की बात में पहले इस पर चर्चा हुई, इससे उन्हें सही वक्त पर सही कदम उठाने में मदद मिली। मैं एक बार फिर अपना आग्रह दोहराता हूं, इस बार गणपति पूजा में देश की मिट्टी से बने गणेश जी को अपने घर पर स्थापित करें, उनकी पूजा करें। आपका यह प्रयास भी एक तरह से प्रकृति की ही पूजा होगा। मेरे प्यारे देशवासियों, अब मैं आपको एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बताऊंगा जिनके बारे में सुनकर आपको बहुत गर्व होगा। एक ऐसे व्यक्ति जो साइंस और इनोवेशन के क्षेत्र में बढ़ चढ़कर काम कर रहे हैं, दुनिया में जिनकी पहचान बन रही है, लेकिन इसके बाद भी वो अपनी जड़ों से गहराई से जुड़े हुए हैं। अवसर मिलते ही वो अपनी मिट्टी का सम्मान करना नहीं भूलते। वो व्यक्ति हैं मणिपुर के डॉक्टर रोनाल्डो रेशराम जी। नाम उनका रोनाल्डो है लेकिन काम से वो एक एस्ट्रोफिजिसिस्ट है। वे जापान में काम करते हैं और यंग गैलेक्सीज के एक विशाल समूह की खोज करने वाली टीम का हिस्सा रहे हैं। आप जानना चाहेंगे कि उन्होंने आखिर किया क्या है। दरअसल उन्होंने इस पूरे समूह का नाम मणिपुर की एक खूबसूरत झील से जोड़कर लोकटक प्रोटो क्लस्टर रखा है। लोकटक ताजे पानी की बहुत बड़ी झील है। लोकटक लेक में तैरती हुई फुमड़ी मिलकर एक अनोखा लैंडस्केप बनाती है। ऐसा लगता है कि विशाल समंदर में छोटे छोटे द्वीप तैर रहे हो। उसी प्रकार यूनिवर्स में ये यंग गैलेक्सीज भी एक विशाल संरचना का निर्माण करती है। आज मणिपुर की लोकटक केवल देश के मैप पर ही नहीं बल्कि विशाल ब्रह्मांड में भी अपनी चमक बिखेर रही है। यह उपलब्धि हर भारतीय का गौरव बढ़ाने वाली है। इससे हमारे युवा साथियों को सीख मिलती है कि वे अपनी परंपरा से जुड़े रहकर भी नई ऊंचाइयों को छू सकते हैं। ये ऐसी जड़ें हैं जो सितारों की दुनिया को भी जगमगा सकती हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, कुछ ही दिनों बाद 7 अगस्त को हमारा देश नेशनल हैंडलूम डे मनाएगा। इस अवसर पर हम अपने बुनकर भाई बहनों के कौशल और उनकी सृजनशीलता का उत्सव मनाते हैं। हमारे ये साथी पीढ़ियों से चली आ रही परंपराओं को आगे बढ़ा रहे हैं। साथियों, हथकरघे से बना हर परिधान किसी न किसी क्षेत्र, समुदाय और इससे जुड़े असंख्य लोगों की कहानी को सामने लाता है। ये वो लोग हैं जो गर्व के साथ भारत की सांस्कृतिक विरासत को संजोने में जुटे हैं। आज के दिन मेरा आग्रह है कि हम हस्तकला को प्रोत्साहित कर अपने बुनकर साथियों का सम्मान करें। आइए हम वोकल फॉर लोकल की भावना को और सशक्त करें। साथियों, आज देश में जिस तरह हैंडलूम को बढ़ावा दिया जा रहा है, उससे बड़ी संख्या में लोगों का जीवन बेहतर हो रहा है। पोचमपल्ली से पटना और कुथमपल्ली से कच्छ तक इसके कई उदाहरण देखने को मिलते हैं। आज ऐसे कई लोग और समूह हैं जो हैंडलूम की हमारी गौरवशाली

की परंपरा को नई ऊर्जा और पहचान दे रहे हैं। कोई पोचमपल्ली इकत की सुंदर परंपरा को आगे बढ़ा रहा है, तो कोई महिला बुनकरों को जोड़कर वूल प्रोडक्ट्स बना रहा है। कुछ लोग केरलम की पारंपरिक कसाऊ कला को संरक्षित कर रहे हैं, इससे हमारी माताओं बहनों को रोजगार भी मिल रहा है। साथियों, एक और विषय जिसका मैं विशेष रूप से उल्लेख करना चाहूंगा वह है खादी। हम सभी जानते हैं

बिक्री का यह आंकड़ा अब 8000 करोड़ रुपए के करीब पहुंच चुका है। मेरा आप सभी से आग्रह है कि आने वाले त्योहार में खादी का कोई न कोई, हैंडलूम का कोई न कोई, हैंडीक्राफ्ट का कोई न कोई प्रोडक्ट जरूर खरीदें। मेरे प्यारे देशवासियों, अगर आपसे पूछा जाए कि भारत के कितने तरह के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं तो आप सोच में पड़ जाएंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि हमारे यहाँ बहुत से वाद्य यंत्र और उनसे जुड़ी परंपराएं हैं। इसी तरह का एक इंस्ट्रूमेंट है त्रिपुरा का चोंग प्रेंग। यह वहां की ट्राइबल कम्युनिटीज में काफी लोकप्रिय है। बांस से बने इस वाद्य यंत्र में 3 तार होते हैं। इससे निकली धुन बहुत मधुर होती है जो सरोद से मिलती जुलती है। कुछ वजहों से युवाओं के बीच इसकी लोकप्रियता कम होने लगी थी। ऐसे में सूरज कुमार देव वर्मा जी ने इसे फिर से लोकप्रिय बनाने का संकल्प लिया। आज उनका प्रयास रंग ला रहा है। वे चोंग प्रेंग के साथ ही वहां के अन्य पारंपरिक वाद्य यंत्रों पर भी परफॉर्म करते रहे। कोकबोरोक फोक सॉन्ग्स, बाउल सॉन्ग्स, बंगाली फोक उन्हें खूब भाता है। अब मैं आपको एक छोटी सी क्लिप सुनाना चाहता हूं। इस संगीत को आप कभी भूल नहीं पाएंगे।

0: साथियों, मुझे विश्वास है इसे सुनकर आपके मन को बहुत अच्छा लगा होगा। मुझे देव वर्मा जी पर बहुत गर्व है। पारंपरिक संगीत को लोकप्रिय बनाने का उनका प्रयास बहुत ही सराहनीय है। मेरा आग्रह है कि आप भी अपने आसपास के पारंपरिक वाद्य यंत्र की जानकारी सोशल मीडिया पर जरूर शेयर करें। आपकी यह कोशिश दूसरों को भी पारंपरिक भारतीय संगीत से जरूर जोड़ेगी। मेरे प्यारे देशवासियों, कल 27 जुलाई को भारत रत्न डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी की पुण्यतिथि है। डॉक्टर कलाम के व्यक्तित्व में कई प्रेरक रूप थे, लेकिन उनके हृदय के सबसे करीब एक शिक्षक की भूमिका थी। वे बच्चों और युवाओं को बड़े सपने देखने के लिए प्रेरित करते थे। संयोग से इसी हफ्ते हम गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व मनाएंगे। हमारे माता पिता हमारे पहले गुरु होते हैं। स्कूल के शिक्षक हमें अक्षर ज्ञान देते हैं। गुरु पूर्णिमा ऐसे सभी गुरुओं के प्रति कृतज्ञता जताने का अवसर है। मैं देश के सभी शिक्षकों और गुरुजनों को श्रद्धापूर्वक प्रणाम करता हूँ। साथियों, कुछ ही सप्ताह बाद हम अपनी स्वतंत्रता का महापर्व भी मनाएंगे। 15 अगस्त हर भारतीय के लिए गर्व का दिन है। ये उन असंख्य वीरों को याद करने का दिन है जिन्होंने भारत माता की स्वतंत्रता के लिए अपना सब कुछ समर्पित कर दिया। उनके त्याग और तपस्या की वजह से आज हमारे हाथ में तिरंगा है। इस तिरंगे में हमारे संविधान के आदर्श हैं। साथियों, पिछले कुछ वर्षों में हर घर तिरंगा अभियान ने पूरे देश को एक अद्भुत भावना से जोड़ा है। हर घर हर गली में तिरंगे का उत्सव दिखाई देता है। इस वर्ष भी हमें हर घर तिरंगा अभियान को पूरे उत्साह के साथ आगे बढ़ाना है। अपने घर पर पूरे सम्मान के साथ तिरंगा फहराना है। साथियों, हर वर्ष 15 अगस्त से पहले आप मुझे बहुत से विचार और सुझाव भेजते हैं। इस वर्ष भी आप अपने विचार MyGov पर जरूर साझा कीजिए। मुझे आपके सुझावों का इंतजार है। साथियों, मन की बात में आज इतना ही। अगले महीने हम फिर मिलेंगे। देशवासियों की अनेक नई उपलब्धियां और प्रेरक प्रयासों के साथ, तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
1: मन की बात।

0: आकाशवाणी के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अपने मन की बातें साझा कर रहे थे। हम आपको बता दें कि माननीय प्रधानमंत्री के इस प्रसारण के बाद मन की बात के क्षेत्रीय भाषा में अनुवाद का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक केंद्रों से तथा संस्कृत भाषा में अनुवाद का प्रसारण आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज और एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर अभी किया जाएगा। मन की बात के क्षेत्रीय भाषाओं का पुनः प्रसारण आज रात 8 बजे आकाशवाणी के संबद्ध प्रादेशिक केंद्रों से और अंग्रेजी अनुवाद का प्रसारण एफएम रेनबो 102.6 मेगाहर्ट्ज पर किया जाएगा।
1: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
0: ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।
2: ये आकाशवाणी दिल्ली है, लीजिए सुनिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मन की बात का संस्कृत अनुवाद।
3: मम प्रियाः देशवासिनः नमस्कारः। अस्माकं जीवने केचन दिनांकाः तादृशाः भवन्ति येषां स्मरणार्थं दिनदर्शिका न अवलोकनीया भवति। अद्य तादृशः एव जुलाई मासस्य 26 दिनांकः अस्ति। अद्य कारगिल विजय दिवसः अस्ति। एषः दिवसः अस्मान् गर्वान्वितान् करोति। एतत् दिनम् अस्माकं वीराणाम् अद्भुतं साहसं नः स्मारयति। कारगिल इत्यस्य उन्नत श्रृंखलाः दुष्करं वातावरणं शत्रुसमाह्वानं वा वस्तुतः प्रत्येकमपि परिस्थितयः अस्माकं सैनिकानां समक्षम् आसन्। परं तेषां साहसं प्रत्येकं समाह्वानात् बलिष्ठमासीत्। ते मा भारती इत्येतस्याः रक्षार्थं स्वीयं सर्वस्वं समर्पितवन्तः। अद्य कारगिल विजय दिवसावसरे अहं सर्वान् हुतिंगतान् वीर सैनिकान् च प्रति श्रद्धापूर्वकं नमनाञ्जलिं प्रस्तौमि। सखायः, अद्यतनं भारतं केवलं स्ववीराणां स्मरणमेव न करोति, अपितु नूतन संततिं यावत् तदीय गाथाः अपि प्रापयति। अनया भावनया अस्मिन् वर्षे विशिष्टा एका शौर्य विजय यात्रा प्रवर्तिता। जुलाई मासस्य 14 दिनांके दिल्ल्याः राष्ट्रीय समर स्मारकतः समारब्धा एषा मोटर साइकिल यान यात्रा द्रासस्थितं कारगिल समर स्मारकं यावत् प्राप्नुयात्। एतस्याः सन्देशः अस्ति वन राइड वन नेशन वन सैल्यूट इति। एषा यात्रा अस्मान् स्मारयति यत् राष्ट्राय प्रदत्तं बलिदानं कथमपि विस्मृतियोग्यं न भवति। सखायः, अद्यत्वे भारतं स्वकीयानां सैनिकानां साहसवर्धनेन सह स्वीयाः प्रविधिक्षमताः अपि सततं दृढाः करोति। कतिपयेभ्यः दिनेभ्यः पूर्वमेव भारतीय नौसेनायां INS महेन्द्रगिरि इत्याख्यः योद्धृजलपोतः सम्मिलितः जातः। एषः आधुनिकः योद्धृजलपोतः भारते एव परिकल्पितः निर्मितश्च वर्तते। एतस्य निर्माणे प्रतिशतं 75-मितादपि अधिकानां स्वदेशी सामग्रीणाम् उपयोगः जातः। आत्मनिर्भर भारतस्य वर्धमानायाः शक्तेः प्रतीकभूतः अस्ति एषः। एतस्मिन्नेव मासे DRDO इत्यनेन रक्षानुसन्धान विकास संघटनेन पिनाक लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट इत्याख्यस्य प्रक्षेपकस्य अपि सफलं परीक्षणं कृतम्। एतस्याः सफलतायाः कारणभूतः अस्माकं वैज्ञानिकानां अभियन्त्रीणां च सामूहिक परिश्रमः अस्ति। द्वित्रदिनेभ्यः पूर्वं DRDO इत्यनेन कुशा मिसाइल इत्याख्यस्य प्रक्षेपकास्त्रस्य अपि सफलं परीक्षणं कृतमेव। सखायः, कामं अद्य रक्षोत्पादनं भवतु रक्षा निर्यातो वा उत मित्रदेशैः सह राजनीतिक सहयोगः। अद्यत्वे भारतं सततं नवशिखरं प्रति वर्धमानमस्ति। एतस्य मासस्य आरम्भे अहम् इण्डोनेशिया देशे आसम्, यत्र ब्रह्मोस इति एतेभ्यः प्रक्षेपास्त्रेभ्यश्च विशिष्टा सहमतिः सञ्जाता। विश्वस्य विश्वासः भारतस्य रक्षोपकरणेषु प्रविधिषु च वर्धमानः अस्ति। आयान्तु, ऐषमः कारगिल विजय दिवसावसरे वयम् अमरान् हुतिंगतान् वीरान् नमामः अथ सुरक्षितस्य सक्षमस्य

अब से कुछ ही देर बाद यानी 12:05 पर आप कार्यक्रम सुनेंगे कुछ बातें कुछ गीत पर्सन बिहाइंड द स्टोरी। ये एपिसोड 6 आप सुनेंगे हमारे दिल्ली केंद्र से 12:30 पर।

महिला जगत कार्यक्रम आप सुनेंगे दिन में 1:05 पर। इसमें आज आप सुनेंगे आत्मविश्वास कैसे बनाएं, कारगिल विजय दिवस, मोल भाव की आदत किस हद तक, विभिन्न सब्जियों का परिरक्षण।

फिल्म संगीत का समय रहेगा दिन में 2:30 पर। युवाणी कार्यक्रम आप सुनेंगे हमारी शाम की सभा में 5 बजे। इसमें आज आप सुनेंगे मानसिक स्वास्थ्य के प्रति सामाजिक जागरूकता, नशा मुक्त समाज का निर्माण, सपनों से सफलता तक का सफर, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं, जीवन में सकारात्मक सोच का महत्व और आज का इतिहास।

चौपाल कार्यक्रम का समय रहेगा शाम 7 बजे। फिल्म संगीत आप सुनेंगे 7:45 पर, और फिल्म संगीत एक ही फिल्म से आप सुनेंगे रात्रि 8।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे हमारे आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का प्रसारण समय, और अब प्रस्तुत है कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत। कार्यक्रम के साथ मैं लक्ष्मी, आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। साथियों, कुछ गीत यादों को आवाज़ देते हैं, कुछ गीत दिल को छू जाते हैं, और कुछ गीत हमारी जिंदगी का हिस्सा बन जाते हैं। आज के इस सुरीले सफर में बात होगी खूबसूरत वादियों की, बाहर की, प्रेम की, और उन एहसासों की जिन्हें शब्दों में कहना मुश्किल है। तो आइए इस खूबसूरत सफ़र की शुरुआत करते हैं। कभी कभी प्रकृति की खूबसूरती देखकर मन कह उठता है, खामोश वादियों में अक्सर दिल को अपनी आवाज़ मिल जाती है। तो सुनते हैं लता मंगेशकर की आवाज़ में ये गीत, गीतकार मजरू सुल्तानपुरी, संगीत आर डी बर्मन का, और फिल्म का नाम अभिलाषा।

साथियों, बाहर केवल मौसम से नहीं आती, कभी किसी अपने के आने से भी दिल में बाहर आ जाती है। इंतज़ार अगर किसी अपने का हो तो हर आहट अच्छी लगती है। तो सुनिए लता मंगेशकर की आवाज़ में शंकर जयकिशन का संगीत, गीतकार शैलेंद्र और फिल्म का नाम राजकुमार।

साथियों, प्रेम में जब कोई खास हो जाता है तो फिर उसकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती। हजारों चेहरों में एक चेहरा ऐसा होता है जिसे देखकर दिल कहता है, बस यही तो है। तो लीजिए सुनिए मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में हसरत जयपुरी का लिखा ये गीत। संगीत से सजाया है शंकर जय किशन ने और फिल्म का नाम तुमसे अच्छा कौन है।

साथियों, प्यार को शब्दों में मापना संभव नहीं। सच्चे प्यार की गहराई तो केवल दिल ही जानता है। प्रेम को शब्दों से नहीं, दिल की धड़कनों से समझा जाता है। तो लीजिए सुनिए लता मंगेशकर, मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में, शंकर जयकिशन का संगीत और फिल्म का नाम दिल तेरा दीवाना

साथियों, कुछ लोग हमारी ज़िंदगी में इस तरह शामिल हो जाते हैं कि उनकी मौजूदगी ही हमारी खुशी बन जाती है। कुछ रिश्ते नाम के मोहताज नहीं होते, वे बस दिल में रहते हैं।

श्रोताओं, आज के सफ़र में हमने महसूस की वादियों की खूबसूरती, बहार की बेकरारी और प्रेम की गहराई। जिंदगी छोटी सी है, इसे प्यार से जी लीजिए। जो अपने हैं उन्हें अपना कह दीजिए और जो पल मिले हैं उन्हें यादगार बना लीजिए। इसी खूबसूरत एहसास के साथ ही कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम समाप्त करने की लक्ष्मी को दिए इजाज़त।

हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम पर्सन बिहाइंड द स्टोरी का एपिसोड 6 हमारे दिल्ली केंद्र से।

0: हजारों दिव्यांगों के प्रेरणा स्रोत भी बने। स्वागत कीजिए करगिल वॉर के हीरो, भारत के पहले ब्लेड रनर मेजर डीपी सिंह जी का। कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: जय हिंद, सबको नमस्कार, राम राम।
0: कहानी को थोड़ा फ्लैशबैक में लेकर चलते हैं और आपसे ये समझने की कोशिश करते हैं कि जब आपका बचपन था, जब आप स्कूल में पढ़ा करते थे या फिर उससे आगे बढ़कर जब आप कॉलेज में गए, तो पहली बार कब एहसास हुआ या कब विचार आया कि आपको सेना में जाना चाहिए? क्या परिवार के किसी लोग ने आपको प्रेरित किया या दोस्तों के बीच ऐसा माहौल था कि दोस्त कह रहे थे कि आपको सेना में जाना चाहिए? वो कहानी थोड़ी सी बताइए।
1: मेरा जन्म हरियाणा में हुआ है, जगाधरी के पास, और मेरी सारी स्कूलिंग जो हुई है वो अब जिसको उत्तराखंड बोलते हैं, रुड़की, जो IIT रुड़की के लिए मशहूर है, वहाँ पे हुई है। कॉलेज में प्राइवेट किया है। और रही बात प्रेरणा स्रोत, तो मैं अपने ग्रैंड पेरेंट्स के पास, मेरे जो दादाजी थे वो वहाँ पर आर्मी का एक सेंटर है, उसमें सेवा करते थे, वो अकाउंट्स में थे, CDA में। उनके साथ मैंने बचपन बिताया अपना, क्योंकि मेरे पिताजी दुर्गम क्षेत्रों में रहते थे, वो बॉर्डर रोड्स में सेवा कर रहे थे। तो दादा दादी के पास रहते हुए जो एक जीवन था वो बड़ा डिसिप्लिन वाला और सख्त था, लेकिन नाना नानी के पास जब हम छुट्टियों में जाया करते थे तो बड़ी मस्ती होती थी। तो वो जो बच्चा दूसरी क्लास में उनके पास रहता था, उसको थोड़ा सा अटपटा लगता था, और डिसिप्लिन में किसको रहना पसंद है। तो एक दिन मैं ये सोच के कि यार नानी के पास ज़्यादा मस्ती होती है, घर से भाग गया। और जब मैं घर से भागा तो उस रुड़की की सीमा से बाहर पहुंचा ही था कि किसी जानने वाले ने मुझे पकड़ा, साइकिल पे बिठाया और वापस अपने घर के बाहर छोड़ दी। तो जिंदगी का मेरा वो पहला यू टर्न था, और उस पहले यू टर्न में मैंने सबक लिया था कि भाई डीपी सिंह, जिंदगी में आप अपनी सच्चाइयों से भाग नहीं सकते। जहाँ हो, जैसे हो, वहां पर आपको अपने परिश्रम से, अपने बल से ऊपर उठ के जीना पड़ेगा और कुछ करके दिखाना पड़ेगा। ये जो पहला यू टर्न था, इसने मुझे बाद में जब मैं युद्ध में घायल हुआ, जीने के लिए जो एक फाउंडेशन थी वो ऑलरेडी बना दी थी, सेट कर दी थी। तो जब मैं वापस आया घर, तो मैंने सोचा कि यहीं पे रहना है, ठीक है, अब डिसिप्लिन है तो डिसिप्लिन वाले एंगल से ही चलेंगे। और मेरे दादा दादी ने मुझे जोड़ दिया था गुरुद्वारे से, वहां से मुझे प्रेरणा मिली और मैंने फौज में ऑफिसर बनने की 8वीं क्लास में ही ठान लिया था, जब मैं भाग के गया था और घर में जो वापस लाके छोड़ दिया गया था। तो एक क्लैरिटी आ गई थी तभी कि भैया जिंदगी जीनी है तो फौज में अफसर बन के जीना है।
0: मेजर साहब, कहानी को थोड़ा आगे लेकर चलते हैं। 7 डोगरा रेजिमेंट में कमीशन होना और भारतीय सेना की वर्दी पहनना, कितना गर्व का पल था, क्या इमोशंस आपके जहन में चल रहे थे उस समय?
1: बिल्कुल, बहुत गर्व का पल था, क्योंकि आप ये सोचिए कि जिस बच्चे ने बचपन से सिर्फ एक ही सपना देखा हो और उस सपने को पाने तक उसको बहुत सारे फेलियर्स के थ्रू गुजरना पड़ा हो। पहले NDA में फेल हुए, उससे पहले 11वीं में फेल हुए, NDA में 3 बार अटेम्प्ट किया, फेल हो गए, फिर ग्रेजुएशन प्राइवेट किया, तो उसमें भी एक बार ऐसी परिस्थिति आ गई थी कि पिताजी की हालत बहुत ज़्यादा खराब थी शारीरिक रूप से, और घर में कोई देखभाल करने वाला नहीं था, तो लग रहा था कि अब बस जीवन डार्क हो गया। लेकिन वहाँ पर भी हौसला अफजाई माता जी ने करी कि तुम पढ़ते रहो, और क्योंकि उन दिनों में सिचुएशन ऐसी थी घर की फाइनेंशियल की, मैंने बैंक में एक प्राइवेट नौकरी कर ली थी कि मैं पढ़ सकूं और साथ में CDS की तैयारी कर सकूं, क्योंकि जाना तो अल्टीमेट फौज में ही है। फिर CDS में फेल हुए 2-3 बार, फिर इंटरव्यू में फेल हुए, तो कम से कम 5-6 फेलियर देखने के बाद जब आप कमीशन होते हो, अपने ड्रीम को पाते हो, तो एक अलग ही तरीके का जुनून जो सिर में होता है वो मतलब देखने को मिलता है, वो खुशी जाहिर होती है। और उससे भी बड़ी खुशी थी कि कुछ ही दिनों में उसके बाद युद्ध आ गया था, तो बैप्टाइजिंग बाय फायर वाली जो बात, हर सोल्जर जो एक तरीके से तैयार रहता है कि फौज में आए इसलिए कि भारत माँ के लिए कुछ करके दिखाएं।
0: मेजर साहब, आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि 1999 में जब करगिल युद्ध शुरू हुआ और आपको पहली बार पता चला कि आपको करगिल में युद्ध के लिए जाना है, उस समय क्या आपके जहन में चल रहा था और आपको वो सौभाग्य मिला, गौरव मिला? क्या परिवार से थोड़ी बातचीत हुई, परिवार के लोगों का क्या कहना था, या फिर सेना के अंदर का क्या माहौल था, थोड़ा बताएं उसके बारे में?
1: देखिए, उन दिनों इंटरनेट या फोन की सुविधा नहीं हुआ करती थी कि हम कनेक्टेड रहे, सिर्फ चिट्ठी लिखा करते थे कभी कभार। और जैसे मैंने बताया, 97 दिसंबर में मैं कमीशन हुआ था और साल भर के अंदर ही लड़ाई लग गई थी, तो वो जो एक साल बीता था वो कोर्सेज यंग ऑफिसर्स को फिर कमांडो कोर्स करने में बीत गया था। और सिर्फ 2 महीने की छुट्टी लेने के बाद जब मैं वापस पहुंचा, तो तब तक मेरी

0: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है पर्सन बिहाइंड द स्टोरी श्रृंखला के अंतर्गत विशेष कार्यक्रम। करगिल विजय दिवस के अवसर पर आज सुनते हैं करगिल युद्ध में अपने शौर्य का प्रदर्शन करने वाले पूर्व सैनिक और भारत के पहले ब्लेड रनर मेजर डीपी सिंह के साथ खास बातचीत। इस संवाद का संचालन कर रहे हैं आनंद श्रीवास्तव।
1: नमस्कार। एक ऐसे योद्धा की कहानी हम आज आपको बताने जा रहे हैं जिनके जीवन में 15 जुलाई 1999 का दिन पुनर्जन्म दिवस या अमृत दिवस के रूप में आता है। करगिल की दुर्गम और बर्फीली चोटियों पर जब मौत मोर्टार बनकर गिरी, शरीर पर दर्जनों चोटें लगी, लेकिन उसके बावजूद हौसला नहीं टूटा। लगभग मुर्दा घर से वापस लौटकर भारत के पहले ब्लेड रनर बने, करगिल और लद्दाख जैसे दुर्गम इलाकों में मैराथन दौड़ी, कई पदक जीते और आसमान से छलांग लगाकर पहले सोलो स्काई डाइवर होने का गौरव भी हासिल किया।

0: पलटन ऑलरेडी लाइन ऑफ कंट्रोल पर डिप्लॉय हो चुकी थी। तो आजकल की परिस्थितियों के हिसाब से कि आप हमेशा कनेक्टेड हो और पता चल रहा है कि परिवार वाला क्या सोच रहा है, भाई बहन क्या सोच रहे हैं, तो ये वो उस समय सुविधा उपलब्ध नहीं थी, तो हमें मालूम नहीं था कि कौन क्या सोच रहा है। और हमें खुद भी सिर्फ रेडियो से पता चलता था कि लड़ाई लग रही है, या टीवी भी नहीं होते थे, और क्योंकि हम दुर्गम क्षेत्रों में लाइन ऑफ कंट्रोल पर डिप्लॉयड थे तो वहां पे समाचार पत्र भी जो 3-4 दिन के बाद आया करता था, जैसे राशन आता था 3-4 दिन के बाद। तो ये जीवन उस प्रकार का था जो आज आप शायद यंगस्टर खासकर इमेजिन नहीं कर सकते, लेकिन उसके अलग मजे थे। और हम जो थे वो यंगस्टर थे बिल्कुल ही उन दिनों, 24 साल की मेरी उम्र थी और युद्ध शुरू हो चुका था, तो जुनून था कि अब कुछ करके दिखाने का वक्त आ गया है, हम तो तैयार थे सबके सब।
1: मेजर साहब, आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि जहां पर आपको डिप्लॉय किया गया, कंडीशंस बहुत अच्छी नहीं थी, -20 डिग्री का तापमान, रणनीतिक चुनौतियां थीं, और आपको अपने बटालियन के साथ मुंहतोड़ जवाब देना था। थोड़े आकाशवाणी के श्रोताओं के लिए विस्तार से आप वो ग्राउंड बैटल सिचुएशन को डिस्क्राइब कर सकें कि वहां की क्या स्थिति थी, आप लोग जब वहां पहुंचे तो कैसे बंकर बने हुए थे, या आप लोगों ने क्या व्यवस्था की कि दुश्मनों को बिल्कुल नेस्तनाबूद कर देंगे?
0: जो क्षेत्र बुरी तरीके से युद्ध में था वो था कारगिल द्रास मशको। उस क्षेत्र में आके उन्होंने अपने सैनिकों को बिठाया हुआ था सर्दियों में, वो बहुत दुर्गम क्षेत्र था। उनकी तरफ से जो चढ़ाई थी वो चढ़ाई आसान थी, तो सर्दियों के दिनों में जब हम वो पोस्ट छोड़ देते थे अक्सर, उन दिनों में वो आराम से आके धीरे धीरे वहां पे उन्होंने अपना राशन पानी जमा करके बैठ चुके थे। हमारी तरफ से जो चढ़ाई थी वो बड़ी दुर्गम थी, लेकिन मैं इखनूर वाले इलाके में पोस्टेड था, वो भी लाइन ऑफ कंट्रोल थी, और वहां पर जो दुर्गम क्षेत्र था वो था पानी और पहाड़ के मिलाप के कारण, नदी के बीच में हमारा पोस्ट थी। और जैसे आजकल आपने देखा यही वाला टाइम था, तो बारिशों के दिनों में नदी नाले सब भर जाते हैं, बाढ़ तक की सिचुएशन आ जाती है, तो हमारी पोस्ट भी जो थी वो काफी इस तरीके से कट ऑफ हो रखी थी, पीछे से सप्लाई बड़ा मुश्किल से मिलता था, लेकिन फिर भी सामने जो दुश्मन था वो कोई 80 मीटर पे पोस्ट पे बैठा था, कोई 100 मीटर की पोस्ट पे बैठा था, तो फायरिंग और इन्फिल्ट्रेशन तो चलती रहती थी। तो दोनों क्षेत्रों का मिलाप नहीं कर सकते, उस क्षेत्र में हैंड टू हैंड बैटल बहुत ज्यादा हुई है, क्योंकि कबायलियों के साथ, टेररिस्ट के साथ, उनके जो रेगुलर फौजी थे वो भी घुसे थे। हमारे वाले क्षेत्र में रेगुलर फौजी ज्यादा थे, टेररिस्ट कभी कभार इन्फिल्ट्रेट करते थे, लेकिन दुर्गम था जरूर, क्योंकि सरकंडों के बीच में से हमारे वाले क्षेत्र में घुसना बड़ा आसान था। और खासकर हमारे साथ साथ जो सीमा से लगते गांव थे और जो सिविलियन थे उनकी उनका जीना बड़ा आराम हो रखा था, क्योंकि सबके घरों पे लगातार फायरिंग की दुर्घटनाएं होती रहती थी। और उन दिनों में भी मैंने देखा कि सिविलियन जो गांव छोड़ के बाकी पीछे चले गए थे, जम्मू की तरफ आ चुके थे, तो जीवन जो था उस सबका क्षतिग्रस्त था, सबका हिला हुआ था, भले ही वो सैनिक हो भले वो सिविलियन हो, लेकिन हम डटे हुए थे क्योंकि मातृभूमि की रक्षा करने के लिए चाहे जैसी मर्जी सिचुएशन हो, यही सिखलाई फौज ने हमें दी है, उसी सिखलाई पे हम चल रहे थे।
1: मेजर साहब, जब जैसा कि आप बता रहे हैं कि जो आपको दिशा निर्देश दिए गए थे उसी स्थिति से चल रहे थे, 15 जुलाई 1999 का जिक्र बरबस ही आपके साथ बातचीत में आएगा, और उसकी सुबह कैसे हुई थी, हमारे श्रोता जानना चाहते हैं कि वो 1.5 मीटर दूर जब मोर्टार गिरा, उस समय आपके जहन में पहला रिएक्शन क्या आया था?
0: मेरी जो पोस्ट थी उसमें मेरे साथ एक जेसू साहब और 29 जवान डिप्लॉयड थे, और हमारी पोस्ट से तकरीबन 80 मीटर दूर जो थी वो दुश्मन की पोस्ट थी। तो क्योंकि हमारी लगातार फायरिंग होती रहती थी, और मैं क्योंकि यंगस्टर था और हम भी तैयार रहते थे, तो कुछ ना कुछ ऐसा करते रहते जिसके कारण जो हमारा पड़ोसी है वो परेशान रहता था। तो उस परेशानी को ध्यान में रखते हुए उसने 15 जुलाई से 2 दिन पहले एकदम फायरिंग बंद कर दी। तो शुरू में तो मुझे लगा 13 तारीख को कि यार फायरिंग बंद हुई है, चलो थोड़ा सा आराम मिलेगा हमारे सैनिकों को भी, लेकिन जब वो लगातार बंद रही 13 की पूरा दिन और 14 को भी मैंने देखा बंद हो रही, तो चिंतित हुआ मैं। और इसका जैसा मुझे डर था वही हुआ कि वो लल बिफोर द स्टॉर्म था, बिकॉज बाद में पता चला शायद वो मेरे से परेशान होकर मेरी पोस्ट की ही रेकी कर रहे थे 13-14 को, मेरे उठने पर बैठने पर नजर रख रहे थे कि क्या करता है सारा दिन, कहाँ कहाँ जाता है। 15 जुलाई को जब दिन शुरू हुआ, तो दिन शुरू हुआ शुरुआत ही दिन की गोले से हुई, दिन के पौ फटने से पहले गोला फट चुका था, और मुझे पता चला वो गोला पीछे जाके गिरेगा, क्योंकि उस जो गोला नजदीक गिरता है उसकी आवाज नहीं आती, लेकिन जो गोला ऊपर से निकल जाता

0: जाता है, उस आप युद्ध क्षेत्र में पहचान जाते हो कि ये पीछे गिरेगा, आगे गिरेगा, कहाँ गिरेगा। तो पहला गोला तो बहुत पीछे गिरा, दूसरा गोला इससे पहले कि कुछ रिएक्शन होते हैं उनका दूसरा गोला आ चुका था और उसकी आवाज नहीं आई। वो मेरे बगल में गिरा 1.5 मीटर दूर। 1.5 मीटर दूर जो था वो किलिंग जोन था उस गोले का, क्योंकि सिखलाई के हिसाब से 8 मीटर का दायरा किलिंग जोन होता है। तो उन्होंने तो पूरी अपनी तरीके से प्रिपरेशन के साथ मुझे मारने का पूरा हिसाब किताब फिट किया हुआ था। तो मारने की तो पूरी कोशिश करी, लहूलुहान किया भी, गंभीर भी हुआ मैं बहुत बुरी तरीके से। फिर मेरे सिपाहियों ने उठा के अपनी जान पे खेल के जब मुझे पीछे पहुंचाया 7 डोगरा के सिपाहियों ने, तो रास्ते में खून के साथ साथ हार्ट अटैक भी हुआ, लेकिन फिर भी हम बच गए। बचना था क्योंकि बहुत सारे कीर्तिमान ऐसे भगवान ने शायद मेरी जिंदगी में लिखे हुए थे जो उसके बाद करने जरूरी थे। तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि युद्ध क्षेत्र में घायल होना मेरा बहुत जरूरी था, क्योंकि उसके बाद की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर पे शायद भगवान ने ऑलरेडी मेरी जिंदगी की स्क्रिप्ट में लिख के भेजी थी, उसके लिए टांग कटना, एक बार मृत घोषित करना, लहू लुहान होना बहुत जरूरी था। क्योंकि वहां से जब फिर कहानी शुरू हुई तो हमने उन दुश्मनों को फेस किया जो सोच से घायल थे। तो वो जो युद्ध लड़ा उसके बाद आज तक जो लड़ रहा हूँ, उसमें जो झंडे गाड़ने को मिले, उसमें जो तिरंगा लहराने को मिला, उसमें सेना की जो सिखलाई है वो बहुत काम आई, आज भी आ रही है।
1: इस बातचीत को आगे बढ़ाएं मेजर साहब, बीच की एक छोटी सी कहानी और भी है। जब आप घायल हुए और उसके बाद आपके जो साथी सैनिक थे आपको रेस्क्यू करके अस्पताल की तरफ लेकर जा रहे थे, बगल में एक नदी भी बहती थी और आपके जो साथी थे उसमें एक को तैरना भी नहीं आता था, लेकिन फिर भी उन्होंने रेस्क्यू ऑपरेशन में आपका साथ दिया, थोड़ा उसके बारे में भी बताएं।
0: बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। और मैं शायद ना सिर्फ उन 4 सैनिकों का, 7 डोगरा पलटन का, और उसके बाद अनगिनत फौजी और सिविलियन जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तरीके से सेना के अस्पताल से जुड़े हुए थे, उनका हमेशा तहे दिल से शुक्रिया अदा करूं भी अगर सारी उम्र, तब भी वो कम रहेगा। क्योंकि सैनिकों में वो 4 जो मेरे स्ट्रेचर को उठा के ला रहे थे, एक जो था वो नॉन स्विमर था, उसको मतलब तैरना अच्छे तरीके से नहीं आता था, लेकिन अपनी जान पे खेलते हुए उसने फिर भी अपनी सेना की सिखलाई को सर्वोपरि रखते हुए कि अपने सिपाही को, साथी को, भले ही मैं उनका ऑफिसर था लेकिन एक तरीके से मैं उनका साथी था, उसको युद्ध क्षेत्र से निकालना बहुत जरूरी है, उसका हमेशा साथ अंतिम पल तक देते हैं। तो अपने प्राणों पे खेलते हुए उसने मुझे वहां से बचाया। रास्ते में वो स्लिप भी हुआ लेकिन फिर भी उसने मेरे स्ट्रेचर को नहीं छोड़ा। और इसी प्रकार से जब मैं एम्बुलेंस में आया तो डॉक्टर साहिबान जो थे हमारे आरएमओ, उन्होंने फर्स्ट एड देने के बाद 2.5 घंटे जो मुझे लगे हॉस्पिटल तक पहुंचने में, जो बातें मुझसे करने की कोशिश करी ताकि वो मुझे जगा के रखे, वो आज तो मुझको वो बड़ी अच्छी लगती है जब मैं उसके बारे में सोचता हूँ, लेकिन उस समय मुझे वो इरिटेट कर रही थी कि मेरी तो हालत बहुत खराब है और ये पूछ रहा है कि भैया तुम्हारा पता क्या है, तुम्हारा पोस्टल एड्रेस क्या है, तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है। क्योंकि वो अपनी ड्यूटी निभा रहे थे, वो मुझे बेहोश होने से रोकने की कोशिश कर रहे थे। वो बात और है कि उसके बावजूद भी मैं कार्डिक अरेस्ट हुआ, बेहोश हुआ, और जब पहुंचा तो एक बार कि भैया इसकी फोटो पे तो माला टंगे के ले जाओ इसे बोला गया, लेकिन हम भारतीय सेना के सिपाही हैं, मरने वालों में से नहीं थे, बचे, आज भी जिंदा है।
1: 15 जुलाई 1999 की कहानी आप बयां कर रहे हैं। आप अस्पताल पहुंचते हैं, अस्पताल में डॉक्टर आपको मृत घोषित कर देते हैं, लेकिन उसके बाद फरिश्ते के रूप में आते हैं कर्नल रजिंदर सिंह जो डॉक्टर थे। वो कैसे आपको मिले? क्या उस समय आप होश में थे मेजर साहब? क्या जब वो विजिट कर रहे थे और वो आपके स्ट्रेचर तक आए तब आपको कुछ अंदाज़ा था?
0: मुझे कुछ नहीं मालूम क्योंकि मैं तो बेहोश था। सर्जन ने तो बोल दिया था कि डेड बॉडी है, ले जाइए मॉर्चरी में, लेकिन वो एमएच में, एमएच अखनूर में उस समय उस दिन थे, ये बाद में मुझे पता चला वो थे, तभी उन्होंने इंटरवीन किया, मेरी सिचुएशन को समझा और मुझे कहाँ से वो कैसे बचा के ले आए वापस, क्योंकि वो स्पेशलाइज थे, एनेस्थीसियोलॉजिस्ट थे, उनको बेहोश करना और होश में लाना आता था। तो उन्होंने मुझे बचाया और बचा के तीसरे दिन जब मुझे होश आया, ये जो पाँव कटा है वो गैंग्रीन के कारण बाद में कटा है, उस समय नहीं कटा था, क्योंकि चोटें बहुत हैं, 73 छर्रे अगर ऑलरेडी मौजूद हैं उससे ज्यादा मेरे को काटते हुए चले गए तो आप इमेजिन कर सकते हो कि कितनी चोटें लगी होंगी। तो बच तो गया था। वो कर्नल राजेंद्र सिंह उसके बाद मेरी जिंदगी में कभी नहीं आए बहुत सालों तक। 2019 में फेसबुक के कारण मैं

0: के साथ कनेक्ट हुआ। तब तक मेरी जो किताब थी ग्रिट द मेजर स्टोरी वो छप चुकी थी। मैंने वो किताब उनको उन तक पहुंचाई। वो कैलिफोर्निया में एज ए वेटरन एज ए रिटायर्ड पर्सन अपनी जिंदगी बिता रहे हैं। और फिर जब 2023 में मैं यूएस में हवाई जहाज उड़ाना सीखने के लिए जाने का मुझे मौका मिला तो स्पेशली मैं उनसे जाके वहां पे मिला और जाके मैंने उनके पांव छुए, गले मिला। और तब मैं इतने सालों के बाद इन पर्सन उनको थैंक यू कर पाया मुझे बचाने के लिए। ये है एक सैनिक का सैनिक से मिलाप।
1: अभी अभी आपने बातचीत के दौरान एक बात कही कि 70 से ज्यादा छर्रे आज भी आपके शरीर में मौजूद हैं। परेशान करते होंगे आज भी।
0: मेड इन पाकिस्तान वाले छर्रे अंदर अभी भी बम के टुकड़े पड़े हुए हैं। 73 ऐसे टुकड़े हैं। उसमें कुछ टुकड़े ऐसे हैं जो ऐसी जगहों पे फंसे हुए हैं जहां पे तंकरना आसान है। जैसे जो ज्वाइंट्स हैं, हिप ज्वाइंट हो गया, एल्बो ज्वाइंट हो गया, या चेस्ट हो गया, या दो तीन और ऐसे जगह हैं। और एक लिवर में भी है। डॉक्टर बोलते हैं कि लिवर में वो चुपचाप लेटा हुआ है किसी तरीके से, क्योंकि अगर वो मिलीमीटर से कम भी कहीं हिल गया और कोई अंदर से नस फट गई तो पता भी नहीं चलेगा कि थैंक यू कब हुआ। लेकिन वो तंग करने में काफी देर तक तो उन्होंने मेरे को तंग करते रहने के लिए, मतलब उनको उसमें सक्सेस मिलती रही। मगर वो सक्सेस मिली तब उन्हें बंद हुई जब मैंने उन वो तो तंग करने से नहीं हटे, लेकिन मैं तंग होने से हट गया। मैंने कहा ठीक है भैया, जो मैंने लेसन 8वीं में सीखा था कि आप अपनी परिस्थितियों से नहीं भाग सकते, तो उन्हीं परिस्थितियों में रह के आपको अव्वल उठना पड़ेगा मेहनत करके, अपने अंदर उन्हीं शक्ति को बढ़ा के। वो लेसन फिर से यहाँ काम आया कि अगर आप छर्रों को निकाल नहीं सकते तो उनको अपना लीजिए, उस दर्द को अपना लीजिए। वो दर्द जिस दिन आप अपना लोगे तो दर्द अपने आप कम हो जाएगा, और रोने के बजाय उस दर्द पे हंसना शुरू कर दीजिए। उस दिन के बाद आज तक वो तंग तो करने की कोशिश करते हैं, लेकिन मैं तंग होता नहीं हूं।
1: तंग तो आप उस दिन भी नहीं हुए जब डॉक्टर ने कहा था कि आपका पैर काटना पड़ेगा। 24-25 साल का एक युवा देश के लिए युद्ध लड़ रहा था, पूरा भविष्य सामने खड़ा था, और आपने एक सेकंड का भी समय नहीं लगाया जब डॉक्टर ने कहा कि गैंग्रीन के कारण आपका पैर काटना पड़ेगा। उस समय क्या चला था आपके जहन में? भविष्य नजर आ रहा था कि बहुत मुश्किल होने वाला है, या फिर उस समय कुछ चीजें ऐसी ट्रिगर कर रही थी कि नहीं, सब कुछ बेहतर कर सकता हूं?
0: ये बहुत अहम सवाल है और मैं कहूँगा कि ये एक बड़ा क्रिटिकल पॉइंट था मेरी जिंदगी का। क्योंकि जब डॉक्टर साहबान कर्नल अशोक, जो बाद में ब्रिगेडियर अशोक, आर्टिफिशियल लिम्ब सेंटर के कमांडेंट बनने के बाद रिटायर हुए हैं, वो मेरे बिस्तर के चारों तरफ पट्टी खोलने के बाद डिसीजन लेने की पूरी कोशिश कर रहे थे कि मैं इस बच्चे को कैसे बताऊं कि तुम्हारी टांग काट दी जाएगी। उनके बोलने से पहले ही मुझे ये पता चल गया था पट्टी खोलने के बाद टांग को देख के कि ये कटेगी। तो मेरे दिमाग में दो विचार आए थे, उन विचारों को मैं आपसे शेयर करता हूँ कि पहला जो विचार था उसकी ओनरशिप मैं नहीं लेता हूँ, क्योंकि वो बड़ा ही स्पिरिचुअल और बहुत ही एक तरीके का पॉयस विचार था। क्योंकि मेरे दिमाग में अचानक आया कि अब देखते हैं कि एम्पुटी की लाइफ, डिसेबल वाली लाइफ कैसे होती है। ये एक चैलेंज है, शायद एक दिन मैं इस जिंदगी में इस चैलेंज को इस प्रकार से निभा पाऊंगा कि ना सिर्फ मैं बल्कि लोग भी प्रेरित होंगे। और दूसरा जो विचार था वो विचार था कि मैंने अपनी जिंदगी से खुद को प्रॉमिस किया था कि मैं अपनी जिंदगी में कभी भी उसके क्वालिटी और स्टैंडर्ड से कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे जितनी मर्जी मेहनत करनी पड़े, लेकिन मैं जीऊंगा तो खुल के जीऊंगा। अब इस दूसरे विचार को तो मैं मानता हूं कि मेरा था, लेकिन पहला विचार, 24 साल का जो व्यक्ति इतना स्पिरिचुअल थॉट कैसे सोच सकता है, ये मुझे अभी भी हैरानी होती है। तो शायद भगवान की दी हुई सोच थी और उस सोच को भगवान ने एक्चुअल में रियलाइज भी कराया, वो पूरे तरीके से खरी उतरी भी, क्योंकि जो दूसरा विचार था उस विचार ने उस सोच को खरी उतरने में बड़ा हेल्प करी। हर मौके पे जहाँ पे मैं कुछ अचीव कर पाया हूँ डिसेबल होने के बाद, उसके पीछे वो मेरी प्रॉमिस थी मेरे साथ कि मैं अपनी क्वालिटी और स्टैंडर्ड, लाइफ की क्वालिटी और स्टैंडर्ड को कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। कॉम्प्रोमाइज ना करने का मतलब है कि आपको मेहनत करनी पड़ेगी, अपने आप को अंदरूनी तरीके से मजबूत बनाना पड़ेगा, अपने आज के लेवल से ऊपर उठना पड़ेगा, और ऊपर उठने के लिए आज के लेवल से अपने आप को अगर उठाना है तो मेहनत करनी पड़ेगी, खुद के कंफर्ट जोन को तोड़ना पड़ेगा। और भगवान की दया से बार बार वो कंफर्ट जोन मैंने तोड़ा है, चाहे वो नकली टांग से भागना हो, चाहे वो ब्लेड से भागना हो, चाहे वो हवाई जहाज उड़ाना हो, चाहे वो हवाई जहाज से कूदना हो, वो कंफर्ट जोन टूटा है, क्वालिटी और स्टैंडर्ड रखा है।
1: पॉडकास्ट के दूसरे हिस्से में चलते हैं।

0: साहब, जब आप एक साल से ज़्यादा समय तक अस्पताल में रहें, कई सर्जरियां हुई, उसके बाद घर वापस आए, जब व्यक्ति का शरीर थोड़ा सा प्रभावित हो जाता है, आपने एक टांग गंवा दी, आसपास के लोगों का क्या रिएक्शन रहा? आप देश के लिए लड़े।
1: तकरीबन 1 साल मैं हॉस्पिटल में रहा, और हॉस्पिटल में मैं अकेला नहीं था। हॉस्पिटल में मेरे जैसे 5 जने थे। किसी की टांग नहीं थी, किसी की आंख नहीं था, किसी का हाथ नहीं था, किसी की आंख और हाथ दोनों नहीं थे। लेकिन सब में जुनून था और सबके सब युद्ध क्षेत्र में घायल वाले थे। और उस जुनून ने, उस कमराडरी ने एक दूसरे का सहारा बन के कभी भी हमारे को ये नहीं फील होने दिया कि हम किसी चीज में कम हैं। इनफैक्ट हमने वो करके दिखाया जो शायद उस समय लोग सोच भी नहीं पाते। कभी हम एक ही टांग पे क्लब में नाचते हुए नजर आते थे, कभी एक ही टांग में हम सड़कों पे स्लिप होके गिर रहे हैं, या फिर भी उठ के चल पड़े हैं क्रच के साथ। तो जिंदगी खुल के जी रहे थे और खुद का देखभाल भी करने की पूरी कोशिश रख पा रहे। लेकिन जब दोबारा से जीवन में वापसी आई, जब दुनिया में वापसी आई और आम जीवन दोबारा शुरुआत करने का वक्त आया, तब हमें पता चला कि लोगों का जो नजरिया है वो डिसेबल की तरफ थोड़ा नकारात्मक है। और मेरे लिए खासकर वो एक चैलेंज था, क्योंकि मेरा जो पास था, मैं कमांडो ट्रेंड हाईली सुपरफिट टाइप का बंदा हुआ करता था। लेकिन रियलिटी ये थी कि मैं 4 कदम भी बगैर किसी सहारे के आज की डेट में चल नहीं पा रहा था। तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट था दिमाग में, इस कॉन्फ्लिक्ट के कारण इरिटेशन होती थी, इरिटेशन के कारण गुस्सा आता था, गुस्से के कारण लोगों को लगता था कि ये तो पागल हो गया है। लेटर ऑन आज भी मैं स्टेज पे जाता हूँ तो मेंटल हेल्थ और PTSD के बारे में जरूर बात करता हूँ, क्योंकि ये एक ऐसी समस्या है जिसके पता ना होने के कारण मुझे बहुत कुछ सफर करना पड़ा। इन माई केस मेरे को स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ थी जो बचपन में गुरुद्वारे जाने से जो मिली थी, उसके कारण मैं रिवाइव कर पाया और उसी के कारण मैं अचीव भी कर पाया चीज़ों को। तो वो मेंटल हेल्थ की जो सिचुएशन थी और जो वो इरिटेशन थी, जो अपना द्वंद्व था मेरा, मेरे पास की रियलिटी का और आज की रियलिटी का, उसको ओवरकम करने में जो स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ ने मेरा सहारा दिया, उस सहारे के साथ आगे बढ़ते बढ़ते और उन अनअचीवेबल अनथिंकेबल चीज़ों को, चाहे वो पहला व्यक्ति हो भारत का जिसने नकली टांग से मैराथन भागी, इसके बावजूद कि मैं जब पूरा कंप्लीट था तो मुझे लंबी दौड़ लगाने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं हुआ करती थी, उसके बावजूद ना टांग कटने के बाद 21 किलोमीटर भाग के आया। तो ये सब ये पता चलता है कि दिमागी सोच अगर आपकी सही है तो आप एक एबल इंसान हो।
0: जी
1: ये जो एग्जाम्पल फिर मेरे को सेना की सिखलाई और अपने हिस्ट्री की मजबूती, सिखिज्म की मजबूती के कारण जो मैं एग्जाम्पल ऑन ग्राउंड सेट कर पाया अपने एज ए डिसेबल सोल्जर होने के बावजूद अचीवमेंट्स के साथ, उस एग्जाम्पल ने लोगों के नजरिए में बदलाव लाया। और आज की डेट में जो मेरा ग्रुप है, NGO है, द चैलेंजिंग वन, जिसको 2011 में मैंने शुरू किया था, जिसमें तकरीबन आज की डेट में 3,500 एम्पुटीज कनेक्टेड है,
0: जी
1: उसमें उस नकारात्मक सोच से तोड़ के उन एम्पुटीज ने जीना सीखा, जीना सीखने के साथ साथ अचीवमेंट करनी सीखी। आज उनमें से बहुत सारे जो है कीर्तिमान स्थापित कर चुके हैं, ना सिर्फ खेलों में बल्कि एडवेंचर में। और एक नाम मैं खास कर लेना चाहूंगा, उस लड़की का आप लोग जानते भी होंगे, मानसी जोशी,
0: जी
1: जो कि वर्ल्ड पैरा बैडमिंटन चैंपियन रह चुकी हैं, जिन्होंने अर्जुन अवार्ड तक अचीव कर लिया है। तो ये विचारों का जो बदलाव आया, और जिसमें मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि भगवान ने मुझे चुना, उसमें उस पाकिस्तानी का बम फेंकने की रिक्वायरमेंट उतनी इंपॉर्टेंट थी जितनी बाकी चीजों की रिक्वायरमेंट इंपॉर्टेंट थी। ना वो बम फेंकता चोटिल होता, ना मेरी टांग कटती, ना ये हिस्ट्री लिखी जाती।
0: बहुत ज़्यादा समय नहीं है कार्यक्रम में, दो छोटे छोटे सवाल आपसे बहुत संक्षेप में समझना चाहेंगे। पहला कि मैराथन आपने दौड़ना शुरू कर दिया था, ब्लेड रनर, भारत का पहला ब्लेड रनर बनने की क्या कहानी थी, और फिर सोलो स्काई डाइविंग भी आपने शुरू की, बहुत संक्षेप में उसके बारे में भी थोड़ा बताइए।
1: 3 बार जब मैं नकली टांग से हाफ मैराथन भाग चुका था, तो जो एडजुटेंट जनरल हुआ करते थे उस समय, लेफ्टिनेंट जनरल मुकेश अग्रवाल, उनसे मुलाकात हुई तो उन्होंने मेरे को काफी शाबाशी दी और पूछा कि बताओ DP, तुम एक सेवानिवृत्त सिपाही हो, तुम्हारे को मैं और क्या कर सकता हूँ तुम्हारे लिए। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट करी कि सर अगर ब्लेड मिल जाए तो शायद भागना और नॉर्मल हो जाए।

0: तो मेरे को 2011 में एजी ने भारत का पहला ब्लेड इंपोर्ट करके 2011 में मेजर डीपी सिंह सेवानिवृत्त को दिया गया, और वहां से मेरे को ब्लेड ऑनर का नाम, फर्स्ट ब्लेड ऑनर ऑफ इंडिया का नाम मिला। उसके बाद 2018 में जनरल बिपिन रावत जब चीफ थे, तो 2018 को सेना ने एयर ऑफ डिसेबल्ड इन लाइन ऑफ ड्यूटी उस सोल्जर को डेडिकेट किया था। और जनरल बिपिन रावत मेरा एग्जाम्पल जगह जगह पे जाके दिया करते थे अबाउट एबिलिटी ऑफ द सोल्जर, जो कि 100% डिसेबल है उसके बावजूद उसकी एबिलिटी। तो उनकी उनकी ब्लेसिंग्स के साथ मैंने, क्योंकि वो चाहते थे कि ये जो साल है इसको हम किसी हाई नोट पे कंप्लीट करें, तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट करी कि मेरे को स्काई डाइविंग करने की अनुमति दी जाए। तो उनकी अनुमति के साथ फिर जो आर्मी एडवेंचर विंग है उन्होंने मुझे 1 महीने की सिखलाई करी दी 2019 में मार्च नासिक में, और 29 मार्च को 2019 को पहला स्काई डाइवर एशिया का डिसेबल्ड होने का मुझे गर्व प्राप्त हुआ।
1: अंत में आपसे ये जानना चाहेंगे, देश के करोड़ों युवाओं के नाम आपका क्या संदेश होगा जो कई बार हताश और निराश होकर बैठ जाते हैं? उन्हें लगता है कि भविष्य काफी अंधकारमय है, वो अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएंगे। और उन युवाओं को भी आप क्या कहना चाहेंगे जो देश की सेवा के लिए सेना में आने के बारे में सोच रहे हैं?
0: देखिए, मैं भी युवा था और मैं आज भी अपने आप को युवा समझता हूँ, समझने में तो कोई गलत नहीं है, चाहे भले बूढ़े हो गए हो। तो मेरा ये कहना है कि बैठना या रुकना में कोई दिक्कत नहीं है, थकते सभी हैं, लेकिन उसके बाद फिर उठो और चलते रहो। चलना तब खत्म करना है जब तुम्हारे को तुम्हारा एम, तुम्हारा मकसद मिल जाए, उससे पहले नहीं। उससे पहले सिर्फ ब्रेक ले सकते हो।
1: कहते हैं मुश्किलों में मुस्कुराना और हौसले को आजमाना चाहिए। जब भी आपके जीवन में ऐसा लगे कि आगे बढ़ने के सारे रास्ते बंद हो गए हैं, संभावनाओं को संभव नहीं बना पा रहे हैं आप, तो हमारे इस पॉडकास्ट को जरूर देखिएगा, क्योंकि मेजर डीपी सिंह की कहानी अपने आप में सिर्फ एक कहानी नहीं है, वो एक संस्थान बन चुके हैं और वो बताने के लिए काफी हैं कि कितनी विकट परिस्थितियां जीवन में क्यों ना आ जाए, लेकिन आगे बढ़ने की चाह हमेशा बनी रहती है। जरूरत होती है कदम बढ़ाने की, जरूरत होती है अपने लक्ष्य को और बड़ा करने की। थोड़ा सा हौसला रखिए, दृढ़ इच्छा शक्ति बनाए रखिए, आगे बढ़ते रहिए और एक न एक दिन आप अपने लक्ष्य को जरूर हासिल कर लेंगे। पर्सन बिहाइंड द स्टोरी पॉडकास्ट में हमसे जुड़ने के लिए और अपने विचार, अपने जीवन के बारे में, करगिल युद्ध के बारे में आकाशवाणी के श्रोताओं के साथ विस्तार से बात करने के लिए मेजर डीपी सिंह जी, आपका बहुत बहुत आभार।
0: धन्यवाद। जय हिंद। सबको राम राम।
2: अभी आप सुन रहे थे करगिल विजय दिवस के अवसर पर पर्सन बिहाइंड द स्टोरी श्रृंखला के अंतर्गत करगिल युद्ध में अपने शौर्य का प्रदर्शन करने वाले पूर्व सैनिक और भारत के पहले ब्लेड रनर मेजर डीपी सिंह के साथ खास बातचीत। संवाद का संचालन कर रहे थे आनंद श्रीवास्तव। इस कार्यक्रम को आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल के माध्यम से भेज सकते हैं। पता है podcast.airnews@gmail.com।
3: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे पर्सन बिहाइंड द स्टोरी कार्यक्रम हमारे दिल्ली केंद्र से। हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। अब सुनिए प्रादेशिक समाचार हमारे जयपुर अजमेर केंद्र से।
4: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं अब्दुल हनीफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत रक्षा निर्यात, राजनीतिक सहयोग और मित्र देशों के मामले में लगातार नई ऊंचाइयों को छू रहा है। आज आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में करगिल विजय दिवस के वीर सैनिकों को याद करते हुए उन्होंने कहा कि यह दिन देशवासियों को अपने बहादुर सैनिकों के असाधारण शौर्य की याद दिलाता है और हर भारतीय को गर्व से भर देता है। उन्होंने मातृभूमि की रक्षा में अपने प्राणों की आहुति देने वाले सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए देशवासियों से अपील की कि वे एक सुरक्षित, सक्षम और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण का संकल्प लें।
5: आज कारगिल विजय दिवस है। ये दिन

0: हमें गर्व से भर देता है। ये दिन हमें अपने वीर जवानों के अद्भुत साहस की याद दिलाता है। कारगिल की ऊंची ऊंची चोटियां, कठिन मौसम, दुश्मन की चुनौती, हर परिस्थिति हमारे सैनिकों के सामने थी, लेकिन उनका हौसला हर चुनौती से बड़ा था। उन्होंने मां भारती की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व अर्पित कर दिया। आज कारगिल विजय दिवस पर मैं सभी वीर शहीदों और वीर सैनिकों को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं।
1: श्री मोदी ने वन साइड वन नेशन वन सैल्यूट के संदेश के साथ इस वर्ष हुए शौर्य विजय यात्रा का जिक्र करते हुए कहा कि यह यात्रा हमें याद दिलाती है कि देश के लिए किए गए बलिदान को कभी भुलाया नहीं जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत अपनी तकनीकी क्षमता लगातार बढ़ा रहा है। उन्होंने हाल ही में भारतीय नौसेना में शामिल स्वदेशी युद्धपोत महेंद्र गिरी की चर्चा की। उन्होंने इसे आत्मनिर्भर भारत की बढ़ती शक्ति का प्रतीक बताया। श्री मोदी ने लंबी दूरी के पिनाका रॉकेट और कुश मिसाइल के सफल परीक्षण पर प्रसन्नता व्यक्त की। साथ ही पिछले रविवार को विक्रम 1 के सफल प्रक्षेपण को सभी देशवासियों के लिए एक गौरवशाली पल बताया। कैच द रेन अभियान के बारे में प्रधानमंत्री ने कहा कि इस अभियान से वर्षा जल संचयन, भू जल पुनर्भरण और जलाशयों तथा बागानों के जीर्णोद्धार को नई गति मिल रही है। श्री मोदी ने देशवासियों से आसपास की तालाब, कुएं या बावड़ी की जिम्मेदारी लेने की अपील की ताकि एक एक बूंद जल को बचाया जा सके।
0: 4 जुलाई से देश भर में एक विशेष अभियान भी चलाया जा रहा है। इसके तहत बारिश के पानी के संचयन, ग्राउंड वाटर रिचार्ज, पुराने जल स्रोतों के पुनर्जीवन और वृक्षारोपण को नई गति दी जा रही है। मुझे बहुत खुशी है कि गांव हो या शहर, पंचायतें हो या सामाजिक संस्थाएं, हर जगह लोगों ने बढ़ चढ़ कर भागीदारी की है। कहीं पुराने तालाबों से घास निकाली जा रही है, कहीं कुआं और बावड़ियों को फिर से जीवन दिया जा रहा है, बंद पड़े बोरवेल अब ग्राउंड वाटर रिचार्ज का माध्यम बन रहे हैं।
1: मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने गणेश उत्सव के दौरान सभी से पीओपी से बनी मूर्तियों के बजाय मिट्टी से बनी भगवान गणेश की मूर्तियों की पूजा करने की भी अपील की। साथ ही 7 अगस्त को मनाए जाने वाले राष्ट्रीय हथकरघा दिवस को देश के बुनकरों के कौशल और रचनात्मकता के सम्मान का प्रतीक बताते हुए लोगों से हथकरघा शिल्प को प्रोत्साहित करने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री ने खेल और खिलाड़ियों की चर्चा करते हुए कहा कि हाल के समय में भारत के युवाओं ने खेलों में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की है। पीवी सिंधु बैडमिंटन में जापान ओपन का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बनी है। वहीं भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने लंदन के लॉर्ड्स मैदान पर अपना पहला टेस्ट मैच जीतकर इतिहास रच दिया है। कल 27 जुलाई को भारत रत्न डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की पुण्यतिथि है। श्री मोदी ने कहा कि डॉक्टर कलाम के व्यक्तित्व में शिक्षक की भूमिका उनके दिल के सबसे करीब थी। उन्होंने कहा कि इस सप्ताह गुरु पूर्णिमा भी मनाई जाएगी। यह दिन सभी मार्गदर्शकों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का अवसर है। अपने संबोधन के समापन में श्री मोदी ने स्वतंत्रता दिवस पर वीर सैनिकों और शहीदों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी देशवासियों से हर घर तिरंगा अभियान को पूरे उत्साह के साथ आगे बढ़ाने की अपील की। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज जयपुर के सांगानेर में आदिवासी महिलाओं के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात के 136वें एपिसोड को सुना। मुख्यमंत्री ने कहा कि मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री आमजन की प्रेरक कहानियों के माध्यम से समाज को सकारात्मक दिशा देने और जनभागीदारी की भावना को मजबूत बनाने का काम कर रहे हैं। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
2: हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम महिला जगत।

जिनके सपनों में जान होती है, मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों में उड़ान होती है। आकाशवाणी के महिला जगत कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपकी सखी सुनीता शर्मा। लहू देकर तिरंगे की बुलंदी को बनाए रखा, लहू देकर तिरंगे की बुलंदी को बनाए रखा, तबाही की मुहाने पर भी अपना सर उठाए रखा। सलाम है उस फौज को जिसने वतन की आबरू के लिए बर्फ़ की वादियों में भी इनकलाब का शोला जलाए रखा। बहनों, आज 26 जुलाई है, देश के इतिहास का वो गौरवशाली दिन जिसे हम भारतवासी कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाते हैं। आज से ठीक 27 वर्ष पहले साल 1999 में आज ही के दिन भारतीय सेना के जाबाज शेरों ने दुर्गम पहाड़ियों पर रचे हुए दुश्मन के हर घिनौने षड्यंत्र को नेस्तानूत कर दिया था। आज का दिन हमारी सेना के उसी अदम्य साहस, शौर्य और परम पराक्रम को नमन करने का दिन है। बहनों, कारगिल की वो जंग दुनिया की सबसे कठिन और ऊंचाइयों पर लड़ी गई लड़ाइयों में से एक थी। 18,000 फीट से भी ज़्यादा की ऊंचाई, शून्य से कई डिग्री नीचे का तापमान और सामने खड़ी चट्टानें। दुश्मन चोटियों पर छिपा बैठा था और सामरिक रूप से मजबूत स्थिति में था, लेकिन हमारे जवानों के हौसलों के सामने हिमालय की भी ऊंची चोटियां भी बोनी साबित हुई। आज कारगिल विजय दिवस देश के उन महान सपूतों को याद करने का है जिन्होंने हिमालय की दुर्गम चोटियों पर तिरंगे की शान के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। तो आइए बहनों, हम बात करते हैं कारगिल के वीर योद्धाओं की शौर्य गाथा पर। बहनों, साल 1999 का वह मई का महीना था जब लद्दाख के कारगिल ट्रास और बटाली की बर्फीली चोटियों पर दुश्मनों ने धोखे से कब्जा कर लिया था। बहनों, भारतीय सेना के सामने चुनौती सिर्फ दुश्मन नहीं थे, बल्कि 18,000 फीट की वो सीधी खड़ी चटाई और शून्य से भी नीचे का जमा देने वाला तापमान था। लेकिन जब बात माँ भारती के सम्मान की हो तो भारतीय सैनिकों का हौसला हिमालय से भी ऊंचा हो जाता है और सेना ने शुरू किया ऑपरेशन विजय। तितवाल, लाटोलिंग, हाइटर हिल और पॉइंट 4875, ये सिर्फ ना नक्शे पर दर्ज नाम नहीं है, बल्कि ये वो मोर्चे हैं जहां हमारे वीरों ने अपने खून से जीत की नई इबादत लिखी थी। कैप्टन विक्रम बन्ना, जिन्होंने कहा था ये दिल मांगे मोर, कैप्टन मनोज कुमार पांडे, ग्रेडियनियर योगेंद्र सिंह यादव, राइफलमैन संजय कुमार और इनके जैसे सैकड़ों जाबाज योद्धाओं ने अदम्य साहस का परिचय दिया था। तो इसी के साथ बहनों, हम और भी बात करेंगे कारगिल विजय की, पहले सुनते हैं एक प्यारा सा गीत।

जहाँ पैर रखने की जगह नहीं थी, वहाँ उन्होंने तिरंगा फहराया। जहाँ पैर रखने की जगह नहीं थी, वहाँ उन्होंने तिरंगा फहराया। मौत को गले लगाया, पर माँ का मस्तक झुकने ना पाया। नमन है उन वीरों को जिन्होंने अपना आज गंवा दिया। नमन है उन वीरों को जिन्होंने अपना आज गंवा दिया, ताकि सुरक्षित रह सके हमारा और आपका कल सवाया। बहनों, कारगिल विजय दिवस सिर्फ एक सैन्य जीत का जश्न नहीं है, यह देश के प्रति अटूट निष्ठा, अनुशासन और सामूहिक संकल्प का भी प्रतीक है। आज जब हम अपने घरों में सुरक्षित हैं, तो सिर्फ इसलिए क्योंकि सरहद पर कोई अपनी नींद कुर्बान कर रहा है। कारगिल के शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि हम राष्ट्र निर्माण में अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान दें। यह दिवस हमें याद दिलाता है कि हमारी सीमाएं सुरक्षित।

निश्चित है, क्योंकि कोई अपनी जवानी, अपने सपने और अपना सर्वस्व देश के नाम पर बर्फीली वादियों में पहरा दे रहा है। आज आकाशवाणी परिवार उन सभी शहीद जाबाजों को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता है और उनके परिवारों को शत शत नमन करता है जिन्होंने देश को ऐसे वीर सपूत दिए। बहनों, आज इस गौरवशाली अवसर पर हम सब मिलकर यह संकल्प ले कि हम अपने देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता को बनाए रखने में अपना योगदान देंगे। और जाते जाते इन पंक्तियों के साथ आपको यही कहेंगे, वतन की रेत हाथ में लेकर कसम यही खाएं, वतन की रेत हाथ में लेकर कसम यही खाएं, मिट जाएंगी मगर आँच इस आँच पर न आने पाएं। वहीं वहीं बूंद पर मेरे शहीदों की लहू गी, जहाँ बही है बूंद भी मेरे शहीदों की लहू की, उस पावन मिट्टी का मान हम कभी न जाने देंगे। जय हिंद, जय भारत।

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके।

0: चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2,00,000 करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाए। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: खुद पर रख विश्वास, हर मंजिल होगी तेरे पास। आत्मविश्वास की सफलता की पहली कुंजी है। बिल्कुल बहनों, आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो हमारी अलमारी के सबसे खूबसूरत गहने से भी ज़्यादा कीमती है। एक ऐसा गहना जो अगर हमारे पास हो तो इस दुनिया का हर मुकाम हासिल कर सकते हैं। जी हाँ बहनों, मैं बात कर रही हूँ आत्मविश्वास की, यानी कि सेल्फ कॉन्फिडेंस की। बहनों, हम अक्सर सोचते हैं कि आत्मविश्वास का मतलब है बिना डरे सबके सामने खड़े हो जाना या फराटेदार अंग्रेजी बोलना, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। आत्मविश्वास का सीधा और सच्चा मतलब है खुद पर भरोसा होना और यह जानना कि हाँ, मैं यह काम कर सकती हूँ, अगर कोई गलती हुई तो मैं उससे सीख कर आगे बढ़ सकती हूँ। बहनों, जब एक माँ पहली बार अपने बच्चे को संभालती है, जब एक गृहिणी रसोई की बजट से घर चलाती है, या जब कोई बहन पहली बार नौकरी के लिए कदम बाहर निकालती है, तो उस वक्त जो ताकत उसके भीतर होती है वही आत्मविश्वास होता है। पता है बहनों, आत्मविश्वास की कमी क्यों होती है? कई बार समाज के दायरे, बचपन की कोई कड़वी बात या फिर खुद को दूसरों से कम आंकने की जो आदत है, हमारे इस भरोसे को या आत्मविश्वास को डगमगा देती है और हम सोचने लगते हैं कि लोग क्या कहेंगे, या हम अगर मैं हार गई तो क्या होगा। लेकिन याद रखिए, कमियां सब में होती हैं, पर उन कमियों को अपनी कमजोरी बना लेना सही नहीं है। तो आत्मविश्वास को हम कैसे बढ़ाएं? तो चलिए हम मिलकर आज बात करते हैं उन छोटे छोटे कदमों की, जिन्हें हम अपनाकर अपने आत्मविश्वास को आसमान की ऊंचाइयों तक ले जा सकती है। तो सबसे पहले खुद की तुलना दूसरों से करना बंद करें। बहनों, हर महिला अपने आप में अनूठी होती है। किसी की ज़िंदगी बाहर से तो कितनी भी चमक दमक वाली क्यों ना दिखे, पर हर इंसान का एक अपना संघर्ष होता है। इसीलिए अपनी तुलना किसी और से ना करके खुद को कम ना समझे। आप जैसी भी है बेहतरीन है। और बहनों, जरूरी नहीं कि सफलता हमेशा कोई बहुत बड़ी डिग्री या बड़ी नौकरी ही हो। आप अपने कोई नई डिश अच्छी बनाई हो, बच्चों की पढ़ाई अच्छे से करवाई हो, या कोई मुश्किल काम समय पर पूरा किया हो, यह सब भी आपकी जीत है। और इन छोटी छोटी जीत पर खुद की पीठ जरूर थपथपाएं।

बहनों, हम चर्चा कर रहे थे कि आत्मविश्वास कैसे बढ़ाएं। तो अपने आप को किसी से कम ना समझें और अपनी तुलना किसी से ना करें, क्योंकि आप जैसी भी हैं बहुत बेहतरीन हैं। गलतियों से डरे नहीं, उन्हें अपना गुरु बनाएं। बहनों, जो इंसान काम करके उससे गलती होना तो स्वाभाविक ही है, क्योंकि काम करेगा तो कुछ गलतियाँ हो भी जाती है। तो गलती होने पर खुद को कोसने की बजाय यह सोचें कि इस बार मैंने क्या सीखा। याद रखिए, गिरते वही हैं जो चलने का प्रयास करते हैं। बहनों, हमें खुद के लिए समय निकालना है और खुद को प्यार करना है। हम महिलाएं अक्सर पूरे परिवार का ख्याल रखती हैं, लेकिन खुद को भूल जाती हैं। दिन भर में कम से कम आधा घंटा अपने लिए जरूर निकालें। वह काम करें जो आपको खुशी दे, चाहे वो पढ़ना हो, संगीत सुनना हो, सिलाई कढ़ाई हो, या सिर्फ मौन बैठना हो। जब आप अंदर से खुश रहेगी ना, तो आपका आत्मविश्वास अपने आप झलकेगा। और बहनों, पता है, सीखने की कोई उम्र नहीं होती। आज के इस डिजिटल दौर में आप घर बैठे बहुत कुछ सीख सकती हैं। नई चीज़ें सीखने से, नई जानकारियाँ जुटाने से मन का जो डर है वो खत्म हो जाता है। और जब हम डर खत्म होता है तो आत्मविश्वास का जन्म होता है। तो मेरी प्यारी बहनों, अंत में बस इतना ही कहना चाहूँगी कि आपके भीतर असीम शक्ति है। आप केवल एक घर नहीं संभालती, बल्कि पूरे समाज की धुरी है। खुद की पहचान को खोने मत देना। हालात जैसे भी हो, हौसले को रोने मत देना। तो बहनों, अपनी क्षमताओं पर शक करना छोड़िए और एक नए विश्वास के साथ मुस्कुराकर आगे बढ़िए। आईने के सामने खड़ी होकर रोज़ खुद से कहिए, मैं कर सकती हूँ और मैं करके दिखाऊंगी। जो मन से नहीं हारता, उसे दुनिया की कोई ताकत नहीं हरा सकती। कमजोरी को ताकत बना, खुद में आत्मविश्वास जगा।

बहनों, जब भी हम बाजार जाते हैं तो खरीदारी के साथ साथ एक चीज जो लगभग हर घर की महिला का दिनचर्या का हिस्सा होती है, और वह है मोल भाव। सामान की कीमत कम करवाना हमारी समझदारी का प्रतीक माना जाता है, या फिर यह सिर्फ एक आदत बन चुका है। तो बहनों, आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे कि मोल भाव समझदारी है या सिर्फ एक आदत है। बहनों, बाजार में जाकर किसी वस्तु का सही दाम लगाना और अपनी जेब के हिसाब से मोल भाव करना एक सामान्य मानवीय व्यवहार है। विशेष रूप से भारतीय समाज में गृहिणियाँ घरेलू बजट को संतुलित रखने के लिए मोल भाव को अपनी एक बड़ी कला और ढाल मानती हैं। लेकिन यहाँ विचारणीय प्रश्न यह है कि यह मोल भाव किस हद तक सही है और कहाँ जाकर यह अनुचित लगने लगता है। तो बहनों, हमें उचित मुनाफाखोरी से बचाव करना है। बड़े बाजारों, मॉल या बड़ी दुकानों पर कई बार चीज़ों के दाम बहुत बढ़ा चढ़ाकर बताए जाते हैं, और ऐसी स्थिति में जागरूक ग्राहक बनकर सही दाम चुकाना और मोल भाव करना बिल्कुल जायज़ है। और होता क्या है बहनों, सीमित आय वाले परिवारों में गृहिणियाँ मोल भाव करके छोटी छोटी बचत करती है, जो महीने के अंत में किसी बड़े काम में आती है। गुणवत्ता और उत्पाद को देखकर उसकी सही कीमत तय करना एक समझदार खरीदार की पहचान है। बहनों, मोल भाव की एक नैतिक सीमा भी होती है। अक्सर देखा जाता है कि लोग बड़े बड़े शॉपिंग मॉल या ब्रांडेड शोरूम में जो तय कीमत होती है उस पर बिना 1 रुपया घटाए बिल चुका देते हैं, लेकिन बाजार से बाहर निकलते ही सड़क किनारे बैठे रेहड़ी पटरी वाले या छोटी सब्जी विक्रेताओं या हस्तशिल्प के कारीगरों से 2-4 रुपयों के लिए लंबा मोल

करने लगते हैं। तो सोचने की बात यह है कि जिन छोटे विक्रेताओं की आजीविका रोज की बिक्री पर निर्भर करती है, उनसे चंद रुपयों के लिए मोल भाव करना उनकी दिन भर की मेहनत को नकारने जैसा होता है। 10-20 रुपये की बचत हमारे लिए बहुत छोटी हो सकती है, लेकिन उस छोटे व्यापारी के लिए वह उसके परिवार का गुजर बसर हो सकती है।

बहनों, गीत से पहले हम बात कर रहे थे मोल भाव किस हद तक। तो बहनों, सही मोल भाव का विवेकपूर्ण नियम जो है वो यह है कि मोल भाव में शिष्टाचार होना चाहिए, स्थान और परिस्थिति का ध्यान रखना चाहिए। जहाँ स्पष्ट रूप से तय मूल्य ना हो और व्यापारी बड़ा मुनाफा कमा रहा हो, वहाँ मोल भाव करें, लेकिन मेहनत मजदूरी करने वालों के साथ सहानुभूति रखें। और मोल भाव करते समय भाषा में रूखापन नहीं होना चाहिए, बातचीत में सम्मान और मिठास भी बनाए रखें। सहानुभूति का नज़रिया रखना है। जब आप किसी छोटे कारीगर से सामान खरीदें तो उनकी मेहनत और कला का मूल्य भी समझें। श्रम और कला का सम्मान करना, और जो चीज़ें हाथ से बनाई जाती है, जैसे मिट्टी के बर्तन है, हस्तशिल्प है, पारंपरिक कला है, या जिनमें मेहनत और समय अधिक लगता हो, वहाँ अत्यधिक मोलभाव करना कारीगर की कला और उसकी मेहनत का अनादर करने जैसा है। प्रत्येक व्यापारी को अपनी मेहनत, दुकान की रख रखाव और समय के बदले एक सीमित और उचित मुनाफा कमाने का पूरा अधिकार है। अत्यधिक मोलभाव करके दुकानदार को नुकसान में धकेलना भी अनुचित है। तो बहनों, मोलभाव करना उपभोक्ता का अधिकार है और यह बचत का एक अच्छा तरीका भी है, लेकिन यह विवेक और इंसानियत के दायरे में होना चाहिए। हमें यह समझना होगा कि चंद रुपयों की बचत हमारे लिए तो मामूली हो सकती है, लेकिन किसी छोटे विक्रेता के लिए वह उसके परिवार की दैनिक ज़रूरतों से जुड़ी हो सकती है। इसलिए मोलभाव उतना ही करे जहाँ ग्राहक की बचत भी हो और विक्रेता की मेहनत का सम्मान भी बना रहे। मोलभाव करना गलत नहीं है, बशर्त यह विवेक और इंसानियत की सीमाओं के भीतर हो। एक गृहिणी होने के नाते बचत करना निश्चित रूप से सराहनीय है, लेकिन जब हम अपनी बचत के साथ साथ सामने वाले की मेहनत का भी सम्मान करते हैं, तभी हमारी समझदारी सच्चे मायनों में झलकती है। इसलिए अगली बार बाजार जाते समय मोल भाव जरूर करें, लेकिन अपनी संवेदनशीलता और विवेक का संतुलन भी बनाए रखें।

बहनों, मौसम के अनुसार जब बाजार में ताजा सब्जियां आती है तो कई बार उनकी आवक इतनी ज्यादा होती है कि दाम बहुत गिर जाते हैं, या फिर घर में पड़ी पड़ी सब्जियां खराब होने लगती हैं। वहीं दूसरी ओर बेमौसम में वही सब्जियां बाजार में बहुत महंगी मिलती हैं। तो ऐसे में क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे हम मौसम की रंग बिरंगी सब्जियों के स्वाद और पोषण को महीनों तक संभाल कर रख सकें? जी हाँ बहनों, इसका सबसे आसान और बेहतरीन जवाब है सब्जियों की परिरक्षण, यानी कि वेजिटेबल प्रिजर्वेशन। तो बहनों, सब्जियों का परिरक्षण क्यों जरूरी है? मुख्य लाभ है सीजन में सस्ती सब्जी खरीदकर बेमौसम के लिए सुरक्षित रखें। सही तरीके से संरक्षित सब्जी के पोषक तत्व लंबे समय तक बने रहते हैं और इसमें अतिरिक्त आय भी बहने अपना छोटा गृह उद्योग भी शुरू कर सकती हैं। बहनों, सब्जियों को सुरक्षित रखने के कई पारंपरिक और वैज्ञानिक तरीके हैं, जैसे कि सुखा कर रखना। यह सबसे पुरानी और आसान विधि है। मेथी, पालक, सरसों और धनिया पत्तों को धोकर छाया में सुखाकर कसूरी मेथी या सूखे साग के रूप में साल भर इस्तेमाल किया जा सकता है। और बहनों, गांव में हम देखते हैं कि जो काचर होते हैं, मतलब छोटी जो ककड़ी होती है, उसको काट के सुखा देते हैं और बाद में उसको पीस लेते हैं, तो वो हर सब्जी में काम आती हैं। टिंडे होते हैं, उनको भी सुखाकर काम में लेते हैं, बाद में उबाल कर उसको काम में ले सकते हैं। मटर और गोभी को भी थोड़ी देर गर्म पानी में उबाल कर फिर ठंडे पानी में डालकर धूप या ड्रायर में सुखाया जाता है। हरी मटर को उबलते पानी में 2 मिनट तक उबालें और तुरंत बर्फीले पानी में डालें, सुखाएं और जिप लॉक थैली में भरकर फ्रीजर में रख दें। यह साल भर हरी और ताज़ी रहेगी। नमक, सिरका और तेल द्वारा अचार, जैसे कि गाजर है, गोभी है, शलजम है, मिर्च है, राई और सरसों के तेल, नमक और सिरके का सही मिश्रण इन्हें फफूंद से बचाता है। नमक और सिरका जो है वो प्राकृतिक प्रिजर्वेटिव का काम करते हैं। सॉस, प्यूरी और पेस्ट भी हम बना सकते हैं। टमाटर, जब टमाटर सस्ते हो तो उनकी प्यूरी, केचप या सॉस बनाकर सोडियम बेजोंट या सिरके की सही मात्रा डालकर महीने तक सुरक्षित रखा जा सकता है और वह जल्दी से ख़राब भी नहीं होता। टमाटर भी काम आ जाते हैं और सॉस भी काम आता है। और अदरक है, लहसुन है, दोनों को पीसकर थोड़ा सा नमक और सरसों का तेल मिलाकर कांच की शीशी में रख सकते हैं और यह खराब नहीं होगा। और इनके सब के लिए ध्यान रखने योग्य जो मुख्य बातें हैं वो यह है कि हमें स्वच्छता का भी ध्यान रखना है। बर्तन, हाथ और चाकू पूरी तरह से साफ और सूखे होने चाहिए और परिरक्षण के लिए हमेशा ताजी, कड़क और बिना दाग धब्बे वाली सब्जियों का भी चयन करें। अचार या जो प्यूरी है उसको हमेशा स्टरलाइट उबले पानी में साफ करके ही कांच की बोतल में ही डालें। तो बहनों, आज से ही अपने घर में सब्जियों के परिरक्षण के इन छोटे छोटे तरीकों को अपनाएं। इससे ना सिर्फ आपके पैसों की बचत होगी बल्कि बेमौसम में भी आपके खाने की थाली स्वाद और सेहत से भरी रहेगी।

ज्ञान शक्ति और स्वाभिमान महिला जगत से बनेगा देश महान। अब बहनों समय को देखते हुए अपनी सखी सुनीता को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।

0: गर्व से भर देता है। ये दिन हमें अपने वीर जवानों के अद्भुत साहस की याद दिलाता है। करगिल की ऊंची ऊंची चोटियां, कठिन मौसम, दुश्मन की चुनौती, हर परिस्थिति हमारे सैनिकों के सामने थी, लेकिन उनका हौसला हर चुनौती से बड़ा था। उन्होंने मां भारती की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व अर्पित कर दिया। आज कारगिल विजय दिवस पर मैं सभी वीर शहीदों और वीर सैनिकों को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूँ।
1: Mr. Modi said India is continuously strengthening her technological capabilities. He highlighted the recent induction of INS Mahendragiri into the Indian Navy. The Prime Minister said every Indian is filled with pride following the successful launch of Vikram 1 last Sunday. Mr. Modi praised the young innovators for displaying remarkable skill, passion and patience. Speaking about the Catch the Rain campaign, Prime Minister Modi said, a special nationwide campaign has been underway since the 4th of July.
0: कैच द रेन का संदेश बहुत सीधा है, जब बारिश गिरे पानी को वहीं सहेजिए। इसलिए 4 जुलाई से देश भर में एक विशेष अभियान भी चलाया जा रहा है। इसके तहत बारिश के पानी के संचयन, ग्राउंड वाटर रिचार्ज, पुराने जल स्रोतों के पुनर्जीवन और वृक्षारोपण को नई गति दी जा रही। मुझे बहुत खुशी है कि गांव हो या शहर, पंचायतें हो या सामाजिक संस्थाएं, हर जगह लोगों ने बढ़ चढ़कर भागीदारी की है।
1: In his Mann Ki Baat address today, the Prime Minister said every Indian is cheering for all the athletes participating in the Commonwealth Games, which began in Glasgow a few days ago.
0: हमारे युवाओं ने हाल के दिनों में स्पोर्ट्स में कई शानदार उपलब्धियां हासिल की। पीवी सिंधु बैडमिंटन में जापान ओपन का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय बन गई हैं। उनकी इस उपलब्धि पर पूरे देश को गर्व है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने भी लंदन में लॉर्ड्स स्टेडियम में अपना पहला टेस्ट मैच जीता है। यह एक ऐतिहासिक जीत है। हमारी टीम ने 270 रनों के बड़े अंतर से यह मुकाबला जीता, लेकिन बात सिर्फ इतनी सी नहीं है। लॉर्ड्स के लंबे इतिहास में यह महिलाओं की टीम का पहला टेस्ट मैच 1983 में इसी मैदान पर भारत ने अपना पहला क्रिकेट विश्व कप जीता था। अब हमारी नारी शक्ति ने यहाँ देश का नाम रोशन किया है।
1: The Prime Minister also spoke about science Olympiads, noting that a large number of students participate in these events.
0: इस महीने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथमेटिक्स के ओलंपियाड हुए। इन कॉम्पिटिशन्स में भारतीय दल का प्रदर्शन शानदार रहा। फिजिक्स ओलंपियाड में हमारे सभी 5 स्टूडेंट्स ने गोल्ड मेडल जीते और भारत ने पहली रैंक हासिल की। पिछले एक दशक में हुए हर फिजिक्स ओलंपियाड में हमारे देश के स्टूडेंट्स ने गोल्ड या सिल्वर मेडल जरूर जीता है। केमिस्ट्री ओलंपियाड में भी हमारे सभी स्टूडेंट्स ने गोल्ड मेडल जीता। यह अब तक की बेस्ट परफॉर्मेंस रही है। बायोलॉजी ओलंपियाड में भी हमारे सभी स्टूडेंट्स ने मेडल जीते, इनमें एक गोल्ड मेडल भी शामिल है। वहीं मैथमेटिक्स ओलंपियाड में हमारे स्टूडेंट्स ने 2 गोल्ड और 4 सिल्वर मेडल्स अपने नाम किए। मुझे देश की युवा शक्ति पर बहुत गर्व है। यह देखकर खुशी होती है कि भारत में ओलंपियाड्स और हैकेथॉन्स का कल्चर निरंतर बढ़ रहा है।
1: In this edition of Mann Ki Baat, Prime Minister Modi mentioned Kashmir's traditional Vagu mat, which is crafted out of reeds and paddy straw. Mr. Modi said that the country is moving forward with the mantra of vocal for local and urged people to make Kashmir's Vagu a part of their homes. The Prime Minister expressed satisfaction that people across the country are fulfilling their responsibility towards nature through the Ek Ped Ma Ke Naam campaign. On the subject of plastic pollution, Mr. Modi expressed concern that waste from single-use plastic continues to harm nature for years. He stressed on the proper disposal of plastic. Mr. Modi reiterated his call for everyone to worship Lord Ganesh idols made from country's own clay during Ganesh Utsav instead of idols made of POP.
0: इस बार गणपति पूजा में देश की मिट्टी से बने गणेश जी को अपने घर पर स्थापित करें, उनकी पूजा करें। आपका ये प्रयास भी एक तरह से प्रकृति की ही पूजा होगा।
1: The nation will celebrate National Handloom Day on the 7th of August. He urged people to honor weavers by encouraging handloom crafts and further strengthen the spirit of being vocal for local.
0: हथकरघे से बना हर परिधान किसी न किसी क्षेत्र, समुदाय और इससे जुड़े असंख्य लोगों की कहानी को सामने लाता है। ये वो लोग हैं जो गर्व के साथ भारत की सांस्कृतिक विरासत को संजोने में जुटे हैं। आज के दिन मेरा आग्रह है कि हम हस्तकला को प्रोत्साहित कर अपने बुनकर साथियों का सम्मान करें। आइए हम वोकल फॉर लोकल की भावना को और सशक्त करें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज करगिल विजय दिवस पर देश के वीर सपूतों का स्मरण किया, कहा देश के लिए उनके बलिदान से सभी को गर्व। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने रक्षा उत्पादन और अंतरिक्ष क्षेत्र को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने में भारतीय वैज्ञानिकों और अभियंताओं के सामूहिक प्रयासों की प्रशंसा की। श्री मोदी ने कहा, खेलों और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपियाड में बेहतरीन प्रदर्शन वाली देश की युवा शक्ति पर गर्व। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने करगिल युद्ध में सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीर सपूतों को श्रद्धांजलि दी। सरकार ने भारतीय नागरिकों को काला सागर क्षेत्र में व्यापारिक जहाजों पर काम करने से पहले सुरक्षा स्थिति का आकलन करने की सलाह दी। और मौसम विभाग ने मध्य महाराष्ट्र और उड़ीसा में आज घनघोर वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत रक्षा निर्यात, राजनीतिक सहयोग और मित्र देशों के मामले में लगातार नई ऊंचाइयां छू रहा है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में करगिल विजय दिवस के वीर सैनिकों का स्मरण करते हुए श्री मोदी ने कहा कि ये दिन देशवासियों को अपने बहादुर सैनिकों के असाधारण शौर्य की याद दिलाता है।
1: आज कारगिल विजय दिवस है। ये दिन हमें गर्व से भर देता है। ये दिन हमें अपने वीर जवानों के अद्भुत साहस की याद दिलाता है। कारगिल की ऊंची ऊंची चोटियां, कठिन मौसम, दुश्मन

0: उनकी चुनौती हर परिस्थिति हमारे सैनिकों के सामने थी, लेकिन उनका हौसला हर चुनौती से बड़ा था। उन्होंने मां भारती की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व अर्पित कर दिया। आज कारगिल विजय दिवस पर मैं सभी वीर शहीदों और वीर सैनिकों को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूँ।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत अपनी तकनीकी क्षमता लगातार बढ़ा रहा है।
0: रक्षा उत्पादन हो, रक्षा निर्यात हो या मित्र देशों के साथ राजनीतिक सहयोग, भारत लगातार नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ रहा है। इस महीने की शुरुआत में मैं इंडोनेशिया में था, जहां ब्रह्मोस और अस्त्र मिसाइलों के लिए एक बड़ा समझौता हुआ है। दुनिया का भरोसा भारत के रक्षा उपकरणों और तकनीक पर बढ़ रहा है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले रविवार को विक्रम 1 के सफल प्रक्षेपण ने हर भारतीय को गौरवान्वित किया है। उन्होंने कहा कि यह भारत के निजी क्षेत्र का पहला रॉकेट है। कैच द रेन अभियान के बारे में प्रधानमंत्री ने कहा कि 4 जुलाई से ये विशेष राष्ट्रव्यापी अभियान चलाया जा रहा है।
0: कैच द रेन का संदेश बहुत सीधा है, जब बारिश गिरे पानी को वहीं सहेजिए। इसलिए 4 जुलाई से देश भर में एक विशेष अभियान भी चलाया जा रहा है। इसके तहत बारिश के पानी के संचयन, ग्राउंड वाटर रिचार्ज, पुराने जल स्रोतों के पुनर्जीवन और वृक्षारोपण को नई गति दी जा रही। मुझे बहुत खुशी है कि गांव हो या शहर, पंचायतें हो या सामाजिक संस्थाएं, हर जगह लोगों ने बढ़ चढ़कर भागीदारी की है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि कुछ दिन पहले ग्लासगो में शुरू हुए राष्ट्रमंडल खेलों में शामिल खिलाड़ियों का पूरा देश उत्साहवर्धन कर रहा है।
0: ग्लासगो में कॉमनवेल्थ गेम्स शुरू हुए, हर देशवासी भारतीय दल को निरंतर अपनी शुभकामनाएं दे रहा है। उनकी कामना है कि सभी खिलाड़ी और एथलीट बेहतरीन प्रदर्शन करें और लोगों का दिल भी जीते। हमारे युवाओं ने हाल के दिनों में स्पोर्ट्स में कई शानदार उपलब्धियां हासिल की है।
1: श्री मोदी ने कहा कि पीवी सिंधु जापान ओपन बैडमिंटन में खिताब जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बनी हैं।
0: पीवी सिंधु बैडमिंटन में जापान ओपन का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय बन गई हैं। उनकी इस उपलब्धि पर पूरे देश को गर्व है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने भी लंदन में लॉर्ड स्टेडियम में अपना पहला टेस्ट मैच जीता है। यह एक ऐतिहासिक जीत है, लेकिन बात सिर्फ इतनी सी नहीं है। लॉर्ड्स के लंबे इतिहास में यह महिलाओं की टीम का पहला टेस्ट मैच 1983 में इसी मैदान पर भारत ने अपना पहला क्रिकेट विश्व कप जीता था। हमारी नारी शक्ति ने यहाँ देश का नाम रोशन किया है।
1: श्री मोदी ने गणेश उत्सव के दौरान सभी से प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनी मूर्तियों के स्थान पर मिट्टी से बनी गणेश प्रतिमाओं की पूजा करने की अपील की।
0: इस बार गणपति पूजा में देश की मिट्टी से बने गणेश जी को अपने घर पर स्थापित करें, उनकी पूजा करें। आपका ये प्रयास भी एक तरह से प्रकृति की ही पूजा होगा।
1: प्रधानमंत्री ने जापान में कार्यरत खगोल भौतिक विज्ञानी मणिपुर के डॉक्टर रोनाल्डो लेशराम का भी उल्लेख किया।
0: मणिपुर के डॉक्टर रोनाल्डो रेशराम जी वे जापान में काम करते हैं और यंग गैलेक्सीज के एक विशाल समूह की खोज करने वाली टीम का हिस्सा रहे हैं। उन्होंने इस पूरे समूह का नाम मणिपुर की एक खूबसूरत झील से जोड़कर लोकटक प्रोटो क्लस्टर रखा है। लोकटक ताजे पानी की बहुत बड़ी झील है। लोकटक लेक में तैरती हुई फुमड़ी मिलकर एक अनोखा लैंडस्केप बनाती है। आज मणिपुर की लोकटक केवल देश के मैप पर ही नहीं बल्कि विशाल ब्रह्मांड में भी अपनी चमक बिखेर रही है।
1: देश भर में 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये दिन देश के बुनकरों के कौशल और रचनात्मकता के सम्मान का प्रतीक है।
0: हथकरघे से बना हर परिधान किसी न किसी क्षेत्र, समुदाय और इससे जुड़े असंख्य लोगों की कहानी को सामने लाता है। ये वो लोग हैं जो गर्व के साथ भारत की सांस्कृतिक विरासत को संजोने में जुटे हैं। आज के दिन मेरा आग्रह है कि हम हस्तकला को प्रोत्साहित कर अपने बुनकर साथियों का सम्मान करें। आइए हम वोकल फॉर लोकल की भावना को और सशक्त करें।
1: श्री मोदी ने त्रिपुरा के चोंगप्रिंग वाद्य यंत्र के बारे में भी बात की। प्रधानमंत्री ने पारंपरिक संगीत को लोकप्रिय बनाने के लिए श्री देव वर्मा के प्रयासों की सराहना की।
0: कोकबोरोक फोक सॉन्ग्स, बाउल सॉन्ग्स, बंगाली फोक उन्हें खूब भाता है। अब मैं आपको एक छोटी सी क्लिप सुनाना चाहता हूँ। इस संगीत को आप कभी भूल नहीं पाएंगे। इसे सुनकर आपके मन को बहुत अच्छा लगा होगा। मुझे देव वर्मा जी पर बहुत गर्व है। पारंपरिक संगीत को लोकप्रिय बनाने का उनका प्रयास

0: प्रयास बहुत ही सराहनीय है।
1: मंत्री ने 15 अगस्त को मनाए जाने वाले स्वतंत्रता दिवस के बारे में भी बात की।
0: 15 अगस्त हर भारतीय के लिए गर्व का दिन है। ये उन असंख्य वीरों को याद करने का दिन है जिन्होंने भारत माता की स्वतंत्रता के लिए अपना सब कुछ समर्पित कर दिया। उनके त्याग और तपस्या की वजह से आज हमारे हाथ में तिरंगा है। इस तिरंगे में हमारे संविधान के आदर्श हैं। साथियों, पिछले कुछ वर्षों में हर घर तिरंगा अभियान ने पूरे देश को एक अद्भुत भावना से जोड़ा है।
1: श्री मोदी ने सभी से हमेशा की तरह 15 अगस्त से पहले MyGov पोर्टल पर अपने विचार और सुझाव साझा करने का आग्रह किया। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्र आज करगिल विजय दिवस मना रहा है। इस अवसर पर वर्ष 1999 के करगिल युद्ध में देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करगिल विजय दिवस पर मातृभूमि के लिए प्राण न्यौछावर करने वाले वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि सैनिकों का अद्वितीय शौर्य, अटूट संकल्प और देशभक्ति भारतीय सशस्त्र बलों की उत्कृष्ट परंपरा का उदाहरण है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने कहा कि राष्ट्र असाधारण साहस, अटूट संकल्प और सर्वोच्च बलिदान से करगिल युद्ध में भारत की ऐतिहासिक विजय दिलाने वाले वीर सैनिकों को नमन करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सबसे चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में वीर सैनिकों का शौर्य सदैव राष्ट्रीय गौरव का स्रोत बना रहेगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज लद्दाख के द्रास में करगिल युद्ध स्मारक पर 27वें करगिल विजय दिवस पर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर शहीदों के परिजन भी उपस्थित थे। श्री सिंह ने कहा कि करगिल युद्ध भारत की सैन्य और कूटनीतिक विजय के साथ निर्णायक क्षण भी था जब दुनिया ने भारतीय सैनिकों के अदम्य साहस और शौर्य को देखा। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि यह दिवस भारतीय सेना के अदम्य शौर्य और असाधारण वीरता का प्रतीक है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने करगिल विजय दिवस पर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि करगिल युद्ध भारतीय सेना के इतिहास का स्वर्णिम अध्याय है। सरकार कल लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पेश करेगी। ये विधेयक सोमवार के लिए लोकसभा की कार्यसूची में शामिल है। इसका उद्देश्य लोक परीक्षा अनुचित साधन रोकथाम अधिनियम 2024 में संशोधन करना है। केंद्रीय उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण तथा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रह्लाद जोशी को शिक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। श्री प्रह्लाद जोशी को पूर्व शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के त्यागपत्र के बाद ये जिम्मेदारी सौंपी गई है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। विदेश मंत्रालय ने भारतीय नागरिकों को काला सागर से गुजरने वाले व्यापारिक जहाजों पर नौकरी से पहले सुरक्षा संबंधी खतरों का ठीक से आकलन करने का परामर्श जारी किया है। इसमें कहा गया है कि ऐसे रोजगार के चयन में अत्यधिक सावधानी बरतनी चाहिए। मौजूदा संघर्ष के कारण काला सागर और आसपास के समुद्री क्षेत्रों में सुरक्षा स्थिति अत्यधिक अस्थिर बनी हुई है। इन जल क्षेत्रों से गुजरने वाले जहाजों को मिसाइल और ड्रोन हमलों सहित गंभीर सुरक्षा जोखिमों का सामना करना पड़ रहा है। परामर्श में कहा गया है कि सहायता के लिए भारतीय दूतावास या वाणिज्य दूतावासों से संपर्क किया जा सकता है। रूस में भारतीय दूतावास का आपातकालीन संपर्क नंबर +7 9652 77 3414 है और यूक्रेन में +38 09 33 55 9 58 है। यूक्रेन में भारतीय दूतावास ओडेसा बंदरगाह पर कल एक मालवाहक पोत से जुड़े घटनाक्रम पर लगातार नजर रखे हुए हैं। दूतावास ने बताया कि MV AGN रेगनर पोत पर 4 भारतीय सवार थे, इनमें से 2 भारतीय सुरक्षित हैं। दूतावास ने कहा कि तलाश और बचाव अभियान जारी है। मौसम विभाग ने मध्य महाराष्ट्र और उड़ीसा में आज घनघोर वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। छत्तीसगढ़, गुजरात, कोंकण और गोवा में अगले 2-3 दिन मूसलाधार बारिश का अनुमान है। तटीय आंध्र प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र और हिमाचल प्रदेश में भी आज तेज वर्षा की संभावना है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, उत्तराखंड, पश्चिमी राजस्थान और पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में भी ऐसी ही स्थिति

नहीं रह सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल से असम में बाढ़ की स्थिति की जानकारी ली है। श्री सोनोवाल इस समय बाढ़ग्रस्त इलाकों का दौरा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने हमेशा ही असम को विशेष महत्व दिया है। श्री सोनोवाल ने कहा कि एक अंतर मंत्रालयीय दल भी राज्य के दौरे पर है। जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर भूस्खलन के बाद आवाजाही दोबारा बहाल होने पर आज तड़के 4,474 श्रद्धालुओं का जत्था अमरनाथ यात्रा के लिए जम्मू आधार शिविर से बालतल आधार शिविर के लिए रवाना हुआ। इस जत्थे में 166

0: दोबारा बहाल होने पर आज तड़के 4,474 श्रद्धालुओं का जत्था अमरनाथ यात्रा के लिए जम्मू आधार शिविर से बालतल आधार शिविर के लिए रवाना हुआ। इस जत्थे में 166 वाहनों का काफिला है। और अब खेल खबरें। डूरंड कप फुटबॉल प्रतियोगिता आज से झारखंड की राजधानी रांची में शुरू हो रही है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि प्रतियोगिता का पहला मैच आज शाम बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम में खेला जाएगा।
1: एशिया के सबसे पुराने और प्रतिष्ठित फुटबॉल टूर्नामेंट 135वें डूरंड कप का भव्य आगाज आज राजधानी रांची के बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम में होने जा रहा है। खेल नगरी रांची पहली बार इस ऐतिहासिक राष्ट्रीय फुटबॉल महाकुंभ की मेजबानी कर रही है। आज शाम होने वाले इस ऐतिहासिक उद्घाटन मुकाबले में इंडियन सुपर लीग की टीम जमशेदपुर FC का मुकाबला श्रीलंका की मेहमान टीम डिफेंडर FC से होगा। मुख्य अतिथि के रूप में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मौजूद रहकर खेल का विधिवत शुभारंभ करेंगे। स्थानीय दर्शकों में फुटबॉल के प्रति जबरदस्त उत्साह को देखते हुए प्रशासन ने मैच के लिए 0 टिकट यानी निःशुल्क प्रवेश की व्यवस्था की है। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से मैं महविश रहमान।
0: भारत की अनाहत सिंह ने विश्व स्क्वाश जूनियर चैंपियनशिप जीतकर इतिहास रच दिया है। कनाडा में महिला सिंगल्स फाइनल में मिस्र की रुकैया सालेम को हराकर उन्होंने ये खिताब जीता। इस जीत के साथ अनाहत जूनियर विश्व खिताब जीतने वाली पहली भारतीय स्क्वाश खिलाड़ी बन गई हैं। कई केंद्रीय मंत्रियों ने अनाहत को शुभकामनाएं दी हैं। केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने इस जीत को अभूतपूर्व और हर भारतीय के लिए गर्व का क्षण बताया। श्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि अनाहत की जीत भारत के युवाओं और नारी शक्ति के लिए प्रेरणादायक है। खेल राज्य मंत्री रक्षा खड़से ने कहा कि अनाहत सिंह ने देश को गौरवान्वित और देश के युवाओं को बड़े सपने देखने के लिए प्रेरित किया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज करगिल विजय दिवस पर देश के वीर सपूतों का स्मरण किया। कहा, देश के लिए उनके बलिदान से सभी को गर्व। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने रक्षा उत्पादन और अंतरिक्ष क्षेत्र को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने में भारतीय वैज्ञानिकों और अभियंताओं के सामूहिक प्रयासों की प्रशंसा की। श्री मोदी ने कहा, खेलों और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपियाड में बेहतरीन प्रदर्शन वाली देश की युवा शक्ति पर गर्व। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने करगिल युद्ध में सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीर सपूतों को श्रद्धांजलि दी। सरकार ने भारतीय नागरिकों को काला सागर क्षेत्र में व्यापारिक जहाजों पर काम करने से पहले सुरक्षा स्थिति का आकलन करने की सलाह दी। और मौसम विभाग ने मध्य महाराष्ट्र और उड़ीसा में आज घनघोर वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम फिल्म संगीत। कार्यक्रम को लेकर हाजिर हूँ मैं लक्ष्मी। आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। साथियों, जिंदगी भी तो एक गीत की तरह है। कभी इसके सुर बहुत सुहाने होते हैं, कभी कोई उदासी भरी धुन मन को छू जाती है। कभी कोई गीत हमें हमारी यादों की गलियों में ले जाता है, तो कभी कोई धुन किसी ऐसे चेहरे की याद दिला देती है जिसे वक्त ने हमसे दूर कर दिया है, लेकिन दिल से कभी दूर नहीं कर पाया। तो लीजिए शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की इस खूबसूरत से गीत के साथ।

श्रोताओं, अभी आपने अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण को सुना। फिल्म का नाम था लाल दुपट्टा मलमल का। गीत के बोल मजरू सुल्तानपुरी के थे और संगीत आनंद मिलन का। लीजिए सुनिए प्रोग्राम का अगला गीत। फिल्म का नाम है उड़ान। आवाज़ें कुमार सानू और अलका याग्निक की।

आप सुन रहे हैं लता मंगेशकर मोहम्मद रफ़ी को, फिल्म का नाम है अनोखी अदा। गीत के बोल मजरू सुल्तानपुरी के और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

लीजिए सुनिए अलका याग्निक की आवाज़ में सूर्या फिल्म का ये गीत। गीत लिखा है संतोष आनंद ने और संगीत से सजाया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

इसी के साथ ही फिल्म संगीत कार्यक्रम समाप्त करने की लक्ष्मी को दीजिए इजाज़त। हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ी में दिन के 3 बजने वाले हैं। थोड़ी ही देर में आप हमारे दिल्ली केंद्र से उर्दू सर्विस का प्रसारण सुनेंगे।

ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। दोपहर के 3 बजे हैं, अब हमारी दूसरी मजलिस की नशरियात का आगाज होता है।

ये आकाशवाणी है, आप सुन रहे हैं उर्दू सर्विस की नशरियात मीडिया वेव 1071 किलोहर्ट्ज़, मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR और DD फ्री डिश पर। आइए आपको इस मजलिस में नशर होने वाले प्रोग्राम्स के बारे में बता दें। अब से कुछ देर बाद यानी 3:05 पर खबरें नशर की जाएंगी। मेरी पसंद प्रोग्राम का वक्त रहेगा 3:15। 3:30 पर आप सुन सकेंगे प्ले रेत समंदर। इसे तहरीर किया है जनाब जमन हबीब ने। 4 बजे आप सुनेंगे फिल्मी मौसिकी। 4:50 पर खबरें नशर की जाएंगी। 5 बजे हमारी दूसरी मजलिस खत्म हो जाएगी।

ये आकाशवाणी है, आप सुन रहे हैं उर्दू सर्विस की नशरियात मीडिया वेव 1071 किलोहर्ट्ज़, मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR और DD फ्री डिश पर। वक्त है खबरों का।

ये आकाशवाणी है। अब आप अब्दुल मालिक से खबरें सुनिए। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज करगिल विजय दिवस के मौके पर मुल्क के जांबाजों को याद करते हुए कहा कि मुल्क के लिए उनकी कुर्बानी सभी को फख्र से सरशार कर देती है। आकाशवाणी पर मन की बात प्रोग्राम में जनाब मोदी ने भारतीय साइंसदानों और इंजीनियर्स की इज्तिमाई कोशिशों और कारकर्दगी की सताइश की, जिसके नतीजे में भारत दिफाई सामान की तैयारी और खला के शोबों में नई बुलंदियों पर पहुंच रहा है। जनाब मोदी ने कहा कि उन्हें मुल्क के नौजवानों की कुव्वत पर फख्र है, जिन्होंने हालिया खेल मुकाबलों और बैन अलाक्वामी ओलंपियाड्स में उम्दा कारकर्दगी का मुजाहरा किया है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू और नायब सदर जमहूरिया सीपी राधाकृष्णन ने करगिल की लड़ाई के दौरान अपनी जान निछावर करने वाले मुल्क के दिलेर सिपाहियों को खराज अकीदत पेश करने में मुल्क की क़यादत की। सरकार ने भारतीय शहरियों पर जोर दिया है कि वो बहरे अस्वद के खत्ते में कमर्शियल बहरी जहाजों पर काम करने की पेशकश कबूल करते वक्त मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल को मलूज खातिर रखें। और अनहाद सिंह ने आलमी जूनियर स्क्वाश चैंपियनशिप में लड़कियों का सिंगल्स टाइटल जीतकर तारीख साज कारनामा अंजाम दिया है। वो ये एजाज हासिल करने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बन गई हैं। अब खबरें तफसील से। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज करगिल विजय दिवस के मौके पर ये कहते हुए मुल्क के जाबाजों को खराज अकीदत पेश किया कि ख्वाह ये दिफाई सामान की तैयारी हो, दिफाई बरामदात हो या दोस्त मुल्कों के साथ सियासी इश्तराक की बात हो, भारत लगातार नई बुलंदियों पर पहुंच रहा है। आकाशवाणी पर मन की बात प्रोग्राम में मुल्क के लोगों से खिताब करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि आज 26 जुलाई की तारीख एक ऐसा दिन है कि जिसे याद रखने के लिए कैलेंडर की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज करगिल विजय दिवस मनाया जा रहा है। वज़ीर आज़म ने कहा कि इस साल एक खसूसी शौर्य विजय यात्रा का अहतमाम किया गया है, जो दिल्ली में नेशनल वार मेमोरियल से 14 जुलाई को शुरू हुई। ये मोटरसाइकिल रैली द्रास में करगिल वार मेमोरियल पहुंचेगी। इसका पैगाम है एक सफर, एक मुल्क, एक सलाम। जनाब मोदी ने कहा कि ये सफर सभी को इस बात की याद दिलाता है कि मुल्क के लिए की गई कुर्बानी को कभी भी फरामोश नहीं किया जा सकता। वज़ीर आज़म ने कहा कि भारत लगातार अपनी तकनीकी सलाहियत

को मुस्तहकम बना रहा है। उन्होंने भारतीय बैरिया में INS महेंद्रगिरी को हाल ही में शामिल किए जाने का तस्करा किया। वजीर आजम ने कहा कि गुज़िश्ता इतवार को विक्रम 1 के कामयाब लॉन्च के बाद हर भारतीय फख्र से सरशार हो गया। जनाब मोदी ने कहा कि ये भारत का ऐसा पहला रॉकेट है जिसे प्राइवेट शोबे ने तैयार किया है। कैच द रेन मुहिम के बारे में बात करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि 4 जुलाई से पूरे मुल्क में एक खसूसी मुहिम चल रही है। मन की बात के अपने खिताब में वजीर आजम ने कहा कि हर भारतीय शहरी दौलत मुश्तरक खेलों में हिस्सा लेने वाले सभी एथलीट्स का जोश बढ़ा रहा है जो कुछ दिन पहले ग्लासगो में शुरू हुए हैं। जनाब मोदी ने इस बात पर फख्र का इजहार किया कि भारतीय नौजवानों ने हाल ही में खेलों के शोबों में नुमाया कारनामे अंजाम दिए हैं। वजीर आजम ने साइंस ओलंपियाड का तस्करा करते हुए कहा कि बड़ी तादाद में तालिबा ने इन मुकाबलों में हिस्सा लिया। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथमेटिक्स में ओलंपियाड मुकाबले इसी महीने हुए हैं। इन मुकाबलों में भारतीय टीमों ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया। वजीर आजम ने मन की बात के आज के नशरिए में कश्मीर की रिवायती वेगू चटाई का तस्करा किया जो सरकुंडे और धान के तिनकों से बनाई जाती है। माहौलियात के लिए साजगार इस तरह की चटाई बनाने की रिवायत बरसों से चली आ रही है। जनाब मोदी ने कहा कि मुल्क वोकल फॉर लोकल के मंत्र के साथ आगे बढ़ रहा है। उन्होंने लोगों पर जोर दिया कि वो कश्मीर की वेगू चटाई को अपने घर का हिस्सा बनाएं। वजीर आजम ने इस बात पर इत्मीनान का इजहार किया कि मुल्क भर में लोग एक पेड़ माँ के नाम मुहिम के जरिए फितरत के तय अपनी जिम्मेदारी को पूरा कर रही हैं। कल 27 जुलाई को भारत रत्न डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की बरसी मनाई जाएगी। इस तनाजुर में जनाब मोदी ने कहा कि डॉक्टर कलाम की शख्सियत में कई बायसे तरक्की पहलू शामिल थे लेकिन एक टीचर का रोल उनके लिए सबसे अजीज था। अपने खिताब के आखिर में जनाब मोदी ने अगले महीने मनाए जाने वाले यौम आज़ादी का तस्करा किया और सभी लोगों पर जोर दिया कि वो MyGOV पर 15 अगस्त से पहले बड़ी तादाद में अपने अपने ख्यालात और तजवीज़ें शेयर करें। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। मुल्क भर में आज करगिल विजय दिवस मनाया जा रहा है। ये दिन 1999 की करगिल जंग के दौरान अपनी जानें कुर्बान कर देने वाले भारतीय फौजियों की बहादुरी की तासीम के तौर पर मनाया जाता है। ये दिन भारत की पाकिस्तान पर फतेह और ऑपरेशन विजय के कामयाब इख्तिताम की 27वीं सालगिरह के तौर पर भी मनाया जाता है। इस मौके पर सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू, नायब सदर जमहूरिया CP राधाकृष्णन और वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मातृ वतन के दिफा में अपनी जानें कुर्बान कर देने वाले बहादुर फौजियों को खराज अकीदत पेश किया। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने आज लद्दाख के द्रास में करगिल जंगी यादगार पर 27वें करगिल विजय दिवस की तकरीब की क़यादत की और 1999 की करगिल लड़ाई के जाबाजों को खराज अकीदत पेश किया। वजीर दिफा ने वहां एक गुलदायरा नजर किया और उन बहादुर सिपाहियों को खराज अकीदत पेश किया जिन्होंने ऑपरेशन विजय के दौरान अजीम कुर्बानी पेश की थी। इस तकरीब में लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर, फौज के सरबरा और दीगर मुमताज अफराद नीज शहीदों के अरकान खानदान ने भी शिरकत की। इस मौके पर खिताब करते हुए जनाब राजनाथ सिंह ने कहा कि करगिल की लड़ाई न सिर्फ भारत की फौजी और सिफारती फतह थी बल्कि ये एक ऐसा यादगारी और तारीखी लम्हा था जब दुनिया ने भारतीय फौजियों की बेमिसाल दलेरी और बहादुरी का मुशाहिदा किया। 4,474 यात्रियों का एक जत्था आज सुबह सवेरे सालाना अमरनाथ यात्रा के लिए जम्मू के बुनियादी पड़ाव से रवाना हुआ। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह का रास्ता खुलने के बाद यात्री रवाना हुए हैं। वहां चट्टानों के टुकड़े गिरने से रास्ता बंद हो गया था। हुकाम ने बताया कि 166 गाड़ियों के काफिले में यात्रियों का 19वां जत्था सख्त सिक्योरिटी बंदोबस्त में रवाना हुआ। सालाना अमरनाथ यात्रा रक्षाबंधन के त्यौहार के साथ अगले माह की 28 तारीख को खत्म होगी। वजारत खारजा ने एक एडवाइजरी जारी करके बहरे अस्वद में चलने वाले या वहां से गुजरने वाले कमर्शियल बहरी जहाजों पर रोजगार के ख्वाहिशमंद भारतीय शहरियों से जोर देकर कहा है कि वो इस तरह का काम कबूल करने से पहले मौजूदा सिक्योरिटी खतरात का पूरी एहतियात के साथ जायजा लें। एडवाइजरी में कहा गया कि जो लोग इस तरह के रोजगार पर जाने का इरादा रखते हैं उन्हें इंतहाई मोहतात अंदाज से काम करना चाहिए। मौजूदा महाजाराई के तनाजुर में बहरे अस्वद और उसके अतराफ नीज उससे मुतसिल बहरी इलाकों में सिक्योरिटी की सूरतहाल अब भी बहुत कशीदा है। इन आबी गुजरगाहों से होकर जाने वाले

0: कमर्शियल भरी जहाजों को मिसाइल और ड्रोन्स हमलों समेत बड़े सिक्योरिटी खतरात का सामना करना पड़ रहा है। इस साल अप्रैल के बाद कमर्शियल बहरी जहाजों पर इस तरह के हमलों के वाकयात में इजाफा देखने में आया है और इसकी वजह से 5 भारतीय शहरियों की अलमनाक मौत भी हो चुकी है। अपनी एडवाइजरी में वजारत खारजा ने भारतीय शहरियों पर जोर दिया है कि वो बहरी जहाज के रास्ते मुतल्लिका बंदरगाह, सिक्योरिटी इंतजाम, बीमे की सहूलत और एमरजेंसी इकदाम के ताल्लुक से आजिरों या भर्ती करने वाली एजेंसियों से तफसीली जानकारी हासिल कर लें। यूक्रेन में भारतीय सफारतखाने ने कहा है कि वो कल ओडेसा बंदरगाह पर माल बरदार बहरी जहाज MV AGN रागनर पर हमले के वाकयात के बाद सूरत हाल पर करीबी नजर रखे हुए है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर सफारतखाने ने कहा है कि इस बहरी जहाज में 4 भारतीय शहरी सवार थे। इनमें से 2 अफराद के महफूज होने के बारे में तस्दीक हो गई है, जबकि दीगर 2 अफराद के बारे में अभी जानकारी नहीं मिल सकी है। भारतीय सफारत खाने ने कहा कि तलाश और बचाव की कार्रवाई जारी है और वो मुतालिका हुकाम के साथ राबता कायम किए हुए हैं। आला दर्जाबंदी की हामिल अनाज सिंह ने जूनियर आलमी कप का खिताब जीतकर भारत की पहली स्क्वाश खिलाड़ी बनकर तारीख रकम की है। अनाज ने कनाडा की नियाग्रा ऑन द लेक में जारी वर्ल्ड स्क्वैश जूनियर चैंपियनशिप 2026 में लड़कियों के सिंगल्स के फाइनल में मिस्र की रुकैया सलीम को 3-0 से हराया। 18 साल भारतीय खिलाड़ी ने दूसरी दर्जाबंदी के हामिल सलीम को 11-3, 11-7, 11-9 से शिकस्त देकर सोने का तमगा जीता। ये कामयाबी इसलिए भी बड़ी है क्योंकि मिस्र के खिलाड़ियों ने लगातार 16 साल तक ये खिताब अपने नाम किया था। ताहम अनाज सिंह ने एक भी मैच हारे बगैर इस इजारादारी को खत्म किया। और आखिर में खास खास खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज करगिल विजय दिवस के मौके पर मुल्क के जाबाजों को याद करते हुए कहा कि मुल्क के लिए उनकी कुर्बानी सभी को फख्र से सरशार कर देती है। आकाशवाणी पर मन की बात प्रोग्राम में जनाब मोदी ने भारतीय साइंसदानों और इंजीनियर्स की इज्तिमाई कोशिशों और कारकर्दगी की सताइश की, जिसके नतीजे में भारत दिफाई सामान की तैयारी और खला के शोबे में नई बुलंदियों पर पहुँच रहा है। जनाब मोदी ने कहा कि उन्हें मुल्क के नौजवानों की कुव्वत पर फख्र है, जिन्होंने हालिया खेल मुकाबलों और बैनुल अक्वामी ओलंपियाड्स में उम्दा कारकर्दगी का मुजाहरा किया है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू और नायब सदर जमहूरिया CP राधाकृष्णन ने करगिल की लड़ाई के दौरान अपनी जान निछावर करने वाले मुल्क के दिलेर सिपाहियों को खराज अकीदत पेश करने में मुल्क की क़यादत की। इसके साथ ही खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ।
1: ये आकाशवाणी है, आप सुन रहे हैं उर्दू सर्विस की नशरियात। मीडिया वेव 1071 किलोहर्ट्ज़, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DD फ्री डिश पर। पेश खिदमत है प्रोग्राम मेरी पसंद। मेरी पसंद प्रोग्राम के साथ हिना मौज हाजिर है, आदाब कबूल कीजिए। समीन, आज हिंदुस्तान कारगिल विजय दिवस मना रहा है। आज हम उन शहीदों को याद कर रहे हैं जिन्होंने हमें अपनी कुर्बानियों से सरशार किया है। आइए अपने शहीदों को नगमों के जरिए खिराज अकीदत पेश करें प्रोग्राम मेरी पसंद में।

आज यानी 26 जुलाई हम मना रहे हैं कारगिल विजय दिवस। ये दिन सिर्फ एक फतेह का जश्न नहीं है सामीन, बल्कि उन जाबाज फौजियों के कुर्बानियों का को सलाम करने का भी दिन है जिन्होंने दुश्मन की गोलियों के बीच तिरंगे की आन बान और शान को बरकरार रखा। सन 1999 में कारगिल की बुलंद और बर्फ से ढकी चोटियों पर हिंदुस्तानी फौज ने बेमिसाल जुर्रत, सब्र और हिम्मत का मुजाहिरा किया। बेहद मुश्किल हालात, सख्त मौसम और दुश्मन की मजबूत पोजीशन के बावजूद हमारे जवानों ने हर चोटी पर तिरंगा लहराया और कामयाबी का परचम बुलंद किया।

सामीन, करगिल हमारे लिए ये पैगाम देता है कि वतन की मोहब्बत सिर्फ अल्फाज नहीं बल्कि एक ऐसा जज्बा है जिसके लिए हमारे जवान अपनी सबसे कीमती दौलत, अपनी जिंदगी तक कुर्बान कर देते हैं। आज हम उन तमाम शहीदों को खिराज अकीदत पेश करते हैं, उनके खानदानों के सब्र और हौसले को सलाम करते हैं और ये अहद करते हैं कि मुल्क की तरक्की, अमन और यकजहती के लिए हम हमेशा अपना किरदार निभाएंगे।

आज का दिन मुल्क के उन बहादुर सपूतों के नाम है जिन्होंने अपनी जान की परवाह किए बगैर वतन की हिफाजत की और दुनिया को ये बता दिया कि हिंदुस्तान की सरहदें महफूज हाथों में हैं। सरहद पे जो शहीद हुए उनका यही पैगाम, वतन से बढ़कर कुछ नहीं, यही हमारा मुकाम। तमाम बहादुर फौजियों और कारगिल के शहीदों को दिल की गहराइयों से सलाम, इसी दुआ के साथ कि हमारा मुल्क हमेशा अमन, तरक्की और इत्तेहाद की राह पर गामजन रहे। ये आखिरी नगमा आपकी समातों की नज़र इस प्रोग्राम का।

इसके साथ ही आज का मेरी पसंद प्रोग्राम खत्म होता है। यह आकाशवाणी है, आप सुन रहे हैं उर्दू सर्विस की नशरियात। मेरी अवेव 1071 किलोहर्ट्ज़, मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR और DD फ्री डिश पर। लीजिए सुनिए प्ले रेत समंदर। इसे तहरीर किया है जनाब ज़मन हबीब ने।

0: नहीं दौड़ सकती मैं।
1: और जरूरत भी नहीं जान, हम अपनी मंजिल तक पहुंच चुके हैं।
0: मंजिल? कैसी मंजिल?
1: ये जगह हमारी मंजिल है।
0: मैं समझी नहीं।
1: अरे समझाता हूँ, जरा जरा दम तो लेने दो।
0: इतनी तेज में पहले कभी नहीं दौड़ी। इतने अचानक क्या दौड़ने की सूझी? अच्छे भले हम उस पिकनिक स्पॉट पर थे, कितना मजा आ रहा था।
1: आ तो रहा था।
0: फिर वहां से भागे क्यों?
1: बस मुझे यहाँ पहुंचना था।
0: क्यों? बोलो ना, चुप क्यों हो?
1: जान, इस जगह को जरा गौर से देखो और बताओ तुम्हें ये जगह पसंद है?
0: क्यों?
1: No questions. बस मन की आंखों से देखो और बताओ।
0: ऐसी क्या खास बात है जगह?
1: मैंने कहा ना, सवाल नहीं, बस बताओ।
0: It's beautiful. ये तो उस पिकनिक स्पॉट से भी ज्यादा

0: सुनाते ये साहिल, वो बड़ी बड़ी चट्टाने, वहां साहिल पर वो टूटी हुई नाव, सामने समंदर, हर चीज अपनी असली हालत में, कहीं कोई बनावट नहीं। वो देखो क्षितिज की ओर, समंदर पे झुका हुआ आकाश जैसे अपनी सदियों की प्यास बुझा रहा है। सूरज की किरणों में नहाई हुई समंदर की बेचैन लहरें साहिल की चट्टानों पर कैसे कैसे अपना सर पटक रही है। और वो देखो, वो जहाज समंदर के सीने पे तैरता हुआ अपनी मंजिल की तरफ जा रहा है। उसके पीछे धूप में चमकते हुए बादल और ऊपर दिन भर का थका मांदा सूरज, जो बहुत जल्द समंदर की गोद में सर रखकर सो जाएगा।
1: फिर
0: समंदर की सुनहरी लहरें काली हो जाएगी, और जब आकाश के माथे पे चांद की बिंदियां चमकेगी, तो इन लहरों पर चांदनी की लंबी चौड़ी दूधिया चादर बिछ जाएगी। ऊपर आकाश में उड़ते हुए परिंदों को देखो, ऐसा लगता है जैसे लहरें आकाश में भी उठ रही हो।
1: रोमांटिक, एक्सीलेंट, तुमने तो पूरी कविता कह डाली।
0: रियली, इतनी खूबसूरत जगह के लिए जो भी कहूँ कम है।
1: That's right. तो तुम्हें ये जगह पसंद है?
0: किसे पसंद ना होगी भला?
1: नहीं, मुझे बस तुम्हारे पसंद से मतलब है।
0: Really?
1: तुम्हारी इन कचरारी आंखों और गुलाबी होठों की कसम।
0: तुम कितने अच्छे हो।
1: मैं कितना अच्छा हूँ?
0: मैं क्या?
1: Anyway, तो तुम्हें ये जगह पसंद है?
0: पसंद है? अरे बहुत बहुत बहुत बहुत बहुत पसंद है।
1: मुझसे भी ज्यादा?
0: तुमसे थोड़ा कम। You know, darling, बचपन से मेरा एक सपना था कि ऐसे ही किसी समंदर के किनारे मेरा एक छोटा सा घर हो, और मैं अपनी खिड़की के पास बैठी दिन भर समंदर की लहरों को गिनती रहूं, फिर शाम के वक्त सूरज को समंदर में उतरते देखूं, और जब रात आए तो सफेद चांदनी को लहरों पर थिरकते देखते देखते मुझे नींद आ जाए।
1: सपना अच्छा है। पर अगर मैं ये कहूं जान के तुम्हारा ये सपना बहुत जल्द हकीकत में बदलने वाला है, तो
0: मैं इसे तुम्हारा इस साल का सबसे अच्छा जोक मानूंगी।
1: और अगर मैं ये कहूं कि ये जोक नहीं, तो
0: तो मेरा ख्याल है कि हमें आगरे का टिकट कटवा लेना।
1: और अगर मैं ये कहूं तुम्हारा मतलब है मैं पागलपन की बातें कर रहा हूं?
0: और नहीं तो क्या?
1: जी नहीं, यही वो जगह है जहां हमारा मकान बनेगा।
0: You mean, यहाँ हमारा मकान बनेगा? ये समंदर के किनारे?
1: जी।
0: I just can't believe it.
1: You must, क्योंकि मैं कह रहा हूँ, मैं जान, देखो मेरी आंखों में झांक कर, देखो ना, इसमें ये समंदर है, इसका किनारा और तुम और मकान का नक्शा भी जो यहाँ तैयार होना है।
0: मगर
1: कुछ नहीं, इस साहिल पर हमारा मकान बनेगा जिसमें मैं रहूंगा और तुम।
0: इस वीराने में?
1: इस वीराने को हम आबाद करेंगे, हम इस रेत समंदर में मातों के फूल खिलाएंगे।
0: सच?
1: हाँ, और तुम यहाँ खिड़की के पास बैठी हुई दिन भर मेरी कही हुई बातों को याद करके मुस्कुराया करो, और तुम्हारे उस मुस्कुराहट से समंदर पर भटके हुए जहाजों को सही दिशा, लहरों को नई जिंदगी और मौजों को नई रवानी मिलेगी।
0: फिर
1: शाम के वक्त खुद को बना संवार कर तुम मेरे आने का इंतजार किया करोगी।
0: फिर
1: मेरे घर पहुंचने के बाद तुम मुझे अपने नरम नरम हाथों से गरम गरम कॉफी पिलाएगी।
0: फिर
1: मैं दिन भर

0: थकान भूलकर शाम के सूरज की तरह तुम्हारी आंखों में डूब जाया करूंगा। फिर रात होगी
1: तो क्या होगा?
0: वही जो भंवरे और फूल, चांद और जगमग और समंदर और प्यास के दरमियान होता है, ऐसा ही होगा ना? बोलो, चुप क्यों?
1: अगर आपकी रोमांटिक बातें खत्म हो गई हो तो चले यहां से।
2: आखिर तुम्हें यकीन क्यों नहीं आता कि मैं सच कह रहा हूँ?
1: माई डियर हस्बैंड, यार यकीन करने की कोई वजह भी तो।
2: लो, तुम्हें कहा था कि शहर के हंगामों से तुम ऊब चुकी हो, लोगों की भीड़ भाड़, गाड़ियों के शोर और पॉल्यूशन से दूर रहना चाहती हो।
1: हाँ, कहा तो था।
2: बस तो तुम्हारे कहने पर ही मैंने मकान के लिए जगह चुनी है। यहाँ ना शोर है ना हंगामा, नेचर तुम्हारे सपनों के मुताबिक बिल्कुल रियल इस्टेट की तरह।
1: लेकिन हंगामों से दूर भागने का मतलब ये तो नहीं कि हम इस वीराने में आ बसे।
2: अरे वीराना कहाँ है, उधर वो वहाँ पिकनिक स्पॉट है जो यहाँ से ज्यादा दूर भी नहीं है, और वहाँ वहाँ देखो वो उधर मछेरों की बस्ती है, आबादी भी ठीक ठाक है। ना जस्ट इमेजिन जान, एक तरफ पिकनिक स्पॉट, दूसरी तरफ मछेरों की बस्ती और बीच में हमारा मकान। कितना प्यारा लगेगा और कितना मजा आएगा यहाँ रहने। और फिर शहर भी यहाँ से बस 40 मिनट की दूरी पर। अब बताओ 40 मिनट की कोई दूरी होती है
1: तो क्या सचमुच हमारा मकान यहाँ बनेगा?
2: नहीं, चार्ट पेपर पर मकान का नक्शा मैं बनाऊंगा, रंग तुम भर देना। और
1: अरे अरे अरे, अरे तुम तो नाराज हो गए, मैं तो बस मजाक कर रही थी।
2: अरे ये क्यों नहीं कहती कि तुम्हें मेरी बातों का यकीन नहीं है?
1: ये तुमसे किसने कहा? तुम कहो और मैं यकीन न करूं, ऐसे तो हालात नहीं। अच्छा बताओ मकान कब तक तैयार हो जाएगा हमारा?
2: बहुत जल्द, फिर हम अपने पुराने मकान को छोड़कर यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे हमेशा।
1: That's great! ऐसे इतनी प्यारी जगह तुम्हें सूझी कैसे?
2: तुमने कहा कि तुम्हारा उस पुराने मकान में दिल घबराता है, बस मैंने मकान के लिए जगह ढूंढनी शुरू कर दी।
1: Wow!
2: ना, शहर में एक तो जमीन की कीमत आसमान को छू रही है और उस पर 10 और झमेले। और सच पूछो तो आजकल पॉल्यूशन इतना बढ़ गया है कि बस शहर में दम घुटने लगता है।
1: मुझे तो वैसे भी धुएं से एलर्जी है।
2: चलो बस कुछ ही दिनों की बात है, हम यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, पॉल्यूशन से तो छुटकारा मिलेगा। और यहाँ की ठंडी ताजा हवा के झोंके हमारी रूह तक।
1: क्या हुआ? देखो समंदर की लहरें यहाँ तक आ गई हैं।
2: लगता है मेरी मोहब्बत इनमें समा गई है।
1: मतलब?
2: देखती नहीं तुम्हारे पांव चूमकर कैसी मस्ती में थिरक रही है ये।
1: बस यही, इसके अलावा भी तुम्हें कुछ सोचता है भला?
2: अरे वही जिसकी तुम्हारे जैसी खूबसूरत बीवी हो उसे और क्या सोचेगा।
1: अच्छा अच्छा बस रहने भी दो ये चोंच ले। ये बताओ ना हमारा मकान कैसा होगा? मेरा मतलब है कितने कमरे होंगे, कितनी खिड़कियां होंगी, कितने दरवाजे होंगे, मैं स्टडी कहाँ बनाऊंगी?
2: यही डिसाइड करने के लिए मैं तुम्हें यहाँ लाया। यहाँ देखो, यहाँ से जहाँ हम खड़े हैं ना वहाँ तक,
1: उस बड़े पत्थर तक।
2: नहीं नहीं नहीं, उससे आगे वो जो टूटी हुई नाव पड़ी है ना वहाँ तक का एरिया हमारा है।
1: क्या वहाँ तक? इतना बड़ा एरिया?
2: यस, यहाँ से वहाँ तक का एरिया हमारा है।
1: अरे वाह, इसमें तो अच्छा खासा मकान बन जाएगा, कई कमरे निकल आएंगे।
2: कई कमरे?
1: हाँ कई कमरे।
2: रहे ना औरत की औरत। अरे हमें ज्यादा कमरों की क्या जरूरत है?
1: तो क्या इतने बड़े एरिया में एक कमरे का मकान बनाओगे?
2: इस सारे एरिया में सिर्फ मकान थोड़ी बनेगा,
1: फिर
2: वो आधे हिस्से में तो हम बाग लगाएंगे जिसमें तरह तरह के फूल होंगे, ऐसे ऐसे नायाब फूल जो किसी के पास ना हो।
1: फिर भी जरूरत के कमरे तो होने ही चाहिए।
2: जरूरत के कमरे?
1: जैसे ड्राइंग रूम, डाइनिंग रूम, रेस्ट रूम, स्टडी, बेडरूम, गेस्ट रूम।
2: गेस्ट रूम? नो, हमारे मकान में कोई गेस्ट नहीं आएगा।
1: अच्छा, और अगर आ गया तो क्या उसे भगा दोगे?
2: और नहीं तो क्या, मैं नहीं चाहता कि हमारे बीच कोई कबाब में हड्डी बने। यहाँ तो बस

0: तुम दूसरा कोई नहीं।
1: और मम्मी, क्या तुम मम्मी को हमारे साथ नहीं रखोगे?
2: मम्मी वो अपने पुराने मकान में रहेंगी।
1: क्यों, वो क्यों रहेंगी पुराने मकान में? वो हमारे साथ ही रहेंगी, समझे?
2: वो तुम समझती क्यों नहीं?
1: मैं सब समझती हूँ। तुम्हें मेरी मम्मी अच्छी नहीं लगती। तुम उन्हें बहुत समझते हो।
2: जान, ये बात नहीं है।
1: बिल्कुल यही बात है। तुम कितने सेल्फिश हो, ये मुझे आज पता लगा। तुम्हारा कितना ख्याल रखती है वो, और तुम उन्हें अकेला छोड़कर आना चाहते हो।
2: अब मेरी भी बात सुनोगी या अपनी कहती जाओगी? भाई, मैंने मम्मी से बात की थी, लेकिन वो अपने पुरखों का मकान छोड़ना नहीं चाहती।
1: तुमने बात की थी? सच कह रहे हो?
2: हाँ, सच, बिल्कुल। और जान, तुम भी एक वादा करो, कल जब मैं इस दुनिया में नहीं रहूंगा तो तुम भी हमारे इस मकान को छोड़कर नहीं जाओगे।
1: बस ऐसे अशुभ बातें मत करो, वरना मैं
2: अभी तो चेहरा गुस्से से लाल हो रहा था और अब आंखों से मोती टपकने लगे।
1: तुम ऐसी बातें क्यों करते हो कि रोना आ जाए?
2: पर अगर मैं ये कहूँ कि मैं 1000 साल तक मरने वाला नहीं,
1: तो मैं हंस दूंगी।
2: ओके ओके, लेकिन मकान हम पुराने स्टाइल का बनाएंगे। I mean, थोड़ा कुछ एथनिक टच होना चाहिए।
1: That's lovely. मैं भी यही चाहती हूँ। समंदर के किनारे पुराने तर्ज का मकान कितना प्यारा लगेगा।
2: राइट। मकान की दीवारें सफेद होंगी, बिल्कुल आसमानी बर्फ की तरह सफेद, और छत छप्पर की बनेगी।
1: सफेद दीवारों पर छप्पर की छत?
2: जी।
1: Oh no, that's not the right combination.
2: ठीक है, तो फिर तुम ही बताओ तुम्हारे हिसाब से क्या होना चाहिए।
1: मेरे हिसाब से तो सफेद दीवारों पर रेड टाइल्स की छत ज्यादा खूबसूरत लगेगी।
2: टाइल्स हैं? No, it has become very much urban nowadays. कुछ और सोचो।
1: और क्या सोचूं?
2: मेरे ख्याल से तो छप्पर की छत ही ठीक रहेगी। दरवाजे और खिड़कियों से लिपटी हुई लताएं मकान की खूबसूरती में और इजाफा करें।
1: ठीक है, खिड़कियों में पुराने स्टाइल के शीशे लगवाएंगे। हाँ, तुम समझ रहे हो ना, फ्रेंच विंडोज।
2: जी।
1: और दरवाजे के ऊपर दीवार के साथ एक बहुत बड़े हिरन के सींग लगा देंगे।
2: फिर बहकने लगे है? तो औरतों में यही बुरी आदत है, फौरन ख्याली पुलाव बनाना शुरू कर देते।
1: क्यों, इसमें ख्याली पुलाव वाली क्या बात है?
2: अरे भाई, हम एक आम आदमी हैं, कोई राजा महाराजा नहीं कि हिरन के सींग और शेर की खाल से अपना घर सजाएं। और पहली बात तो जान ये है कि हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते, और दूसरी ये कि आजकल का कानून भी इसकी इजाजत नहीं देता। अरे, वाइल्ड लाइफ वाले पीछे पड़ जाएंगे हमारे, समझी?
1: तो क्या अब हिरन के सींग नहीं लगेंगे?
2: हाँ, हिरन के सींग नहीं लगेंगे, लेकिन उसकी आंखें जरूर हमारे मकान में।
1: हिरन की आंखें?
2: हाँ, हिरन की आंखें।
1: हिरन की आंखों का क्या करोगे?
2: उसमें मैं सारी दुनिया को देखूंगा, क्योंकि सारी दुनिया उन आंखों में सिमट कर आ जाएगी।
1: पता नहीं क्या कह रहे हो तुम, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा।
2: अरे मेरी जान, ये जो तुम्हारी झील से भी गहरी आंखें हैं ना, ये हिरन जैसे ही तो है।
1: तो आप वहां थे?
2: जी हाँ, और कोई जगह भी तो नहीं रहने की।
1: छोड़ो ना। जनाब, अगर थोड़ी देर और मुझे अपनी बाहों में लिए रहना तो कयामत आ जाएगी।
2: ओ जान,
1: बोलो ना, हम कहाँ थे? फिर वही।
2: नहीं, मेरा मतलब है दरवाजे और खिड़कियों से लताएं लिपटी होंगी, यही ना है? ऐसा करेंगे जान, खिड़कियों में पुराने स्टाइल के शीशे लगे होंगे और मकान की सफेद दीवारों पर छप्पर की छत होगी।
1: हाँ, और अबाबीले हमारी छतों में अपने घोंसले बनाएंगी, और सारस भी गर्मियों में छत के ऊपर की पयाल में रहा करेंगे।
2: सारस? लेकिन सारस यहाँ कैसे रहेंगे? ना यहाँ तो ना मैदान है ना दलदले।
1: कुछ भी हो, सारस यहाँ जरूर होने चाहिए। मैं उन्हें हर रोज शाम के वक्त उड़ते हुए

0: अपने घोंसले में आते देखना चाहती हूँ और उनके बच्चों की तरफ देख देख कर जब अपनी लंबी लंबी पतली पतली टांगों पर नाचेंगे और अपने पर फड़फड़ाएंगे और जब यूं मालूम होगा कि वो सहने मुंह के बल अब गिरे कि तब गिरे मैं खूब हंसना चाहूंगी।
1: अच्छा अच्छा ठीक है, तो हम एक सारस रख लेंगे लेकिन उसके बच्चे नहीं, हाँ उन पर बहुत ज्यादा खर्चा आ जाएगा। और उनकी जगह हम एक बड़ा सा तोता पाल लेंगे, हाँ उसका पिंजरा जो है हमारे खाने के कमरे में होगा और जब हम नाश्ते के लिए कमरे में जाया करेंगे तो वो तुम्हें कहा करेगा, गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग मैम। खाने के कमरे में दीवारों का रंग हरा होना चाहिए और अलमारी में तरह तरह के बर्तन और तश्तरी और कुर्सियां भी हरे रंग की लकड़ी के पुश्तों वाली जिस पर फूल पत्ते बने हों और एक कोने में हरे रंग की मेज पर ओल्ड मॉडल की चांदी की चायदानी और प्यालियां रखी।
0: हरे रंग की दीवारें
1: जी,
0: हरे रंग की कुर्सियां
1: जी,
0: हरे रंग की मेज। तुम क्या ग्रीन रेवोल्यूशन लाना चाहते हो?
1: क्यों क्यों, हरा रंग तुम्हें पसंद नहीं
0: है? मगर खाने के कमरे में हरे रंग की कोई गुंजाइश नहीं। अब जरा सोचो, खाते वक्त भी ऐसा लगेगा जैसे हम ऑपरेशन थिएटर में बैठे हों।
1: अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है, तुम ही बताओ कौन सा रंग चाहते हो?
0: भूरा।
1: भूरा, तो ओके, खाने के कमरे के लिए भूरा रंग डिसाइडेड।
0: थैंक यू। अच्छा सुनो, ड्राइंग रूम कैसा होगा?
1: ड्राइंग रूम उसकी 3 खिड़कियां होनी चाहिए जहां से नजर दरख्तों की चोटियों को पार करती हुई समंदर तक जा पहुंचे।
0: लेकिन इस तरह तो सुबह से दोपहर तक कमरा धूप से भरा रहेगा।
1: नहीं जान, खिड़कियों के आगे छज्जे लगे होंगे और उन पर खुशबूदार फूलों से लदी हुई बेलें पड़ी होंगी, इसलिए धूप अंदर नहीं आ सकेगी बल्कि चंद लंबी सुनहरी किरणें फर्श और कमरे के साजो सामान बनाकर पड़ा करेंगे। कमरे के बीचों बीच एक येलोइश लकड़ी की मेज होनी चाहिए जिसके पाए शेर के पंजों की तरह भारी भारी होंगे और नीचे नीचे नरम नरम कुर्सियां।
0: हाँ, और कोने में एक शानदार ग्रैंड पियानो रखा होगा।
1: पियानो? फिर तुमने फिल्मी अंदाज में सोचना शुरू कर दिया। पियानो रखकर क्या करेंगे, ना तुम्हें बजाना आता है ना मुझे।
0: फिर भी कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट तो होना ही चाहिए।
1: हाँ मगर पियानो बहुत महंगा आता है, हम पियानो की जगह सितार रख लेंगे।
0: चलो ठीक है, मगर वो मेरी सिलाई की मशीन कहाँ रखी जाएगी?
1: अरे हाँ, सिलाई की मशीन। सिलाई की मशीन जान, यहाँ ये बीच वाली खिड़की के पास जिसके शीशे पर खूबसूरत डिजाइन बने होंगे और अच्छे अच्छे कोटेशंस गहरे नीले हल्के सुर्ख पीले अंगूरी रंग में लिखे जाएंगे। खिड़की में लताएं होंगी और कांच के लंबे लंबे गुलदानों में नरगिस के सफेद सफेद फूल तुम्हें देखकर मुस्कुराएंगे और शीशे में बड़े से बर्तन में सुनहरी मछलियां तुम्हारे हाथों से रोटी के टुकड़े ले लेकर खाएंगे।
0: हाँ, और कबूतर भी होने चाहिए।
1: हाँ कबूतर, बर्फ की तरह सफेद और समंदर की तरह नीले कबूतर। जान, जब तुम बरामदे की सीढ़ियों पर गुलाब के पौधों के पास खड़ी होगी ना तो वो तुम्हारे सर के इर्द गिर्द चक्कर काटे, तुम्हारे सर पर कभी कांधों पर और कभी हाथों पर आकर बैठ जाएगी और तुम उनकी तरफ दाने फेंका करोगे और खुश होगी।
0: सुनो, रेस्ट रूम और तुम्हारी स्टडी, उसका क्या करोगे?
1: रेस्ट रूम का रुख मेरे ख्याल से पूरब की तरफ होना चाहिए। और उसकी खिड़की के बाहर नारियल का एक बहुत बड़ा दरख्त हो जिसके नीचे नरम नरम हरी हरी घास पर बेत की आराम दे कुर्सियां बिछी हो और हम नरम नरम धूप का मजा ले सके।
0: अच्छा सुनो, रेस्ट रूम का फर्नीचर कैसा होगा?
1: मैं ये फैसला तुम खुद ही कर लो क्योंकि ये तुम्हारा कमरा होगा।
0: नहीं, तुम ही बताओ ना।
1: ओके, मैं ही बता देता हूँ। रेस्ट रूम की हर चीज सफेद होगी, सफेद फर्श, सफेद मेज, सफेद कुर्सियां, दीवारों पर भी सफेद वॉलपेपर होंगे जिसमें लाल गुलाब प्रिंट होंगे। खिड़कियों के पर्दे भी फर्नीचर से मिलते जुलते, यानी कि सफेद। कमरे के बीचों बीच हम मेज रखेंगे और उसके ठीक ऊपर हम वो झाड़ लगा देंगे जान, जो हमारे पास मौजूद है। और उस झाड़ के मोती जब सितारों की तरह चमकेंगे तो बस रेस्ट रूम

0: मेरे ख्याल में अब घर चलना चाहिए। तुम्हारी मम्मी चाय लिए हमारा इंतजार कर रही होगी। आओ चले।
1: सुनो, मेरा तो जी चाह रहा है हम किसी होटल में खाना खाते हुए चलते हैं।
0: खाना? जान, तुम तो जानती हो कि हमारे पास।
1: आई एम सॉरी डियर, मैंने तो यूं ही बिना सोचे समझे कह दिया था।
0: कोई बात नहीं जान, अगर हम यहाँ से बस पकड़ेंगे तो हम दोनों का किराया 6 रुपए लग जाएगा।
1: 6 रुपए? हमारे पास तो सिर्फ 4 ही रुपए हैं।
0: कोई बात नहीं, अगले स्टॉप से किराया 2 रुपए लगता है, हम वहां तक पैदल चलते हैं।
1: इस तरह बारिश में भीगने का मजा भी आएगा।
0: हाँ, और बारिश में भीगने का तो मजा ही कुछ और होता है।
1: क्या?

रेत समंदर, अभी आप ये प्लेस सुन रहे थे। इसे तहरीर किया था जनाब जमन हबीब ने। ये आकाशवाणी है, आप सुन रहे हैं उर्दू सर्विस की नशरियात मीडिया वेव 1071 किलोहर्ट्ज पर। पेश खिदमत है फिल्मी नगमों पर मबनी प्रोग्राम फिल्म म्यूजिक।

रेखा भारद्वाज की आवाज में प्यांग सईद कादरी का लिखा हुआ ये नगमा आपने सुना। मौसिकी प्रीतम ने तरतीब दी थी। फिल्म बर्फी से था ये नगमा। अगला नगमा फिल्म ये जवानी है दीवानी। रेखा भारद्वाज और तोची राणा ने इसको अपनी आवाज़ दी है और इसके बोल लिखे हैं अमित भट्टाचार्य ने।

फिल्म जब तक है जहाँ, हर्षदीप कौर की आवाज़, बोल गुलजार के और एआर रहमान की मौसिकी से सजा हुआ ये नगमा भी आपने सुना। अगला नगमा फिल्म मैरी कॉम से है, आवाज़ विशाल ददलानी की है, बोल संदीप नाथ के और मौसिकी शिवम की।

ध्वनि भानुशाली की आवाज़, नोटबुक फिल्म और मौसिकी विशाल मिश्रा की। इस खूबसूरत सी नगमे को भी आपने सुना। अगला नगमा आपको सुनवा रहे हैं फिल्म केदारनाथ से। आवाज़ अरिजीत सिंह की है, बोल अमिताभ भट्टाचार्य की, और मौसिकी से सजाया है इसे अमित त्रिवेदी ने।

0: इसके साथ ही फिल्मी नगमों का आज का प्रोग्राम ख़त्म होता है। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है, मीडियम वेव 1071 किलो हर्ट्स, मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR और DD फ्री डिश पर। वक्त है खबरों का।
1: ये आकाशवाणी है, अब आप कलीम अहमद से खबरें सुनिए। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज करगिल विजय दिवस के मौके पर मुल्क के जाबाजों को याद करते हुए मुल्क के लिए उनकी कुर्बानी सभी को फ़ख्र से सरशार कर देती है। आकाशवाणी पर मन की बात प्रोग्राम में जनाब मोदी ने भारतीय साइंसदानों और इंजीनियर्स की इज्तिमाई कोशिशों और कारकर्दगी की सताइश की, जिसके नतीजे में भारत दिफाई सामान की तैयारी और खला के शोबे में नई बुलंदियों पर पहुँच रहा है। जनाब मोदी ने कहा कि उन्हें मुल्क के नौजवानों की क़ुव्वत पर फ़ख्र है, जिन्होंने हालिया खेल मुकाबलों और बैनुल अक़वामी ओलंपियाड्स में उम्दा कारकर्दगी का मुजाहरा किया है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू और नायब सदर जमहूरिया CP राधा कृष्णन ने करगिल की लड़ाई के दौरान अपनी जान निछावर करने वाले मुल्क के दिलेर सिपाहियों को खराज अक़ीदत पेश करने में मुल्क की क़्यादत की। सरकार ने भारतीय शहरियों पर जोर दिया है कि वो बहरे अस्वद के खित्ते में कमर्शियल बहरी जहाज़ों पर काम करने की पेशकश कबूल करते वक्त मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल को मलहूज़ ख़ातिर रखें। और अनाहत सिंह ने आलमी जूनियर स्क्वैश चैम्पियनशिप में लड़कियों का सिंगल्स टाइटल जीत कर तारीख साज कारनामा अंजाम दिया है, वो ये एजाज़ हासिल करने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बन गई हैं। अब खबरें तफसील से। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज करगिल विजय दिवस के मौके पर यह कहते हुए मुल्क के जांबाजों को खराज अकीदत पेश किया है कि खा ये दिफाई सामान की तैयारी हो, दिफाई बरामदात हों या दोस्त मुल्कों के साथ सियासी इश्तराक की बात हो, भारत लगातार नई बुलंदियों पर पहुंच रहा है। आकाशवाणी पर मन की बात प्रोग्राम में मुल्क के लोगों से खिताब करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि आज 26 जुलाई की तारीख एक ऐसा दिन है जिसे याद रखने के लिए कैलेंडर की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आज करगिल विजय दिवस मनाया जा रहा है। वज़ीर आज़म ने कहा कि इस साल एक खसूसी शौर्य विजय यात्रा का अहतमाम किया गया है, जो दिल्ली में नेशनल वार मेमोरियल से 14 जुलाई को शुरू हुई। ये मोटरसाइकिल रैली द्रास में करगिल वार मेमोरियल पहुंचेगी। इसका पैगाम है एक सफ़र, एक मुल्क, एक सलाम। जनाब मोदी ने कहा कि ये सफ़र सभी को इस बात की याद दिलाता है कि मुल्क के लिए की गई कुर्बानी को कभी भी फरामोश नहीं किया जा सकता। वज़ीर आज़म ने कहा कि भारत लगातार अपनी तकनीकी सलाहियत को मुस्तहकम बना रहा है। उन्होंने भारतीय बहरिया में INS महेंद्र गिरी को हाल ही में शामिल किए जाने का तذکرہ किया। वज़ीर आज़म ने कहा कि गुज़िश्ता इतवार को विक्रम 1 के कामयाब लॉन्च के बाद हर भारतीय फ़ख्र से सरशार हो गया। जनाब मोदी ने कहा कि ये भारत का ऐसा पहला रॉकेट है जिसे प्राइवेट शोबे ने तैयार किया है। उन्होंने काबिले कद्र हुनरमंदी, जज्बे और सब्र तहमुल का मुजाहरा करने पर नौजवान इख्तिराकारों की सताइश की। कैच द रेन के बारे मुहिम के बारे में बात करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि 4 जुलाई से पूरे मुल्क में एक खसूसी मुहिम चल रही है। मन की बात के अपने खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा कि हर भारतीय शहरी दौलत मुश्तरका खेलों में हिस्सा लेने वाले सभी एथलीट्स का जोश बढ़ा रहा है, जो कुछ दिन पहले ग्लासगो में शुरू हुए हैं। जनाब मोदी ने इस बात पर फख्र का इजहार किया कि भारतीय नौजवानों ने हाल ही में खेलों के शोबे में नुमाया कारनामे अंजाम दिए हैं। वज़ीर आज़म ने साइंस ओलंपियाड का तذکرہ करते हुए कहा कि बड़ी तादाद में तलबा ने इन मुकाबलों में हिस्सा लिया। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथमेटिक्स में ओलंपियाड मुकाबले इसी महीने हुए हैं। इन मुकाबलों में भारतीय टीमों ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया। वज़ीर आज़म ने मन की बात के आज के नशरिए में कश्मीर की रिवायती वगू चटाई का तذکرہ किया, जो सरकंडे और धान के तिनकों से बनाई जाती है। माहौलियात के लिए साजगार इस तरह की चटाई बनाने की रिवायत बरसों से चली आ रही है। जनाब मोदी ने कहा कि मुल्क वोकल फॉर लोकल के मंत्र के साथ आगे बढ़ रहा है। उन्होंने लोगों पर जोर दिया कि वो कश्मीर की वगू चटाई को अपने घर का हिस्सा बनाएं। वज़ीर आज़म ने इस बात पर इत्मीनान का इजहार किया कि मुल्क भर में लोग एक पेड़ माँ के नाम मुहिम के जरिए फितरत के तहत अपनी जिम्मेदारी को पूरा कर रहे हैं। जनाब मोदी ने इस बात पर खुशी का इजहार किया कि तकरीबन 60 साल बाद गुजरात के गिर जंगलात में इंडियन ग्रे हॉर्नबिल परिंदा फिर से वहाँ अपना मस्कन बना रहा है। मन की बात के आज के नशरिए में जनाब

साथियों, कार्यक्रम की शुरुआत की हमने इस देशभक्ति गीत के साथ, क्योंकि आज का दिन जो है वो बड़ा ख़ास है। आज पूरा देश मना रहा है कारगिल विजय दिवस। ये दिन उन शहीदों को समर्पित है जिन सैनिकों ने अपनी जान की बाजी लगाकर हमारे देश की सीमा की रक्षा की और आज जिनकी वजह से हम सुरक्षित हैं। ये सैनिक ही हैं जो हर बुरे मौसम में, जिस वक्त हम घर में रहकर आराम से अपनी ज़िंदगी बिता रहे होते हैं, उस समय कड़ी धूप, गर्मी, तूफ़ान, बारिश, हर बुरे से बुरे मौसम में ये सैनिक मुस्तैद रहते हैं सीमा पर। 1971 में भारत पाक युद्ध जब हुआ तो कई सैनिक उसमें घायल हुए, कईयों ने अपनी जान की बाजी लगा दी। उसके बाद 1978 में दोनों देशों ने परमाणु परीक्षण किए, जिससे तनाव और बढ़ गया और अंत में 1999 में कारगिल युद्ध हुआ। कारगिल युद्ध, जिसे कारगिल संघर्ष के रूप में भी जाना जाता है, ये मई से जुलाई के बीच जम्मू और कश्मीर के कारगिल, अब जो है कारगिल वो लद्दाख के अंतर्गत आ गया है, वहाँ LOC पर लड़ा गया था ये युद्ध। वर्ष 1999 में भारत पाकिस्तान ने अंत में शांतिपूर्ण तरीके से कश्मीर मुद्दे को पारस्परिक रूप से हल करने के लिए लाहौर समझौते पर हस्ताक्षर किए, लेकिन पाकिस्तानी सैनिकों ने ऑपरेशन बंदर के तहत LOC यानी नियंत्रण रेखा के भारतीय पक्ष की तरफ घुसपैठ शुरू कर दी और इस उम्मीद में कि सियाचिन में भारतीय सैनिकों को वो पराजित कर पाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। भारतीय सेना ने ऑपरेशन विजय शुरू करके करारा जवाब दिया और 3 मई 1999 को पाकिस्तान में जब ये युद्ध शुरू किया, तब उसने लगभग 5,000 सैनिकों के साथ कारगिल की चट्टानी पहाड़ियों में ऊंची ऊंचाई पर घुसपैठ की और उस पर कब्जा कर लिया। जब भारत सरकार को इस विश्वासघात की जानकारी मिली तो भारतीय सेना आगे आई। भारतीय सेना ने भारतीय क्षेत्र पर कब्जा करने वाले घुसपैठियों को खदेड़ निकालने के लिए ऑपरेशन विजय शुरू किया और उसके बाद हम जानते हैं कि इतिहास हमारे ही पक्ष में है। जीत हासिल हुई और जीत हासिल हुई, साथ ही कई सैनिक शहीद हुए, उनकी याद में हर साल मनाया जाता है कारगिल विजय दिवस आज ही के दिन।

साथियों, जैसा कि हम गीत से पहले बात कर रहे थे कि आज कारगिल विजय दिवस है और ये जो सैनिक हमारे देश की रक्षा करते हैं वो सिर्फ ये संदेश नहीं देते कि देश के वासी आपस में प्रेम प्यार रखें और देश के प्रति प्रेम रखें, वो ये भी संदेश देते हैं कि जीवन को कैसे जीना चाहिए। जीवन ऐसा होना चाहिए जो अपने जीवन पर केंद्रित ना हो, जो दूसरों के लिए भी सोचे, जो समाज के लिए काम करे, जो देश के लिए भी काम आए। हम चाहें तो सैनिकों से बहुत कुछ सीख सकते हैं, जीवन कैसा होना चाहिए, किस तरह से वो चुनौतियों का सामना करते हुए भी अपने आप को मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ रखते हैं, जिंदगी को खुल के जीते भी हैं, तकलीफ़ें भी सहन करते हैं लेकिन अपने आप को फिर भी मजबूत बनाए रखते हैं। और जब भी हम किसी सैनिक से मिलें तो उनका जज्बा देखने लायक होता है, उनके चेहरे पर एक शान भरी मुस्कान होती है और देश के लिए कर गुजरने की एक दृढ़ इच्छा शक्ति। साथियों, वो सैनिक जो अपने घर परिवार से, अपने माता पिता, अपने परिवार के दूसरे सदस्यों से न जाने कितनी दूर रहते हैं और कितने कितने महीनों तक घर नहीं आ पाते, उनका मानसिक स्वास्थ्य कितना मजबूत होगा। हमें उनसे सीख लेनी चाहिए कि किस तरह से विपरीत परिस्थितियों में भी अपने आप को, अपनी मनस्थिति को मजबूत बनाए रखना है। मगर फिर भी हम सोचते हैं ज़्यादातर लोग कि शरीर अगर स्वस्थ है, कोई शारीरिक बीमारी नहीं है तो सब ठीक चल रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है। कोई व्यक्ति बहुत गुस्सा करता है, छोटी छोटी बात पर आग बबूला हो जाता है, या किसी को मारने दौड़ता है, या कोई चीज़ उठाकर फेंक देता है, तो ये गुस्सा आम नहीं है। लोग समझ लेते हैं कि ये तो उसकी आदत है, लेकिन असल में ये किसी मानसिक रोग की शुरुआत हो सकती है। अक्सर हम देखते हैं अस्पतालों में ऐसे लोग भर्ती हो जाते हैं जो एकदम से गुस्सा कर गए, वॉयलेंट हो गए, यानी आक्रांत हो गए। चार पांच लोग उनको पकड़ कर अस्पताल लेकर जाते हैं, फिर उन्हें कोई नींद की गोली या इंजेक्शन दिया जाता है, फिर वो जाकर शांत होते हैं। तो ऐसा अक्सर उन लोगों के साथ होता है जो धीरे धीरे धीरे अपने अंदर कोई चिंता, कोई गुस्सा पालते रहते हैं और वो एकदम से किसी दिन किसी अवसर पर बर्स्ट हो जाता है, फूट जाता है। इसी तरह कोई इंसान अगर हमेशा उदास रहता है, घर के काम में मन नहीं लगता, कामकाज ऑफिस में मन नहीं लगता, गीत संगीत में रुचि नहीं है, खेलने कूदने में या शरीर की तरफ भी बेसुध हो जाता है, ऐसे अवसाद के रोगी यही लक्षण प्रकट करते हैं शुरुआत में। और अगर ना ध्यान दिया जाए तो ऐसे ही लोग आगे चलकर एक बुरा कदम उठा लेते हैं, कुछ लोग सुसाइड यानी कि आत्महत्या तक कर लेते हैं। ये छोटे छोटे जो लक्षण हमें दिखाई देते हैं अपने घर परिवार में, आस पड़ोस में, कुछ लोगों में, अगर हम उन्हें ये समझाएं कि ये आम जरूर हो सकता है लेकिन ये नॉर्मल नहीं है, ज़रूरी है कि उनको समझाया जाए कि किसी डॉक्टर से राय लें, डॉक्टर से मिलें, क्योंकि ऐसा करने से रोग को शुरू में ही पकड़ा जा सकता है। मानसिक रोग वो हैं जो दिखाई नहीं देते। जब संयुक्त परिवार हुआ करते थे तो लोगों के पास कोई ना कोई व्यक्ति होता था जिससे वो अपने मन की बात कर पाते थे, दिल खोल के बातें हो जाती थी तो तनाव कम हो जाता था। लेकिन अब जब शहरीकरण बढ़ रहा है, हम शहरों की तरफ रह रहे हैं और परिवार जो है वो न्यूक्लियर यानी कि छोटे हो गए हैं, तब लोगों के घर में तीन या चार लोग होते हैं तो बातचीत करने का लोगों के पास मौका भी नहीं होता और लोग भी नहीं होते। ऐसे में ज़रूरी है कि सरकार द्वारा जो मानसिक स्वास्थ्य हेल्पलाइन है उसकी भी मदद ली जाए।

अगर समय रहते डॉक्टर के पास पहुंच जाएंगे तो बच जाएंगे। साथ ही कोई ग्रीफ यानी कि किसी गम की वजह से जो लंबा खिंच जाता है, इंसान तनाव में रहता है, अवसाद में चला जाता है, उनका भी इलाज है। ऐसे में प्राकृतिक चिकित्सा और अल्टरनेटिव थेरेपीज़ या पद्धतियाँ जिसे हम कहते हैं होम्योपैथी, आयुर्वेद, ये भी बड़े काम की हैं। होम्योपैथी में तो मन पर काम किया जाता है। जिन्हें गुस्सा बहुत आता है, सही दवाई के सेवन से गुस्सा नियंत्रित होने लगता है और इसमें कोई नींद की दवाई भी नहीं दी जाती। जो अवसाद में लंबे समय से हैं बिना कारण, परिवार में किसी की मृत्यु हुई थी आज तक नहीं भूल पाए, वो सब भी होम्योपैथिक दवाइयों से कवर हो जाता है। लोग फिर से एक खुशहाल जिंदगी जीना शुरू कर देते हैं। तो साथियों, तरीके कई हैं, बात यह है कि हम अपने आसपास हो रही चीज़ों पर ध्यान दें, अपने मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान दें। शारीरिक स्वास्थ्य से ज़्यादा ज़रूरी मानसिक स्वास्थ्य है आज के समय में, क्योंकि हमारे पास एक ऐसा यंत्र है जो काम का तो है लेकिन हम उसका इस्तेमाल ज़्यादातर तनाव बढ़ाने के लिए करते हैं, वो है स्मार्टफोन। दुनिया क्या कर रही है, दुनिया दिखा कुछ और रही है, अंदर वो भी परेशान चल रहे होते हैं, लेकिन हम उनकी अच्छी अच्छी चीज़ें देख करके फियर ऑफ मिसिंग आउट में चले जाते हैं कि वो तो इतना कुछ कर पा रहे हैं, हम नहीं कर पा रहे, ये तनाव खा जाता है। इसलिए ज़रूर डॉक्टर को दिखाना चाहिए, राय लेनी चाहिए सही समय पर, वरना तनाव बढ़ने पर ज़िंदगी बहुत बुरी हो जाती है।

0: कहानी है एक फोटोग्राफर और उसके अंतर्मन की।
1: ओह लवली, वेल डन।
0: बिजनेस लोन अप्रूव्ड।
1: अब होगा बड़ा स्टूडियो, नया कैमरा, नई लाइट्स। लगे हाथ नई कार भी ले लो उसी लोन से। नो, लोन लिए गए काम में ही लगाओ, समय से ईएमआई चुकाओ, क्रेडिट स्कोर बढ़ाओ और अगला लोन आसानी से पाओ। कार नहीं तो मेरी फोटो तो ले लो। आप कौन?
2: आरबीआई कहता है,
3: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।
4: साथियों, एक और चीज है जिसका हमें ख्याल रखना चाहिए अपने स्वास्थ्य के लिए, शरीर के स्वास्थ्य के लिए भी और मन के स्वास्थ्य के लिए, दोनों के लिए जरूरी है कि हम नशे से दूर रहें। युवाओं में ये प्रचलन है कि नशा करना कूल होता है, वो या तो एक्सपेरिमेंट यानी कि कुछ नया करने की सोच में ऐसा करते हैं, या फिर इस सोच में कि बाकी लोग कर रहे हैं तो हम भी करके देखते हैं। लेकिन नशा एक ऐसी लत है जो इंसान को जकड़ लेती है और इंसान कब इसके शिकंजे में फंस जाता है पता ही नहीं लगता। तो बेहतर है इसकी शुरुआत ही ना की जाए, नशा किया ही ना जाए। बहुत प्रकार के नशे समाज में फैले होते हैं, हर देश और इलाके में अलग अलग प्रकार का नशा है, भांग, अफीम, चरस, हशीश, शराब। ये सब नशे इंसान को कब अपनी चपेट पर ले लेते हैं, परिवार के परिवार तबाह हो जाते हैं, ये हम सब लोग जानते हैं, देखते भी हैं, सुनते भी हैं। और बचपन से स्कूल में इनके बारे में कई लेख हमने पढ़े भी हैं, कई निबंध भी लिखे हैं। लेकिन जब बात हकीकत में इस पर अमल करने की आती है, यानी युवा अवस्था में, तब हम चूक जाते हैं। अगर हम मर्म को समझें तो बात ये है कि जिस सोच के साथ नशा शुरू किया जाता है, उस सोच के साथ अगर बाकी सब कुछ करना शुरू कर दें तो ज़िंदगी सचमुच में हसीन होगी। नशा तो गर्त में लेके जाता है, लेकिन ज़िंदगी जीने का असली मज़ा खेलकूद में है, कुछ अचीवमेंट करने में है, अपने करियर के अंदर कुछ हासिल करने में है, शरीर को स्वस्थ सुडोल बनाने में, दुनिया घूमने में, लोगों के साथ जुड़ने में। जिंदगी जीने का असली तरीका ये है, इसमें मजा आता है। जब हम ये समझ जाएंगे कि जिंदगी जीने का असली मजा किसमें है, तो फिर नशे की तरफ कभी नहीं जाएंगे। नशा इंसान को खोखला कर देता है, कमजोर कर देता है। कई बार हम देखते हैं उन लोगों को जो पीड़ा से, तकलीफ से गुजर रहे होते हैं, क्योंकि नशे की लत लग चुकी है, अब नशा मिलता नहीं तो बड़ी तकलीफ होती है। ऐसे लोग अगर हमें अपने आसपास दिखाई दें तो पुलिस को भी सूचित करना चाहिए, उनका अस्पताल में जाकर इलाज करवाना चाहिए, क्योंकि इलाज के साथ ही मुमकिन है कि वापस इंसान ठीक हो सकता है, इस नशे की चंगुल से बाहर आ सकता है। लेकिन एक चीज़ हमेशा याद रखनी चाहिए कि ऐसे लोगों को उस संगति से दूर रखना होगा जो नशा करती है। किसी व्यक्ति को नशा मुक्ति केंद्र में भर्ती कराने के बाद नशा मुक्त बनाकर घर लाया जाता है, पर अगर उसकी संगति फिर से वही रहेगी तो वो नशे के चंगुल में फिर से आ जाएगा। तो ज़रूरत है कि इंसान को उसकी संगति खुद छोड़ने की हिम्मत आ जाए और दूसरे भी उसका सहयोग करें कि उस संगति से उसे दूर रखा जाए, तो यकीनन नशा मुक्त समाज बनाने

जैसा कि हम बात कर रहे थे गीत से पहले कि ज़िंदगी का असली मज़ा बहुत सी चीज़ों में है, सपने देखने में है और उनको साकार करने में है। हर इंसान सपना देखता है और देखने भी चाहिए, क्योंकि वही तो इस दुनिया में इंसान की नस्ल को आगे बढ़ाने के लिए आगे बढ़ाने की वजह बनती है। और बात इतनी है कि सपना देखना पर्याप्त नहीं होता, उन्हें पूरा भी करना चाहिए, वरना दुनिया कहती है शेख चिल्ली के सपने देख रहे हैं। इसलिए अक्सर कहा जाता है कि जब तक आप कुछ ठान न लें, कर न लें, तब तक किसी को बताएं नहीं, क्योंकि बताने से मनोबल जो है वो कम होता है। दृढ़ संकल्प ले लें, फिर मेहनत करें और धैर्य के साथ अगर हम आगे बढ़ते रहें तो फिर सफलता अवश्य मिलती है, सपने ज़रूर पूरे होते हैं। सब जैसा कि स्वर्गीय अब्दुल कलाम साहब ने कहा था कि सपने वो नहीं जो इंसान नींद में देखता है, सपने वो है जो इंसान को सोने नहीं देते। इसलिए सपनों को पूरा करने की एक चाह होनी चाहिए। सपना वो चिंगारी है जो इंसान को आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। ये हमें बताता है कि हमें कहाँ पहुँचना है और उसके लिए किस दिशा में हमें प्रयास करने हैं। सपना देखना एक पहला कदम है, लेकिन दूसरा है कि लक्ष्य निर्धारित किया जाए और फिर मेहनत की जाए, संघर्ष किया जाए। और जैसा कि अब्दुल कलाम साहब कहते थे कि पहले विजन हो, आप सोचें कि करना क्या है, फिर उसके लिए खूब मेहनत करें, कंटिन्यूअसली एक्वायर नॉलेज, ऐसे उनके बोल थे कि लगातार उस सपने को पूरा करने के लिए जो भी जानकारी चाहिए, जो भी ज्ञान चाहिए, उसको हम हासिल करें, यानी हम जुट जाएं, मैदान में आ जाएं, काम पे लग जाएं। और ये सब करते करते बहुत तकलीफें भी आएंगी, बहुत चुनौतियाँ आएंगी जिनका हमें सामना करना होगा। कई बार हम असफल भी होंगे, लेकिन वो असफलता भी हमें बहुत कुछ सिखा कर जाएगी अगर हम सीखने की चाह रखेंगे तो। वरना एक ही गलती बार बार होती रहेगी और हम अपने लक्ष्य पर नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए उन्होंने कहा था कि लगातार ज्ञान हासिल करते रहें, मेहनत करते रहें, फिर जब ये सब होता है तो धैर्य रखना ज़रूरी है। जब हम धैर्य रखते हैं, अधीर नहीं होंगे, जल्दबाजी नहीं करेंगे, तो जो काम हम करेंगे वो बड़ी शिद्दत के साथ करेंगे, इच्छा शक्ति के साथ करेंगे और पूरा मन लगा कर करेंगे। और जो काम पूरा मन लगा के किया जाता है वो यकीनन फल देता ही है। अक्सर कहा जाता है कि प्रतियोगी परीक्षाएं जो लोग तैयारी करते हैं उनमें कुछ भी सवाल आ सकते हैं, इसलिए खूब पढ़ते रहें, पढ़ते रहें। लेकिन क्योंकि ये दौर कंपटीशन का है, इस वजह से क्योंकि कंपटीशन इतना बढ़ गया है तो धैर्य की आवश्यकता युवाओं को बहुत ज़्यादा है। धैर्य रखेंगे तो एक नहीं तो दूसरे, दूसरे नहीं तो तीसरे किसी न किसी एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लेंगे, कहीं ना कहीं अपनी जगह बना ही लेंगे। और जो लोग ऐसा नहीं कर पाते वो फिर दूसरों को सिखा सकते हैं। अक्सर देखा है कि बहुत लोग जो किसी विशेष प्रतियोगी परीक्षाओं को पास नहीं कर पाते लेकिन ज्ञान खूब है, वो शिक्षक बन जाते हैं, और जब वो शिक्षक बनते हैं तो न जाने कितने लोगों की ज़िंदगी बदल देते हैं। अब्दुल कलाम साहब जो अपने मेहनत और देश के प्रति समर्पण के बल पर राष्ट्रपति के पद तक पहुंच गए, आज दुनिया में उन्हें कौन नहीं जानता, मिसाइल मैन कहे जाते हैं। उनका एक खास गुण था कि वो हमेशा लोगों को सिखाते रहते थे, अपने जीवन से, अपने कर्म से और अपने शब्दों से। तो साथियों, उनको अगर हम अपना आइडियल बनाएं तो फिर उनकी बात पर काम करेंगे, उनकी जैसी सोच रखेंगे, तो यकीनन हम सफल होंगे ही होंगे। और सफलता जो है वो अकेले नहीं, सबको साथ लेकर चलने में है।
जब इन

इंसान खुद हासिल कर लेता है कुछ तो औरों को भूले नहीं, उनको भी साथ रखे, तभी वो सच्ची सफलता कही जाएगी। साथियों, इस तरह हम बातें करते रहेंगे। फिलहाल एक गीत सुनते हैं, फिल्म का नाम है मुकद्दर का सिकंदर।

साथियों, हम युवाओं को एक और चीज़ है जिस पर अपनी सोच को बदलना चाहिए और बड़ी गहराई से इस बात को समझना चाहिए कि बेशक ज़माना तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, ये समय है स्मार्टफोन का जहाँ चुटकियों में काम होते हैं। और हमारे देश में तो फूड डिलीवरी ऐप जो है 10 मिनट में खाना डिलीवर कर देते हैं, या कोई राशन का सामान हो, सब्जी हो, या कोई भी चीज़ हो, जनरल आइटम हो, वो भी हमारे घर पर आजकल 10 मिनट 15 मिनट में पहुंच जाती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ज़िंदगी के हर मोड़ पर हमें शॉर्टकट लेने के मौके मिलेंगे और वो शॉर्टकट कामयाब भी होंगे। इतनी आसानी से और इतनी तेज़ी से सब चीज़ें होंगी हर जगह ऐसा नहीं है। मूवी टिकट बुक करनी है, हम फ़ोन से बुक कर लेते हैं। बिजली पानी का बिल भरना हो, हम घर बैठे कर लेते हैं, जबकि पहले लाइनों में लगना पड़ता था। बिल्कुल, ये सब मुसीबतें अब नहीं है, ज़िंदगी आसान हुई है। लेकिन बचे हुए समय का हम क्या करते हैं, इसका हमें निर्धारण करना चाहिए और इसका डाटा हमें रखना चाहिए, ताकि हमें पता लगे कि फिजूल खर्ची पैसे की तो हो रही है, लेकिन समय की कहाँ हो रही है। अगर समय की फिजूल खर्ची बचा पाएँ तो समझिए पैसा बचा लिया। और वो समय इन्वेस्ट करना चाहिए अपने रिश्तों में, अपनी दोस्ती में, अपने घर परिवार में। ऐसा ना हो कि खाना खाने बैठे हैं और सबके हाथ में अलग अलग फ़ोन है और उस पर लगे पड़े हैं और कोई बात भी नहीं हो रही। खाना एक साथ खाने का नियम बनाएं, फ़ोन साइड में रखें, उसके बाद थोड़ा वॉक करनी चाहिए तो घर परिवार के जो भी सदस्य हैं मिलकर वॉक करें तो बहुत अच्छा, बातचीत होगी। ये रिश्तों को गहरा और मजबूत बनाने के कुछ छोटे छोटे तरीके हैं और इनका कोई शॉर्टकट नहीं। गुड मॉर्निंग गुड नाइट का मैसेज नहीं भी जाएगा तो फ़र्क नहीं पड़ेगा, कर दिया तो भी ये बात का सबूत नहीं है कि रिश्ते मजबूत हो गए। लेकिन समय साथ बिताना ये पक्का मापदंड है कि रिश्ते मजबूत होंगे। उसी तरह हम ज़िंदगी में जो हासिल करना चाहते हैं उसके लिए भी हमें लगातार ही तो मेहनत करनी पड़ती है। अगर कोई एग्ज़ाम साल में एक बार होता है तो ये नहीं है कि हम उसकी 1 महीने तैयारी करके एग्ज़ाम क्रैक कर देंगे, होता है, बहुत कम लोग ऐसा कर पाते हैं। लेकिन जो इंसान पूरे साल तैयारी करता है वो निश्चित तौर पर सफल होता है। गेहूं पकती है, फसलें पकती है अपने समय के साथ, समय लगता है। इसीलिए किसी महात्मा या महान इंसान ने कहा, धीरे धीरे रे मना, धीरे ही सब कुछ होए। तो धीरे धीरे जो चीज़ होती है, और आजकल तो जो खाने के शौकीन है वो मिट्टी की हांडी में खाना बनाकर जब खाते हैं तो उन्हें टेस्ट जो है जायका अलग ही लगता है, क्योंकि उसमें खाना धीरे धीरे पकता है और जब धीरे धीरे पकता है तो उसका स्वाद भी अलग आता है। प्रेशर कुकर में सीटी दिलाकर बनाए गए खाने में और उस हांडी में पके खाने में फ़र्क होता है। ये आम जिंदगी के उदाहरण हैं जो हम देख सकते हैं कि जो काम धीरे धीरे किया जाता है, जो शॉर्टकट से नहीं किया जाता, वो कितना मज़ेदार और किफ़ायती होता है। इंस्टेंट फूड के ज़माने में जब 10 मिनट में घर खाना पहुंच जाता है तो वो खाना यकीनन पहले से बना हुआ होता है, वो या तो जंक फूड होता है, फास्ट फूड होता है, जो हमारे शरीर के लिए अच्छा नहीं है। और ये बात वो लोग अच्छे से जानते हैं जो जिम जाते हैं। वो जानते हैं कि लगातार एक ही डाइट, एक जैसी डाइट को फॉलो करेंगे, कार्बोहाइड्रेट्स कम खाएंगे, घी तेल कम खाएंगे, तला हुआ चिकना और फास्ट फूड नहीं खाएंगे, तब शरीर मजबूत बनेगा, तब मसल्स ग्रो होंगी। वो भी जानते हैं कि इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। और जिन्होंने कुछ स्टेरॉयड या ऐसी दवा

का इस्तेमाल करके शॉर्टकट से अपने शरीर को बढ़ाया, बल्क किया, मसल ग्रो किए यानी मांसपेशियों को ग्रो किया, वो लोग बाद में पछताते हैं क्योंकि उन्हीं की किडनियाँ यानी गुर्दे, लिवर खराब होते हैं। तो दुनिया में शॉर्टकट टेक्नोलॉजी के मामले में हो सकता है, लेकिन सेहत के मामले में और सफलता हासिल करने के मामले में कोई शॉर्टकट नहीं होता। और ये बात अगर हम समझेंगे तभी ज़िंदगी खूबसूरत तरीके से जी पाएंगे। बातें इसी तरह से हम करते रहेंगे, फिलहाल एक गीत सुनते हैं।

साथियों, सफलता को हासिल करने के लिए एक और चीज़ है जिसकी ज़रूरत है, वो है सकारात्मक सोच। बातें बहुत सी होती हैं, लेकिन आज के समय में जब तनाव बढ़ाने की चीज़ें हमारे पास बेशुमार मौजूद हैं, तब दिक्कत आती है अपने आप को स्थिर और शांत रखने में। ऐसे में योग, प्राणायाम और ध्यान हमारे लिए एक बहुत मददगार चीज़ साबित हो सकते हैं। और जब शरीर स्वस्थ रहता है तो इंसान अच्छा महसूस करता है, अच्छा सोचता है, सकारात्मक सोचता है। सकारात्मक लोगों से मिलेंगे जिनकी सोच पॉजिटिव है, अगर उनके साथ रहेंगे तो आत्मविश्वास भी बढ़ेगा, तनाव भी कम होगा और जो समस्याएं हैं उनका समाधान आसानी से मिल जाएगा। और ये सकारात्मक सोच संबंधों में भी सुधार लेकर आती है। घर का कोई व्यक्ति अगर परेशान है और इस वजह से गुस्सा करता है, रिश्ते खराब हो जाते हैं, पर एक व्यक्ति अगर सकारात्मक सोच रखे, उसका ध्यान रखना शुरू करे, तो रिश्तों में मधुरता वापस आ जाती है। अगर ये सोचे कि ये इंसान बुरा नहीं है, बस ये फेज है, ये भी निकल जाएगा, तो संबंध अच्छे हो जाते हैं। छोटी छोटी आदतें हैं जिनको हम अगर शुमार करें अपनी ज़िंदगी में तो सकारात्मक अपने आप बन जाएंगे। सबसे पहले कि दिन जब ढल जाता है तब हम लिख सकते हैं कि आज दिन में किस किस व्यक्ति से हमारी मुलाकात हुई और उससे हमने क्या सीखा। जो कुछ अच्छा हुआ उसके लिए आभार व्यक्त करें और ध्यान करके सोएं। सुबह उठते हैं तो फिर नियम बनाएं कि एक सैर करें और कुछ प्राकृतिक जीवन शैली को अपनाने के बाद किसी अच्छे आर्टिकल को पढ़ लें, कोई अच्छी किताब पढ़ लें, तो बात बन जाती है। ये छोटी छोटी बातें अगर हम जीवन में शामिल कर लें तो अपने आप हम सकारात्मक होते जाएंगे। बहुत कुछ है जिस पर हम दुखी हो सकते हैं, लेकिन उससे हजार गुना इतना है कि जिस पर हम खुश भी हो सकते हैं और कृतज्ञ भी महसूस कर सकते हैं। जितना हम कृतज्ञ महसूस करते हैं, प्रकृति हमें उतना ही ज़्यादा देती जाती है। अगर हम दुखी हैं और दुखी गाने सुनेंगे तो शायद और दुखी होते जाएं। पर हम ऐसा ही करते हैं, दुख में हम दुख को बढ़ाते जाते हैं। करना नहीं चाहिए, आदत बदलनी होगी। आदत बदल

युवा साथी सुन रहे थे कार्यक्रम युववाणी। हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 326.79 मीटर यानी 918 किलोहर्ट्ज पर, DRM 909 किलोहर्ट्ज पर, FM बैंड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर और मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन एयर पर। शाम के 6 बजे हैं। अब सुने कार्यक्रम विवरण।

कार्यक्रम विवरण में पहले सुने जानकारी हमारी सभा के शेष प्रसारणों के संबंध में। शाम 6:05 पर आप सुना करते हैं कार्यक्रम सराय की। आज आप सुनेंगे इस कार्यक्रम में 18वीं कड़ी। ग्रामीण परिवार सुनेंगे दैनिक कार्यक्रम चौपाल शाम 7 बजे राजन मुद्गल के साथ। फिल्म संगीत 7:45 पर आप सुन सकते हैं। और संध्याकालीन सभा में फिल्म संगीत पर ही आधारित कार्यक्रम एक ही फिल्म से आप सुनेंगे रात 8 बजे। हम अपने श्रोताओं को बता दें कि आज रात 9 बजे आप सुनेंगे द आकाशवाणी पॉडकास्ट और ये हमारे दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया जाएगा। रात 10 बजे का समय रहेगा अखिल भारतीय रविवासरीय संगीत सभा का। ये थे हमारे सभा के शेष प्रसारण और उनका प्रसारण समय। कार्यक्रम विवरण में अब सुनी जानकारी हमारे कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के संबंध में। प्रातःकालीन सभा आरंभ होगी 5:50 पर। भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना आप सुनेंगे 6:10 पर। चिंतन का समय रहेगा प्रातः 6:45 का। कार्यक्रम खेतीरा वास्ते में किसान भाई सुनेंगे जानकारी पशु आहार में नमक का महत्व प्रातः 7:10 पर। गोस्वामी तुलसीदास कृत रामचरित मानस पर आधारित गान पाठ मानस गान आप सुनेंगे प्रातः 7:20 पर। कल आप सुनेंगे इसकी 317वीं कड़ी। प्रातःकालीन सभा में ही आपका पसंदीदा प्रोग्राम आप सुनेंगे सुप्रभात 7:30 पर। मरुमंगल में आप सुनेंगे रीछपाल ढाढ़ी की गई लोक रचनाएं प्रातः 9:10 पर। आज के फनकार फिल्म संगीत पर आधारित ये कार्यक्रम आप सुनेंगे 10:00। 11 बजे आप सुनेंगे अपनी फरमाइशों पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत बहार। फिल्म संगीत पर ही आधारित कार्यक्रम सैनिकों के लिए आप सुनेंगे दिन में 12:05 पर। और कुछ गजलें आप सुनेंगे सुगम संगीत के अंतर्गत दोपहर 12:30 पर। मछली पालन के लाभ और उस पर तरीके क्या हैं ये जानकारी आपको मिलेगी कार्यक्रम खेत खलिहान में दिन में 12:50 पर। बहनें सुनेंगी महिला जगत सविता कुमारी के साथ दिन में 1:05 पर। जानकारी के विषय रहेंगे घरेलू हिंसा के प्रति जागरूकता, युवाओं में बढ़ रहा वायरल होने का जुनून और रक्तदान महादान। कुछ ब्यूटी टिप्स भी आप ले सकते हैं इस कार्यक्रम में। शाम 5 बजे युवा साथी सुनेंगे युववाणी पूजा वर्मा के साथ। ग्रामीण परिवार सुनेंगे चौपाल अपने निर्धारित समय शाम 7 बजे। कल रात 8 बजे हमारे दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा कार्यक्रम संसद समीक्षा। 8:15 पर फिल्म संगीत होगा और रात 10 बजे संसद में हुए प्रश्नकाल की रिकॉर्डिंग के संपादित अंश आप सुनेंगे 10:30 पर। कुछ फिल्म नक में फिल्म संगीत के अंतर्गत इसी के साथ कार्यक्रम विवरण समाप्त हुआ।

0: नमस्कार, आदाब, सलाम जी, अयंकुम। आज मैं डॉक्टर चंद्रशेखर सिराई की प्रोग्राम है तुहाड़े वास्ते एक होर प्रोग्राम लेके आया हाँ। अज इस प्रोग्राम में मेरे नाल हाजिर थे साढ़े स्टूडियो प्रमोद चोपड़ा जी, पानीपत तो। स्वागत है प्रमोद चोपड़ा जी। अज तुसा अपने
1: धन्यवाद जी।
0: गीत लेके आए हो, टप्पे लेके आए हो, सब बहुत चंगा लगे हाँ ठर गए थे। अज उम्मीद करे ना कि जो श्रोते अज इस प्रोग्राम को सुन सन उन्होंने जरूर ये प्रोग्राम पसंद आसी। मैं डॉक्टर चंद्रशेखर तुहाडा अपना ताबेदार हिसार तू आना जिमें, ते प्रमोद चोपड़ा जी भी पहले तुहाडे सामने आ चुके हैं। अज वल साडे स्टूडियो च आए, साडी खुशनसीबी है। ते मैं हुण सीधा तुहाकूं जिहड़ा है प्रमोद चोपड़ा जी दी आवाज़ नाल ही जोड़ना चाहना हाँ कि वो आवण अपने गीत दे नाल इस प्रोग्राम को शुरुआत करन।
1: डॉक्टर चंद्रशेखर जी हिसार तो उन्हों का बड़ा धन्यवाद है। तो साढ़े सुरेश मीणा जी उन्हों का भी बड़ा धन्यवाद है कि वो साकू टाइम टाइम पर याद कर दें। तो सावण के उत्ते कुछ मैं पेश करेंदा
0: जी
1: जो
0: स्वागत,
1: टूटा फूटा है।
0: हाँ जी स्वागत।
1: हाँ जी।

0: लड़दी हाई भाभी भावे सिफतां बार करें दी हाई, लड़दी हाई भाभी भावे सिफतां बार
1: करें दी
0: करें
1: हाई।
0: दी हाई,

0: भावीवल सगड़ी ढांदे ही भावीवल घ्यू दे नाल अढ़ेंदी
1: क्या बात है, क्या
0: हाई,
1: बात है,
0: घ्यू दे नाल अढ़ेंदी हाई, बहु आशीषां देंदी हाई, नजर न लगे बालां को।

0: गुस्से को ठड्ढा ठार करें दी हई, ठड्ढा ठार करें दी हई, बहु अशीशा देंदी हई। अवल क्या होता है? साडे सारे गरम स्वेटर। भाभी क्या है?
1: क्या
0: सर्दियां।
1: बात,
0: क्या कर? साडे सारे
1: गरम
0: गरम
1: स्वेटर।
0: स्वेटर, भाभी आप बुने दी हई, भाभी आप बुने दी हई। एक अड़ोस पड़ोस दा संस्कार देना, हंसी मखोल दी भी गल है ते सच्ची गल भी। क्या है? एक पड़ोसन दी भाभी ता, एक पड़ोसन दी भाभी ता, जुआ रोज कढ़ें दी हाई, जुआ रोज कढ़ें दी हाई। तप चढ़ दे ही तप, आज दे बालों को डस्ट में
1: बुखार आ
0: बुखार,
1: गया।
0: बुखार थी में दे जिको आदन फीवर
1: हाँ
0: कि तप चढ़ दे ही भाभी साकू, वड़ी द्राख खवें दी हाई,
1: हाँ
0: बहु अशीशा नें दी हाई, वड़ी द्राख खवें दी हाई। लाला जी दे सिर ते अक्सर, भाभी तेल मलें दी हाई, बहु अशीशा नें दी हाई। वल क्या है? मियाँ दे, तू सावण की गल की है, वाल सावण छोंदा क्या है कि बारिश को आदन मी कि मियाँ देही भाभी खींचे पकोड़े गरम तलें दी हाई,
1: वाह वाह वाह।
0: पकोड़े गरम तलें दी हाई, डई

0: हाय, शुक्रिया,
1: वाह
0: मेहरबानी,
1: क्या क्या
0: आओ
1: बात है,
0: ताकू वाल मैं जिड़ा है। ये मैं बहुत
1: वो तो
0: लंबी
1: सब
0: गजल है,
1: कमाल की
0: मैं
1: चीज
0: चाहवा था शायद आधा घंटा भी इस गजल को पढ़ सकता, क्योंकि टाइम दी
1: टाइम दी कर
0: मजबूरी है।
1: मैं।

0: प्रोग्राम है ते आओ वाल तो आकू मैं प्रमोद चोपड़ा जी दे मिठड़े गावण वाल दोबारा ले चला।
1: वाह जी।
0: स्वागत है प्रमोद चोपड़ा।
1: मैं जरा हूँ तो सुनेंदा पिया टप्पे
0: जी, इरशाद
1: मुल्तानी टप्पे तो सुने सन ते सावण दे उत्ते मैं टप्पे कुछ बनाए
0: जी, स्वागत।
1: ते अर्ज करेंदा पिया।

0: अग्गों वल प्रकृति दी गा ले, सावण दे बहारां हिन।
1: जी जी

0: जी सर जी
1: अगे ये साढ़े वास्ते साल बाद आंदे
0: जी
1: सावन दे वल मेहमान आली घर चला भी वेंदे,
0: जी
1: खुशियां गिना दे वल थोड़ी उदासी भी दे वेंदे
0: ना
1: वेंदे वेंदे,
0: बंजे ना तो आवे आसी
1: आ
0: किवे।
1: आवाज मनना पौंदे
0: हाँ
1: मजबूरी है।
0: हाँ
1: ते उस तो पहले ही सावन तो आउन तो पहले ही क्या थींदे,
0: जी सर
1: कोठे ते कां बोले मेहमाना
0: जी सर
1: कुछ लेंदे कां,
0: जी
1: ते इतना भी सावन दे वास्ते भी साढ़े कोठे ते बांधा जरूर है, कोठे ते कां बोले बाद साल सावन ही साडा हे मेहमान होवे, बाद साल सावन साडा मेहमान हेवे।
0: वाह सही वाह, तुसा बहु ठार कर दीते वाला वाला। ते आओ क्योंकि आज ये प्रोग्राम जड़ा है सिराए की बोली वास्ते, ते मेरा जी पिया करेंदा कि कोई चीज़ रब दी बनाई हुई कि नहीं, जाया थी दी नहीं, घट थी सकती है। मैं इस उम्मीद नाल एक तुहारे सामने अपनी एक रचना रखे ना, हुंदे गल ही सिर्फ यू है कि सिराए की नवे बाल किवें सीखन, है क्लास है छोटी जी सिराए की दी, आओ तुहारे सामने पेश
1: वाह
0: कर। कि मेरा जीव भी अगर रहता है तो आपको सारियां को हंसावा, तो 2 मिनट सिराई की चीज सिखावा।
1: वाह
0: मेरा जीव भी अगर रहता है तो आपको सारियां को हंसावा, तो हंसी हंसी है 2 मिनट सिराई की चीज सिखावा। ये जो तुहाडे प्यारे प्यारे चिल्ड्रन हैं हिना को आदन बाल, तो ये जो तुहाडे सिर ते हेयर यानी केश हैं हिना को आदन वाल,
1: वाह वाह
0: तो सुनो बालो टूथ को आदन दंत, ते पेट ठीक रखें दिए गुलकंद।
1: क्या बात
0: सुनो बालो टूथ को आदन दंद, ते पेट ठीक रखें दिए गुलकंद। इस हैंड को आदन हाथ, ते लेग को आदन लत।
1: लत।
0: इस हैंड को आदन हाथ, ते लेग को आदन लत। तुसा खांदे हो मैगी, असा खांदे आसे भात। तुसा खांदे हो मैगी, असा खांदे आसे भात। मुल्तानी चादन वधिया, जी को हिंदी चादन अच्छा। मुल्तानी च आदन वधिया, जी को हिंदी च आदन अच्छा। चिट्ठी यानी तुहाडा लेटर, ते भैन जी हुण कौन उणदा सिलाइयां ते स्वेटर। मेडिसिन दा मतलब गुट्टी यानी दवाई, बिरा यानी ब्रदर, दी वाइफ यानी त्रिम्मत, कु आदन भरजाई। बिरा यानी ब्रदर, दी वाइफ यानी त्रिम्मत यानी जाल, कु आदन भरजाई। सुनो भिराओ रियल को आदन असल, रियल को आदन असल। तो सुनो सुनो बालो ऑनियन यानी प्याज को आदन वसल। सुनो बालो ऑनियन यानी प्याज को आदन वसल। बाला को डसो सादा चमचा, त्वादा स्पून, त्वादे साठ यानी नमक को मुल्तानी चादन लून। त्वादा साठ यानी नमक, नमक को मुल्तानी चादन लून। आटा मतलब अट्टा, ते कैरम बोर्ड खेड़ते हुए फाउल थी में दाई, उनको आदन चट्टा।
1: चट्टा
0: चिट्टे दंद लाल मसूड़े, ते बुला दे खोल वेंदन भाग। चिट्टे दंद लाल मसूड़े, ते बुला दे खोल वेंदन भाग। टूथपेस्ट ते टूथब्रश साडे होंदन मुसाग। टूथपेस्ट ते टूथब्रश साडा होंदा ही मुसाग। खाऊंगा नु आदन खासा, आऊंगा नु आदन आसा, रहूंगा नु आदन रासा, नहाऊंगा नु आदन धासा, जाऊंगा यानी वैसा, कहूंगा नु आदन अखेसा, बुलाऊंगा यानी सदेसा। साडे घरे च होंदे बरांडे बेलियो, जिस दिन दे बरांडे दे आलने विचू चोर चुरा के लै गए।
2: अभी आप सुन रहे थे सरायकी, हम कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। शाम के 6:30 हुए हैं। प्रादेशिक समाचार कुछ ही पलों में।

नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम 2026 के तहत राजस्थान सहित देश भर के प्रतिभागियों से संवाद किया। प्रधानमंत्री ने आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में जल संरक्षण के लिए चलाए जा रहे अभियान कैच द रेन का जिक्र करते हुए इसमें लोगों की भागीदारी को सराहा। करगिल विजय दिवस पर देश प्रदेश में विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से वीर शहीदों को नमन किया गया। और राजस्थान रोडवेज के बेड़े में 144 नई बसें शामिल, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जयपुर के हीरापुरा टर्मिनल से हरी झंडी दिखाई।

0: वीर शहीदों को नमन किया गया। और राजस्थान रोडवेज के बेड़े में 144 नई बसें शामिल, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जयपुर के हीरापुरा टर्मिनल से हरी झंडी दिखाई। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम बहुत विशेष है। इसके माध्यम से हमारे देश के युवाओं को सीमावर्ती गांवों की संस्कृति और वहां की चुनौतियों तथा रहन सहन के बारे में जानने का मौका मिलता है। आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम 2026 के प्रतिभागियों से संवाद करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सीमावर्ती गांवों में स्थानीय लोगों में देश प्रेम का विशेष जज्बा देखने को मिलता है। इस कार्यक्रम के माध्यम से देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व कर रहे 400 से अधिक युवाओं ने प्रधानमंत्री से संवाद किया और अपने अनुभव सुनाए। राजस्थान के जालौर से माय भारत वॉलंटियर सुनील कुमार ने भी अपना अनुभव साझा करते हुए प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया।
1: मैं बड़ो आभार व्यक्त कर रहा हाँ कि आपने हमारे जरा कितना युवा ने सीमावर्ती गांव में जान लो देखन लो खाली चीज महसूस कर लो अवसर लो। मैं राजस्थान के एक सीमावर्ती गांव से हिमाचल प्रदेश के धारचांगो उपरेला गांव में गया था और इसका जो अवसर है मुझे माय भारत पोर्टल से मिला। जब मैंने रजिस्ट्रेशन किया तो मेरे सीधे मेल आईडी और फोन पे मैसेज आया कि विकसित वाइब्रेंट विलेज नाम का प्रोग्राम होने जा रहा है जिससे आप सीमावर्ती गांवों का दौरा कर सकते हैं। तो मुझे लगा कि इसमें मेरे लिए और मेरे जैसे अनेक युवाओं के लिए बहुत बड़ी एक अपॉर्चुनिटी है कि वो वहां पे जाए और अपने भारत को गहराई से समझे। दोनों जगह पे एक चीज समान थी, वो अपने देश के प्रति प्रेम का जज्बा, वहां के लोगों की बहादुरी जो हम राजस्थान में देखते हैं।
0: विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम प्रतिभागियों को भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों के सामाजिक आर्थिक परिदृश्य, सांस्कृतिक विरासत और विकास की आकांक्षाओं से प्रत्यक्ष रूप से परिचित कराता है। साथ ही सामुदायिक भागीदारी, राष्ट्रीय एकता और सीमावर्ती गांवों के रणनीतिक महत्व की गहरी समझ को बढ़ावा देता है। गौरतलब है कि इस कार्यक्रम के लिए प्रतिभागियों का चयन देशव्यापी ऑनलाइन क्विज प्रतियोगिता के माध्यम से किया गया जिसमें 3 लाख से अधिक युवाओं ने भाग लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत रक्षा निर्यात, राजनीतिक सहयोग और मित्र देशों के मामले में लगातार नई ऊंचाइयां छू रहा है। आज आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत अपनी तकनीकी क्षमता लगातार बढ़ा रहा है। दुनिया का भरोसा भारत के रक्षा उपकरणों और तकनीक पर बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि पिछले रविवार को विक्रम 1 के सफल प्रक्षेपण ने हर भारतीय को गौरवान्वित किया। ये भारत के क्षेत्र का पहला रॉकेट है। प्रधानमंत्री ने कारगिल विजय दिवस पर आज वीर सैनिकों का स्मरण किया और कहा कि ये दिन देशवासियों को अपने बहादुर सैनिकों के असाधारण शौर्य की याद दिलाता है।
2: आज कारगिल विजय दिवस है, ये दिन हमें गर्व से भर देता है, ये दिन हमें अपने वीर जवानों के अद्भुत साहस की याद दिलाता है। कारगिल की ऊंची ऊंची चोटियां, कठिन मौसम, दुश्मन की चुनौती, हर परिस्थिति हमारे सैनिकों के सामने थी, लेकिन उनका हौसला हर चुनौती से बड़ा था। उन्होंने माँ भारती की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व अर्पित कर दिया। आज कारगिल विजय दिवस पर मैं सभी वीर शहीदों और वीर सैनिकों को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूँ।
0: प्रधानमंत्री ने जल संरक्षण का जिक्र करते हुए कहा कि मॉनसून का समय जल संरक्षण के लिए सर्वोत्तम है। सरकार द्वारा विशेष अभियान भी चलाए जा रहे हैं। उन्होंने कैच द रेन अभियान का जिक्र किया और लोगों द्वारा इसमें बढ़ चढ़कर भाग लेने के प्रयास को सराहनीय बताया।
2: कैच द रेन का संदेश बहुत सीधा है, जब बारिश गिरे पानी को वहीं सहेजिए। इसलिए 4 जुलाई से देश भर में एक विशेष अभियान भी चलाया जा रहा है। इसके तहत बारिश के पानी के संचयन, ग्राउंड वाटर रिचार्ज, पुराने जल स्रोतों के पुनर्जीवन और वृक्षारोपण को नई गति दी जा रही। मुझे बहुत खुशी है कि गांव हो या शहर, पंचायतें हो या सामाजिक संस्थाएं, हर जगह लोगों ने बढ़ चढ़कर भागीदारी की है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि कुछ दिन पहले ग्लासगो में शुरू हुए राष्ट्रमंडल खेलों में शामिल खिलाड़ियों का पूरा देश उत्साहवर्धन कर रहा है। वहीं पीवी सिंधु जापान ओपन बैडमिंटन में खिताब जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बनी। श्री मोदी ने गणेश उत्सव के दौरान सभी से प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनी मूर्तियों के स्थान पर मिट्टी से बनी

0: देश प्रतिमाओं की पूजा करने की अपील की। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश भर में 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाएगा। ये दिन देश के बुनकरों के कौशल और रचनात्मकता के सम्मान का प्रतीक है। उन्होंने हस्तकला को प्रोत्साहित कर बुनकरों को सम्मान देने की भी अपील की। प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त को मनाए जाने वाले स्वतंत्रता दिवस के बारे में बात की। उन्होंने कहा कि ये दिन हर भारतीय के लिए गर्व का दिन है।
1: 15 अगस्त हर भारतीय के लिए गर्व का दिन है। ये उन असंख्य वीरों को याद करने का दिन है जिन्होंने भारत माता की स्वतंत्रता के लिए अपना सब कुछ समर्पित कर दिया। उनके त्याग और तपस्या की वजह से आज हमारे हाथ में तिरंगा है। इस तिरंगे में हमारे संविधान के आदर्श हैं। साथियों, पिछले कुछ वर्षों में हर घर तिरंगा अभियान ने पूरे देश को एक अद्भुत भावना से जोड़ा है।
0: प्रदेश में भी मन की बात कार्यक्रम को लेकर उत्साह नजर आया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जयपुर के सांगानेर में आदिवासी महिलाओं के बीच मन की बात के 136वें एपिसोड को सुना। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर ने पाली में मन की बात कार्यक्रम सुना। इस मौके पर कई जनप्रतिनिधि और आमजन मौजूद रहे। राज्य के अन्य स्थानों पर भी कार्यक्रम को उत्साहपूर्वक सुना गया। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। कारगिल विजय दिवस पर आज देश प्रदेश में वीर शहीदों को नमन किया जा रहा है। इस अवसर पर 1999 के कारगिल युद्ध में देश की रक्षा करते हुए सर्वोच्च बलिदान देने वाले भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वीर सैनिकों को नमन करते हुए सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि सैनिकों का अद्वितीय शौर्य, अटूट संकल्प और देशभक्ति भारतीय सशस्त्र बलों की उत्कृष्ट परंपरा का उदाहरण है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि कारगिल युद्ध भारतीय सेना के इतिहास का स्वर्णिम अध्याय है। इधर राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने कहा कि कारगिल विजय दिवस केवल सैन्य विजय का स्मरण नहीं बल्कि राष्ट्र की अस्मिता, अखंडता और संप्रभुता की रक्षा के लिए भारतीय सैनिकों द्वारा किए गए सर्वोच्च बलिदान और अदम्य साहस को नमन करने का पावन अवसर है। श्री बागड़े कारगिल विजय दिवस के उपलक्ष्य में जोधपुर में क्रीड़ा भारती की ओर से आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर 16 वीर सैनिकों और वीरांगनाओं का सम्मान भी किया गया। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी मौजूद रहे। इधर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि इन वीर जवानों की शहादत और निष्ठा पर हर भारतीय को गर्व है। इधर जयपुर स्थित अमर जवान ज्योति पर अमर सैनिकों को पुष्पांजलि अर्पित कर भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई। विधानसभा में कारगिल शौर्य वाटिका में निर्मित स्मारक स्थल पर विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने पुष्प चक्र अर्पित कर शहीदों को नमन किया। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज शिक्षा मंत्री का कार्यभार संभाला। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद कल उन्हें नया शिक्षा मंत्री बनाया गया था। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री जोशी ने नई जिम्मेदारी सौंपने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार प्रकट किया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज जयपुर के हीरापुरा बस टर्मिनल से रोडवेज की 144 नई बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता का संदेश देते हुए सड़क सुरक्षा अग्रदूत महिलाओं को हेलमेट भी वितरित किए। उन्होंने प्रदेशवासियों से यातायात नियमों का पालन करने और दोपहिया वाहन चलाते समय अनिवार्य रूप से हेलमेट पहनने की अपील की। मीडिया से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार जन कल्याण से जुड़े प्रत्येक क्षेत्र में तेजी से काम कर रही है। श्री शर्मा ने कहा कि प्रदेश में लगातार सार्वजनिक परिवहन सेवा का विस्तार किया जा रहा है ताकि आमजन को सुविधा हो सके।
2: राजस्थान की जनता को जो हमने वायदा किया था लगातार उस वायदे को हम पूरा कर रहे हैं, क्योंकि राजस्थान की दूरियां बहुत हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान देश में सबसे बड़ा प्रदेश, यह लोगों के आवागमन के लिए आवश्यक है कि हमारी ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था अच्छी रहे। जब से हमारी सरकार बनी है हमने जनता के हर विषय को ध्यान में रखते हुए हमारी सरकार लगातार काम कर रही है और ये अभी तीसरा मौका है जो रोडवेज की बसों को हम लगातार संख्या बढ़ाने का काम कर रहे हैं।
0: कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री और परिवहन मंत्री डॉ. प्रेमचंद बैरवा और सांसद मंजू शर्मा सहित कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। जालौर जिले के सांचौर में आज बस और ट्रक की टक्कर में बस में सवार दो लोगों की मृत्यु हो गई और 12 यात्री घायल हो गए। घायलों को सांचौर के ट्रॉमा सेंटर में उपचार के लिए भेजा गया। ये बस सांचौर से गुजरात जा रही थी। प्रदेश के कई जिलों में मानसून

0: सक्रिय बना हुआ है। भीलवाड़ा में आज सुबह से ही हल्की बारिश का दौर जारी रहा। जालौर में भी रुक रुक कर बरसात होती रही। बाड़मेर में आज बारिश का दौर जारी रहा। झुंझुनू जिले में दोपहर बाद कई स्थानों पर बारिश होने से मौसम सुहावना हो गया। राज्य में कई स्थानों पर हो रही बारिश से जलाशयों में पानी की आवक बनी हुई है। मौसम केंद्र जयपुर के अनुसार आज राज्य के दक्षिणी पश्चिमी भागों में हल्की से मध्यम तो कहीं कहीं तेज बारिश की संभावना है। विभाग ने 28 जुलाई से एक बार फिर बारिश की गतिविधि में बढ़ोतरी होने और उत्तर पूर्वी भागों में कहीं कहीं भारी बारिश की संभावना जताई है। 29 जुलाई से 2 अगस्त तक राज्य के अधिकतर स्थानों पर हल्की से मध्यम तो कहीं कहीं भारी बारिश के आसार हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम 2026 के तहत राजस्थान सहित देश भर के प्रतिभागियों से संवाद किया। प्रधानमंत्री ने आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में जल संरक्षण के लिए चलाए जा रहे अभियान कैच द रेन का जिक्र करते हुए इसमें लोगों की भागीदारी को सराहा। करगिल विजय दिवस पर देश प्रदेश में विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से वीर शहीदों को नमन किया गया। और राजस्थान रोडवेज के बेड़े में 144 नई बसें शामिल। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जयपुर के हीरापुरा टर्मिनल से हरी झंडी दिखाई। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप अब्दुल हनीफ से बालोतरा जिले की चिट्ठी सुनिए। इसके लेखक हैं बंशी लाल। आज करगिल दिवस है। इस मौके पर जिले के पतासर गांव के करगिल शहीद भीकाराम मूड़ की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। इस मौके पर करगिल के सभी शहीदों की शहादत को नमन करते हुए देश की एकता और अखंडता की शपथ ली गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते दिनों बालोतरा जिले के पचपदरा में देश की पहली ग्रीनफील्ड इंटीग्रेटेड रिफाइनरी कम पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया। लगभग 79,000 रुपये की लागत से तैयार यह परियोजना राजस्थान की न केवल पहली रिफाइनरी है बल्कि देश की पहली ग्रीनफील्ड रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स भी है। रिफाइनरी का लोकार्पण करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये रिफाइनरी यहाँ हजारों लोगों के रोजगार का माध्यम बनेगी। उन्होंने कहा कि राजस्थान की इस धरती से भारत ने आत्मनिर्भर होने की दिशा में बहुत बड़ा कदम उठाया है। इस मौके पर श्री मोदी ने रिफाइनरी कंट्रोल रूम के कर्मचारियों से तकनीकी जानकारी ली और रिफाइनरी की महिला कर्मचारियों से बात करके उनके साथ फोटो भी खिंचवाए। इस रिफाइनरी के उद्घाटन से अब क्षेत्र में नए औद्योगिक विकास और निवेश के द्वार खुलेंगे। साथ ही रिफाइनरी से जुड़े डाउन स्ट्रीम उद्योग लगने से रोजगार को बढ़ावा मिलेगा। बीते दिनों जिले में गर्भवती महिलाओं की सघन स्क्रीनिंग अभियान चलाया गया। अभियान का उद्देश्य मातृ और शिशु मृत्यु दर में कमी लाने तथा प्रत्येक गर्भवती महिला को सुरक्षित मातृत्व सेवाएं उपलब्ध कराना था। चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की ओर से चलाए गए इस 5 दिवसीय विशेष अभियान में जिले के सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, उप स्वास्थ्य केंद्रों तथा शहरी स्वास्थ्य केंद्रों पर बड़ी संख्या में गर्भवती महिलाओं की स्वास्थ्य जाँच कर उन्हें परामर्श और उपचार उपलब्ध कराया गया। जिला कलेक्टर सुशील कुमार यादव की अध्यक्षता में स्वास्थ्य समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिला कलेक्टर चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग के सभी अधिकारियों को सर्वे के दौरान एनीमिक की 100% स्क्रीनिंग करवाने, एचपीवी टीकाकरण 100% करने और जननी सुरक्षा और लाडो प्रोत्साहन योजना के बकाया मामलों का भुगतान करने के निर्देश दिए गए। साथ ही स्कूलों में एचपीवी टीकाकरण 100% करने को कहा। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ओर से भ्रष्टाचार के विरुद्ध विशेष जागरूकता अभियान चलाया गया। इसी क्रम में एसीबी कार्यालय बालोतरा में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो का स्थापना दिवस मनाया गया। आमजन को भ्रष्टाचार के प्रति जागरूक करने के लिए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस मौके पर आमजन से अपील की गई कि यदि कोई सरकारी अधिकारी या कर्मचारी वैध कार्य के बदले रिश्वत मांगता है तो उसे रिश्वत नहीं दें और तुरंत इसकी एसीबी से शिकायत करें। शिकायत मिलने पर एसीबी द्वारा त्वरित कार्रवाई की जाएगी। जिले में ग्रामीण क्षेत्रों में जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने और आम जन की समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित करने को लेकर ग्राम पंचायतों में ग्रामीण सेवा शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। शिविरों में विभिन्न विभागों के अधिकारी मौके पर ही समस्याओं का समाधान करते हुए पात्र लाभार्थियों को विभिन्न योजनाओं का लाभ दे रहे हैं। शिविरों में राजस्व, पंचायती राज, कृषि, पशुपालन, चिकित्सा और स्वास्थ्य, महिला तथा बाल विकास,

0: सामाजिक न्याय और अधिकारिता, जलदाय, विद्युत तथा शिक्षा विभाग सहित विभिन्न विभागों के स्टॉल लगाए गए, जहां ग्रामीणों को सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देने के साथ मौके पर सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही है। पिछले दिनों राजस्थान रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी रेरा की ओर से नगर विकास न्यास बालोतरा के सभागार में एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। रेरा के डिप्टी रजिस्ट्रार पुनीत कपूर ने बताया कि कार्यशाला का उद्देश्य खरीदारों के अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करना, रियल एस्टेट निवेश को मानकों के अनुरूप बढ़ावा देना, परियोजनाओं में पारदर्शिता और निष्पक्षता लाना, विवादों का प्रभावी समाधान तथा परियोजनाओं को निर्धारित समय में पूरा कराना था। जिले में देर से आए मानसून की बारिश ने राहत दी है। पिछले कुछ दिनों से लगातार बारिश का दौर बना हुआ है। अच्छी बारिश होने से किसानों ने खरीफ की फसलों की बुआई की है। ग्रामीण इलाकों में तालाबों और टाकों में पानी की आवक बढ़ने से पेयजल की समस्या का भी समाधान हो रहा है। इसी के साथ बालोतरा जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेरू पेशे सिंझा बगतरा प्रादेशिक समाचार। पहली खास समाचार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम 2026 तहत राजस्थान समेत देश भर रा प्रतिभागियां साथे बतल करी। प्रधानमंत्री आकाशवाणी मन की बात कार्यक्रम में जल संरक्षण सारू चलाया जा रहा अभियान कैच द रेन रो जिक्र करता इन माए लोगों की भागीदारी ने सराया। कारगिल विजय दिवस माथे देश प्रदेश माए न्यारा न्यारा कार्यक्रमारी मार्फत वीर शहीदा ने नमन करीजियो और राजस्थान रोडवेज रा बेड़ा में 144 नुई बसा भेड़ी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जयपुर रा हीरापुरा टर्मिनल हरी झंडी दिखाई। समाचार साथ है मैं शंभु सिंह और अब समाचार विगतवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहो है कि विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम घणो खास है। इनरी मार्फत देशरा नौजवाना ने सरहदी गांवारी संस्कृति और वठारी चुनौतियां और रहन सहन रा बारा में जानन रो मौको मिले है। आज वीडियो कॉन्फ्रेंसरी मार्फत विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम 2026 रा प्रतिभागियां साथ है बतल करता है प्रधानमंत्री कहो कि सरहदी गांव में वठारा लोगा में देश प्रेम रो खास जज्बो देखने ने मिले है। एक कार्यक्रम री मार्फत देश रा सगला राज्यां और केंद्र शासित प्रदेशां री नुमाइंदगी कर रिया 432 नौजवानों साथ प्रधानमंत्री बतल करी और हमारा अनुभव सुनिया। राज्य रा जालोर माए भारत वॉलेंटियर सुनील कुमार आपरा अनुभव साझा करता प्रधानमंत्री ने धन्यवाद दियो।
2: घणो आभार व्यक्त करा हा कि आपने हमारे जरा कितना ही युवा ने सीमावर्ती गांव में जान लो देखन लो खाली चीज महसूस करने का अवसर मिलो। मैं राजस्थान के सीमावर्ती गांव से हिमाचल प्रदेश के धारचांगो उपरेला गांव में गया था और इसका जो अवसर है मुझे माय भारत पोर्टल से मिला। जब मैंने रजिस्ट्रेशन किया तो मेरे सीधे मेल आईडी और फोन पे मैसेज आया कि विकसित वाइब्रेंट विलेज नाम का प्रोग्राम होने जा रहा है जिससे आप सीमावर्ती गांवों का दौरा कर सकते हैं। तो मुझे लगा कि इसमें मेरे लिए और मेरे जैसे अनेक युवाओं के लिए बहुत बड़ी एक अपॉर्चुनिटी है कि वो वहां पे जाए और अपने भारत को गहराई से समझे। दोनों जगह पे एक चीज समान थी, वो अपने देश के प्रति प्रेम का जज्बा, वहां के लोगों की बहादुरी जो हम राजस्थान में देखते हैं।
1: विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम प्रतिभागियों ने भारत रा सरहदी हल्का रा सामाजिक आर्थिक दिखाव, सांस्कृतिक विरासत और विकास री आसों सीधा पिछाण करावे है। साथ ही सामुदायिक भागीदारी, राष्ट्रीय एकता और सीमाई गांव रा रणनीतिक महत्व री गहरी समझ ने बढ़ावा देवे है। ध्यान जोग है कि कार्यक्रम स्वरूप प्रतिभागियों रो चुनाव देश भर में ऑनलाइन क्विज होल्डरी मार्फत करीजियो जिनमें 3,32,000 नौजवाना हिस्सो लियो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहो है कि भारत रक्षा निर्यात, राजनीतिक मदद और दोस्त देशों रा मामला में बरोबर नवी ऊंचाइयां छू रियो है। आज आकाशवाणी रा मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री कहो कि भारत आपरा तकनीकी भूता ने बरोबर बधारियो है। दुनिया रो भरोसो भारत रा हिफाजती उपकरणा और तकनीक माथे बध रियो है। वना कहो कि लाडला दीतवार ने विक्रम वंदरा कामयाब प्रक्षेपणों हर भारतीय रो मान बध्यो है। वो भारत रा निजू हल्का रो पहलो रॉकेट है। प्रधानमंत्री करगिल विजय दिवस माथे आज वीर सैनिका ने याद करिया और कहो कि वो दिन देशवासी

0: ਸੈਨਾ ਨੇ ਆਪਰਾ ਬਹਾਦੁਰ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੀ ਅਸਾਧਾਰਨ ਤਾਕਤ ਨੇ ਯਾਦ ਦਿਰਾਵੇ ਹੈ।
1: आज कारगिल विजय दिवस है। ये दिन हमें गर्व से भर देता है। ये दिन हमें अपने वीर जवानों के अद्भुत साहस की याद दिलाता है। कारगिल की ऊंची ऊंची चोटियां, कठिन मौसम, दुश्मन की चुनौती, हर परिस्थिति हमारे सैनिकों के सामने थी, लेकिन उनका हौसला हर चुनौती से बड़ा था। उन्होंने माँ भारती की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व अर्पित कर दिया। आज कारगिल विजय दिवस पर मैं सभी वीर शहीदों और वीर सैनिकों को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूँ।
0: प्रधानमंत्री पाणी बचावण रो जिक्रो करता कयो के मानसून रो भगत जल संरक्षण सानू सब चौको है। सरकार का न्यो खास अभियान ई चलाया जावे है, वरना कैच द रेन अभियान रो जिक्रो करियो और लोगों री इणमाय बढ़ चढ़ने हिस्सों लेवण री कोशिश ने सरावण जोग बताया।
1: कैच द रेन का संदेश बहुत सीधा है, जब बारिश गिरे पानी को वहीं सहेजिए। इसलिए 4 जुलाई से देश भर में एक विशेष अभियान भी चलाया जा रहा है। इसके तहत बारिश के पानी के संचयन, ग्राउंड वाटर रिचार्ज, पुराने जल स्रोतों के पुनर्जीवन और वृक्षारोपण को नई गति दी जा रही। मुझे बहुत खुशी है कि गांव हो या शहर, पंचायतें हो या सामाजिक संस्थाएं, हर जगह लोगों ने बढ़ चढ़ कर भागीदारी की है।
0: प्रधानमंत्री कहो के कुछ दिन पहला ग्लासगो में शुरू हुआ राष्ट्रमंडल खेला में भेड़ा खिलाड़ियों रो पूरो देश साहस बधारियो है। श्री मोदी गणेश उत्सव रे दौरान सगड़ों पियो पियो बनी मूर्तियां री ठोड़ माटियों बनी गणेश मूर्त री पूजा करन री अरज करी। प्रधानमंत्री कहो के देश भर में 7 अगस्त राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनायो जाएगा। ओ दिन देश रा बुनकरा रा हुनर और रचनात्मकता रा सम्मान रो प्रतीक है, वरना हस्तकला ने बधावो देर बुनकरा ने सम्मान देवन री अरज करी। प्रधानमंत्री 15 अगस्त ने मनाया जाने वाला स्वतंत्र दिवस रा बारा में बात करी और कहो के ओ दिन हर भारतीय सारू मान रो दिन है।
1: 15 अगस्त हर भारतीय के लिए गर्व का दिन है। ये उन असंख्य वीरों को याद करने का दिन है जिन्होंने भारत माता की स्वतंत्रता के लिए अपना सब कुछ समर्पित कर दिया। उनके त्याग और तपस्या की वजह से आज हमारे हाथ में तिरंगा है। इस तिरंगे में हमारे संविधान के आदर्श हैं। साथियों, पिछले कुछ वर्षों में हर घर तिरंगा अभियान ने पूरे देश को एक अद्भुत भावना से जोड़ा है।
0: प्रदेश में मन की बात कार्यक्रम में लेर उमा नजर आयो। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा आज जयपुर और सांगानेर में आदिवासी महिलाओं रे साथ मन की बात रा 136वीं कड़ी ने सुनिया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ पाली में मन की बात कार्यक्रम ने सुनिया। ई मौके न्यारा न्यारा जन नुमाइंदा और लोग मौजूद रिया। राज्य री दूजी ठोड़ा माथे मन की बात कार्यक्रम ने उमाव रे साथ सुनी जिया। ऐ समाचार आप आकाशवाणी जयपुर अजमेर सुन रहा हो। कारगिल विजय दिवस माथे आज देश प्रदेश शहीदा ने नमन करे। ई मौके 1999 रा कारगिल युद्ध में देश री हिफाजत करता ठाव बलिदान देने वाला भारतीय सैनिका ने श्रद्धांजलि अर्पण करी जावे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू वीर सैनिका ने नमन करता सोशल मीडिया पोस्ट में कहो के सैनिका री अद्भुत ताकत, अटूट संकल्प और देशभक्ति भारतीय सशस्त्र बल री ठावी परंपरा री मिसाल है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला कहो के कारगिल युद्ध भारतीय सेना रा इतिहास रो सोनाऊ मंडियो पाठ है। अठीने राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े कहो के कारगिल विजय दिवस फगत फौजी जीत री याद नहीं है, बल्कि देश री अस्मिता, अखंडता और संप्रभुता री हिफाजत सारू भारतीय सैनिका कानियों करीजा ठावा बलिदान और अदम्य साहस ने नमन करण रो पावन मौको है। श्री बागड़े कारगिल विजय दिवस रे मौके जोधपुर माए क्रीड़ा भारती कानियों विया कार्यक्रम माए बोल रिया हा। कार्यक्रम माए केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत समेत कई जन नुमाइंदा मौजूद रिया। अठीने मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा वीर सैनिका ने श्रद्धांजलि देवना कहो के आ वीर जवाना री शहादत और निष्ठा माथे हर भारतीय ने मान है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी आज शिक्षा मंत्री रो कामकाज संभालियो। धर्मेंद्र प्रधान रे इस्तीफो देवन रे पछे काले वाने नुआ शिक्षा मंत्री बनाई जहा। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री जोशी नुवी जिम्मेदारी सौंपण सारू प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रो आभार प्रकट करियो। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा आज जयपुरा हीरापुरा बस टर्मिनल रोडवेज री 144 नुई बसा ने हरी झंडी दिखार रवाना करिया। ई मौके मुख्यमंत्री सड़क सुरक्षा सारू जाग जगाउन रो संदेश देवता सड़क सुरक्षा अग्रदूत महिला

0: ने हेलमेट ही बांटिया। वणा प्रदेशवासियों यातायात कानून री पालना करण और दुपहिया वाहन चलावती बगत जरूरी हेलमेट पहन री अर्ज करी। मीडिया साथ बतल करता मुख्यमंत्री कहो कि सरकार जन कल्याण जुड़िया हर हलका में तेजी काम कर रही है। श्री शर्मा कहो कि प्रदेश में बरोबर सार्वजनिक परिवहन सेवा रो पसारो करो जावे जिणु लोगों ने हिफाजती सरल और सुविधापूर्ण यात्रा मुहैया वह सके।
1: राजस्थान की जनता को जो हमने वायदा किया था लगातार उस वायदे को हम पूरा कर रहे हैं, क्योंकि राजस्थान की दूरियां बहुत हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान देश में सबसे बड़ा प्रदेश है। यह लोगों के आवागमन के लिए आवश्यक है कि हमारी ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था अच्छी रहे। जब से हमारी सरकार बनी है हमने जनता के हर विषय को ध्यान में रखते हुए हमारी सरकार लगातार काम कर रही है और ये अभी तीसरा मौका है जो रोडवेज की बसों को हम लगातार संख्या बढ़ाने का काम कर रहे हैं।
0: ई कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री और परिवहन मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा, सांसद मंजू शर्मा समेत कई जन नुमाइंदा मौजूद रिया। और अब मौसम। प्रदेश रा कई जिला में मानसून सक्रिय बनियोड़ो है। भीलवाड़ा में आज सवारों हल्की बिरखा रो दौर चालतो रियो। जालोर में रुक रुक ने बिरखा वहती रही। झुंझुनू जिला में दोपहर पछे कई थोड़ा बिरखा होवणु मौसम सुहावणो वह गयो। वठे राज्य में कई थोड़ा वेरी बिरखाऊ जलाशय में पानी री आवक बनियोड़ी है। मौसम केंद्र मुजब आज राज्य रात दिखनाद आथोणी हल्का में हल्काऊ मजला और कठे कठे तेज बिरखा होण री आस है। महकमो आवती 28 तारीख एक और फिरू बिरखा री गतिविधियां में बढ़वार होवण और उत्तर अगुणी हल्का में कठे कठे भारी बिरखा होण री आस जताई है। 29 जुलाई 2 अगस्त तई राज्य रा घणकरा ठोड़ा हल्काऊ मजला और कटे कटे भारी बिरखारी आस है। जालोर जिला रा सांचोर माए आज बस और ट्रक री टक्कर माए सवार बस माए सवार दो लोगों री मौत वेगी और 12 यात्री घायल वे गया। घायला ने सांचोर रा ट्रॉमा सेंटर माए इलाज सारू भेजी गया है। आ बस सांचोरू गुजरात जा रही ही। भारतरी अनाथ सिंह विश्व स्क्वास जूनियर चैंपियनशिप जीत ने इतिहास रच दियो है। कनाडा में महिला सिंगल्स फाइनल में मिस्र री रुकैया सालेम ने हरार वणा खिताब जीतियो। इस जीत रे साथे अनाहत जूनियर विश्व खिताब जीतने वाली पहली भारतीय स्क्वास खिलाड़ी बन गई है। ने अबे आखिर में खास समाचार आप एक कर फेरू सुन दे रहो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम 2026 रे तहत राजस्थान समेत देश भर रा प्रतिभागियों साथे बतल करी। प्रधानमंत्री आकाशवाणी मन की बात कार्यक्रम में जल संरक्षण सारू चलाया जा रहा अभियान कैच द रेन रो जिक्र करता इन माए लोगों की भागीदारी ने सराया। करगिल विजय दिवस माथे देश प्रदेश माए न्यारा न्यारा कार्यक्रम री मार्फत वीर शहीदा ने नमन करी जियो। और राजस्थान रोडवेज रा बेड़ा माए 144 नई बसा भेली मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा जयपुर रा हीरापुरा टर्मिनल हरी झंडी दिखाई। ने इन साथ ही समाचार रो बुलेटिन अठे पूरो हुयो। मारो आगलो समाचार बुलेटिन काले सवारा 9 बजे हिंदी माए प्रसारित करियो जायला। नमस्कार।

मीडियम वेव 326.79 मीटर यानी 918 किलो हर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। शाम के 7 बजे हैं, ग्रामीण परिवार सुने दैनिक कार्यक्रम चौपाल राजन मुद्गल के साथ।

कार्यक्रम सुनणिया सगळ्या परिवाराने भाई राजनका घणा घणा राम राम, मोकळा मोकळा राम राम सा। भाई लोगों, आपा सगळा के खेती खड़ मिणख हाँ, और हमेशा आपा अपनी खेती संबंधित एक ही प्रयास में लाग्या रहा कि किया जी कि आपने

खेती है बिना आपा ज़्यादा सफल बना सका। अपनी खेती में होने वाला जिका खर्चा है बने कम करके किया जी को आपनो मुनाफो है बिना आपा बढ़ा लेवा। इस प्रयास में आपा कई तरीका का जिका प्रयोग है बाप की खेती का मां करा हाँ, जिका कदे कदे आपने फायदों देखने मिले कदे कदे नुकसान भी हो जाए। पर अपना घर का जिका बड़ा बुजुर्ग है वह हमेशा आई चीज़ कह करता कि जको आदमी बदलाव ने स्वीकार करे और बदलाव के साग आगे बढ़े वो जीवन में खूब सफलता हासिल करे। ये कड़ी में आगे चला और अब बात करा खेती पाती के संबंध में। आपनो भारत है जिको कृषि प्रधान देश है और खेती पाती के अलावा आप बात करें तो पशुपालन जिको है वो अपने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को एक महत्वपूर्ण आधार है। अब अपने आसे पासे आन दिन में आप देखने लग रहे हैं कि बिरखा पड़न लग रही है, तो बिरखा के मौसम में के पशुओं को जिको ध्यान है वो रखना बहुत जरूरी हो जाए, क्योंकि वो मौसम पशुओं खातर जितो लाभदायक हुए बितो ही कई प्रकार की बीमारियां और समस्या भी लेकर आवे। ये मौसम गमा ज़्यादा नमी कीचड़ गंदो पानी या मच्छर माखी की जिकी बढ़ती संख्या है बिंगो अगर आप ध्यान ना रखा तो पशुओं में के कई प्रकार का संक्रमण और रोग खतरों भी बढ़ जाए है। बरसात के मौसम में पशुओं की विशेष देखभाल अपना वास्ते बहुत जरूरी है। मुख्य तौर पर देखा तो ये देखभाल में आपने की कुछ जरूरी कदम उठाना चाहिए। सब पहले तो साफ सुथरी और सूखी पशुशाला आपने रखनी है। हमेशा ध्यान रखा कि पशुशाला की छत के ऊपर कदे भी पानी ना टपके। पशुशाला को जिको फर्श है वो ऊंचो और ढलानदार होना चाहिए ताकि जे आपने बिरखा को पानी अंदर आ भी गयो तो वो पानी बैठे जमा ना हुए। गोबर और गंदगी है बिंग नियमित तौर पर सफाई करता रहा और पशुओं के बैठन खातर जिको ठाण है बिना पूरी तरीकों सुखो और साफ सुथरो रखा। इन अलावा आप देखा तो पशुओं के पेयजल की जिकी व्यवस्था है वह भी आपने बढ़िया बना के रखनी चाहिए। साफ और स्वच्छ पानी आप बने पीण खातर उपलब्ध करावा और हमेशा ताज़ा पानी आप बने पियावा। रुकड़ो पानी या कोई भी प्रकार को गंदो पानी कभी भी पशुओं ने आपा ना पियावा। और अपना किसान भाई सगड़ा काफ़ी समझदार है, अपने पशुओं ने हमेशा साफ सुथरो और ताज़ा पानी ही पियावे हैं और जकी भी बाल्टी गवा या टब गवा आप पशुओं ने पानी पियावा ध्यान रखा आप बिंगी भी समय समय पर आप सफाई करता रहा। आगे बात करा भाई लोगों तो पशुओं ने जिको भी आप आहार खुआन लाग रहे हैं वो पौष्टिक के सागे सागे संतुलित भी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपा अपने पशुओं ने स्वस्थ रखने खातर पौष्टिक आहार खुआवा तो वो संतुलित मात्रा में जब आप बने खुआवा तो पशु के लंबे समय तक स्वस्थ रहे। अच्छो साफ सुथरो ताजो हरिचारो आपा बने खुआवा हमेशा ध्यान रखा और इनको समय समय पर निरीक्षण भी करता रहा जब भी पशुओं ने चारो देवा कि कोई भी प्रकार सड़ड़ो या फफूंद लागड़ो चारो पशु ना खा लेवे। सुखो चारो बिंगमा दाणो और खनिज मिश्रण है आ सब ने मिला गए और सागे नमक भी उचित मात्रा में आपा पशु ने देता रहा। दूध देने वाला जिका भी अपना पशु है बने भी आपा समय समय पर जाँच कराता रहा और प्रतिदिन को जिको बांगो आहार है भी मैं संतुलित और पौष्टिक आहार आपा बने खुआवा। हमेशा ध्यान रखा कि टाइम टाइम पर जिको जरूरी टीकाकरण है वो करवाता रहा। कोई भी प्रकार की कृमिनाशक दवाई है वह हमेशा पशु चिकित्सक की सलाह हुई देवा। पशु गमा बुखार खुरपका मुँहपका गलघोटू लंगड़ो बुखार आदि आरोगों का लक्षण दिखाई देने पर तुरंत पशु चिकित्सक को संपर्क करा और बांगे बताए अनुसार पशु की दवाई पानी करते वहाँ। बरसात के मौसम में पशु के कई बारी मच्छर मक्खी और अन्य जिका परजीवी है बाऊँ भी काफ़ी परेशान हो जाए तो ध्यान रखा कि पशुशाला गए आसे पासे आपा पानी जमा ना होने देवा। माखी मच्छर के नियंत्रण खातर उचित दवाइयों को समय समय पर छिड़काव करता रहा और पशुओं के शरीर पर जूं चिचड़ या और कोई भी प्रकार को जानवर है वह ना चढ़ेंगे आप नियमित जाँच करता रहा और आवश्यक उपचार भी अपनाता रहा। नियमित सफाई है जिकू भाई लोगों बा आपने मिन खांगे सागे सागे पशुओं खातर भी बहुत जरूरी है, क्योंकि पशुओं को जिको शरीर है वो माटी का माँ बैठे है कई बार कीचड़ में भी लोट पोट हुआ है, कई बार पशुशाला का माँ साफ सफाई ना होने की वजह उनके पशु गंदी

जगह में भी बैठ जावे है। तो ध्यान रखा कि आपा पशु के शरीर की भी समय समय पर सफाई करता रहा, बिंगे खुरा ने साफ करा और ज़्यादा टाइम तक पशु कीचड़ में ना रहे, इंगो ध्यान रखा। जरूरत होने पर खुरा ने कीटनाशक जिको घोल है बीऊँ भी साफ कर देवा। इनके अलावा समय समय पर बांगा जी का खुर है बांगी कटाई छटाई भी आपा करवाता रहा, जिका उनके बहुत ज़्यादा खुर बढ़ने की वजह भी पशु ने खड़े रहने में चालन में बैठने में परेशानी हुआ। हमेशा ध्यान रखा कि पशुशाला के आस पास हवा की उचित व्यवस्था हुआ है, एक तरीका हूँ अच्छो वेंटिलेशन जी आपा अपने घर गमा रखा भी आई पशुशाला में भी हवा का आन जान की पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए। ज़्यादा नमी और बदबू आपा हमेशा पशुओं को बचाव करा। पशुओं को जिको ठाण है बिंगी तो सफाई रखा ही रखा, सागे जिके भी आपा कोई खोर बना रखी है जिके गमा पशु चरण लाग रहे तो भी में भी आपा ध्यान रखा कि पानी ना भरे और समय समय पर बिंगी भी सफाई करता रहा। जब पशु कोई भी प्रकार को चारों खान लाग रहे हो तो बी टाइम पर ध्यान रखा कि पानी भरड़ी कोई भी सी जगह है बठे पशुओं ने चराणू आपा बच्चा, और गंदा पानी वाला जिको भी स्थान है बठे पशु ने दूर रखा। कोई भी प्रकार का जहरीला पौधा भी ने खाणू रोक देवा। जिका भी ज्ञापन पशु है बांगो आपा विशेष ध्यान रखा, बाने भी सुखी और सुरक्षित जगह देवा। नवजात जिका भी बछड़ा बछिया है या काटड़ा काटड़ी है बाने भी बारिशों और हर प्रकार के संक्रमण आपा बचावा। जन्म के तुरंत बाद बछड़ा ने माँ को पहलो दूध जरूर पिलावा और नियमित स्वास्थ्य परीक्षण आपा बांगो करवाता रहा, जिका पशु के शरीर को तापमान बिंगी भूख और बिंगे व्यवहार पर भी ध्यान जावे। कोई भी असामान्य लक्षण आपने दिखाई देवे तो तुरंत पशु चिकित्सक को आपा संपर्क कर लेवा। कई बार बरसात में पशु ने कई प्रकार का रोग हो जाए जिया खुरपका मुँहपका गलघोटू लंगड़ो बुखार कृमि संक्रमण जू चिंचड़ को प्रकोप निमोनिया या और कोई भी प्रकार का रोग, तो तुरंत आपने पशु चिकित्सक को संपर्क करना है और जिकी दवाई वे बतावे बा मंगा के तुरंत पशु को इलाज शुरू कर देना है। इनके अलावा बरसात के मौसम आपा और कई सावधानियां जिकी बा अपना सका जिया पशुओं ने भीगण बचा देवा। पशुशाला में पानी ना भरे इनको पूरा जापतो रखा, समय पर टीकाकरण जरूर करवावा, पशु ने खाण वास्ते साफ सुथरो पौष्टिक आहार देवा और स्वच्छ पानी पियावा। पशुशाला के बर्तना की नियमित सफाई करता रहा और कोई भी बीमारी का लक्षण देखने पर तुरंत मांगो उपचार करावा। बिरखा को मौसम के पशुओं के स्वास्थ्य खातर बहुत संवेदनशील हुए हैं। यही मौसम में अच्छी साफ सफाई संतुलित आहार स्वच्छ पानी समय पर टीकाकरण और उचित प्रबंधन पर विशेष ध्यान दिया जावे तो पशुओं ने अधिकांश बीमारियों को आपा बचा सका है। स्वस्थ पशु के ज़्यादा दूध बेहतर उत्पादन और किसान परिवार की जिकी आय है भी मैं बढ़वार कर सके हैं। तो इन खातर बरसात के मौसम में पशुओं की वैज्ञानिक और नियमित देखभाल करनो अपने प्रत्येक पशुपालक भाई को एक दायित्व बने हैं। तो आप सगला चीज ध्यान रखा और सुनावा था ने एक भजन लियो सुनो सा।

0: ये कहानी है एक नर्स और उसकी अंतर्मन की।
1: आ गई सैलरी? नहीं झुमके ना, पहले बचत।
2: पहले झुमके
1: सुनो, हर महीने थोड़ा बचाओ और थोड़ा निवेश करो, और कुछ इमरजेंसी के लिए भी बचाओ ताकि रहो टेंशन फ्री।
2: लेकिन झुमकों का क्या,
1: जाते हो कि लगाओ इंजेक्शन।
3: आरबीआई कहता है,
0: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।
4: गीत के बाद भाई लोगों सुनो आपा संदेश। चला एक बार फिर हूँ खेती पाती की दुनिया में, और आज जाना आपा का आपने माटी के माँ कई प्रकार का पोषक तत्व हुए हैं, बंगू के कुछ महत्व हुए हैं। मूल तौर पर देखा तो भाई लोगों आपने पौधा को जिको भी विकास हुआ है, माटी बिंगो एक मुख्य आधार है। पौधा की अच्छी बढ़वार विकास भी पे फल फूल लागना और बीज बनन खातर विभिन्न पोषक तत्व है बंगी जरूरत पड़ती रहे। ये पोषक तत्व आपने जिका भी पौधा ने माटी के माध्यम ही प्राप्त हुए हैं। माटी के माँ जब पोषक तत्वों की कमी आ जाए तो देखा पाक फसल की जिकी बढ़वार है वह भी रुक जाए, उत्पादन भी धीरे धीरे घटने लग जाए, और जिकी आपनी फसल आई है बिंगी गुणवत्ता भी प्रभावित हो जाए। तो इंग खातर माटी की जिकी उर्वरता है बिने बनाए रखने खातर पोषक तत्वों को संतुलन होना भी बहुत जरूरी है। मुख्य तौर पर बात करें तो माटी के माँ पोषक तत्वों को महत्व है सबू जरूरी भी मैं बात आवा कि पौधा की अच्छी बढ़वार और पौधा को विकास। जिया नाइट्रोजन फॉस्फोरस पोटास वर्गा कई ऐसा पोषक तत्व है जिका पौधा की जड़ तना और पत्तियां के सागे सागे शाखाओं के विकास में भी महत्व।

सुने भाई लोगों, आपा गीत चला एक बार फिर आपा अपनी खेती पाती की दुनिया में और चर्चा कर लेवा अपना आधुनिक जिका भी कृषि यंत्र है बिंगी सार संभाल समय समय पर किया करनी चाहिए, की बात को आपने विशेष ध्यान रखना चाहिए और बिंगी देखभाल को की महत्व है अपने खातर। आधुनिक कृषि में अगर बात करें भाई लोगों, तो कृषि यंत्रों को महत्वपूर्ण स्थान है, जिसमें मुख्य तौर पर ट्रैक्टर, हल, कल्टीवेटर, सीड ड्रिल, रोटावेटर, स्प्रेयर, थ्रेसर, हार्वेस्टर और कई तरीका का कृषि यंत्र खेती के कार्य ने सरल तो बनावे बनावे सागे सागे तुरता फुरत और कम खर्च में अपने खातर उपलब्ध करावे। पर आपनों एक नैतिक फर्ज भी बने है कि आपा यंत्रां को ख्याल रखा, आ यंत्रां की नियमित देखभाल करा, क्योंकि अगर आपा इसो नहीं करांगा तो क्या टाइम के सागे जिया उम्र के सागे इंसान की कार्य क्षमता कम हो जाए, बिया अगर पूरी तरीक़ों देखभाल ना करी जाए तो कृषि यंत्रां की भी कार्य क्षमता कम होने लग जाए, समय के सागे मरम्मत को खर्च बढ़ने लग जाए और खेती पाती का जिका भी काम है वामें देरी होने लग जाए। तो इनकी खातिर ध्यान रखा कृषि यंत्रों को सही रख रखाव बहुत ही जरूरी है। कृषि यंत्रों की देखभाल का अगर महत्व की बात करा पा कि क्यों करावा पा कृषि यंत्र की हर समय देखभाल, तो यंत्रों की जिकी कार्यक्षमता है वह बढ़ती रहे, सब जरूरी बांगो जिको जीवन काल है, उपयोग में आन हालो जिको समय है, यंत्रों की आयु है बाबट है, मरम्मत और रख रखाव को खर्चो है जिको वो कम हुए और अपना खेती पाती का जिका काम धंधा है वह टाइम पर पूरा हुए, ईंधन और ऊर्जा की बचत हुए और कोई भी प्रकार की दुर्घटना होने की संभावना कम हो जाए, खेती अपने खातर ज़्यादा लाभदायक बन जाए। तो कृषि यंत्रों की देखभाल करने खातर आप की बातों को ध्यान रखा, सब जरूरी तो अपना जितना भी कृषि यंत्र है वांगे आप नियमित सफाई करवावा, प्रत्येक उपयोग के बाद हर यंत्र ने आप अच्छे तरीके साफ करा, बिंगमाऊँ माटी, धूल, घास या कोई भी प्रकार का फसल का जिका अवशेष है बिना साफ कर दिया, स्प्रेयर या अन्य कोई भी उपकरण है बाने अच्छे तरीके धो के सुखा के रखा और गंदगी जमा रहने के कई बार देखा आप जंग लाग जाए और खराबी की जिकी संभावना है वह भी बढ़ने लग जाए। इनके अलावा बात करें आप जिका भी ल्यूब्रिकेंट है, जिका यंत्र के जिका भी चालन हाला भाग है वह भी टाइम टाइम पर तेल पानी और ग्रीस भी मैं देते रहना चाहिए, निर्माता के द्वारा बताए जिको भी टाइम है, जिको भी ग्रेड है, बी हिसाब को यापा इंजन ऑयल और बी ग्रीस को यापा उपयोग करा, घर्षण कम होने के यंत्र लंबे टाइम तक सुचारू रूप में चले और बढ़िया तरीकों काम करें, जंग बचाने खातर जिका भी धातु वाला भाग है वह मैं हल्की तेल या ग्रीस जरूर लगावा, और जब आप लगे कि अब आ यंत्रों का उपयोग अपने कुछ टाइम तक को नहीं करना है तो बने अच्छे तरीकों

सूखी और ढकेड़ी जगह पर आप रखा। हमेशा ध्यान रखा कि कोई भी प्रकार का अपना कृषि यंत्र है बाने ज़्यादा बारिश और नमियों बचा के रखा। नट बोल्ट जिका भी है बांगी हमेशा प्रत्येक प्रयोग को पहले जांच करा। सारा नट बोल्ट और पेच समय समय पर कस के रखा, क्योंकि कोई भी प्रकार की अपनी लापरवाही या जिका ढीला नट बोल्ट है वह दुर्घटना ने और खराबी ने न्योतो दे देवे। ट्रैक्टर की बात करें तो ट्रैक्टर की भी समय समय पर आपा देखभाल कराता रहा, जहाँ इंजन ऑयल, गियर ऑयल और बिंगमा कूलेंट है वो आपा टाइम पर बदल देवा। एयर फिल्टर, ऑयल फिल्टर और जिको तेल को फिल्टर है बिंगी में नियमित सफाई करावा और बिना भी बदलवाता रहा। बैटरी को पानी और बैटरी पूरी तरीका चार्ज रखा। टायरा का माँ वायु को जिको दबाव है वो उचित बना के रखा। और कटाई और जुताई वाला जिका भी यंत्र है जिमें कल्टीवेटर, रोटावेटर, सीड ड्रिल आगी हल है, आना आपा अच्छी तरीका साफ सफाई करके रखा और घिसड़ा भागा पे आपा ध्यान दे।

और बैटरी पूरी तरीका चार्ज रखा। टायरों का माँ वायु जी को दबाव है वो उचित बना के रखा। और कटाई और जुताई वाला जिका भी यंत्र है जी में कल्टीवेटर रोटावेटर सीड ड्रिल आ गई हड़ है आना आपा अच्छी तरीका साफ सफाई करके रखा और घिसड़ा भागा पे आपा ध्यान देवा और समय समय पर बने बदलवा देवा। ब्लेड और फाल ने तेज रखा ताकि कार्य कुशलता भी बनी रहे। स्प्रेयर की भी आपस समय समय पर देखभाल करता रहा। प्रत्येक प्रयोग के बाद टंकी पाइप और नोजल ने अच्छी तरीके साफ पानी में धोवा। नोजल अगर आपने कभी कभी लागे बंद हो जाए तो बिना तार उना कुरेदा मुलायम ब्रश या पानी को प्रयोग करा। रसायन ने लंबी देर तक ज़्यादा ना रखा। टंकी में कोई भी प्रकार को रसायन है जी को वो प्रयोग कुछ समय पहले ही आपा बनावा और इन्हें तुरतापुर प्रयोग कर लेवा। सुरक्षित भंडारण है वो भी इनके खातर बहुत जरूरी है क्योंकि यंत्रा ने सूखी जगह पर समतल जगह पर अच्छी तरीका सार संभाल करके रखा। बच्चा और पशुओं की पहुँचों दूर रखा जगहों के कोई भी प्रकार की दुर्घटना ना हुए। और लंबे टाइम तक उपयोग नए आने वाला जिका भी यंत्र है बने तिरपाल या कवरों ढक के रखा। नियमित बांगू निरीक्षण करता रहा। बेल्ट चेन बेरिंग पाइप या जिका भी तार है बांगी समय समय पर जांच करा और कोई भी प्रकार की खराबी में तुरंत भी इन्हें ठीक करावा। कोई भी प्रकार की लापरवाही ना करा। कृषि यंत्र केवल के प्रशिक्षित वैली व्यक्ति है जिसको वो ही बाने चलावे है। अनजान व्यक्ति चलावे तो कई बार के है यंत्र खराबी के सागे सागे दुर्घटना की संभावना बढ़ जाए। जिका व्यक्ति ने ज्ञान है पूर्व प्रशिक्षण है वो ही बिना चलावे। और संचालन पहले उपयोग पुस्तिका है बिंगा भी निर्देश जी का है वे आपा पढ़ लेवा। सुरक्षा उपकरण को भी आपा अच्छा उपयोग करा क्योंकि कृषि यंत्रा की आपा जब समय समय पर देखभाल कराना तो आपने कई तरीका का फायदा देखने ने भी मिल रहा है। कृषि कार्य जी को आप टाइम पर पूरा हुए ईंधन की बचत हुए उत्पादन लागत कम हो जाए। यंत्रा की जिकी कार्य क्षमता है यंत्रा की जिकी आयु है बा बढ़े और अचानक खराब होने की जिकी संभावना है बा ना के बराबर हो जाए। किसान परिवारों की आय और बांगे उत्पादन में भी काफ़ी बढ़ोतरी देखने मिल रहा है। सावधानियां बस आपने कुछ इमें ध्यान रखनी है जी हाँ। इंजन जद चालू हुए भी टाइम पर मरम्मत को काम ना करा। पेट्रोल डीजल भरता टाइम कोई भी प्रकार को धूम्रपान ना करा। यंत्र जद आपा चलावा तो भी टाइम पर ढीला कपड़ा ना पहरा। बच्चा ने कृषि यंत्रों दूर रखा और सुरक्षा गार्ड हटा गए यंत्र का उपयोग कभी भी ना करा। मूल तौर पर देखा भाई लोगों तो कृषि यंत्र है जिका वह अपने आधुनिक खेती की रीढ़ की हड्डी है। बाकी नियमित सफाई समय पर मरम्मत अच्छो भंडारण और सही संचालन के बांगी कार्य क्षमता और बांगी आयु दोनों बढ़ाई जा सके हैं। तो यूं के खेती का कार्य टाइम पर पूरा हुए लागत कम हो जाए और किसान परिवारों की आय में भी बढ़ोतरी देखने मिले। तो इनके खातर प्रत्येक किसान परिवार ने आ चीज़ को ध्यान रखना चाहिए कि कृषि यंत्रों की नियमित देखभाल करें और बिंग सागे सागे आपकी दैनिक कृषि गतिविधियां जिकी है बा समय पर पूरी करता रहे। चलांगा एक बार फिर हूँ आप मनोरंजन की दुनिया में और सुनावा थाना गीत लियो जी सुनो सा।

सुनो भाई लोगों, आपा गीत। अब भाई लोगों, आपा बात कर लिया अपने राष्ट्र के हित में। एक नागरिक की के जिम्मेदारी हुआ है, के बिना कर्तव्य हुआ है। जे कहूँ के कि आपनों राष्ट्र तरक्की करे, सागे सागे आपा भी तरक्की करा। सब जरूरी बात तो भाई लोगों, आपा ईमानदारी अपनावा, क्योंकि कोई भी राष्ट्र की उन्नति खातर हर नागरिक को ईमानदार होना बहुत जरूरी है। समय पर आपने करांग आपा भुगतान करा, क्योंकि देश की जी की अर्थव्यवस्था है बिना मजबूत करण खातर अपना जितना भी कर है वांगू आपा ने सही समय पर भुगतान कर देना चाहिए। प्रयास करा हमेशा स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग करा, क्योंकि देश की अर्थव्यवस्था ने बढ़ावा देने खातर आपा मेक इन इंडिया ने अपनावांगा जद ही बात बनेगी। शिक्षा ने बढ़ावा देवा, क्योंकि एक शिक्षित नागरिक ही राष्ट्र निर्माण की नींव हुए हैं। जब भी आपने समय मिले वृक्षारोपण करा और हमेशा पर्यावरण की आपा रक्षा करा। पर्यावरण संरक्षण राष्ट्र की दीर्घकालिक भलाई खातर भी बहुत जरूरी हुआ है। सब जरूरी समय को सदुपयोग करा, क्योंकि समय को सदुपयोग कोई भी व्यक्ति और देश दोनों की प्रगति में सहायक हुए हैं। सामाजिक सौहार्द बनाकर रखा, हर धर्म जाति और भाषाओं ऊपर उठ गए, एकता और भाईचारा ने आपा हमेशा बढ़ावा देवा। जब भी अवसर मिले मतदान जरूर करा, क्योंकि एक जिम्मेदार नागरिक हमेशा सही नेतृत्व खातर जरूर वोट करे है, और वो वोट देनो राष्ट्र के हित में है। जब भी सड़क पर चला हमेशा सड़क नियमों का पालन करा, क्योंकि छोटी छोटी जिम्मेदारियां भी राष्ट्र की सुरक्षा जरूरी हुए हैं। और अंत में बात करा तो स्वच्छता आपा जरूर अपनावा, क्योंकि स्वच्छ भारत हुई स्वस्थ भारत और शक्तिशाली भारत आपा बना सकांगा। सगली बातें ना अपने किसान भाई और सुनन हाड़ा जितना भी श्रोता है वह ध्यान रखे, और चला आपा कार्यक्रम अंतिम गीत की तरफ। लियो सुनो साहब।

ग्रामीण परिवार सुन रहे थे कार्यक्रम चौपाल। हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। शाम के 7:45 हुए हैं। अब सुने फिल्म संगीत।

लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी को आइए सुने फिल्म माया में। गीत के बोल मजरूह के हैं और धुन सलील चौधरी की है।

इसी गीत के साथ फिल्म संगीत का यह कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। हम गार्डन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं, रात के 8 बजे हैं। कार्यक्रम सुने एक ही फिल्म से। आज इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे फिल्म आए दिन बहार के से कुछ फिल्मी नगमे और फिल्म संबंधी जानकारी।

कार्यक्रम एक ही फिल्म में आज की फिल्म है आए दिन बाहर के। ये गीत आपने सुना लता मंगेशकर और आशा भोसले की आवाजों में। आई सुने अगला नगमा।

कार्यक्रम एक ही फिल्म से में आज आप सुन रहे हैं फिल्म आए दिन बहार के से कुछ फिल्म नगमे। ये नगमा लता मंगेशकर की आवाज़ में, नगमा निगार आनंद बख्शी और मौसीकी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की है।

आए दिन बहार के कार्यक्रम एक ही फिल्म से में आप सुन रहे थे इस फिल्म के कुछ फिल्म नगमे और फिल्म संबंधी जानकारी हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। रात के 8:30 हुए, थोड़ी देर में आप समाचार सुनेंगे।

नमस्कार, स्पोर्ट्स कैन के आज के अंक में आप सभी का स्वागत है। सिंह और आपके इस कार्यक्रम स्पोर्ट्स कैन में हम एक बार फिर मौजूद हैं खेल के मैदान का सारा लेखा जोखा लेकर के। तो आज हम आप कार्यक्रम में बात करेंगे ग्लासगो में चल रहे राष्ट्रमंडल खेलों की, जहां भारत ने आज एक के बाद एक दो पदक जीते हैं और कई और पदक भारतीय खिलाड़ियों के लिए दांव पर लगे हैं। क्रिकेट के मैदान में भारत ने जिम्बाब्वे को किया है क्लीन स्वीप और अनाहत सिंह ने रचा है एक शानदार इतिहास। तो सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचार पर। मीराबाई चानू ने ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता। ऋषिकांत सिंह चानबम ने रजत पदक अपने नाम किया। भारत ने जिम्बाब्वे को तीसरे टी20 क्रिकेट मैच में 35 रन से हराकर श्रृंखला 3-0 से क्लीन स्वीप की। अनाहत सिंह ने स्क्वाश जूनियर इंडिविजुअल चैंपियनशिप में महिलाओं का खिताब जीतकर इतिहास रचा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में कहा, पूरा देश ग्लासगो में शुरू हुए राष्ट्रमंडल खेलों में शामिल खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन कर रहा है। पीवी सिंधु और महिला क्रिकेट टीम की उपलब्धियों को भी सराहा। और भारतीय सब जूनियर टीम ने FIH यूथ हॉकी 5S एशियाई चैंपियनशिप का खिताब जीता। भारतीय महिला टीम ने रजत पदक अपने नाम किया। तो कार्यक्रम को शुरू करते हैं सबसे पहले आज के दिन की सबसे बड़ी उपलब्धि के साथ, जहां मीराबाई चानू सेखोम ने ग्लास

0: मानकों में राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के पहला स्वर्ण पदक दर्ज कर लिया है। मीराबाई ने महिलाओं की 48 किलोग्राम भारोत्तोलन स्पर्धा में 190 किलोग्राम का वजन उठा करके ये पदक जीता है। इससे पहले दोपहर में ऋषिकांत सिंह ने भारत के लिए रजत पदक अपने नाम किया था पुरुषों के 60 किलोग्राम भारोत्तोलन कैटेगरी में। और राष्ट्रमंडल खेलों पर अधिक चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे सहयोगी विशेष। विशेष, सबसे पहले तो ये बताइए कि भारत के लिए आज का दिन दो पदक आ चुके हैं, कैसा रहा ओवरऑल, खासकर इन दोनों खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस पे क्या कहा जा सकता है?
1: शक्ति, सबसे पहले ऋषिकांत सिंह ने अपने खेल से बहुत ज्यादा प्रभावित करते हुए रजत पदक अपने नाम किया और उसके बाद मीराबाई चानू ने भारत की झोली में स्वर्ण पदक डाला। अगर हम मीराबाई चानू की बात करें तो इससे पहले भी वो दो स्वर्ण और एक रजत जीत चुकी हैं। हालांकि इस मुकाबले में उन्होंने 190 किलोग्राम वजन उठाकर जो है स्वर्ण पदक अपने नाम किया, जिसमें 85 किलो स्नैच और 105 किलो क्लीन और जर्क वजन शामिल था। इसके अलावा भारत के आज कुछ मुकाबले और होने हैं, जिसमें जिमनास्ट में तपन मोहंती, लॉन बॉल में रूपा रानी टिर्की और पुतुल सोनावाल अपना जो है दमखम दिखाएंगे। वहीं बॉक्सिंग में प्रीति पवार 54 किलोग्राम में और जादूमणि

0: हैं। हालांकि इस मुकाबले में उन्होंने 190 किलोग्राम वजन उठाकर जो है स्वर्ण पदक अपने नाम किया, जिसमें 85 किलो स्नैच और 105 किलो क्लीन और जर्क वजन शामिल था। इसके अलावा भारत के आज कुछ मुकाबले और होने हैं, जिसमें जिमनास्ट में तपन मोहंती, लॉन बॉल में रूपा रानी टिर्की और पुतुल सोनावाल अपना जो है दमखम दिखाएंगे। वहीं बॉक्सिंग में प्रीति पवार 54 किलोग्राम में और जादूमणि सिंह 55 और आदित्य प्रताप सिंह 65 किलोग्राम में राउंड ऑफ 16 के मुकाबले खेलेंगे।
1: जी बिल्कुल, आपने बात की कितना शानदार दिन भारत के लिए रहा। और मीराबाई, भारत के लिए पहले से स्वर्ण पदक की सबसे मजबूत उम्मीद थी और अब भारत के पदकों की संख्या 3 हो गई है, जिसमें मीराबाई चानू का स्वर्ण पदक, ऋषिकांत का रजत पदक और झंडू कुमार का कांस्य पदक शामिल है। और इस बीच भारत के लिए पदकों की सबसे बड़ी उम्मीद लेकर के भारत के गोल्डन बॉय और 2 बार के ओलंपिक पदक विजेता भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा राष्ट्रमंडल खेलों में हिस्सा लेने के लिए ग्लासगो पहुंच चुके हैं। नीरज ग्लासगो में गोल्ड कोस्ट में स्वर्ण पदक जीतने वाली सफलता को दोहराना चाहेंगे। आइए सुनते हैं भारत के इस स्टार खिलाड़ी ने अपनी तैयारियों को लेकर क्या कहा।
2: हमेशा वही बोलता हूँ कि जब भी मैं अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करता हूँ वो अपने आप ही इम्पोर्टेंट हो जाता है मेरे लिए। तो अगर मैं इंडिया के लिए आया हूँ यहाँ पे तो मैं अपना 100% दूंगा। वो उस दिन पता चलेगा कि कैसा रहता है, बट मैं हमेशा 100% देता हूँ जब भी अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करता हूँ। और वही टारगेट यहाँ पे है और हमारे बाकी एथलीट्स अच्छी तैयारी में है। 2 जेवलिन थ्रोर और हैं, रोहित काफी अच्छी थ्रो करके आया है। हम कोशिश करेंगे कि साथ में एक अच्छा प्रदर्शन करें। हमें पहला कॉम्पिटिशन खेला था टोक्यो वर्ल्ड चैंपियनशिप के बाद, वहाँ पे अच्छी थ्रो थी और उसके बाद हमने कमियां लग रही थी पे काम किया और फिटनेस पे काम किया, तो पहले से काफी बेटर लग रहा है।
1: तो कह सकते हैं कि भारत के लिए पदकों की सबसे मजबूत उम्मीदों में से एक स्टार भारतीय खिलाड़ी पहुंच चुका है। और भी खिलाड़ियों को मनोबल मिलेगा जो नीरज के साथ स्पर्धा करते हुए नजर आएंगे। और अब रुक करते हैं क्रिकेट के मैदान का, जहां भारत ने जिम्बाब्वे के हरारे में जिम्बाब्वे को तीसरे और अंतिम T20 मैच में 35 रन से हरा दिया है। इसके साथ ही भारत ने श्रृंखला में 3-0 की जीत दर्ज करते हुए श्रृंखला क्लीन स्वीप कर ली है। भारत के 193 रन के लक्ष्य के जवाब में जिम्बाब्वे की टीम 20 ओवर में 7 विकेट खोकर 157 रन ही बना सकी। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करनी होती, भारत ने 20 ओवर में 5 विकेट गंवाकर 192 रन बनाए थे। तो विशेष आज का मैच कह सकते हैं जिस तरह का बीता एक महीना भारतीय T20 टीम के लिए रहा, बहुत बड़ी राहत की सांस ली होगी टीम ने।
0: जी बिल्कुल शक्ति, और श्रेयस अय्यर की कप्तानी में जो है क्लीन स्वीप का सिलसिला लगातार जारी है। बस फर्क इतना है कि पहले 2 क्लीन स्वीप में भारत को हार का सामना करना पड़ा और अब जीत का स्वाद चखा है। इसी के साथ आज भारत का प्रदर्शन बहुत ही शानदार रहा। वैभव सूर्यवंशी जो रहे वो जीत के हीरो रहे, उन्होंने 49 गेंदों पर 81 रन बनाए। उनको प्लेयर ऑफ द मैच भी चुना गया, साथ ही साथ उनको प्लेयर ऑफ द सीरीज भी चुना गया, क्योंकि उन्होंने इन 3 मुकाबलों में 151 रन बनाए हैं। इंग्लैंड में उनको काफी आलोचना का सामना करना पड़ा था क्योंकि वो ज्यादा कुछ कर नहीं पाए थे, लेकिन उन्होंने अब अपने बल्ले से जवाब दिया है और बताया है कि उनको ऐसे ही वंडर बॉय नहीं कहा जाता है। अगर गेंदबाजी की हम बात करें तो जो सबसे बड़ी दिक्कत समझ आ रही थी वो थी स्पिन डिपार्टमेंट की। वहां रवि बिश्नोई, अभिषेक शर्मा और सूर्यांश शेडगे ने अपना अपना अहम योगदान दिया। मयंक यादव ने इस सीरीज में बहुत बेहतरीन प्रदर्शन किया है, उन्होंने पहली गेंद पर 3 बार विकेट लिया है। यह रिकॉर्ड जो है इससे पहले भुवनेश्वर कुमार के नाम था, उन्होंने इसकी बराबरी कर ली है। वह ऐसे दूसरे खिलाड़ी बने हैं। इसके अलावा वैभव सूर्यवंशी ने एक नया रिकॉर्ड बनाया है कि 16 साल की उम्र से पहले उन्होंने 250 जो है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में लगा दी है। और वैभव सूर्यवंशी की अगर जितनी हम बात करें उतनी कम है, वो इस साल सबसे ज्यादा T20 में भारत के लिए छक्के लगाने का रिकॉर्ड भी उनके ही नाम है। दूसरे पे अभिषेक और तीसरे पे जो है ईशान किशन मौजूद है। और इसके बाद भारत को एशियन गेम्स खेलने हैं, तो ये भारत के मनोबल के लिए बहुत ही बेहतरीन सीरीज रही है, जो जिसमें उन्होंने जीत दर्ज करके अब एशियन गेम्स के लिए अपना दमखम दिखाएंगे वहां पर।
1: जी बिल्कुल, और इस खिलाड़ी ने जिस तरह से मैन ऑफ द टूर्नामेंट बनना, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, एक बहुत बड़ी बात है इतनी कम उम्र में। और उम्मीद है कि आने वाले भविष्य के लिए उन्होंने एक छाप छोड़ दी है कि भारत से एक बहुत दिग्गज खिलाड़ी निकलने वाला है। और अब कार्यक्रम में बात की जाए अनाहत सिंह की, जिन्होंने इतिहास रचते हुए विश्व जूनियर स्क्वाश चैंपियन बन गई हैं। अनाहत ये खिताब जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी हैं। इस खिलाड़ी ने कनाडा के ओंटारियो में विश्व स्क्वाश जूनियर इंडिविजुअल चैंपियनशिप में महिलाओं का खिताब जीता। सुनते हैं अनाहत की इस उपलब्धि पर यह खास रिपोर्ट।
3: World Squash Women's Champion Anaha Singh from India.
4: अनाहत ने कल ये खिताब जीत कर मिस्र के खिलाड़ियों के 15 साल से चले आ रहे दबदबे को समाप्त किया। शुक्रवार रात अनाहत सिंह 21 साल में विश्व स्क्वाश जूनियर चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय बनी थी। उन्होंने मिस्र की बारब सामेह को 4 गेम में हराया था। उन्होंने फाइनल मुकाबले में एक और मिस्र के खिलाड़ी

0: भराकर अपना शानदार अभियान जारी रखा और ये ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की। विश्व नंबर 20 और टॉप सीड अनाहत ने पिछले वर्ष इस प्रतियोगिता में कांस्य पदक हासिल किया था। इस शानदार उपलब्धि पर अनाहत को भरपूर बधाइयां मिल रही हैं। अतहर सईद, स्पोर्ट्स कैन।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, खेल मंत्री मनसुख मांडविया समेत कई केंद्रीय मंत्रियों और दिग्गज हस्तियों ने इस युवा खिलाड़ी की उपलब्धि को ना सिर्फ सराहा है बल्कि पूरे विश्व ने आज लोहा माना है कि स्क्वाश में भारत का एक शानदार खिलाड़ी विश्व की ओर आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में कहा कि कुछ दिन पहले स्कॉटलैंड के ग्लासगो में शुरू हुए राष्ट्रमंडल खेलों में शामिल खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन पूरा देश कर रहा है।
2: कुछ ही दिन पहले ग्लासगो में कॉमनवेल्थ गेम्स शुरू हुए। हर देशवासी भारतीय दल को निरंतर अपनी शुभकामनाएं दे रहा है। उनकी कामना है कि सभी खिलाड़ी और एथलीट बेहतरीन प्रदर्शन करें और लोगों का दिल भी जीतें।
1: प्रधानमंत्री ने इस दौरान ये भी कहा कि हाल के समय में देश के युवाओं ने खेलों में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं।
2: हमारे युवाओं ने हाल के दिनों में स्पोर्ट्स में कई शानदार उपलब्धियां हासिल की। पीवी सिंधु बैडमिंटन में जापान ओपन का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय बन गई हैं। उनकी इस उपलब्धि पर पूरे देश को गर्व है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने भी लंदन में लॉर्ड्स स्टेडियम में अपना पहला टेस्ट मैच जीता है। यह एक ऐतिहासिक जीत है। लॉर्ड्स के लंबे इतिहास में यह महिलाओं की टीम का पहला टेस्ट मैच 1983 में इसी मैदान पर भारत ने अपना पहला क्रिकेट विश्व कप जीता था।
1: तो एक बहुत शानदार उपलब्धि जो भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने हासिल की है और जो पीवी सिंधु ने हासिल की है, जिसपे आज पूरा देश और पूरी दुनिया गर्व कर रही है। प्रधानमंत्री ने केरलम में एर्नाकुलम जिले के दक्षिण चित्तूर में खेलों के लिए की गई पहल की भी चर्चा की। वहाँ के एक स्कूल में एक संस्कृत क्लब है जहाँ के शिक्षक अभिलाष संस्कृत को अद्भुत तरीके से लोकप्रिय बना रहे हैं। अक्षरा कंदुक नाम की इस परियोजना में फुटबॉल के शब्दों को जोड़कर संस्कृत के शब्दों की सरल व्याख्या की जाती है। तो कह सकते हैं कि एक बहुत शानदार और एक बहुत रचनात्मक पहल जो युवाओं को खेल के साथ साथ पढ़ाई से भी जोड़ने का काम करती है। और बात की जाए भारत के सबसे पुराने फुटबॉल टूर्नामेंट ड्यूरेंट कप की, 135वें ड्यूरेंट कप में रांची में पहली बार आयोजित मुकाबले में आज शानदार आगाज हुआ। उद्घाटन मैच में इंडियन सुपर लीग की टीम जमशेदपुर एफसी ने श्रीलंका की डिफेंडर्स एफसी को 5-0 से हराया। हमारी संवाददाता महवीश रहमान की ये रिपोर्ट।
3: रांची ने आज पहली बार एशिया के सबसे पुराने और प्रतिष्ठित फुटबॉल टूर्नामेंट ड्यूरेंट कप की मेजबानी कर इतिहास रच दिया। बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम में 135वें ड्यूरेंट कप के रांची चरण का आगाज हुआ, जिसमें उद्घाटन मुकाबले में इंडियन सुपर लीग की टीम जमशेदपुर एफसी ने श्रीलंका की डिफेंडर्स एफसी को 5-0 से पराजित कर टूर्नामेंट में शानदार शुरुआत की। उद्घाटन समारोह के दौरान भारत और श्रीलंका की टीमों के बीच स्मृति चिन्हों का आदान प्रदान किया गया, जिसमें खेल भावना, मित्रता और दोनों देशों के मजबूत संबंधों का संदेश दिया। समारोह में हेलीकॉप्टर फ्लाई पास्ट, पैरामोटर प्रदर्शन और तिरंगे के साथ ड्यूरेंट कप एवं ईस्टर्न कमांड के ध्वजों की आकर्षक प्रस्तुति ने दर्शकों को रोमांचित कर दिया। बड़ी संख्या में पहुंचे फुटबॉल प्रेमियों ने मुकाबले का आनंद लिया, जबकि जिला प्रशासन और पुलिस की व्यापक सुरक्षा एवं यातायात व्यवस्था के बीच आयोजन शांतिपूर्ण और सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। स्पोर्ट्स कैन के लिए रांची से मैं महविश रहमान।
1: तो अब कहा जा सकता है कि रांची में फुटबॉल की दस्तक, कि ड्यूरेंट कप और फुटबॉल का कुनबा देश में धीरे धीरे अपने पांव अलग राज्यों में भी फैला रहा है। भारतीय सब जूनियर पुरुष टीम ने FIH यूथ हॉकी 5S एशियाई चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम कर लिया है। फाइनल में भारतीय टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए पाकिस्तान को 3-1 से हराया। वहीं भारतीय महिला टीम ने रजत पदक हासिल किया।
4: भारतीय सब जूनियर पुरुष टीम ने FIH यूथ हॉकी 5S एशियाई चैंपियनशिप के फाइनल में पाकिस्तान को 3-1 से हराकर खिताब जीत लिया है। भारत के लिए रोमित पाल ने मैच के 5वें मिनट, कप्तान केतन कुशवाहा ने 12वें मिनट और शाहरुख अली ने 13वें मिनट में गोल करते हुए टीम को शानदार जीत दिलाई। फाइनल में भारत ने सटीक पासिंग और अनुशासित खेल के साथ शुरुआत में ही बढ़त बना ली। रोमित पाल ने पहले हाफ में गोल करते हुए भारत को बढ़त दिलाई। उन्होंने पाकिस्तानी गोलकीपर को छकाते हुए शानदार गोल दागा। दूसरे

0: हाफ की शुरुआत में भारत ने अपना दबदबा और बढ़ाया। कप्तान केतन ने गोल करते हुए भारत की बढ़त को दोगुना कर दिया। इसके तुरंत बाद शाहरुख अली ने गोल को तीन गुना कर दिया। पाकिस्तान की ओर से एकमात्र गोल मोहम्मद उस्मान ने मैच के 16वें मिनट में दागा। हालांकि इसके अलावा भारतीय टीम ने पाकिस्तान को वापसी करने का कोई भी मौका नहीं दिया। फाइनल में पहुंचने के साथ ही भारत और पाकिस्तान दोनों ने पहली FIH यूथ हॉकी 5S विश्व कप के लिए क्वालिफाई भी कर लिया है। हालांकि भारत की महिला टीम को फाइनल मैच में चीन के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा। चीन ने भारतीय डिफेंस को भेजते हुए मैच में कुल 4 गोल दागे, जबकि भारत की बेटियां सिर्फ 2 गोल ही कर सकी और भारतीय महिला टीम को रजत पदक से संतोष करना पड़ा। हॉकी इंडिया ने दोनों टीमों के लिए नकद पुरस्कारों की घोषणा की। स्वर्ण पदक जीतने वाली पुरुष टीम के हर खिलाड़ी को 2 लाख और सपोर्ट स्टाफ के हर सदस्य को 1 लाख रुपए मिलेंगे। वहीं रजत पदक विजेता महिला टीम की हर खिलाड़ी को 1 लाख और सपोर्ट स्टाफ के हर सदस्य को 50,000 रुपए दिए जाएंगे। स्पोर्ट्स कैन के लिए शांत कुमार।
1: तो कह सकते हैं कि भारत के लिए एक बेहद शानदार दिन रहा, जहां भारतीय युवा खिलाड़ियों ने स्क्वाश से लेकर हॉकी तक के मैदान पर भारत के लिए खूब उपलब्धियां बटोरी। और अब बात की जाए 22वीं राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप की, जो कि कल से नई दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में शुरू होने जा रही है। इस प्रतियोगिता में 35 से अधिक राष्ट्रमंडल देशों के खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। 2 अगस्त तक चलने वाली इस प्रतियोगिता में पुरुष टीम, भारतीय पुरुष टीम जो है वो खिताब की प्रबल दावेदारों में से एक है, जिसमें भारत की पदक की उम्मीदें जी साथियान, हरमीत देसाई, मानव ठक्कर, मानुष शाह और पायस जैन जैसे अनुभवी खिलाड़ियों पर टिकी होंगी। महिला वर्ग में भारतीय अभियान की अगुवाई श्रीजा अकुला, सुतीर्था मुखर्जी, यशस्विनी घोरपोड़े, सिंड्रेला दास और स्वास्तिका घोष करेंगी। प्रतियोगिता में पुरुषों के वर्ग में 23 जबकि महिलाओं के वर्ग में 18 टीमें हिस्सा लेंगी। और आज देश भर में फिटनेस और स्वास्थ्य को जीवन शैली के अंग बनाने के लिए फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल अभियान का भी आयोजन किया गया, जहां कई शहरों में लोगों ने सुबह सुबह साइकिल चला करके फिटनेस का संदेश दिया। और श्रोताओं, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा, इस पर अपनी राय और सुझाव आप हमें स्पोर्ट्स कैन की ईमेल sportscan.air@gmail.com पर भेज सकते हैं। तब तक के लिए हमको अनुमति दीजिए, नमस्कार।
2: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं, मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा सुधारों पर उच्च अधिकार प्राप्त विशेष कार्यबल की घोषणा की। तकनीकी विशेषज्ञ नंदन निलेकड़ी इसके अध्यक्ष होंगे। परीक्षाओं में अनियमितताओं से निपटने के लिए कल संसद में नया कानून पेश किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी ने शिक्षा मंत्रालय का कार्यभार संभाला। कृतज्ञ राष्ट्र ने आज करगिल विजय दिवस पर अपने सैनिकों के अदम्य साहस और सर्वोच्च बलिदान को नमन किया। प्रधानमंत्री ने नागरिकों से करगिल युद्ध के शहीदों का सम्मान करने और सुरक्षित, सक्षम तथा आत्मनिर्भर भारत बनाने का संकल्प लेने का आग्रह किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर की वापसी के अलावा पाकिस्तान के साथ कोई बातचीत नहीं होगी। राष्ट्रमंडल खेलों में भारत की मीराबाई चानू ने महिलाओं के 48 किलोग्राम भारोत्तोलन में स्वर्ण पदक जीता और ऋषिकांत सिंह चानंबम ने पुरुषों के 60 किलोग्राम भारोत्तोलन में रजत पदक हासिल किया। और क्रिकेट में भारत ने हरारे में खेले गए तीसरे T20 मैच में जिम्बाब्वे को 35 रन से हराकर श्रृंखला 3-0 से अपने नाम की। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज परीक्षा सुधारों के लिए उच्च स्तरीय कार्यबल के गठन की घोषणा की। इसकी अध्यक्षता प्रख्यात प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ नंदन निलेकड़ी करेंगे। इस कार्यबल में पूर्व आईबी निदेशक तपन डेका, पूर्व इसरो अध्यक्ष डॉ एस सोमनाथ, आईआईटी मद्रास के निदेशक वी कामकोटी, पूर्व शिक्षा सचिव अनीता करवाल और आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन विशेषज्ञ अमृत लाल मीणा भी शामिल है। प्रधानमंत्री ने अपने वीडियो संदेश में कहा कि यह कार्यबल परीक्षा प्रणाली को और मजबूत बनाने पर काम करेगा। उन्होंने दोहराया कि सरकार प्रतियोगी परीक्षा

0: शिक्षाओं की निष्पक्षता बनाए रखने और करोड़ों विद्यार्थियों के भविष्य की रक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।
1: विद्यार्थियों के भविष्य के लिए भारत सरकार लगातार अनेकविध कदम उठा रही है। हमने फास्ट ट्रैक कोर्ट बना चुके हैं। हम कल पार्लियामेंट के अंदर भी कठोर कानूनों के प्रावधान के साथ नया कानून बनाने की दिशा में भी आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन हमें भविष्य के लिए सोचना है। हमारी परीक्षा पद्धति ट्रांसपेरेंट हो, हमारी परीक्षा पद्धति में सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी का उपयोग हो, इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए विश्व प्रसिद्ध टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट श्रीमान नंदन नीलेकनी जी के नेतृत्व में एक हाई पावर टास्क फोर्स बनाने का निर्णय किया है, जो एग्जामिनेशन रिफॉर्म की तरफ फोकस करेगा और जल्द से जल्द आने वाली परीक्षाओं की विश्वसनीयता को सुनिश्चित करने का काम इसके रिपोर्ट के आधार पर कर दिया जाएगा।
0: सरकार कल लोकसभा में लोक परीक्षाएं अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पेश करेगी। ये विधेयक कल के लिए लोकसभा की कार्यसूची में शामिल है। इसके माध्यम से लोक परीक्षाएं अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 में संशोधन किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ये विधेयक सदन में पेश करेंगे। शुक्रवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रश्न पत्र लीक और परीक्षा में गड़बड़ियों के मामलों में फास्ट ट्रैक अदालतों के तथा कड़े दंड का प्रावधान करने वाले इस मसौदा विधेयक को मंजूरी दी थी। राज्यसभा के उपसभापति श्री हरिवंश ने आज कहा कि आधुनिक तकनीक के उपयोग से संसद का उच्च सदन अधिक तेज तथा कागज मुक्त हो गया है और सभी सदस्यों को डिजिटल उपकरण उपलब्ध कराए गए हैं। उन्होंने ये बातें राज्यसभा के नव निर्वाचित सदस्यों के लिए आयोजित दो दिवसीय प्रारंभ कार्यशाला के समापन भाषण में कही। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज शिक्षा मंत्रालय का कार्यभार संभाल लिया। श्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद कल ही श्री जोशी की नियुक्ति इस पद पर हुई थी। वे उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालयों का प्रभार भी संभालते रहेंगे। पदभार ग्रहण करने के बाद उन्होंने विभिन्न योजनाओं और प्रमुख कार्यक्रमों के कार्यान्वयन का आकलन करने के लिए शिक्षा मंत्रालय की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। संवाददाताओं से बातचीत में श्री जोशी ने ये जिम्मेदारी सौंपने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि वे मंत्रालय की कार्यप्रणाली, नीतियों और जारी कार्यक्रमों की व्यापक समझ के लिए बैठक कर रहे हैं।
2: आज सुबह चार्ज लिया हूँ, पूरा डिटेल्स हमको देखना है, निर्णय लेना है, इस सब के बारे में इंफॉर्मेशन देने का और पूरा मिनिस्ट्री समझने का कोशिश मैंने किया। मुझे विषय नया है और सीनियर ऑफिसर्स से मैंने डिटेल में बातचीत करने का कोशिश किया हूँ। बहुत बड़ी डिपार्टमेंट है, इसलिए पूरा समझ के मैं आपके साथ बात करूँ।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत रक्षा, निर्यात, राजनीतिक सहयोग और मित्र देशों के मामले में लगातार नई ऊंचाइयां छू रहा है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में करगिल विजय दिवस के वीर सैनिकों का स्मरण करते हुए श्री मोदी ने कहा कि ये दिन देशवासियों को अपने बहादुर सैनिकों के असाधारण शौर्य की याद दिलाता है।
2: आज कारगिल विजय दिवस है, ये दिन हमें गर्व से भर देता है, ये दिन हमें अपने वीर जवानों के अद्भुत साहस की याद दिलाता है। कारगिल की ऊंची ऊंची चोटियां, कठिन मौसम, दुश्मन की चुनौती, हर परिस्थिति हमारे सैनिकों के सामने थी, लेकिन उनका हौसला हर चुनौती से बड़ा था। उन्होंने माँ भारती की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व अर्पित कर दिया। आज कारगिल विजय दिवस पर मैं सभी वीर शहीदों और वीर सैनिकों को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूँ।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले रविवार को विक्रम 1 के सफल प्रक्षेपण ने हर भारतीय को गौरवान्वित किया है। उन्होंने कहा कि ये भारत के निजी क्षेत्र का पहला रॉकेट है। कृतज्ञ राष्ट्र आज करगिल विजय दिवस मना रहा है। ये दिन ऑपरेशन विजय की सफलता और करगिल युद्ध में पाकिस्तान पर भारत की ऐतिहासिक विजय का प्रतीक है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और कई केंद्रीय मंत्रियों ने करगिल विजय दिवस पर मातृभूमि के लिए प्राण न्यौछावर करने वाले वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। राष्ट्रपति ने कहा कि सैनिकों का अद्वितीय शौर्य, अटूट संकल्प और देशभक्ति भारतीय सशस्त्र बलों की उत्कृष्ट परंपरा का उदाहरण है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि राष्ट्र असाधारण साहस, अटूट संकल्प और सर्वोच्च बलिदान से करगिल युद्ध में भारत की ऐतिहासिक विजय दिलाने वाले

0: वीर सैनिकों को नमन करता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि करगिल विजय दिवस पर देश अपने सैनिकों के अदम्य साहस और सर्वोच्च बलिदान को नमन करता है। उन्होंने नागरिकों से करगिल युद्ध के शहीदों का सम्मान करने और सुरक्षित, सक्षम तथा आत्मनिर्भर भारत बनाने का संकल्प मजबूत करने का आग्रह किया। मणिपुर के राज्यपाल अजय कुमार भल्ला और मुख्यमंत्री युमनाम खेमचंद सिंह ने आज इम्फाल में करगिल विजय दिवस के अवसर पर भारतीय सशस्त्र बलों के वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री संग्रहालय में आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होलोबॉक्स का उद्घाटन किया गया। ये आगंतुकों को वाजपेयी जी के जीवन, नेतृत्व और विरासत का जीवंत अनुभव प्रदान करेगा। उद्घाटन समारोह में पूर्व प्रधानमंत्री के परिवार के सदस्य उपस्थित थे। वर्ष 1999 का करगिल युद्ध तत्कालिक प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के प्रधानमंत्री कार्यकाल के दौरान हुआ था, इसलिए संग्रहालय करगिल विजय दिवस पर एक विशेष प्रदर्शनी भी आयोजित कर रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज दोहराया कि पाकिस्तान के साथ वार्ता केवल पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर पर केंद्रित होगी, इसके अतिरिक्त कोई बातचीत नहीं होगी। उन्होंने पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग बताया। रक्षा मंत्री लद्दाख के द्रास में 27वें करगिल विजय दिवस समारोह को संबोधित कर रहे थे।
1: भारत पाकिस्तान के हर मिस एडवेंचर का जवाब उसकी कल्पना से कहीं अधिक कठोर तरीके से देने की क्षमता रखता है, और मैं इस मंच से यह साफ संदेश देना चाहता हूं, भारत की संप्रभुता की ओर बढ़ने वाला हर नापाक कदम का यही अंजाम होगा। साथियों, हमारा इंटेंशन साफ है कि अब पाकिस्तान से कोई बात नहीं होगी, और अगर बात होगी तो सिर्फ पीओके पर ही बात होगी, जो कि भारत का हिस्सा है जिस पर पाकिस्तान ने अवैध तरीके से कब्जा किया था।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि विकसित भारत के निर्माण में देश के युवाओं की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि युवा केवल विकसित भारत की ताकत ही नहीं बल्कि उसके सबसे बड़े लाभार्थी भी हैं। आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि जब युवाओं की ऊर्जा देश की चुनौतियों के समाधान में लगती है तो देश का भविष्य और उज्ज्वल होता है। आज सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों 400 से अधिक युवाओं ने प्रधानमंत्री के साथ अपने अनुभव साझा किए। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं को सीमावर्ती गांवों को देखने, समझने और उनसे जुड़ने के लिए प्रेरित करना है।
2: हमारे सीमावर्ती गांवों में विकास की आकांक्षा और देशभक्ति की भावना, ये हम बराबर बराबर, और कभी तो लगता है कि उनके लिए खुद से ज्यादा देश होता है। देश पहले, बाकी सारी सुविधाएं बाद में, ये हमको सीमावर्ती गांवों में खास अनुभव आती है। और इसलिए उद्देश्य ये था कि देश के युवा हिमाचल, उत्तराखंड और लद्दाख के गांवों की यात्रा करें।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि सामूहिक भागीदारी हमेशा से भारत की सांस्कृतिक परंपरा की ताकत रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार हर युवा, विशेषकर देश की बेटियों को आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। यूनेस्को ने आज द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान फ्रांस के डीडे लैंडिंग बीच, ग्रीस के माउंट ओलंपस, जापान की प्राचीन राजधानियां असुका और फुजीवारा और दक्षिण सूडान के विशाल प्रवासी प्राकृतिक क्षेत्र बोमा बंडीगिलो को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है। और अब खेल खबरों के साथ हैं विशेष शुक्ला।
3: मीराबाई चानू ने ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीत लिया है। मीराबाई ने महिलाओं की 48 किलोग्राम भारोत्तोलन स्पर्धा में 190 किलोग्राम वजन उठाकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। इससे पहले ऋषिकांत सिंह ने पुरुषों के 60 किलोग्राम भारोत्तोलन में कुल 264 किलोग्राम भार उठाकर रजत पदक जीता। भारत ने जिम्बाब्वे को तीसरे और अंतिम टी20 क्रिकेट मैच में 35 रन से हराकर श्रृंखला 3-0 से क्लीन स्वीप करते हुए जीत ली है। हरारे में भारत के 193 रन के लक्ष्य के जवाब में जिम्बाब्वे 20 ओवर में 7 विकेट 157 रन ही बना सकी। अनाहत सिंह ने कनाडा के ओंटारियो में विश्व स्क्वैश जूनियर इंडिविजुअल चैंपियनशिप में महिलाओं का खिताब जीतकर इतिहास रच दिया है। इस उपलब्धि पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, खेल मंत्री मनसुख मांडविया समेत कई केंद्रीय मंत्री और बड़े खिलाड़ियों ने अनाहत सिंह को बधाई।

0: दी है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स में रजत पदक जीतने और अपना व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने पर भारतीय भारोत्तोलक ऋषिकांत सिंह चानम्बम को बधाई दी है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि श्री चानम्बम के दृढ़ संकल्प और उत्कृष्ट प्रदर्शन ने देश को अपार प्रसन्नता दी है। मौसम विभाग ने कल छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। उधर बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव के कारण कल से उड़ीसा में मॉनसून सक्रिय होने की संभावना है। मौसम विभाग ने कई जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। एक रिपोर्ट।
2: भारत मौसम विज्ञान विभाग ने बंगाल की खाड़ी में बने गहरे दबाव के असर से कल से उड़ीसा में बड़े पैमाने पर भारी से बहुत भारी बारिश का अनुमान लगाया है। भद्रक, जाजपुर, केंद्रापड़ा, जगतसिंहपुर, कटक और केंदुझर जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। जैसे जैसे ये सिस्टम और मजबूत होगा, भारी बारिश का दायरा मयूरभंज और सुंदरगढ़ तक फैलने की उम्मीद है। एहतियात के तौर पर राज्य सरकार ने मयूरभंज और जगतसिंहपुर जिले में सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों, हायर सेकेंडरी संस्थानों और आंगनबाड़ी केंद्रों को बंद करने का आदेश दिया है। मछुआरों को अगली सूचना तक समुन्द्र में न जाने की सलाह दी गई है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा सुधारों पर उच्च अधिकार प्राप्त विशेष कार्यबल की घोषणा की। तकनीकी विशेषज्ञ नंदन निलेकड़ी इसके अध्यक्ष होंगे। परीक्षाओं में अनियमितताओं से निपटने के लिए कल संसद में नया कानून पेश किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी ने शिक्षा मंत्रालय का कार्यभार संभाला। कृतज्ञ राष्ट्र ने आज करगिल विजय दिवस पर अपने सैनिकों के अदम्य साहस और सर्वोच्च बलिदान को नमन किया। प्रधानमंत्री ने नागरिकों से करगिल युद्ध के शहीदों का सम्मान करने और सुरक्षित, सक्षम तथा आत्मनिर्भर भारत बनाने का संकल्प लेने का आग्रह किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर की वापसी के अलावा पाकिस्तान के साथ कोई बातचीत नहीं होगी। और क्रिकेट में भारत ने हरारे में खेले गए तीसरे T20 मैच में जिम्बाब्वे को 35 रन से हराकर श्रृंखला 3-0 से अपने नाम की। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: गुड इवनिंग, this is Akashwani and I am Nishit Kumar with the news at 9.
4: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
5: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते। टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
6: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
4: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
5: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
7: ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं द आकाशवाणी पॉडकास्ट।
8: वेल, तस्वीर हो गया हूं तस्वीर देखकर, हैरान है दिल यार की तकदीर देखकर। वेल, तकदीर बनाने के लिए आप भी कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर पिक अपलोड करते होंगे और लाइक्स, कमेंट्स, ये किसे पसंद नहीं है। लेकिन फिर भी कहते हैं कि व्यक्ति को टैलेंटेड होना चाहिए। स्मार्ट तो आपका फोन भी है, लेकिन वो स्मार्टफोन कहीं किसी और को ओवर स्मार्ट तो नहीं बना रहा? क्या कोई और तो नहीं है जो आपके लाइफ में दखल दे रहा है? वेल, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब एंड कॉपी टू ऑल। दिस इज योर होस्ट एंड दोस्त आरजे गौतम, आपकी खिदमत में हाजिर है द आकाशवाणी पॉडकास्ट। और इन सारे सवालों का जवाब देने के लिए आज हमारे साथ एक ऐसे व्यक्ति हैं, इनके बारे में कहूंगा कि बहुत वक्त लगा है मुझे अपना किरदार बनाने में, जमाने को जमाना लगेगा मुझे हराने में। प्रेजिडेंट ऑफ साइबर लॉज नेट एंड एडवोकेट प्रैक्टिसिंग इन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, स्पेशलाइज्ड इन फील्ड ऑफ साइबर लॉ, साइबर क्राइम लॉ, साइबर सिक्योरिटी लॉ एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। डॉक्टर पवन दुग्गल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका।
9: धन्यवाद, बहुत अच्छा लग रहा है आज आकाशवाणी के पॉडकास्ट प्रोग्राम पर आकर।
8: देखिए, शुरुआत जो है लाइटर नोट पर ही हम करेंगे। अभी कहते हैं कि खाओ पियो ऐश करो मित्रों, और शो शुरू होने से पहले ना हम खाने पीने की बात कर रहे थे, लेकिन आज

0: कल आपको व्हाट्सएप पे भी कुछ ऐसे मैसेजेस आते हैं जो कहीं ना कहीं इनविटेशन होते हैं, इनविटेशन कार्ड की तरह आते हैं और आप उसके थ्रू भी डिजिटल अरेस्ट हो जाते हैं। आपको समझ में नहीं आता है कि ये 4 डिजिट का जो ओटीपी है वो किस तरीके से आपके अकाउंट नंबर्स को फेरबदल कर सकता है। ऐसे बहुत सारे सवाल हैं हमारे आपसे, कैसे होता है डिजिटल अरेस्ट?
1: देखिए, आज साइबर क्रिमिनल्स बहुत ज्यादा शातिर हो गए हैं और वो कोशिश करते हैं कि रोज नए पैंतरे, नए तरीके, नए मेथोडोलॉजीज अडॉप्ट करें ताकि लोगों को टारगेट कर सकें, शिकार बना सकें। और अब उनके लिए तो और खुशखबरी हो गई है क्योंकि अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया है। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से ये लोग नए नए प्रकार के प्रकरण का इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि लोगों को टारगेट कर रहे हैं, और लोग चाहे कुछ भी हो जाए कहीं ना कहीं बुनियादी तौर पर डरे होते हैं। इनफैक्ट COVID-19 ने सदैव के लिए हमारे जीवन में 2 चीजों का छाप छोड़ दिया, एक है डर और दूसरा है पैनिक। कोविड के बाद हम जल्दी डर जाते हैं, जल्दी पैनिकी हो जाते हैं, और इसी डर, इसी पैनिक को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करते हैं साइबर क्रिमिनल्स। पहले डराते हैं, हमारा विश्वास लेते हैं और फिर हमें विवश करते हैं कि हम पैसे दें। तो डिजिटल अरेस्ट उसी का एक नया स्वरूप है, साइबर क्राइम का एक नया अवतार है। देखिए, साइबर क्राइम का एक अगर आप यात्रा देखें तो हर बदलते दौर के साथ साइबर क्राइम ने अपनी शक्ल को, अपनी मैनिफेस्टेशन को बदला है। आज का जो फ्लेवर ऑफ द सीजन है वो साइबर अरेस्ट है या डिजिटल अरेस्ट है। उसका कारण बहुत क्लियर है, आज लोगों को अगर आप विश्वास में ले लेते हैं तो भारत में एक प्रॉब्लम है, हम लोग विश्वासी हैं, जल्दी विश्वास कर लेते हैं जो देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं बिना सोचे समझे कि भाई आज तो हैलुसिनेशन का जमाना है, आज चारों ओर डीप फेक है, गलत इन्फॉर्मेशन है, फॉल्स रूमर्स हैं, और अगर हम अपनी ऑथेंटिकेशन नहीं करेंगे तो संभावित तौर पर हम फंसेंगे। साइबर क्रिमिनल्स इसी कमजोरी का फायदा उठाते हैं और हमें डिजिटल अरेस्ट करते हैं। देखिए, मैं आपके श्रोताओं को बताना चाहूंगा कि कानून में डिजिटल अरेस्ट नाम की चीज को है ही नहीं।
0: अच्छा,
1: कानून कहता है कि साहब अगर आपको पुलिस ने अरेस्ट करना है, गिरफ्तार करना है, तो आपके घर आएगी, आपके दफ्तर आएगी, आपको अरेस्ट करेगी, सर्च वारंट देगी, अरेस्ट वारंट देगी, अरेस्ट करेगी। लेकिन हुआ क्या कि 2023 में भारत ने अपने 3 क्रिमिनल लॉज को बदला, जिनमें भारतीय न्याय संहिता आ गई और BNSS आ गए। तो उसके तहत साइबर क्रिमिनल्स ने एक नया नैरेटिव प्रारंभ किया 2024 में कि साहब इंडिया ने तो अब नए साइबर क्राइम्स और साइबर रिलेटेड लॉज बनाए हैं। तो अब ये लॉ कहते हैं कि साहब टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम आपको गिरफ्तार कर सकते हैं, और लोग इस पर विश्वास करने लग गए, और यही रीज़न है कि लोग कहीं ना कहीं साइबर अरेस्ट की या डिजिटल अरेस्ट के शिकार होते जाएं। अभी 3 महीने पहले मेरे पास केस आया है, दिल्ली के एक बाहरी इलाके में एक फार्म हाउस में एक 76 साल की महिला रहती हैं और अकेली रहती हैं, 5 उनके नौकर हैं, दोनों बच्चे बाहर हैं, और उन्हें फोन आता है कि साहब आप डिजिटल अरेस्ट हो गए हैं। वो कहती है भाई मैंने तो इतना सब सुन लिया है और दिल्ली पुलिस कितने संदेश सुन लिए हैं, डिजिटल अरेस्ट कुछ नहीं होता, मैं आपको नहीं मानती। वो कहते हैं अच्छी बात, फिर कहते हैं कि साहब आप इस फार्म हाउस में रहते हैं? वो कहती हाँ। कहते हैं हमने आपके चारों फार्म हाउस की ओर अपने शार्प शूटर्स लगा रखे हैं, अगर आपने कुछ गड़बड़ी करी तो हम आपको भून डालेंगे। जब उन्हें
0: लोकेशन बताते हैं
1: ये आपका फार्म हाउस है, और बताते हैं कि साहब हमने फार्म हाउस के आसपास अपने शार्प शूटर्स रखे हुए हैं, अगर आपने कुछ भी गड़बड़ करी तो हमारे शार्प शूटर्स आपको भून देंगे। जब उन्हें लगता है कि मेरी जान ही जाने वाली है, तब वो कहते हैं भैया जो पैसे लेना लो। पहले शुरुआत में 15,000 UPI के थ्रू पेमेंट होती है, फिर वो कहते हैं बैंक से पेमेंट करो, फिर उन्हें पता है कि आपके इतनी FD है। तो करीबन 3 दिन में वो 3,74,00,000 रुपए दे चुकी होती हैं। जब उन्हें लगता है कि मेरे पास अब पैसे रहे नहीं, तब वो कहती हैं हमने मुझे मारना मार दो, कोई बात नहीं, लेकिन मैं पुलिस के पास चली, तब वो आके रिपोर्ट करती हैं। तो आज जब इतने बड़े लेवल पर इतने एजुकेटेड लोग भी आज डिजिटल अरेस्ट का शिकार हो जाते हैं, तो हम सबको सावधान होना पड़ेगा क्योंकि हम कल शिकार हो सकते हैं।
0: देखिए, आपने डर की बात कही थी
1: जी,
0: लेकिन डर आना स्वाभाविक भी है, बिकॉज AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वो कहते हैं ना कि ये मेरी आवाज़ ही मेरी पहचान है, वो आवाज़ बदल के भी आपके सगे संबंधी की आवाज़ में आपसे बात कर सकते हैं, और वो पैनिक होना किसी का भी स्वाभाविक है, बिकॉज आपका घर में आपका कोई बेटा हो, कोई पिता हो, और जब उसकी आवाज़ में कॉल आएगी तो लोग कैसे नहीं डरेंगे।
1: यही तो प्रॉब्लम है कि हमको लगता है कि हमारे परिवारजन सेफ नहीं है, सुरक्षित नहीं है, अगली बार कोई कॉल आए हम सब

0: को अपने ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल करना है, और वो ब्रह्मास्त्र है राइट टू डिस्कनेक्ट। मैंने कॉल डिस्कनेक्ट कर देना है, कुछ भी हो जाए, कोई भी प्रलोभन हो, कोई भी डर हो, कोई भी शक शुबा हो, मुझे कॉल डिस्कनेक्ट करना है। क्यों? क्योंकि डिस्कनेक्ट करने के बाद मैं पहले अपने परिवारजन को कॉल करूंगा या करूंगी कि भाई तुम ठीक तो हो, मुझे मैसेज आया है। अगर उनसे बात हो गई और वो खतरे में है तब मैं आगे बढ़ूंगी। लेकिन अधिकांश लोग जो अपने ब्रह्मास्त्र की जो पावर है उसका इस्तेमाल नहीं करते हैं, और वो क्योंकि डिस्कनेक्ट नहीं करते तो उस भंवर में फंसते चले जाते हैं। तो बॉटम लाइन ये है, एक बार आपने डिस्कनेक्ट कर दिया, एक आपका डर चला गया, दूसरा अब आपको ये चिंता नहीं रही कि साहब ये मुझे तंग करेंगे या मुझे टारगेट करेंगे, तीसरा मुझे मौका मिलेगा कि मैं अपने परिवारजनों को कॉल करूंगी, मैं संतुष्ट हूँ, सब बढ़िया ठीक ठाक है, मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं, और उस नंबर को ब्लॉक करूंगी। और साथ ही साथ अब अगली बार ये भी एक प्रण लूंगी कि भाई अब ऐसा कोई कॉल होगा तो मैंने पहले 2 सेकंड के बाद कॉल को रखना ही नहीं है। कॉल को डिस्कनेक्ट करना कोई बुरी बात नहीं है, कोई लोग बुरे मानते हैं, मानने दें। मेरा बुनियादी जो मेरी जिम्मेवारी है वो मेरे प्रति है, मेरे परिवार के प्रति है, मुझे आपको प्रोटेक्ट करना है, अपने आप को, अपने परिवारजन को प्रोटेक्ट करना है।
1: देखिए आजकल क्या हो रहा है ना कि फॉर एग्जांपल सर हम बात कर रहे हैं अभी बैठकर, कोई किसी भी प्रोडक्ट की हम बात कर रहे हैं, चाहे आपको कुछ भी खरीदना है, फ़ोन लेना हो, टी शर्ट लेनी हो, अगर आपका फ़ोन दूर भी रखा हुआ है थोड़ी देर के बाद आपको वो सारी चीज़ें दिखाने लगेगा, मतलब आपका डेटा इस तरीके से भी सेफ नहीं है। और बहुत बड़े बड़े को फाउंडर्स जो हैं बड़ी बड़ी कंपनीज़ के, वो जब बैठते हैं काम करने के लिए चाहे वीडियो कैमरा ऑन हो ना हो वो टेपिंग करके चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल सोशल मीडिया की हम बात करते हैं, पहले के ज़माने में आप ताला लगा कर रखते थे अपने घरों में, लेकिन आज चाबी सामने वाले को खुद आप दे रहे हैं, अलाओ अलाओ एंड अलाओ।
0: समस्या ये है कि हम लोग सोचते हैं कि हमारा फोन हमारा जीवन संगनी है, कि इसके बगैर तो जीवन चल ही नहीं सकता। कभी उम्मीद करिए 15-20-30 साल पहले जब ये फोन नहीं हुआ करते थे क्या जीवन नहीं चला करता था? जीवन जब भी अच्छा चला करता था और संतुष्ट रूप से चला करता था। प्रॉब्लम क्या है ना, हमें लगता है कि फोन सिक्योर है, फोन बिल्कुल भी सिक्योर नहीं है। मुझे लगता है कि फोन से ज्यादा अनसिक्योर डिवाइस आज की तारीख में नहीं है। दूसरा, हम फोन को साधु संत क्यों मानते हैं? ये फोन जो है केवल फोन नहीं है, खासतौर पर स्मार्टफोन, ये एक रिकॉर्डिंग डिवाइस है, ये कॉन्स्टेंटली आपकी बातों को सुनता है, आपकी इजाजत के बगैर ये आपकी बातें आपके डेटा को बाहर भेजता है, उस डेटा का विश्लेषण कर कंपनियां या एडवर्टाइजर्स आपको टारगेट करते हैं। उदाहरण के तौर पर मैं आपसे बात करता हूं कि मुझे कल सुबह बॉम्बे जाना है, बस ये बात करूंगा, अगले 5 मिनट बाद मेरे फोन पर ये मैसेज आने शुरू हो जाएंगे, साहब बॉम्बे की चीप चीयर टिकट यहाँ हैं, बॉम्बे के अच्छे होटल यहाँ पर हैं। ये तब इसलिए पॉसिबल है क्योंकि ये कॉन्स्टेंटली सुन रहा है। तो अगर आप अपनी निजता का संरक्षण करना चाहते हैं तो मेरा सबने निवेदन है कि 2 फोन रखने का प्रयास करें, एक नॉर्मल फोन और एक फीचर फोन। जो बिल्कुल 1500-2000 वाला फोन होता है वो सिर्फ फोन का काम करता है, वो लिसनिंग डिवाइस नहीं होती, वो फोन जो है आपकी प्राइवेसी को काफी हद तक प्रोटेक्ट करता है।
1: देखिए डिजिटल हो चुके हैं हम, और ये होता है कि आप लॉ लेकर आए इंडिया में या फिर जितनी भी अदर कंट्रीज हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप अंडर 15 हैं तो आप अलाउ नहीं है सोशल मीडिया पर आने के लिए, लेकिन इंडिया में ये डेटा आपको बहुत बड़े पैमाने पर देखने को मिलेगा कि यंगस्टर्स बहुत बड़े पैमाने पर वो दिखाना चाहते हैं आपकी पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है जानबूझकर और लोगों को। तो इसके लिए कोई लॉ है?
0: आज की तारीख में भारत के पास ऐसा कोई कानून नहीं है। ऑस्ट्रेलिया ने एक कानून पारित करके इम्प्लीमेंट किया है कि साहब बच्चों को सोशल मीडिया पर एक्सेस नहीं मिलेगा, खासतौर पर जब वो 15 साल के ना हो। हमारे यहाँ कानून कहता है कि साहब जब तक आप 18 के नहीं हुए तब आपको बच्चा माना जाएगा, लेकिन ऐसा कोई कानून भारतवर्ष में नहीं है जो बच्चों को बार करता है, बैन करता है कि वो सोशल मीडिया पर एक्सेस ना करें। इनफैक्ट ये बैन तो पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि आज तो हमने बच्चों को बहुत छोटी उम्रों में डिवाइसेस देने शुरू हो गई। कुछ साल पहले हमारे एक परिचित के यहाँ एक बच्ची पैदा हुई, और वो बच्ची जब 2 महीने की थी तो उसके माँ बाप ने उसको एक गिफ्ट दिया। गिफ्ट क्या दिया? एक आईपैड मिनी कनेक्टेड टू द इंटरनेट।
1: ओके,
0: अब जिस बच्चे ने कभी जिंदगी में पहला शब्द नहीं बोला उसने आपने उसको आईपैड दे दिया। जब वो बच्ची 6 महीने की हुई वो आईपैड को प्ले करने के लिए के संदर्भ में अपने पेरेंट्स से ज्यादा आगे निकल चुकी थी। और जब इस तरह की हम चीजें कर रहे हैं, वो दूसरी बात है कि बच्ची का नेगेटिव इतना इम्पैक्ट हुआ उसकी माइंड पर कि उसने पहला शब्द जो उसे 6-7-8 महीने में बोलना था वो उसने 19वें महीने में बोला।
1: स्पीच डिले
0: हो गई। बट द फैक्ट इज कि हम तो आज बिजी है ना, हम कहते हैं भाई बच्चों को चुप कराने के लिए फोन दे दो, फोन देखता रहेगा, गेम्स खेलेगा, ठीक है। मुझे लगता है इससे ज्यादा

0: रिस्पॉन्सिबल कोई काम हम कर ही नहीं सकते. अगर आपने अपने भविष्य में अपने फ्यूचर जनरेशन को प्रोटेक्ट करना है तो उसे अनावश्यक तरीके से इंटरनेट के एक्सपोजर से बचाना है. ठीक है, इंटरनेट जरूरी है लेकिन बच्चों को बताना भी तो जरूरी है कि सोशल मीडिया केवल एक बहुत ही अट्रैक्टिव सेक्सी पिक्चर नहीं है. सोशल मीडिया पर हर प्रकार के पीडोफील्स मौजूद हैं, साइबर क्रिमिनल्स मौजूद हैं जो बच्चों को टारगेट कर सकते हैं, उनको आजीवन के लिए उनको आघात करा सकते हैं. तो मुझे लगता है बच्चों को एम्पावर करना जरूरी है लेकिन कानून के माध्यम से नहीं, क्योंकि कानून का तो उल्लंघन रोज होगा. बेटर यह है कि माँ बाप की जिम्मेवारी है बच्चों को दोस्त होने के तौर पे बताएं कि साहब ये खतरे हैं, आप बच के रहिए. क्यों? क्योंकि अगर आप फंस गए तो हो सकता है आपका आने वाला जीवन एक सदैव प्रेजुडिशियल इम्पैक्ट हो जाएगा.
1: देखिए, कहा जाता है कि देखिए गलतियों की माफी हो सकती है, गलत फहमियों की नहीं. अगर आप गलत फहमी का शिकार हो गए, फॉर एग्जाम्पल इंजीनियर्स को देखते हैं, डॉक्टर्स को देखते हैं, बहुत बड़े बड़े जो फील्ड में धुरंधर हैं, लेकिन जल्दबाजी में कोई गलतियां उनसे हो जाती है, डिजिटल अरेस्ट वो हो जाते हैं, उनके अकाउंट से पैसा चला जाता है, अब उनका पहला रिएक्शन क्या रहना चाहिए? चलो रिएक्शन तो हमें पता है क्या होना चाहिए, लेकिन पहला मूव क्या होना चाहिए?
0: पहला मूव आपका होना चाहिए कि साहब हो गई गलती, हो गई, जहां से जागूं वहीं से सवेरा समझूं. तो इसलिए तुरंत शोर मचाना है, चुप नहीं बैठना है. कहां शोर मचाना है? आपने इसको इन्फॉर्म करना है पुलिस को. आपके पास तुरंत सरकार ने दो विशिष्ट विकल्प दे रखे हैं. आप 1930 पर कॉल कर सकते हैं, 1930 जो राष्ट्रीय साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर है, और तुरंत कॉल कर लीजिए, क्योंकि तुरंत कॉल करने पर अगर आपका कॉल लग गया और वो तुरंत आपके बैंक के अकाउंट में देखेंगे, अगर पैसा है जहां पर भी बैंकिंग चैनल में, उसे फ्रीज कर देंगे. फ्रीज कर देंगे तो हो सकता है 1-1.5 महीने में पैसा वापस आ जाएगा. तो तुरंत आपने कॉल करना है. सेकंड, आपके पास दूसरा विकल्प है कि आप राष्ट्रीय साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पर जाकर भी रिपोर्ट कर सकते हैं, cybercrime.gov.in पर जाकर. यहां पर जाकर रिपोर्ट करिए और बताइए गलती हो गई, नो प्रॉब्लम, लेकिन एटलीस्ट बता लीजिए जितनी जल्दी. पहले हम कहा करते थे कि साहब गोल्डन आवर 1 घंटे का होता है, आज के तारीख में हम कहते हैं कि साहब आपका गोल्डन आवर पहले 7 मिनट है. अच्छा? अगर आपने पहले 7 मिनट में इन्फॉर्म कर दिया और उन्होंने आपका पैसा ब्लॉक कर दिया, तब आपका पैसा बच जाएगा.
1: ये अगर आप मिनट आपसे कोई छीन नहीं सकता,
0: कोई नहीं छीन सकता. और अगर आपने 7 मिनट वेस्ट कर दिए तो पैसा सदैव चले जाने वाला है, और एक बार पैसा बैंक अकाउंट से चला गया तो वापस लगभग कभी भी आने वाला नहीं है.
1: बिल्कुल, पैसा तो ऐसी चीज है, जो चला गया तो चला गया. अब देखिए 90% क्या कहूंगा कि 99% केसेस में ऐसा होता है, बहुत सारी मूवीज भी इस पे बनी है, जामतारा कह लीजिए या अदर वेब सीरीज, के जो आपके साथ फ्रॉड करने वाला व्यक्ति है ना, अगर दिल्ली में आपके साथ फ्रॉड हो रहा है तो किसी और स्टेट में बैठा हुआ है, कहीं गांव देहात में बैठकर पूरी प्लानिंग के तहत आपके साथ ये सारी चीजें जो है इसे अंजाम दिया जा रहा है. तो ऐसे में कैसे पकड़ा जाएगा, किस तरीके से रिकवर किया जाएगा?
0: देखिए, चुनौती ये है कि इंटरनेट ने भूगोल को इतिहास बना दिया है, और यही प्रॉब्लम है, क्योंकि एक बंदा कहीं पर भी बैठा हुआ किसी और कंप्यूटर सिस्टम में, किसी और शहर में, किसी और राष्ट्र में जाकर टारगेट कर सकता है और पैसे से आपको वंचित करा सकता है. तो अभी प्रॉब्लम यह है, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर भी कोई इंटरनेशनल साइबर लॉ नहीं है, ना ही कोई साइबर लॉ ट्रीटी मौजूद है. लेकिन आप क्योंकि जिस राष्ट्र में रहते हैं, राष्ट्र के कानून आप पर लागू हैं. भारत का अपना विशिष्ट साइबर लॉ है, जिसे हम बोलते हैं भारत का सूचना प्रौद्योगिकी कानून सन 2000. इस कानून का संशोधन हमने 2008 में भी कर रखा है, और अब तो भारतीय सरकार 3 नए क्रिमिनल लॉज आ चुके हैं, जिसमें भारतीय न्याय संहिता के तहत बहुत सारे नए साइबर क्राइम्स के प्रावधानों को भी शामिल किया गया है. तो ठीक है, प्रॉब्लम ज्यूरिसडिक्शन की है, बट हम अकेले नहीं है, सारी दुनिया की भी यही प्रॉब्लम है. लेकिन उसके बाद भी हमें तो काम करना है, हमें साइबर क्रिमिनल्स को टारगेट करना है. वो टारगेट तब करेंगे जब हम उन्हें पहचान पाएंगे, तुरंत आइडेंटिफाई कर पाएंगे और उन पर कार्रवाई कर पाएंगे. आज की प्रॉब्लम यह है कि हमारे यहाँ कोई डेडिकेटेड साइबर क्राइम कानून नहीं है, दूसरा डेडिकेटेड साइबर कोर्ट्स नहीं है. आपका नॉर्मल साइबर क्राइम वाला मैटर भी नॉर्मल क्रिमिनल कोर्ट में जाता है. तो अगर आपके साइबर क्राइम वाले मैटर को फैसला आने में 7-8 साल लग जाएंगे तो लोगों का जो विश्वास होता है वो कहीं ना कहीं डगमगा जाता है. तो डेडिकेटेड साइबर क्राइम कोर्ट्स की आवश्यकता है, डेडिकेटेड साइबर मैजिस्ट्रेट्स की आवश्यकता है हर इलाके में, ताकि हर प्रकार का साइबर मैटर केवल उनके पास जाए, उन्हें तुरंत पावर्स दी जाए कि तुरंत पैसा आप ब्लॉक कर सके. देखिए, आज जब मेरे यहाँ से पैसा जाता है तो मेरा पहली प्रायोरिटी होती है कि साहब मुझे मेरा पैसा दे दीजिए, बंदा पकड़ा जाए ना पकड़ा जाए मुझे उससे लेना देना नहीं, आप उसे जेल भेजे ना आप जेल भेजे मुझे उससे भी

0: देना नहीं, मेरा
1: ठीक है
0: पैसा मुझे दे दे। तो मुझे लगता है आज के सिस्टम में एक खामी है। अगर हम ऐसे प्रावधान ला सकें जहां पर लोगों के पैसे को वापस दिलवा सकें जल्दी तौर पर, वो मुझे लगता है ज्यादा अच्छा एक इम्पॉर्टेंट विकल्प होगा। दूसरा है कि आप ये जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, कंपनियां हैं, उनकी जिम्मेवारियों को और परिभाषित करें। वो ये ना कहें साहब मुझे तो कुछ नहीं पता। भाई आपके प्लेटफॉर्म पर हुआ है, आप बैंक हैं, आपके प्लेटफॉर्म पर हुआ, आप कैसे कह सकते हैं मुझे नहीं पता? और आप कस्टमर को कैसे विवश कर सकते हैं? भाई आप साबित दिखाओ, करके दिखाओ भाई मेरे यहाँ मिसयूज हुआ है, मैं विक्टिम बन गया हूँ, अब तो तुरंत आप मेरी बात मानिए और पैसा पैसा जो ब्लॉक करिए। लेकिन आजकल बैंक्स भी जो हैं आपकी बात नहीं सुनते।
1: कई केसेस में ऐसा हुआ है कि आप एक व्यक्ति थे, उनके अकाउंट में कहीं से 5-10 हज़ार रुपए आए। अब वो इसकी कंप्लेंट करने के लिए जागरूक नागरिक की तरह बैंक में गए और बताने के लिए कि देखिए मेरे अकाउंट में ये पैसे आ गए। जब वो बैंक में खड़े हुए थे तभी उनके अकाउंट से और भी पैसे उड़ने शुरू हो गए और फिर वो इंस्टेंट एक्शन आप ले नहीं पाते, आपको पता ही नहीं होता आपके साथ हो क्या रहा है।
0: मुझे लगता है अब हमें समझना होगा कि साइबर क्राइम जिंदगी का डेली का एक इंटेग्रल पार्ट बन चुका है,
1: जी
0: तो इसलिए घबराना नहीं है। मैं मानता हूं आज केवल दो प्रकार के लोग हैं, एक वो जिन्हें पता है कि वो साइबर क्राइम के शिकार हो चुके हैं और दूसरे वो जिन्हें नहीं मालूम कि वो साइबर क्राइम के शिकार हो चुके हैं। तो इस संदर्भ में पैनिक नहीं करना, जब पता लग जाए शोर मचाना है, रिपोर्ट करना है और जितनी जल्दी रिपोर्ट करना है। लोग क्या कहेंगे इस थॉट प्रोसेस को भूल जाइए। आज अधिकांश लोग हैं साइबर क्राइम के शिकार बनते जा रहे हैं। तो
1: जी
0: जितनी आप जल्दी एक्शन लेंगे, प्रेफरेबली पहले 7 मिनटों में एक्शन लेंगे, तो संभावित तौर पर आपका पैसा बचने की पूरी उम्मीद है। जितना आपने डिले कर दिया उतना समय आपने साइबर क्रिमिनल को दे दिया। मुझे लगता है मैसेज जो है ना दाना बहुत जरूरी है, तो लोगों की जागरूकता अत्यंत महत्वपूर्ण है इस दिशा में।
1: देखिए मास्टरमाइंड हो गए हैं आजकल हर कोई
0: हाँ
1: मास्टरमाइंड वाली जो अप्रोच करता है। फॉर एग्जांपल कल ही ना मुझे व्हाट्सएप पे एक मैसेज आया और मेरे जो फोन में था वो कॉन्टेक्ट एड ऑन था भी नहीं, मतलब उसके बाद मुझे आता है मैसेज कि ये रहा चालान और हम दोनों का चालान हो गया, वो एपीके फाइल थी। आपके सामने कोई ऐसा केस आया है?
0: आजकल बहुत सारे ऐसे केसेस हमारे सामने आ रहे
1: जानना
0: हैं
1: चाहेंगे। बिल्कुल
0: और बहुत सारे केसेस को मैंने डील किया है। ऑफ लेट एक ट्रेंड आया है जिसे बोलते हैं व्हाट्सएप वेडिंग कार्ड फ्रॉड। आजकल लोग शादियों के कार्ड तो भेजते नहीं है, व्हाट्सएप पर भेजते हैं। अब आप अंधाधुंध होकर उस फाइल को खोल देते हैं, द मोमेंट आप खोलेंगे उसके अंदर एपीआई फाइल होती है। ऑटोमेटिकली वो एक मलिशियस कोड आपके सिस्टम में आपके मोबाइल फोन पर रिलीज कर देती है और वो इस तरीके से होता है कि आपका सारा डेटा उठा लेते हैं, उठा के बाहर भेज देते हैं और आपके पूरे फोन को ब्लॉक कर देते हैं। तो पता लगा आपका कॉन्टैक्ट्स भी गए,
1: और
0: आपका
1: आप
0: फोन
1: कुछ कर भी नहीं
0: कुछ भी
1: सकते।
0: नहीं कर पाए। तो आज इस जल्दी में मत रहिए कि साहब ये इसके वेडिंग कार्ड आया है। किसी भी वेडिंग कार्ड को ऑनलाइन व्हाट्सएप पर मना खोलिए, हो सकता है उसके अंदर मलिशियस कोड हो सकता है। दूसरी बात, आजकल तो बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स आ गए हैं कि आपने सिर्फ एक लिंक को क्लिक किया,
1: ठीक
0: आपने
1: है
0: कहा लेजिटिमेट लिंक है, क्लिक करते ही आपका पूरा फोन कॉम्प्रोमाइज हो गया। यहां तक कि फोन का जो कैमरा है और फोन का जो माइक है वो उन्होंने हाईजैक कर लिया और पता लगा आपको कुछ भी नहीं लगा।
1: और वो जो बातें हो रही हैं वो भी उन्हें सुनाई दे रही हैं।
0: कॉन्स्टेंटली चारों ओर सुनाई दे रही है। मेरे पास एक बहुत अजीब केस आया, ये एक दिल्ली के प्रतिष्ठित स्कूल का केस है। 11वीं क्लास का बच्चा है,
1: ठीक है
0: उसको टीचर ने एक दिन झाड़ दिया कि उसका होमवर्क सही नहीं था। तो उसने कहा चलो मैं सबक सिखाता हूँ। वो जाता है नेहरू प्लेस, वहां से कोई कोई डिवाइस कोई प्रोग्राम लेकर आता है। अगली बार जब टीचर आती है और टीचर की एक खास बात थी कि आके अपना पर्स जो है टेबल पर रखती है और फिर सबसे पहले ब्लैक बोर्ड पे चीजें लिखने शुरू करती है। तो टीचर ब्लैक बोर्ड पे चीजें लिख रही है, ये लड़का जाता है और टीचर के फोन पर एक छोटी सी कुछ चीज डाल के आ जाता है और उसके बाद सब कुछ नॉर्मल रहता है। 15 दिन बाद एक 2 घंटे की ऑडियो रिकॉर्डिंग रिलीज होती है। उसने क्या किया, एक छोटी सी डिवाइस उस टीचर के पर्स में डाल दी, जो 2400 घंटे सिर्फ जो चीज बोली जा रही थी उसको सुन रहा था और वो डिवाइस ये इंफॉर्मेशन वापस बाहर भेज रहा था। तो इमेजिन करिए आप अपना पर्स अपने ड्राइंग रूम में भी ले जाते हैं, बेडरूम में भी ले जाते हैं, तो जितनी प्राइवेट कॉन्वर्सेशन टीचर ने किसी की जिसके साथ कर
1: और
0: रखी है
1: चाहे आप यूज कर रहे हो ना कर रहे हो,
0: ना कर रहे, आपको पता ही नहीं है। पता लगा आपके फोन आपके जो पर्स के अंदर ये डिवाइस बैठा हुआ है, आपको पता नहीं, 24 घंटे रिकॉर्ड कर रहा है, आपके इंफॉर्मेशन को बाहर भेज रहा है और फिर उसका दुरुपयोग करके उस इंटरनेट पर डाला जा रहा है और उसके आधार पर उसको कट पेस्ट किया गया और उसको जानबूझ के एक डीप फेक बनाया गया और फिर ये मैसेज फैलाया गया पूरे पूरे कंप्यूटर इस स्कूल में कि साहब इस टीचर का फला व्यक्ति के साथ अफेयर चल रहा है।
1: ओहो,
0: तो
1: मतलब
0: देखिए
1: आपकी पर्सनल लाइफ एकदम डिस्ट्रॉय हो
0: मुझे लगता है कि आज
1: गई।
0: जो है ना आपको गुस्सा कम खाना चाहिए। दूसरा बच्चों

0: डांटना कम चाहिए,
1: खाने की बहुत सारी चीजें, गुस्सा ना
0: गुस्सा ना
1: आए।
0: खाएं, क्योंकि कुछ नहीं पता किसने आपसे पंगा ले लिया, आपके यहाँ कुछ डिवाइस डाल दी। और एक और आजकल जो नया केस आ गया है वो ये है कि साहब आप कहीं खड़े हैं, कोई बंदा आता है, बंदी आती है कि साहब मेरा ना फोन गुम हो गया, मुझे दीजिए, मुझे घर बात
1: कॉल करने दीजिए,
0: कॉल करने दीजिए, बस।
1: ये तो अमूमन होता है, हर किसी के साथ होता
0: और
1: है।
0: हम लोग दे देते हैं, पता लगता है वो कुछ नहीं कॉल नहीं करती, वो ये कोड डाल देती है, विद द रिजल्ट आपके सारे कॉल्स किसी दूसरे नंबर पर आ जाते हैं और सारे आपके मैसेज दूसरे नंबर पर आ जाते हैं और उसके माध्यम से वो आपके सारे अकाउंट्स को पूरी तरीके से हैक करके मिसयूज कर लेते हैं।
1: ये भी होता है, फलाना कंपनी से हैं सर, सर्वे कर रहे हैं, फोर डिजिट, ये फोर डिजिट जो है ये बहुत सारे बड़ी डिजिट को आपके अकाउंट से गायब कर देता है, तो इस चक्कर में ना रहिए। वेल, ये सारे केसेस की तो हम बात कर ही रहे हैं, थोड़ा सा बात करते हैं प्रिकॉशन, सबसे ज़्यादा प्रिकॉशन आप क्या ले सकते हैं, बिकॉज आज की डेट में बात करें तो वर्क फ्रॉम होम का कल्चर बहुत ज़्यादा हो गया है। अब आप कोई भी ऐप डाउनलोड कर रहे हैं या कोई ऑफिस का काम भी कर रहे हैं तो आपको अलाउ तो करना ही पड़ेगा, डिसअलाउ आप कर नहीं सकते हैं। इवन बहुत सारी ऐसी एप्स हैं, नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन वो जरूरत भी हो गई है, उससे
0: देखिए
1: कैसे बचेंगे?
0: मैं आपको ये तो कह नहीं रहा हूं कि आप हिमालय चले जाइए और संन्यास ले लीजिए, आपको इसी दुनिया में रहना है और इसी इंटरनेट का साथ काम करना है, लेकिन सतर्कता सावधानी के साथ आप अपने आप को बचा सकते हैं। पहली महत्वपूर्ण बात कि आप जो चीज सुन देख या पढ़ रहे हैं उस पर तुरंत विश्वास ना करिए जब तक कि आप उसकी स्वयं पुष्टि ना कर गए हों। दूसरी, आप किसी भी कॉल को आप फॉर ग्रांटेड फॉर फेस वैल्यू पर ना ले लीजिए। तीसरी महत्वपूर्ण बात, अगर आपने कुछ इंपॉर्टेंट सीक्रेट बात करनी है, कॉन्फिडेंशियल बात करनी है, अपने फोन को कमरे से बाहर रखिए। कमरे से बाहर नहीं रख सकते तो अपने जहां आपकी लोकेशन है वहां से 12 फीट की दूरी पर रखिए ताकि आपकी आवाज, आपकी इंफॉर्मेशन जो है फोन ना उठा सके। चौथी महत्वपूर्ण बात,
1: 12 फीट सर, 1 फीट दूर नहीं रख पाते हैं
0: हम तो 12 फीट की बात कर रहे हैं ताकि भाई वो आपका सिग्नल कनेक्ट ना कर सके। चौथी बात, हम लोग ना आज इंडिया में दो रेवोल्यूशंस को देख रहे हैं, ये दोनों ही क्रांतियां चल रही हैं। पहली है भारत की उल्टी की क्रांति, द ग्रेट इंडियन वॉमिटिंग रेवोल्यूशन। आज सारे भारतवासी उल्टी कर रहे हैं अपने डेटा की, चाहे वो सोशल मीडिया पर हो, इंटरनेट पर हो, AI पर हो। कृपया इस भारत की उल्टी की क्रांति का हिस्सा ना बनिए, हर चीज हर आदमी के साथ शेयर करने की आवश्यकता नहीं है। तीसरी, एक और महत्वपूर्ण जो क्रांति चल रही है उसे बोलता हूं ग्रेट इंडियन रिकॉर्डिंग रेवोल्यूशन। आज भारत में हर आदमी रिकॉर्ड करने की फिराक में है, क्या रिकॉर्ड कर रहा है पता नहीं, मैं रिकॉर्ड कर रहा है लेकिन रिकॉर्ड करने के बाद भूल रहा है कि भाई रिकॉर्डिंग में रखा रहा हूं, मैं क्लाउड पर डाल रहा हूं। उस दिन मेरे पास एक केस आया बच्चे का जिसने 15 अश्लील वीडियो अपने आसपास की परिचित महिलाओं की बनाई और गूगल ड्राइव पर डाल दी और फिर गूगल ने जाकर पुलिस को बताया कि साहब देखिए अश्लील कंटेंट आया है, उस बच्चे को फिर कार्रवाई की जा रही है। तो आप ये सोचें कि साहब आपका सर्विस प्रोवाइडर आपके बारे में शिकायत नहीं करेगा, सबसे बड़ी गलती है। इनफैक्ट अश्लील कंटेंट आप प्रकाशित क्यों करें, सारी दुनिया को बताने की क्या आवश्यकता है? आपको समझना होगा कि भारत का जो सूचना प्रौद्योगिकी कानून है वो कहता है कि अगर आप अश्लील इलेक्ट्रॉनिक कंटेंट का प्रकाशन करते हैं, प्रसारण करते हैं या प्रकाशन या प्रसारण में सहायता प्रदान करते हैं तो वो दंडनीय अपराध है जिसमें 3 साल की सजा है, 5 लाख रुपए जुर्माना है। और अगर आप स्पेसिफिक एक्सप्लिसिट सेक्सुअल कंटेंट को पब्लिश या प्रमोट करते हैं,
1: अपलोड करते हैं,
0: खुद भी करते हैं, इनफैक्ट लोग समझते हैं भाई मैं तो अपने आप को बिना तस्वीर के, बिना कपड़ों के अपलोड कर रहा हूं, क्या
1: सोशल मीडिया।
0: भाई आप जब अपनी भी अश्लील तस्वीर खींचते हैं तब भी आप अपना जुर्म करते हैं, क्योंकि लॉ कहता है कि आप पब्लिश नहीं कर सकते, आप ट्रांसमिट नहीं कर सकते या पब्लिशिंग या ट्रांसमिशन में सहायता प्रदान नहीं कर सकते। अगर आप एक्सप्लिसिट सेक्सुअल कंटेंट को पब्लिश या ट्रांसमिट करेंगे 5 साल की सजा है, 10 लाख रुपए जुर्माना है। चाइल्ड पोर्नोग्राफी करेंगे यानी कि एक कोई व्यक्ति जो 18 साल से नीचे हो उसकी अश्लील कंटेंट को प्रकाशित करेंगे वो चाइल्ड पोर्नोग्राफी में आएगा, 5 साल की सजा है, 10 लाख रुपए जुर्माना है, नॉन बेलेबल है, बहुत सीरियस ऑफेंस है। तो प्लीज आप समझ लीजिए, इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज इन द आईज ऑफ लॉ। क्योंकि आप कानून से अनभिज्ञ हैं इसका ये मतलब नहीं कि कानून आप पर लागू नहीं होगा। कानून कहता है कि साहब आप कानून के दायरे में रहिए, कोशिश करिए अपने डिवाइसेस को अपनी जिंदगी का हिस्सा तो बनाएं लेकिन अपनी जिंदगी का केंद्र बिंदु ना बनाएं, ये इंपॉर्टेंट चीज है। और जहां तक हो सके अपनी इंफॉर्मेशन को केवल नीड टू नो बेसिस पर शेयर करें, सारी दुनिया के साथ सारी चीजें साझा करने की कोई आवश्यकता है ही नहीं। और ये बुनियादी तौर पर अगर आप चीजें अडॉप्ट करें और अपने रोजमर्रा के जीवन में साइबर सुरक्षा को जीवन जीने की शैली के स्वरूप में अडॉप्ट करें तो काफी हद तक आप इस तरह के साइबर क्राइम के फ्रॉड्स या उसके विक्टिम्स होने की दिशा में बच जाएंगे।
1: साइबर सिक्योरिटी कितनी इंपॉर्टेंट है हर इंडिविजुअल के लिए,
0: मुझे
1: कोई काम करता हो, कोई इन्फ्लुएंसर हो, या फिर अपने प्रोडक्ट को रिवील करना चाहता हो आगे आकर।
0: मुझे लगता

0: है कि आज जिंदगी में अगर आपके पास सबसे महत्वपूर्ण कोई वेक्टर है तो वो साइबर सुरक्षा है। हम ये क्यों सोच लेते हैं कि साहब मैंने तो डिवाइस में मुझे जो करना कर दूं लेकिन कुछ गड़बड़ होगी सरकार देखेगी। भाई सरकार तो अपना काम कर ही रही है लेकिन साइबर सुरक्षा की जिम्मेवारी आपकी भी तो है। हमें समझना है कि हम एक बहुत बड़ी चेन की कड़ियां हैं और ये चेन उतनी ही ज्यादा सशक्त है जितनी की सबसे कमजोर कड़ी, और हमारा दायित्व बनता है कि हम उस चेन की सबसे कमजोर कड़ी ना बने। तो साइबर सुरक्षा को जीवन जीने की शैली के रूप में अडॉप्ट करें, अनसिक्योर साइबर हाइजीन मेथोडोलॉजीज को, हैबिट्स को बिल्कुल इग्नोर करिए, पासवर्ड शेयर करना बिल्कुल बंद कर दीजिए, अपना फोन किसी को भी देना बिल्कुल बंद कर दीजिए, किसी और का यूजर नेम पासवर्ड इस्तेमाल करना बंद कर दीजिए, क्योंकि जब आप ये करते हैं तब आप कंप्यूटर रिलेटेड ऑफेंस करते हैं जिसमें 3 साल की सजा है और 5 लाख रुपए जुर्माना है।
1: तो ऐसे में कई केसेस में हुई है लोगों को,
0: बहुत सारे केसेस में हमने प्रोसिक्यूशन करी है जहां पर मेरा पासवर्ड किसी और व्यक्ति ने इस्तेमाल किया और मैंने शिकायत करी और फिर केस दर्ज हुआ और फिर कार्रवाई शुरू हुई। भाई सवाल कानून कहता ना कि पासवर्ड मेरी प्रॉपर्टी है, मैंने अगर आपको दे भी दिया तो ये तो मेरे घर की चाबी है ना,
1: शेयरिंग इज केयरिंग नहीं है, मतलब
0: बिल्कुल नहीं। आपको मैंने कभी भी अलाउ नहीं किया कि साहब मेरे घर की चाबी मेरी इजाजत के बगैर इस्तेमाल करके घुस घर के अंदर घुस जाओ और जो लेना है लेके चले जाओ। तो इसलिए कॉन्फिडेंशियलिटी, साइबर सिक्योरिटी, प्राइवेसी बहुत इंपॉर्टेंट है। और अब तो सुप्रीम कोर्ट कहता है कि हम सब भारतवासियों को निजता का अधिकार हमारे मौलिक अधिकार का अभिन्न हिस्सा है, धारा 21 भारतीय संविधान के तहत।
1: चलिए, जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, और जहां कवि नहीं पहुंच पाता है वहां पर कहीं ना कहीं बास जैसी पैनी निगाहें पहुंच जाती है काफी सारे लोगों की। और ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये होता है पवन जी कि आप प्रॉब्लम में, आपको पता है कि आपके अकाउंट से पैसे चले गए, आप बैंक के पास जा रहे हैं और आप समझाने की कोशिश करते हैं कि मुझे नहीं पता मेरे साथ क्या हुआ है, मुझे खुद नहीं आइडिया है, लेकिन मेरा पैसा लौटा दो। और ऐसे में बैंक मैनेजर के साथ आपकी काफी वार्तालाप होती है, काफी बहस होती है, लेकिन कहीं ना कहीं कंक्लूड नहीं कर पाते हैं इन चीजों को आप।
0: उसका रीजन ये है कि बैंक मैनेजर के हाथ में कुछ भी नहीं है। द मोमेंट आपके यहाँ पैसा जाता है आपका पहला विकल्प है आपने 1930 कॉल करना है, ताकि आपकी जो बैंकिंग सिस्टम में अगर कोई पैसा है तो पुलिस उसको तुरंत फ्रीज कर सके। दूसरा, आपने रिपोर्ट करनी है cybercrime.gov.in। वो जैसे आप रिपोर्ट करोगे आपको एक एक्नॉलेजमेंट नंबर मिलेगा, वो एक्नॉलेजमेंट नंबर आप बैंक के साथ शेयर करिए ताकि बैंक उस पर आगे कार्रवाई हो सकता है। आप जाके वहां लड़ेंगे, उन पर विवाद करेंगे, साहब मुझे पैसे दो, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। वो कहते हैं ना, लिखतम के आगे बख्तम की कीमत नहीं होती। तो आपकी लिखत में जब कंप्लेंट होगी उसका एक्नॉलेजमेंट नंबर होगा, वो अगर आप लिखत में बैंक को देंगे तो बैंक तुरंत एक्शन करेगा।
1: वो जवाबदेही वाला प्रोसेस होता है ये कितने टाइम का होता है? देखिए, अगर नहीं आता है जवाब तो क्या कर सकते हैं आप?
0: आपको ना कॉन्स्टेंटली पैरवी करनी पड़ेगी। पहली बात, आपने शिकायत करी, उसके हर 2 दिन बाद आपने उस शिकायत का आपने पूछना है कि भाई क्या हुआ,
1: अपडेट है।
0: जैसे आप अगर आप cybercrime.gov.in पर जाएंगे और आपको एक्नॉलेजमेंट नंबर मिलेगा, आपको एक SMS आ जाएगा कि फलां पुलिस ऑफिसर है, ये इसका नंबर है, ये आपका इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है। अब आप हर रोज एक धर्म बना लीजिए कि आपने इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को कॉल करना है, भाई मेरा क्या हुआ क्या हुआ। वो कहते हैं ना, पैरवी ही आपको वहां तक ले जाएगी जहां पर मुकदमा भी नहीं ले जा सकता। जितनी जल्दी आप पैरवी करेंगे, बैंक के साथ पैरवी करेंगे, उतनी जल्दी आप सीरियसनेस अपनी शो कर पाएंगे और उतनी जल्दी हो सकता है आपको रिलीफ भी मिल जाए। आज आप जैसे, हम जैसे लोग ही सबसे वल्नरेबल टारगेट्स हैं। एक बार अगर हम जाग जाएंगे इस चुनौती के प्रति तो फिर एटलीस्ट हम काम करना शुरू कर देंगे। दैट इज 50% ऑफ द बैटल वन। लेकिन अगर हम इसी मस्ती में होंगे, साहब मेरा क्या जाएगा, मेरा कुछ हो नहीं सकता, मेरा तो कुछ बिगाड़ नहीं सकता।
1: स्मार्ट और ओवर स्मार्ट होने में थोड़ा सा फर्क है, राइट?
0: ओवर कॉन्फिडेंस हमेशा आपको मुंह की देगा और अक्सर आपको प्रॉब्लम में डाल देगा।
1: बिल्कुल, देखिए इलीगल तरीके से कोई व्यक्ति फंस चुका है, उसे पता है कि अब मेरे पास कोई विकल्प है नहीं, मैं सिर्फ कंप्लेंट कर सकता हूं, लेकिन उसके लिए कोई लीगल रेमेडीज?
0: देखिए, अगर आप तुरंत शिकायत करते हैं तो पहली रेमेडी वो है, क्योंकि उस शिकायत के एक्नॉलेजमेंट नंबर आपको मिलता है
1: जी।
0: अगर आप तुरंत 1930 पे कॉल करते हैं तो वो तुरंत देख लेते हैं कि आपके बैंकिंग चैनल में कोई पैसा है तो नहीं है, अगर है तो ब्लॉक करते हैं। ब्लॉक कराइए अपना पैसा ताकि अल्टीमेटली 5-6 हफ्ते में पैसा वापस आ जाए।
1: जो चला गया वो चला गया, लेकिन जो बचा हुआ है।
0: हाँ, और तीसरी बात, अगर आपको लगता है पुलिस एक्शन नहीं करती तो आप अपने लोकल थाने में, अपने लोकल मैजिस्ट्रेट के यहाँ जाके एप्लीकेशन मूव कर सकते हैं कि साहब पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही, इन्हें आप दिशा निर्देश दें कि साहब आप मेरा पैसा वापस दीजिए। तो कोर्ट क्या करेगी, कोर्ट देखेगी भैया उस अक्यूज के अकाउंट में कितने पैसे बचे हैं। अगर आप जितनी जल्दी एप्लीकेशन मूव करेंगे, फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस पर अदालत डिसाइड करेगी। अगर आपकी एप्लीकेशन पहले चली गई तो जितना पैसा फ्रीज हो गया उसमें पहला अमाउंट आपका जाएगा, आपके अमाउंट खत्म होने के बाद किसी और को दिया जाएगा। तो जागरूकता एटलेंस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी।

0: लीगल रेमेडीज आपके पास उपलब्ध हैं. ये तमाम सारी घटनाएं जो हैं ऑफेंसेस बन जाती हैं भारत के इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट में, भारतीय न्याय संहिता में. आवश्यकता है आपको सतर्क, जागरूक और सावधान रहने की.
1: देखिए, किसी व्यक्ति ने आपके साथ डिजिटल अरेस्ट किया और जब वो मुकदमा वहां तक पहुंचा और अगर उसने वो पैसे खर्च कर दिए या उसके अकाउंट में है नहीं, तो इस केस में क्या होता?
0: फिर देखिए, उस व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा चलता है और अल्टीमेटली उसको सजा मिलती है और तब तक कानून का वो ये भी अधिकार है कि अगर उसके पास कोई भी एसेट्स हैं तो उन एसेट्स को भी फ्रीज किया जा सकता है और उनको भी सेल करके वो पैसे रिकवर किए जा सकते हैं. तो कानून के पास बहुत सारे विकल्प हैं, लेकिन अक्सर लोगों तक पहुंचने का पहला चैलेंज होता है. हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि साइबर क्राइमिनल वो कौन सा था जिसने आपको डिजिटल अरेस्ट किया, क्योंकि देखने में कुछ और हो सकता है, वास्तविक तौर में कुछ और हो सकता है. और आज की तारीख में तो डिजिटल अरेस्ट में एआई का बहुत ज्यादा दखल अंदाज हो गया है. आप जो देख रहे हैं वो व्यक्ति वास्तविक तौर पर व्यक्ति नहीं है, वो एआई द्वारा जनरेटेड एक डीप फेक वीडियो है. अब डीप फेक वीडियो अगर है तो फिर आप उस साइबर क्रिमिनल तक कहां पहुंचेंगे कि किसने अपलोड किया, कौन था उस

0: वो कौन सा था जिसने आपको डिजिटल अरेस्ट किया, क्योंकि देखने में कुछ और हो सकता है, वास्तविक तौर में कुछ और हो सकता है। और आज की तारीख में तो डिजिटल अरेस्ट में एआई का बहुत ज्यादा दखल अंदाज हो गया है। आप जो देख रहे हैं वो व्यक्ति वास्तविक तौर पर व्यक्ति नहीं है, वो एआई द्वारा जनरेटेड एक डीप फेक वीडियो है। अब डीप फेक वीडियो अगर है तो फिर आप उस साइबर क्रिमिनल तक कहां पहुंचेंगे कि किसने अपलोड किया, कौन था उसका मास्टरमाइंड उसके पीछे। तो चुनौतियां बहुत होती हैं, लेकिन वो कहते हैं ना कि पहला कदम होता है उठ के जागना। और हमें ये लगता है कि अगर आप साइबर क्राइम के शिकार हुए हैं, डिजिटल अरेस्ट के शिकार हुए हैं, तो एटलीस्ट उठ जाइए, रिपोर्ट करिए। रिपोर्ट करेंगे तो कानूनी प्रकरण आगे बढ़ेगा, रिपोर्ट ही नहीं करेंगे तो कुछ भी नहीं होने वाली।
1: अब सरल भाषा में पूछना चाहूंगा, जितने भी स्कैमर्स हैं उनको पहचानने का, या स्कैम आपको ईमेल आ रही है, इन सबको पहचानने का सबसे आसान तरीका क्या है? सबसे सिंपल
0: तरीका, कुछ भी चीज आपको जो बताती है जो टू गुड टू बी ट्रू है तो एक्चुअली में टू गुड टू बी ट्रू होता है। कभी लगता है सपनों जैसे, भाई मेरे को खबर आई कि आरबीआई मुझे 50 लाख रुपए दे रहा है लॉटरी के तौर पे, भाई मुझे 50 लाख क्यों देगा? लेकिन लोग जो है भेज जाते हैं कि साहब मैं ही दुनिया का सबसे लकी आदमी हूं कि मुझे आरबीआई 50 लाख रुपए की लॉटरी दे रहा है। तो पहला इंडिकेशन है कि साहब ये साइबर फ्रॉड है, ये साइबर क्राइम का एक नया स्वरूप है। तुरंत उस कम्युनिकेशन को डिसरिगार्ड करिए, भूल जाइए कि आप किसी को बुरा भला कह रहे हैं। सॉरी, आज आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आज आप प्रोटेक्टेड होंगे तो कल नया दिन होगा, आप फिर कुछ काम कर पाएंगे। तो बॉटम लाइन ये है कि जहां पर आपका मन ठुके कि साहब ये ठीक नहीं है,
1: कुछ घपला है,
0: द मोमेंट ये मन है ना, इस मन का विश्वास जरूर कर लीजिए, क्योंकि हमेशा हमारे को बचाएगा, हमारी गट फीलिंग हमेशा बचाएगी। हमारा दिमाग तो फिर भी बता देगा, ओह चले यार इतने पैसे मिल रहे हैं, करके देखते हैं क्या फर्क पड़ता है,
1: क्या जाता है।
0: लेकिन अगर आपने अपने आप को बांध लिया कि साहब भैया मुझे मिलना तो उतना है जितना मेरे माथे पे लिखा हुआ है, तब मैं इन छोटे प्रलोभनों में नहीं पड़ूंगा। देखिए, एक तो हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि भारतवर्ष में कोई डेडिकेटेड आज की तारीख में लॉ लागू नहीं हो रखा डेटा प्रोटेक्शन को लेकर, तो हमारा डेटा बिकता है नेहरू प्लेस जैसे मार्केट्स में, ऑनलाइन मार्केट्स में। और हाँ, ये बात महत्वपूर्ण है कि डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट पूरी तरीके से लागू हो जाएगा 13 नवंबर 2026 को, लेकिन उससे पहले आपके डेटा की खरीद फरोख्त बहुत चल रही है। मेरे पास तो कुछ क्लाइंट आते हैं जो डेटा मर्चेंट्स हैं, मतलब मैंने कहा भाई ये क्या चीज है,
1: वो कहते हैं मैं भी नया सुन रहा हूँ वर्ड।
0: मैंने कहा क्या होता है डेटा मर्चेंट? वो कहते हैं सर एक नया बिजनेस मॉड्यूल है,
1: ठीक है।
0: हम क्या करते हैं, हम 20 या 25 लोगों को रिक्रूट करते हैं और कहते हैं कि साहब हमारे लिए काम करिए, हम आपको मंथली सैलरी देंगे, आप हमसे सैलरी लीजिए, लेकिन एक भी दिन हमारे दफ्तर मत बताइए, आप जाके दूसरी कंपनियों में जाइए और जाके अपना जॉब लीजिए, आप वहां नौकरियां करिए, वहां से भी पैसे लीजिए, उनका डेटा लीजिए, वो डेटा चुरा के हमें दीजिए, हम वो डेटा की क्लीनिंग करेंगे, उसको सैनिटाइज करके और करके पूरे मार्केट में बेचेंगे। तो ये एक नया प्रकार का मॉडल इंडिया में आ गया है। दूसरा एक नया मॉडल आ गया है, वो है साइबर क्राइम एज अ कॉटेज इंडस्ट्री। साइबर क्राइम आज इतना ज्यादा पनप चुका है कि वो कॉटेज इंडस्ट्री के तौर पर छोटे छोटे गांवों में, कस्बों में बन चुका है। यहां तक पहले हम बात करते थे जामतारा की, फिर बात करने लगे हम नू की, भरैच की और अदर इंस्टीट्यूशंस की। आज तो हर गांव में, हर छोटे शहर में आपको साइबर क्राइम के अड्डे मिलते हैं। लोगों को पता है कि भैया पैसे कमाने का सबसे अच्छा तरीका जो है साइबर क्राइम है। और दूसरी बात, भाई भारत में साइबर क्राइम कन्विक्शन तो होती नहीं है। 2003 में मैंने भारत की पहली साइबर क्राइम कन्विक्शन कराई थी, जिसमें मैं वकील था।
1: 2003 में
0: कंप्लेनेंट की तरफ से, आज 23 साल हो चुके हैं। और उस जमाने में भी हमने जज को बोला कि साहब ये तो बहुत इंपॉर्टेंट मैटर है, आप सजा दें, लेकिन जज ने कहा साहब फर्स्ट टाइम ऑफेंडर है, कोई प्रीवियस हिस्ट्री नहीं है, चलो उन्हें प्रोबेशन पे एक साल पे छोड़ देते हैं। वो कन्विक्शन थी, उसके बाद कुछ कन्विक्शन हुई 2008 तक, लेकिन 2008 में हम लोगों ने एक बुनियादी गलती कर ली। हम लोगों ने आईटी एक्ट में अमेंडमेंट कर दिया और इन संशोधनों ने 2-3 साइबर क्राइम्स को छोड़ के बाकी तमाम सारे साइबर क्राइम्स को जमानती अपराध बना दिया। यानी कि
1: मतलब 2-3 वो कौन से?
0: 2-3 जैसे साइबर टेररिज्म हो गया, जैसे चाइल्ड पोर्नोग्राफी हो गया, जैसे एक्सप्लिसिट सेक्सुअल कंटेंट पब्लिकेशन एंड डिसेमिनेशन, इन तीनों को छोड़ के बाकी सारे साइबर क्राइम आज बेलेबल हैं। मतलब कि अगर मैं साइबर क्राइम करता हूं तो मुझे बेल अधिकार के तौर पर उपलब्ध है। तो होता होने क्या लगा कि लोग साइबर क्राइम करते, बाहर बेल पर आते, डर कुछ था नहीं, बेल से बाहर आते, अपने बर्खास्त इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को डिलीट करते और फिर मस्ती से तमाशा देखते। क्योंकि अगर एविडेंस ही आपका डिस्ट्रॉय हो गया तो सजा तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस पर ही सजा हो सकती है। तो तभी हम देख रहे हैं कि 2008 के बाद से भारतवर्ष में आज तक साइबर क्राइम का एक अकाल आ चुका है कन्विक्शंस को लेकर।

0: तो इसलिए लोगों को लगता है भाई क्या फर्क पड़ता है, मैनेज कर लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं. तो लोग अंधाधुंध होके हुए साइबर क्राइम को अडॉप्ट कर रहे हैं, भूल रहे हैं कि साहब इस भंवर में जो फंस गया वो फंस गया, लेकिन 99.9% लोगों को लगता है भाई हम तो भारी निकल जाएंगे. क्यों? क्योंकि भारत का जो साइबर क्राइम कन्विक्शन रेशियो है वो 0.1% से भी नीचे है. तो जब अगर आप देख लीजिए कि 100 मुकदमे होते हैं और उन 100 मुकदमों में 0.1% केसेस में ही सजाएं होती हैं, वजह सजा होती ही नहीं है, क्योंकि एविडेंस ही नहीं होगा तो सजा नहीं होगी.
1: तो ऐसे लोगों को काउंटर कैसे किया जाए?
0: तो मुझे लगता है काउंटर करने के लिए आपको एक लोगों में जागरूकता बढ़ानी पड़ेगी ताकि लोग अवेयर हो जाए नए उभरते साइबर क्राइम के को लेकर. और आज तो नया प्रॉब्लम है, आज एक नए प्रकार का साइबर क्राइम उत्पन्न हुआ है जिसे हम बोलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्राइम, AI क्राइम.
1: उससे तो सब डरे हुए आने वाले समय में, आई गेस.
0: AI तो इतना खतरनाक हो गया है कि आपको कुछ नहीं करना, मुझे आपको तंग करना है, मुझे सिर्फ आपकी आवाज की 3 सेकंड का सैंपल चाहिए, आपके वीडियो का 5 सेकंड का सैंपल चाहिए बस,
1: और कुछ नहीं चाहिए. हाफ एन आवर का और पूरे घंटे का,
0: पूरे घंटे का मैं आपके आपके बरखिलाफ एविडेंस बना सकता हूँ. मेरे पास उस दिन एक क्लाइंट आया, उन्हें कहा साहब मेरी शादी हो रखी है, 10 साल हो चुके, मेरी वाइफ से मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे तलाक लेना है. तो हमने कहा भाई क्या क्या प्रॉब्लम है बताइए तो सही.
1: मैंने
0: कहा सर मैं आपको एविडेंस दिखाता हूँ. उसने मुझे एविडेंस दिखाया और वो वाइफ इतनी बदतमीजी तरीके से हस्बैंड को बात कर रही थी, मुझे लगा कि साहब इन दोनों का रहना बिल्कुल संभव नहीं है. तो चलो हम डिवोर्स फाइल करते हैं, मैंने डिवोर्स पिटीशन बना दी. उसके बाद उन्होंने कहा कि साहब मेरी जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है ना वाइफ की, वो जरूर लगाइएगा अदालत में. तो हमने लगाना शुरू किया और साथ साथ सर्टिफिकेशन डालनी शुरू करी. तो जब सर्टिफिकेशन में उससे सवाल पूछे कि भाई क्या कहाँ हुआ, क्या पता लगा, किस डिवाइस से हुआ, अल्टीमेटली उसके मुंह से निकल गया सर मैंने इसे AI से बनाया था. तो आज ये
1: मतलब AI के थ्रू आपने किसी को पूरे तरीके से मतलब बहुत गलत ठहरा दिया.
0: एक पति ने अपनी पत्नी के बरखिलाफ AI के माध्यम से झूठे इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड बनाए और उसको आधार बनाते हुए मुकदमा दाखिल करने की प्रयास किया. वो तो जब मुझे रियलिटी पता लगी हमने कहा साहब हमें माफ करिए, हम ऐसे
1: लोगों के खिलाफ कुछ नहीं हो सकता.
0: हो सकता है अगर शिकायत हो, लेकिन हमारे यहाँ तो अक्सर शिकायत होती नहीं, और शिकायत हो भी जाए तो अक्सर FIR नहीं होती. प्रॉब्लम क्या ना कि अधिकांश तौर पर पुलिस आपके केसेस दर्ज नहीं करती, अगर दर्ज करती भी है तो उन केसेस में अक्सर इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को हम सही तरीके से एकत्रित नहीं कर पाते. एकत्रित भी कर पाए तो उस इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को सही तरीके से हम अदालत में प्रस्तुत साबित नहीं कर पाते भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के तहत. तो बुनियादी तौर पर कितना ही बेहतरीन आपका केस क्यों ना हो, लेकिन अगर इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस आप साबित ना कर पाए तो सजाएं नहीं होंगी.
1: ये दोनों तरफ से देखिए, अगर कोई गलत काम कर रहा है तो वो भी कह सकता है कि मैं AI, ये तो AI है सर.
0: आज की तारीख में तो स्टैंडर्ड डिफेंस आ गया ना, अगर आपने मेरे बरखिलाफ एलिगेशन लगाई आई विल से कि सॉरी ये तो डीप फेक है, मैंने तो बनाया नहीं,
1: मेरा है ही नहीं, अब मेरी आवाज ही नहीं है,
0: मेरी आवाज ही नहीं, आप साबित करते दिखाइए. तो आज की तारीख में हम देख रहे हैं कि प्रदूषित हो रहा है पूरा वातावरण
1: जी,
0: हमारे आसपास जो इन्फॉर्मेशन है वो झुठलाई जा रही है. झूठी इन्फॉर्मेशन भी है, फेक इन्फॉर्मेशन भी है, रूमर्स भी हैं और डीप फेक इन्फॉर्मेशन है. तो इसलिए इस पूरे अंदाज में अदालतों के सामने भी चुनौती है भाई किस प्रकार की एविडेंस या किस प्रकार की जानकारी पर वो विश्वास करेंगे और किस तरह पर विश्वास नहीं करेंगे. हम लोगों ने भारतीय साक्ष्य अधिनियम में इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस के लेकर कुछ नए कानून बनाए हैं, नए प्रावधान हैं, लेकिन वो 2023 का लॉ है. आज 2026 ने AI ने आके उलट पुलट कर दिया है. आज AI के द्वारा जर्मित या जेनरेटेड जो एविडेंस है उसको साबित करना बहुत बड़ी चुनौती हो गई है, उसके लिए नए कानूनी प्रावधान आने की आवश्यकता है. फॉर्चुनेटली अब खबर आई है,
1: ओनली अपग्रेड करना पड़ेगा
0: जी हाँ. तभी अब खुशखबरी यह है कि अब सरकार की तरफ से खबर आई है कि सरकार अब एक नई डेडिकेटेड लॉ पर काम कर रही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर. तो मुझे लगता है ये चूहे बिल्ली का खेल तो चलता रहेगा. साइबर क्रिमिनल्स आज की तारीख में पुलिस से लगभग 50 कदम आगे चल रहे हैं और AI आने के साथ साथ 50 कदम तो छोड़िए, वो 500 कदम आगे होने वाले हैं.
1: और सबसे बड़ी बात यह है ना कि आप उस व्यक्ति की सहमति भी नहीं ले रहे हैं. आप बहुत सारे एक्टर्स के वीडियो देख सकते हैं, उन्हें खुद नहीं पता होता है या उनकी वॉइसेस कहाँ कहाँ पर चल रही है, और फैंस को भी लगता है कि हाँ चलो उन्हीं की आवाज है.
0: यही तो प्रॉब्लम है. तो अगर आप तो बहुत बड़े अभिनेता हैं, एक्टर हैं, तो आप अदालत जाएंगे और अपने पर्सनालिटी राइट्स को प्रोटेक्ट कराएंगे,
1: राइट.
0: लेकिन आम जनता
1: अपने जैसे लोग क्या करेंगे?
0: कैसे करेंगे? तो यहाँ पर मुझे लगता है कि नॉर्वे ने एक बहुत इंपॉर्टेंट काम किया है. इस नॉर्वेजियन कंट्री ने एक नया लॉ बनाया है कि साहब आप हम अपने कॉपीराइट लॉ में संशोधन करते हैं, हर व्यक्ति को अधिकार है अपने पर्सनालिटी राइट्स का, यानी कि आपको अदालत का दरवाजा खटखटाने की आवश्यकता नहीं है, आपकी पर्सनालिटी है. मैं

0: से बोलता हूँ, ये
1: मेरी
0: मेरा
1: आवाज
0: मेरी
1: है, मेरा
0: आवाज़ ऐसी
1: फेस
0: है, मेरी
1: है।
0: शक्ल है, ये मेरा इतना अंदाज है, ये इस पर मेरे ऑटोमेटिक राइट्स होने चाहिए,
1: कॉपीराइट होना
0: कॉपीराइट
1: चाहिए
0: होने
1: वो,
0: चाहिए, और
1: ऑब्वियसली।
0: मुझे ये ताकि कोई उसका हनन करता है तो मैं उसके बरखिलाफ जा सकूं।
1: जी
0: मुझे लगता है इस तरह के प्रावधान अगर भारत में आ जाएं तो भारतवासी के हाथों को हम ज्यादा सशक्त कर पाएंगे। दूसरा, मुझे लगता है कि डीप फेक को लेकर डेडिकेटेड लीगल प्रोविजन लाने जरूरी है। और तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि जब एआई का इतना महत्वपूर्ण दुरुपयोग हो रहा है तो एआई की जवाबदारी भी तो होनी चाहिए, एआई को अकाउंटेबल होना पड़ेगा कि साहब ऐसा है, एआई का दुरुपयोग अगर है तो कौन जिम्मेवार है। कंपनियां तो कहती हैं कि साहब ये ले लीजिए, आपको मैं एआई ब्लैक बॉक्स के तौर पर दे रही हूं, इस्तेमाल करना या ना करिए। अब तो बल्कि फॉरेन कंपनियों ने बहुत बड़ा एक नया तंत्र शुरू किया है,
1: जी क्या है
0: वो ये है कि वो 399 का तंत्र। वो क्या करते हैं कि आपको अपने पूरे वर्ल्ड क्लास सर्विसेज 1 महीने के लिए 399 रुपए के पैक में दे देते हैं
1: सिर्फ,
0: सिर्फ। अब 399 रुपए में तो आपको 2 पिज्जा भी अच्छे नहीं मिलते,
1: नहीं मिलते हैं
0: तो
1: सर।
0: और 399 रुपए में वो आपको पूरे महीने भर के आपको वर्ल्ड क्लास सेवाएं दे रहे हैं, आपका डेटा ले रहे हैं, आप डेटा का इस्तेमाल करके अपने सिस्टम्स को, अपने एल्गोरिदम्स को और ज्यादा इंप्रूव करते जा रहे हैं, और फिर वही इंप्रूव्ड वर्जन्स आपको दोबारा बेचेंगे। तो मुझे लगता है कि एआई को अकाउंटेबल बनाने की आवश्यकता है। इस संदर्भ में मैंने ऑलरेडी एक एआई अकाउंटेबिलिटी फ्रेमवर्क प्रकाशित किया है जो विभिन्न प्रकार के कानूनी सिद्धांतों के पर आधारित है कि साहब इन इन बेसिस पर आप एआई को जिम्मेवार या अकाउंटेबल ठहरा सकते हैं। लेकिन बात यहीं पर ही थम नहीं रही है, अब एजेंटिक एआई आ गया है, यानी कि लोग अब एआई एजेंट्स इस्तेमाल करने लग गए हैं। आप सिर्फ उन्हें एक कमांड दे दीजिए, उसके बाद वो कमांड को पूरी तरीके से खुद डिवाइड करेंगे, सब सब टास्क को लेंगे और फिर वो उसके ऑटोमेटिकली इंप्लीमेंट कर देंगे विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन। उनको जिम्मेवार कैसे ठहराया जाए, इसके लिए भी अभी हमने एक ग्लोबल एजेंटिक एआई लाइबिलिटी फ्रेमवर्क बनाया है। तो काफी सारा काम करने की आवश्यकता है, लोगों को जागरूक होने की आवश्यकता है कि साहब हम लोग कॉन्स्टेंटली एक जो दौड़ता हुआ शेर है उसकी सवारी कर रहे हैं, हम इस शेर से नीचे तो नहीं आ सकते, तो कॉन्स्टेंटली इस शेर की सवारी करते हुए अपनी स्ट्रैटेजीज को कैलिब्रेट करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा और अपने आप को कॉन्स्टेंटली ढालना पड़ेगा नए नए समय, नए नए टेक्नोलॉजी के ट्रेंड्स के साथ साथ, ताकि हम और हमारा डेटा उनका संरक्षण हो सके।
1: बिल्कुल, दिल को सुकून मिलता है मुस्कुराने से, और किसी व्हाट्सएप ग्रुप में रौनक आ जाती है बड़े बुजुर्गों के आ जाने से। अक्सर गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग वाले, वो आपने काफ़ी सारे मैसेजेस देखे होंगे, और उनके साथ जब डीप फेक कुछ होता है ना तो वो सबसे पहले घबराते हैं। ऐसे में आपको घबराना नहीं है, लेकिन सर बहुत ही तेज तर्रार तरीके से आपने सारे जवाब दिए हैं। चलिए रैपिड फायर की तरफ लेकर चलता हूँ आपको,
0: जी
1: ठीक है?
0: जी
1: और सबसे पहला सवाल मेरा ये है रैपिड फायर राउंड में, पासवर्ड और पास फ्रेज, विच वन इज सिक्योर्ड?
0: पास फ्रेज, क्योंकि पास
1: कैसे?
0: फ्रेज ज़्यादा बड़ा होता है, पासवर्ड छोटा होता है। और मैं तो आपको ये कहूँगा कि आप पास फ्रेज भी बनाना है तो अपने लोकल भाषा में पास फ्रेज बनाइए,
1: ताकि कोई उसे
0: ताकि
1: डिकोड
0: उसे
1: ना कर
0: डिकोड
1: पाए।
0: ना कर सके। हमारे पास एक
1: राइट।
0: क्लाइंट आया, उसने पास फ्रेज का एक नया अध्याय में सिखाया। उसने कहा सर मैं पास फ्रेज इस्तेमाल करता हूँ, और मैंने कहा आप बताइए आपका करंट पास फ्रेज क्या है। उसका जवाब था मेरा करंट पास फ्रेज है मैं चलता जा रहा हूँ #@।
1: क्या बात है,
0: सब अंग्रेजी में, मैं मींस MAIN चलता CHLT है। इतना लंबा आप पास फ्रेज करेंगे ताकि सिस्टम या हैकर जो है आपके
1: कोई
0: पास फ्रेज
1: सोच ही
0: को
1: ना सके,
0: सोच ही ना सके, उसे ब्रेक ही ना कर सके।
1: बिल्कुल कहाँ जा रहा है पासवर्ड। लेकिन पासवर्ड कहीं भी जाए, पास फ्रेज कहीं भी जाए, लेकिन आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और VPN, यस और नो, सेफ है VPN?
0: बिल्कुल सेफ है, VPN का
1: ओके।
0: इस्तेमाल करना जरूरी होता है ताकि आप अपनी लोकेशन की, अपने डेटा का संरक्षण कर सकें।
1: क्या बात है, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है मेरा, फेस आईडी और फिंगरप्रिंट दोनों ही काफी इंपॉर्टेंट है।
0: दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन फेस में फिर भी गड़बड़ की जा सकती है। ये फिंगरप्रिंट दुनिया भर में एकमात्र ऐसा प्रिंट है,
1: ये हो
0: तो
1: सकता है ना बियर्ड आपकी बढ़ जाए कहीं ना
0: आपकी
1: कहीं।
0: बियर्ड बढ़ जाए, आपकी शे अब तो क्या ना अडोब से, फोटोशॉप से आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन
1: हाँ
0: यहां से फोटोशॉप करना मुश्किल होता है। तो फिंगरप्रिंट कंटिन्यूज टू बी नंबर
1: बिल्कुल
0: वन।
1: सेफेस्ट है। वन साइबर सिक्योरिटी हैबिट जो हर किसी को अपनी लाइफ में लेकर आनी चाहिए, एक ऐसी हैबिट जो साथ हो आपके।
0: मैं आपको एक नहीं दो हैबिट्स बताता हूं।
1: ओके।
0: एक, कंजूस हो जाइए, दूसरा शकी हो जाइए। कंजूसी अपने डेटा को लेकर, अपने डेटा को केवल नीड टू नो बेसिस पर शेयर करिए, किसी और के साथ नहीं। और शकी, हर जानकारी को शक के दृष्टिकोण से देखें जब तक कि स्वयं उसकी पुष्टि आपने ना कर रखी हो। तो शकी हो जाइए और कंजूस हो जाइए, काफी हद तक आप साइबर क्राइम से बच
1: मतलब
0: जाएंगे।
1: थोड़ा सा डेली सोप वाले एक्टर की तरह आपको काम करना पड़ेगा। वेल सर, मैं आपको शुरुआती दौर में कहना भूल गया, यू आर सो लाइक हैंडसम, एंड यही कहना चाहूंगा, बहुत स्मार्टनेस के साथ सारे जवाब दिए। आखिरी सवाल मेरा ये है

0: कि एक गलती जो हम हर रोज कर रहे हैं, हर रोज दोहरा रहे हैं, उसे बचना चाहिए।
1: एक गलती जो हम हर रोज कर रहे हैं वो अपने स्मार्टफोन को रिलाई करते हुए कर रहे हैं। हमारा स्मार्टफोन, हमारा अपने जब आप फोन स्मार्टफोन के कैमरे से फोटो ऑनलाइन खींचते हैं और अपलोड करते हैं, तो रिमेंबर करिए वो नॉर्मल फोटो नहीं है, वो स्मार्ट फोटो है। उसमें आपका लैटिट्यूड है, आपका लॉन्गिट्यूड है, आपका मेटा डेटा है, आपका डिवाइस इंफॉर्मेशन है। वो तमाम सारी चीजें जब आप ऑनलाइन अपलोड कर रहे हैं तो पूरी दुनिया भर के चोरों को आमंत्रित कर रहे हैं कि साहब मैं यहाँ लोकेशन हूँ, मेरी यहाँ लोकेशन है, आपने आके मुझे अटैक करना कर लीजिए। तो कृपया अपने स्मार्टफोन के द्वारा खींची हुई फोटो तब तक इंटरनेट पर मत डालिए जब तक आप उसे सैनिटाइज ना कर सकें और उसका मेटा डेटा पूरी तरीके से
0: सैनिटाइज करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है?
1: सैनिटाइज करने के बहुत से टूल्स आ जाते हैं जो आपका जो मेटा डेटा होता है उसमें से निकाल देते हैं, आपकी लोकेशन निकाल देते हैं, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड।
0: अगर मैं लोकेशन डाल नहीं रहा हूं तो भी लोगों को लोकेशन पता लग जाएगी
1: ऑटोमेटिकली। मैं आपके यहां बैठा हूं, आज आपने मेरे फोन से तस्वीर खींच ली, मैंने अपलोड करी, मेरे स्मार्टफोन वाली तस्वीर में आपका लैटिट्यूड आ गया, लॉन्गिट्यूड आ गया, मेटा डेटा आ गया, मेरे मोबाइल फोन का क्या डिवाइस है, कौन सा मॉडल है, किस प्रकार के फंक्शन है, वो तमाम सारी चीजें आ गई
0: डेप्थ में जाकर,
1: बहुत सब आ गई और आपने बिना सोचे समझे उसको ऑनलाइन कर दिया। ये तो वही हालत हुई ना कि हमारे एक क्लाइंट थे ये डेल्टा वेव के बाद बहुत तंग आ गए थे, तो उन्होंने कहा चलो भैया हम वेकेशन करने चलते हैं। तो कहां चले? मनाली चलते हैं। लेकिन मनाली तो कभी गए नहीं थे, तो लोगों से पूछा भाई क्या करें, तो लोगों ने अलग अलग सजेशन दिया ऑनलाइन। तो उन्होंने एक लाइफ चेंजिंग निर्णय लिया कि हम हर घंटे जहां पे भी होंगे हम एक वीडियो ब्लॉग डालेंगे। तो वो यहां से मूर्थल गए, वहां से वीडियो ब्लॉग डाला, ऊपर रोहतांग पास गए, वहां ब्लॉग डाला। 8 दिन बाद जब वो घर वापस आते हैं गुड़गांव में, तो पाते हैं उनका सारा घर सफा चट्ट हो चुका है, एक भी चीज घर में नहीं थी, क्योंकि चोरों को उन्होंने
0: पता लग गया, आमंत्रित किया,
1: आमंत्रित किया, उन्होंने बताया कि साहब ये तो वहां पर अभी रोहतांग पास पर है, ये इनके लैटिट्यूड, इनका लॉन्गिट्यूड, अभी तो आ नहीं सकते।
0: मतलब चोर भी बैठे होंगे, कह रहे होंगे रुक जाओ ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, अभी दूर है,
1: अभी 8 दिन है हमारे पास, आराम से चोरी करते हैं, घर से सारी चीज निकाल लेते हैं। तो कोशिश करें ये तमाम सारी चीजें अपनी गर्दन अपने हाथ काट करके साइबर क्रिमिनल्स के हाथ में ना दे दीजिए, क्योंकि इसका दुरुपयोग आप ही के खिलाफ होने वाला है।
0: क्या बात है, इनकॉग्निटो मोड, ये कितना सेफ है?
1: बिल्कुल सेफ नहीं है। इनकॉग्निटो मोड सिर्फ आपको एक
0: झांसा दे रहा
1: है, झांसा अपना अपने मन को बहलाने का एक और तरीका है। रियलिटी इनकॉग्निटो मोड कुछ नहीं होता। आज की साइबर सारे, चाहे आपके ब्राउजर्स हो, चाहे आपके सर्विसेज हो, इनकॉग्निटो मॉड्यूम के मोड के माध्यम से आपकी तमाम सारी जानकारी फिर भी ले रहे हैं। तो इस दुनिया में जो चीज मौजूद नहीं है उसकी आप उम्मीद ना करें, और इनकॉग्निटो मोड के बेसिस पर वो कुछ गलत काम ना कर दें जो आने वाले समय में आपको भारी पड़ सकते हैं।
0: क्या बात है, ये सबसे बड़ा मिथ है कि कहीं ना कहीं एंटीवायरस सॉफ्टवेयर जो है वो आपको सुरक्षित रखते हैं।
1: बिल्कुल भी नहीं, सबसे बड़ा मिथ है, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नाम की चीज पूरी सुरक्षा देते नहीं है। वो तो एक छोटी सी बात बताते हैं कि साहब ये हमारे सॉफ्टवेयर हमारे डेफिनेशंस हैं, ये डेफिनेशंस का एंटीवायरस या वायरस आपके सिस्टम में नहीं है। मुझे लगता है आपको ब्रॉड चीज देखनी है। देखिए, अगर मैं सिर्फ पूरे अपने घर में जिसमें 5 दरवाजे हैं एक ही दरवाजे पर ताला लगाऊंगा, बाकी 4 खुले रखूंगा, तो गलती मेरी है, क्योंकि चोर उन 4 दरवाजों से मेरे घर के अंदर आएंगे। तो कोशिश करें एंटीवायरस के साथ साथ और स्ट्रेटजीज भी अडॉप्ट करें, अच्छा फायरवॉल रखें, साथ ही साथ अपनी सेल्फ कंट्रोल करें, अपनी जानकारी शेयर ना करें। हमारे पास एक केस आया जहां पर एक बंदे ने अपने ना सेंसिटिव पर्सनल मोमेंट्स को कैप्चर किया,
0: और वो बंदा बहुत ज्यादा क्रेज नहीं हो गया है,
1: तो वो बंदे की मुझे पता ही नहीं हालत क्या थी भाई। जनवरी में शादी हुई और शादी के लिए हनीमून गए आप गोवा, और हस्बैंड वाइफ ने एक पैक किया,
0: आई लव माय हस्बैंड या आई लव माय वाइफ,
1: उन्होंने पैक्ट ये किया कि साहब हम दोनों अपनी फर्स्ट नाइट के मोमेंट्स अपने फोन पर रिकॉर्ड करेंगे। क्यों? क्योंकि भाई आजीवन फिर देखेंगे और आनंद लेंगे। और उसके 15 दिन बाद लड़ाइयां शुरू हो गई और दोनों के बरखिलाफ क्रिमिनल कंप्लेंटें शुरू हो गई कि इन्होंने हमारे प्राइवेट पार्ट्स की तस्वीरें जो है उसकी खींच करके
0: दोनों ने एक दूसरे के ऊपर डाला,
1: और फिर अल्टीमेटली तलाक शुरू हो गया। तो बॉटम लाइन है भाई, वो चीज क्यों करनी है जिसके लेके कल को प्रॉब्लम होने वाली है।
0: और इसमें सबसे बड़ी बात ये भी होती है सर कि अगर आपने अपने प्राइवेट मोमेंट्स को कैप्चर कर लिया, सबसे पहली बात तो नहीं करना चाहिए,
1: बिल्कुल नहीं,
0: लेकिन उसके बाद भी अगर आपका फोन चोरी हो गया तो सारा डेटा रिवील्ड हो सकता है।
1: बिल्कुल
0: सच्चाई है,
1: बुरी सच्चाई है। और दूसरी बात, अगर आप सोचते हैं कि सुरक्षित तौर पर मैं इसको बैकअप ले लेता हूं, तो मेरा बैकअप ऑनलाइन चला गया तो मेरे सर्विस प्रोवाइडर के पास चला गया, एक तो सर्विस प्रोवाइडर मेरी शिकायत करेगा, दूसरा कल मेरी कहीं ना कहीं रिपोर्ट हो सकती है, तीसरा कल को मैं अपनी जॉब बदलता हूं, दूसरी अपॉर्चुनिटीज में जाता हूं, ये चीज मेरे को आड़े आएगी, और चौथा मेरी प्राइवेसी तो पूरी तरीके से लुप्त हो जाने वाली है। तो ऐसा काम करें क्यों? मुझे लगता है कि वो चीज ना करें जिसका एक इम्पैक्ट आप पर, आपके फ्यूचर पर आ सकता है। और मुझे लगता है अपने पर्सनल मोमेंट्स को तो कभी भी डिवाइस के साथ कभी कैप्चर करना ही नहीं चाहिए, चाहे

0: कितनी भी अच्छी इंटेंशन क्यों ना हो, क्योंकि कहीं ना कोई इसका दुरुपयोग होगा। अगर आपकी गर्दन है तो कोई ना कोई तो उसको दबाएगा, तो अपनी गर्दन किसी के हाथ में दें क्यों, बुनियादी सवाल ही खड़ा होता है।
1: और सही बात यह है कि देखिए सबसे साफ बात यह है कि पूरी लाइफ फिर लोगों की स्पॉइल हो जाती है,
0: पूरी लाइफ, लोगों की पूरी लाइफ, उनकी मेंटल मेकअप, उनकी थॉट प्रोसेस, उनकी साइकोलॉजी इंपैक्ट हो जाती है। क्योंकि साहब आपने तो कुछ चीज फन में करी और उसका इंपैक्ट आ गया जो आजीवन के तौर पर आ गया, और इमेजिन वो कंटेंट आपके बच्चे देखेंगे, वो कंटेंट आपके परिवार के मित्रगण देखेंगे, तो वो तो आपको एक आजीवन के तौर पर,
1: और वो लाइफ लॉन्ग रहने भी वाला है।
0: बिल्कुल,
1: ऐसी बहुत सारी वीडियोस मैंने देखी हैं, शायद वो सर्वर से डिलीट कराने के लिए आपको फिर बहुत पैसा खर्च करना पड़ता।
0: और कभी भी कुछ चीज डिलीट नहीं होती, इस मिथ्या से बाहर निकल जाइए।
1: अच्छा,
0: इंटरनेट एक ऐसा प्रकरण है जो ना तो कभी सोता है और ना ही कुछ चीज भूलता है। एक बार आपने इंटरनेट पर कुछ चीज डाल दी तो वो सदैव के लिए वहां रहने वाली है, और कोई ना कोई आदमी जो उस फिराक में है, उस ढूंढ में है, तो कहीं ना कहीं ढूंढ करके आपको आप क्या पहुंच ही जाएगा और इन्फॉर्मेशन ले ही लेगा। तो कोशिश करनी चाहिए कि इंटरनेट को आप बहुत ज्यादा ट्रस्ट ना करें, खास तौर पर ये जानकारी तो बिल्कुल ना शेयर करें, क्योंकि ये जानकारी किसी के भी हाथ में आएगी, चाहे वो साइबर क्रिमिनल हो या हैकर हो, वो सबसे पहले इस जानकारी को अश्लील पोर्नोग्राफिक वेबसाइट पर बेच देगा। और फिर एक बार आपका कॉन्टेंट अश्लील पोर्नोग्राफिक वेबसाइट पर आ गया तो उसमें से बाहर निकालना लगभग असंभव हो जाता है।
1: बिल्कुल, लाइफ लॉन्ग ट्रॉमा हो सकता है। वेल, जाने से पहले सर दो टिप जो आप लोगों को देना चाहें।
0: जाने से पहले केवल दो टिप मैं जो आपको देना चाहूंगा। एक ये, दुनिया बहुत तेज रफ्तार से बढ़ रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ चुका है। इस दौर में जितना आप अपने डेटा को समेट के रख सकेंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा, अंधाधुंध लोगों को डेटा बांटने की आवश्यकता नहीं है। और दूसरा महत्वपूर्ण बात, रोजमर्रा के जीवन में साइबर सुरक्षा को, साइबर रेजिलियंस को हिस्सा बनाइए। मान के चलिए मुझ पर आक्रमण तो होगा ही, तो इसलिए जब आक्रमण हो तो पैनिक नहीं करना,
1: तो शील्ड हो।
0: इंपॉर्टेंट चीज है कितनी जल्दी आप आक्रमण के बाद पुनः नॉर्मलसी पर आ सकते हैं उस पर ध्यान दीजिए, अच्छे बैकअप्स रखिए, सेफ ब्राउजिंग हैबिट्स रखिए, अपनी अनावश्यक जानकारी इंटरनेट पर डिवाइसेस पर शेयर ना करिए, और अल्टीमेटली आपकी ड्यू डिलिजेंस, आपकी सावधानी ही एकमात्र आपका मूल मंत्र है जो आपको बचाने वाला है। समझ लीजिए कि हम सब लोग आज डिजिटल कुरुक्षेत्र के वॉरफील्ड के केंद्र बिंदु पर आ चुके हैं, हमें चारों ओर से अटैक होने वाला है। मैं आपको क्या कह रहा हूं, एक अच्छा सुरक्षा कवच पहन लीजिए, और वो सुरक्षा कवच है आपकी सावधानी, आपकी सूझबूझ, क्योंकि ये सुरक्षा कवच आपको विभिन्न प्रकार के अटैक्स को रिपेल करने में मदद करेगा।
1: बिल्कुल, प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर, और शेयरिंग इज केयरिंग, ये सिर्फ इस पॉडकास्ट के लिए अप्लाई होती है, बिकॉज आप इसे शेयर कर सकते हैं ताकि आपके जो सगे संबंधी हैं वो इस चक्रव्यूह में ना फंसें। वेल, मुझे पता है आप जाने का समय हो गया है, और जब भी मैं जाता हूँ आप कहते हैं तुसी जा रहे हो, तुसी ना जाओ ना, लेकिन जाएंगे तभी तो फिर से लौट कर आएंगे। एंड आकाशवाणी पॉडकास्ट, आपका होस्ट, आपका दोस्त साइन आउट कर रहा है अलॉन्ग विद डॉक्टर पवन दुग्गल। थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग अस, एंड आगे फिर से आपसे मुलाकात होगी।
0: थैंक यू।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। अभी आप सुन रहे थे द आकाशवाणी पॉडकास्ट। इस कार्यक्रम का विजुअल वर्जन आप देख सकते हैं द आकाशवाणी पॉडकास्ट यूट्यूब चैनल पर। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र में रिकॉर्ड किया गया और दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।

0: समारोह में हम भारत की प्रथम महिला संतूर वादिका विदुषी डॉक्टर वर्षा अग्रवाल जी, जो कि सूफियाना घराने की एकमात्र ऐसी भारतीय महिला कलाकार हैं जिन्हें संतूर वादन में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त है, का संतूर वादन प्रस्तुत करने जा रहे हैं।
1: नमस्कार। इन टुडेज प्रेस्टिजियस प्रोग्राम ऑफ द अखिल भारतीय रविवासरीय संगीत सभा वी आर गोइंग टू प्रेजेंट अ संतूर रिसाइटल बाय इंडियाज फर्स्ट फीमेल संतूर मेस्ट्रो विदुषी डॉक्टर वर्षा अग्रवाल, हु इज द ओनली इंडियन फीमेल आर्टिस्ट ऑफ द सूफियाना घराना टू अचीव इंटरनेशनल अक्लेम इन संतूर प्लेइंग।
0: डॉक्टर वर्षा जी ने गायन और तबले की शिक्षा मात्र 6 वर्ष की आयु में प्रारंभ की थी और आगे चलकर प्रख्यात तबला वादक पंडित ललित महंत जी से संगीत का गहन मार्गदर्शन प्राप्त किया। आप प्रख्यात संतूर वादक पद्मश्री पंडित भजन सोपोरी जी की गंडाबद्ध शिष्या हैं। आप आकाशवाणी और दूरदर्शन की टॉप ग्रेड कलाकार होने के साथ साथ विदेश मंत्रालय द्वारा विदेशों में संतूर वादन हेतु आमंत्रित की जाने वाली देश की पहली महिला संतूर वादिका का गौरव भी रखती हैं।
1: डॉक्टर वर्षा जी बिगन हर ट्रेनिंग इन वोकल म्यूजिक एंड तबला एट द मेयर एज ऑफ 6 एंड लेटर रिसीव्ड प्रोफाउंड म्यूजिकल गाइडेंस फ्रॉम द रेनाउंड तबला प्लेयर पंडित ललित महंत जी। शी इज अ गंडाबंद डिसाइपल ऑफ द एमिनेंट संतूर मेस्ट्रो पद्मश्री पंडित भजन सोपोरी जी। अलॉन्ग विथ बींग अ टॉप ग्रेड आर्टिस्ट ऑफ ऑल इंडिया रेडियो एंड दूरदर्शन, शी ऑल्सो होल्ड्स द प्राउड डिस्टिंक्शन ऑफ बींग द फर्स्ट फीमेल संतूर प्लेयर ऑफ द कंट्री टू बी इन्वाइटेड बाई द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स फॉर संतूर कॉन्सर्ट्स अब्रॉड।
0: वर्तमान में शासकीय कन्या स्नातकोत्तर उत्कृष्ट महाविद्यालय उज्जैन में संगीत प्राध्यापिका के रूप में सेवारत डॉक्टर वर्षा जी को भारत के माननीय राष्ट्रपति द्वारा फर्स्ट लेडी अवार्ड, मध्य प्रदेश का प्रतिष्ठित शिखर सम्मान सहित कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मानों से अलंकृत किया जा चुका है।
1: करंटली सर्विंग एज अ प्रोफेसर ऑफ म्यूजिक एट द गवर्नमेंट कल्स पीजी कॉलेज ऑफ एक्सीलेंसी उज्जैन, डॉक्टर वर्षा जी हैज बीन ऑनर्ड विद सेवरल नेशनल एंड इंटरनेशनल एकोलेट्स, including the First Lady Award by the Honorable President of India and MP Government Shikhar Samman also.
0: Vidushi Varsha Agrawal, भारतीय शास्त्रीय संगीत जगत का एक ऐसा ही प्रतिष्ठित नाम है। संतूर के शततंत्री तारों पर उनकी उंगलियां जब थिरकती है तो श्रोता भाव विभोर हो उठते हैं। अपनी अनवरत साधना, लयकारी पर अद्भुत पकड़ और प्रतिष्ठित मंचों पर दी गई अपनी सुमधुर प्रस्तुतियों के माध्यम से उन्होंने संतूर वादन के क्षेत्र में अपनी एक अमिट छाप छोड़ी है।
1: विदुषी वर्षा अग्रवाल इज वन सच एमिनेंट नेम इन द वर्ल्ड ऑफ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक। व्हेन हर फिंगर्स डांस ऑन द 100 स्ट्रिंग्स ऑफ

0: Santur, the listeners are left spellbound. Through her relentless dedication, remarkable command over rhythm and melodious performances on prestigious stages, she has left an indelible mark in the field of santur playing.
1: Vidushi Dr. Varsha Agrawal apne santur vadan ki shuruaat raag jhinjhoti se kar rahi hain. Isme ve aalap, jod aur jhala ki pashchat vilambit gat jo trital mein hai, madhya gat ek taal mein aur drut gat teen taal mein prastut karengi. आपके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं पंडित हितेंद्र दीक्षित.
0: विदुषी डॉक्टर वर्षा अग्रवाल इज बिगनिंग हर संतूर रिसाइटल विद राग झिंझोटी. इन दिस आफ्टर द आलाप जोड़ एंड झाला शी विल प्रेजेंट अ विलंबित गत इन तीन ताल, अ मध्य गत इन एक ताल एंड अ ध्रुत गत इन तीन ताल. अकंपनिंग हर ऑन द तबला इज पंडित हितेंद्र दीक्षित.

0: प्रस्तुत करने जा रही है राग किरवानी। इसमें वे आलाप के पश्चात मध्यगत जो रूपक ताल में और द्रुतगत तीन ताल में प्रस्तुत करेंगी।
1: यू जस्ट लिसन टू द संतूर रिसाइटल इन राग झिंझोटी बाय विदुषी वर्षा अग्रवाल। विदुषी वर्षा अग्रवाल इज नाउ गोइंग टू प्रेजेंट राग किरवानी। इन दिस आफ्टर द आलाप शी विल प्रेजेंट अ मध्यगत इन रूपक ताल एंड अ द्रुतगत इन तीन ताल।

0: ये था विदुषी वर्षा अग्रवाल द्वारा प्रस्तुत राग किरवानी। विदुषी वर्षा अग्रवाल अपने कार्यक्रम का समापन एक मिश्र राग आधारित मधुर धुन से कर रही हैं।
1: That was राग किरवानी presented by विदुषी वर्षा अग्रवाल। विदुषी वर्षा अग्रवाल is concluding her performance with a melodious धुन based on a मिश्र राग।

0: विदुषी डॉक्टर वर्षा अग्रवाल द्वारा प्रस्तुत ये थी मिश्र राग पर आधारित मधुर धुन। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे थे पंडित हितेंद्र दीक्षित। ये कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर की प्रस्तुति थी। इसके साथ ही आज की अखिल भारतीय रविवासरी संगीत सभा संपन्न होती है।
1: दैट वॉज अ मेलोडियस धुन बेस्ड ऑन अ मिश्र राग प्रेजेंटेड बाय विदुषी डॉक्टर वर्षा अग्रवाल। Accompanying her on the tabla was Pandit Hitendra Dikshit. This program was presentation by All India Radio, Indore. With this, today's Akhil

0: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, डीआरएम 810 किलोहर्ट्स पर। अब समाचार होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज परीक्षा सुधारों के लिए एक उच्च स्तरीय कार्यबल के गठन की घोषणा की। इसकी अध्यक्षता प्रख्यात प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ नंदन नीलेकणी करेंगे। इस कार्यबल में पूर्व आईबी निदेशक तपन डेका, पूर्व इसरो अध्यक्ष डॉ एस सोमनाथ, आईआईटी मद्रास के निदेशक वी कामकोटी, पूर्व शिक्षा सचिव अनीता करवाल और आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन विशेषज्ञ अमृत लाल मीणा भी शामिल हैं। प्रधानमंत्री ने अपने वीडियो संदेश में कहा कि यह कार्यबल परीक्षा प्रणाली को और मजबूत बनाने पर काम करेगा। उन्होंने दोहराया कि सरकार प्रतियोगी परीक्षाओं की निष्पक्षता बनाए रखने और करोड़ों विद्यार्थियों के भविष्य की रक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।
2: विद्यार्थियों के भविष्य के लिए भारत सरकार लगातार अनेकविध कदम उठा रही है। हमने फास्ट ट्रैक कोर्ट बना चुके हैं। हम कल पार्लियामेंट के अंदर भी कठोर कानूनों के प्रावधान के साथ नया कानून बनाने की दिशा में भी आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन हमें भविष्य के लिए सोचना है। हमारी परीक्षा पद्धति ट्रांसपेरेंट हो, हमारी परीक्षा पद्धति में सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी का उपयोग हो, इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए विश्व प्रसिद्ध टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट श्रीमान जी के नेतृत्व में एक हाई पावर टास्क फोर्स बनाने का निर्णय किया है, जो एग्जामिनेशन रिफॉर्म की तरफ फोकस करेगा और जल्द से जल्द आने वाली परीक्षाओं की विश्वसनीयता को सुनिश्चित करने का काम इसके रिपोर्ट के आधार पर कर दिया जाएगा।
1: सरकार कल लोकसभा में लोक परीक्षाएं अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 पेश करेगी। ये विधेयक कल के लिए लोकसभा की कार्यसूची में शामिल है। इसके माध्यम से लोक परीक्षाएं अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 में संशोधन किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ये विधेयक सदन में पेश करेंगे। शुक्रवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रश्न पत्र लीक और परीक्षा में गड़बड़ियों के मामलों में फास्ट ट्रैक अदालतों के गठन तथा कड़े दंड का प्रावधान करने वाले इस मसौदा विधेयक को मंजूरी दी थी। राज्यसभा के उपसभापति श्री हरिवंश ने आज कहा कि आधुनिक तकनीक के उपयोग से संसद का उच्च सदन अधिक तेज तथा कागज मुक्त हो गया है और सभी सदस्यों को डिजिटल उपकरण उपलब्ध कराए गए हैं। उन्होंने ये बातें राज्यसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों के लिए आयोजित दो दिवसीय प्रारंभ कार्यशाला के समापन भाषण में कही। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज शिक्षा मंत्रालय का कार्यभार संभाल लिया है। श्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद कल ही श्री जोशी की नियुक्ति इस पद पर हुई थी। वे उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालयों का प्रभार भी संभालते रहेंगे। पदभार ग्रहण करने के बाद उन्होंने विभिन्न योजनाओं और प्रमुख कार्यक्रमों में कार्यान्वयन का आकलन करने के लिए शिक्षा मंत्रालय की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। राष्ट्र आज करगिल विजय दिवस मना रहा है। ये दिन ऑपरेशन विजय की सफलता और करगिल युद्ध में पाकिस्तान पर भारत की ऐतिहासिक जीत का प्रतीक है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति श्री राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और कई केंद्रीय मंत्रियों ने करगिल विजय दिवस पर मातृभूमि के लिए प्राण नौछावर करने वाले वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। मीराबाई चानू सेखोम ने ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीत लिया है। मीराबाई ने महिलाओं की 48 किलोग्राम भारोत्तोलन स्पर्धा में 190 किलोग्राम वजन उठाकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। इसमें 85 किलो स्नैच और 105 किलो क्लीन एंड जर्क वजन शामिल हैं। इससे पहले श्रीकांत सिंह चानमम ने पुरुषों के 60 किलोग्राम भारोत्तोलन में कुल 264 किलो भार उठाकर रजत पदक जीता। इसमें 121 किलो स्नैच में और क्लीन एंड जर्क में 143 किलोग्राम वजन शामिल हैं। उपराष्ट्रपति सी पी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने

0: region to nearly 2,20,000. In men's cricket, India defeated host Zimbabwe by 35 runs in the third and final T20 international to clean sweep the series 3-0 in Harare. Chasing a target of 193 runs set by India, Zimbabwe managed to score 157 for 7 in their allotted 20 overs. Earlier opting to bat, India posted 192 for the loss of 5 wickets in their allotted 20 overs. And that is the end of this news bulletin.
1: मीडियम वेव 326.79 मीटर यानी 918 किलोहर्ट्ज़ पर, मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन एयर पर और एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी सूरतगढ़ का ये कॉटन सिटी चैनल। रात के 11:10 हुए हैं। अब हमारी इस सभा के प्रसारण यहीं संपन्न होते हैं। प्रातः 5:50 पर आपकी सेवा में पुनः उपस्थित होंगे। तब तक हमें अनुमति दीजिए। जय हिंद।